شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हड्डियों की ताकत वो हमारी जो एज है यानी यंग एज है उसकी जमानत है, मगर ये भी है कि उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। मगर क्यों होती हैं? क्या वाकई धूप और दूध ही उसका हल है? तो आज हम जानेंगे कि हड्डियों की सेहत के राज क्या हैं। हड्डियों की जो कमजोरी है वो अगर हम धूप में कम जाते हैं, धूप से दूर रहते हैं, तो उससे हो सकती है। प्रोसेस्ड फूड जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। कैल्शियम की कमी जो है उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह हमारी जो उम्र है जैसे जैसे ज्यादा होती है और हार्मोन्स में तब्दीली आती है तो उससे भी हड्डियां जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। एशियन जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च के मुताबिक 80% खवातीन में 40 ईयर्स के बाद वाइटामिन डी की कमी पाई जाती है। अब वाइटामिन डी सिर्फ सूरज ही से नहीं बल्कि खाने से भी हासिल होता है। दूध, दही, फिश, अंडा सब ऐसी गिजाएं हैं जो अगर हम अपनी रोज़मर्रा की गिजा में शामिल कर लें तो वाइटामिन डी की जो कमी है उसे दूर कर सकते हैं। और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए रोज़ाना 20 से 30 मिनट वॉक बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि दिन का कुछ हिस्सा या कुछ वक्त सूरज की रोशनी में गुजारें। अपनी गिजा में दूध, एलमंड्स और दालें शामिल करें। कैल्शियम सप्लीमेंट आप डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं, मगर साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि आज कुछ वक्त हमने धूप में गुजारा या नहीं। तो लिसनर्स, अगर आपकी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हड्डियां हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो भी मजबूत है। तो एक्टिविटी, धूप और जो कुदरती खुराक है, यही हमारी जो

0: यंग एज है उसका, रस है और हड्डियों की मजबूती का भी। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: Har professional shakhs itna masroof hai zindagi mein ki agar usse waqt mile aur koi usse poochhe ki baithiye zara bataiye kya chal raha hai. कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी, इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ
5: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। साथियों, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम हसान था। हसान नहायत ज़हीन और खुश मिजाज बच्चा था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और गांव में सबसे मोहब्बत करता था। इसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हसान को कुछ ऐसा सीखना पड़ा जो उसने कभी नहीं सुना था, और वो था हमदर्दी। एक दिन गांव में बहुत बारिश हुई और बारिश के बायस लोगों के कई घरों में पानी भर गया। हसान के घर के साथ ही एक गरीब खानदान रहता था जिसका नाम हानी था। हानी का खानदान छोटे से मकान में रहता था और उनके पास ज्यादा वसाइल नहीं थे। बारिश की वजह से उनका छोटा सा घर पानी में डूब गया था। हसान जब बाहर खेल रहा था तो उसने हानी बच्चों को रोते हुए देखा और उनके कपड़े भीगे हुए थे और वो सर्दी से कांप रहे थे। हसान ये मंजर देखकर बहुत अफसरदा हुआ। उसके दिल में हानी के बच्चों के लिए हमदर्दी पैदा हुई, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था कि इनकी मदद कैसे करें। हसान ने अपने वालिदैन से हानी के बच्चों की मदद करने के बारे में बात की। उसके वालिदैन ने कहा, हसान बेटा, तुम्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए। जो कुछ भी कर सकते हो वो जरूर करो। हमदर्दी और मदद करना इंसानियत का काम है। हसान ने सोचा, अगर मैं हानी के बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं उनकी जरूर मदद करूँगा। उसने अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचाए थे। उन पैसों को देखकर उसे हानी के बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने की सोच आई। इसके साथ ही उसने अपने दोस्तों को भी उसके साथ मदद करने के लिए कहा। जब हसान ने हानी के बच्चों को कपड़े दिए तो वो बहुत खुश हुए। हानी के बच्चे हसान का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, हसान भाई, आपने हमारी मदद की, हम कभी नहीं भूलेंगे। हसान ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी खुशी है, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। हसान को हानी के बच्चों की चीजों पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिला। वो समझ गया कि दूसरों की मदद करना और उनके दुख दर्द को समझना ये सबसे बड़ी बात है। इस दिन के बाद हसान ने अपने दिल में एक नई चीज समझ ली थी, वो थी हमदर्दी। उसने ये जाना कि अगर किसी दूसरे के दुख को समझा जाए और उनकी मदद की जाए तो उससे ना सिर्फ दूसरा शख्स खुश हो जाता है बल्कि खुद इंसान को भी अंदर से सुकून मिलता है। एक दिन हसान अपने दोस्त अली के साथ खेल रहा था। अली थोड़ा गमगीन दिखाई दे रहा था तो हसान ने उससे पूछा, अली भाई, आप इतने उदास क्यों हैं? अली ने कहा, मेरे वालिद ने मुझे नए खिलौने नहीं खरीद के दिए और मैं बहुत गमगीन हूँ। हसान ने अली को समझाया, अली भाई, जो कुछ भी हमारे पास है वो हमें कीमती है। कभी कभी दूसरों के साथ वक्त गुजारना और उनकी मदद करना ज्यादा अहम होता है। अली ने हसान की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बात सही है हसान भाई, मैं अब खुश हूँ। एक दिन गांव में एक और हादसा पेश आया। एक बुजुर्ग खातून जो गांव में अकेली रहती थी अचानक बीमार हो गई। उनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं था और वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। गांव के लोग इस बारे में फिक्रमंद थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। हसान ने जब ये सुना तो वो फौरन उन बुजुर्ग खातून के घर गया। उसने उनके घर जाकर उनसे कहा, अम्मी जान, आप कैसी हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बुजुर्ग खातून ने जवाब दिया, बेटे, मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे कोई मदद नहीं मिल रही। हसान ने फौरन गांव के लोगों से मदद लेने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों को बताया कि उस खातून की मदद करनी चाहिए और उनके लिए खाना और दवाइयां पहुंचाने का बंदोबस्त करना चाहिए। गांव के लोग हसान के साथ मिलकर इस बुजुर्ग खातून की मदद करने के लिए आगे बढ़े।
उन्होंने इसकी हालत में बेहतरी लाने के लिए भरपूर कोशिश की। हसन की हमदर्दी और मदद के जज्बे ने गांव के लोगों को भी मुतासिर किया। सबने हसन से सीखा कि दूसरों के दुख और दर्द को समझना और उनकी मदद करना किस कदर जरूरी होता है। इसकी मदद से न सिर्फ बुजुर्ग खातून की हालत बेहतर हुई बल्कि गांव के लोग भी आपस में एक दूसरे की मदद करने लगे। दोस्तों, हसन का दिल बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने ये जाना कि हमदर्दी की एक छोटी सी कोशिश से पूरे गांव में मोहब्बत और इत्तेहाद का जज्बा पैदा हो चुका है। वो जानता था कि अगर इंसान अपने दिल में दूसरों की मुश्किलात का ख्याल रखे तो उसका दिल हमेशा खुश रहता है। एक दिन हसन के वालिद ने कहा, बेटे, हम तुम पर फख्र करते हैं। तुमने हमें सिखाया कि हमदर्दी और दूसरों की मदद करना कितनी बड़ी बात होती है। हसन मुस्कुराकर बोला, अब्बू जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी हमदर्दी के जज्बे के बदौलत है। हसन के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि हमदर्दी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उसने समझा कि अगर हम दूसरों के दुख दर्द को समझें और उनकी मदद करें तो ना सिर्फ दुनिया बेहतर बनती है बल्कि हमारा दिल भी खुश रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमदर्दी और दूसरों की मदद करना इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। जब हम किसी दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में भी खुशी और सुकून पाते हैं। दोस्तों, हमदर्दी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दूसरे लोगों के दुख और मुश्किलात को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हम ना सिर्फ उनके दिल जीत लेते हैं बल्कि अपने दिल को भी सुकून देते हैं। हमदर्दी इंसानियत का अहम हिस्सा है और ये हमें एक बेहतरीन इंसान बनाती है।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। बहुत ही एक अहम मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है। इब्तिदा में सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम कठरे में खड़ा कोई ऐसा नज़रिया नहीं जिसे हम हर वक्त दिफाई अंदाज में बचाते फिरें। इस्लाम खुद अपने अंदर दलील रखता है, अकल से बात करता है, फितरत से हम आहंग हैं, इल्म की बात आई है, मंतिक की बात आई है और कायनात की हर निशानी को इंसान के सामने दलील बना कर रख देता है। यूं कहिए कि आसमान से ज़मीन तक, इंसान के अंदर से कायनात के बाहर तक हर तरफ निशानियां बिखरी हुई हैं। यहाँ तक के सबसे बड़ी बात तो ये कि इस्लाम सवाल को भी मना नहीं करता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी अपने दिल में पैदा होने वाले वसवसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि कभी हमारे दिल में ऐसी बातें आती हैं जिन्हें ज़बान पर लाना भी बहुत भारी महसूस होता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, बल्कि जब उन्होंने बताया कि वो उन वसवसों को नापसंद करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई, यही तो ईमान की निशानी है। गोया दिल में सवाल पैदा होना या कोई शुबा अचानक आ जाना बज़ात खुद ईमान के खात्मे की दलील नहीं, लेकिन इस शुबे को दिल में पालना, उसे तहकीक के बग़ैर बढ़ने देना या शर्मिंदगी की वजह से सवाल न करना, ये नुकसानदेह हो सकता है। सबने कहा इसलिए अगर कोई सवाल दिल में आए तो उसे दबाइए नहीं, पूछिए, सुनिए, समझिए, दलील तलाश कीजिए, क्योंकि सही सवाल अक्सर इंसान को सही इल्म तक पहुंचा देता है। सबने कहा आज के इस प्रोग्राम में हम बाज़ मशहूर जो सवालात अमूमी तौर पर किए जाते हैं इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला एक आम सवाल ये है कि अल्लाह ताला हमें इबादत का हुक्म क्यों देता है? क्या उसे हमारी नमाज, रोज़े और बंदगी की ज़रूरत है? जवाब इस सवाल का ये है कि पहली बात तो ये है कि लॉजिकली ये सवाल दुरुस्त ही नहीं। ज़रा सोचिए कि अगर पूरी इंसानियत नमाज पढ़ने लगे तो क्या अल्लाह की बादशाही में इजाफा हो जाएगा? क्या कायनात बड़ी हो जाएगी? क्या अल्लाह की कुदरत में कुछ और शामिल हो जाएगा? और अगर पूरी दुनिया इनकार कर दे तो क्या अल्लाह की सल्तनत घट जाएगी? क्या चांद, सूरज या आसमान की कोई कुव्वत कम हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्द जमीअ फइन्नल्लाहा लगनीयुन हमीद। ये सूरह इब्राहिम की एक आयत का एक हिस्सा है। وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد। और मूसा ने कहा अगर तुम और रूए ज़मीन के सब लोग कुफर इख्तियार कर लो तब भी अल्लाह बेनियाज और हर तारीफ के।

0: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: हाँ जी, एक बार वापस आ चुके हैं हम। अभी तक कहती थी मैं और आज मैं कहने वाली हूँ हम, क्योंकि आज हमारे साथ कोई बहुत ही कमाल का शख्स जुड़ चुका है। सो महविश वापस आ चुकी है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो हाउ वाज योर वेकेशन?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ कैसे गुजरा सब कुछ?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। छुट्टी के बाद आने के बाद जैसे गुजरता है शुरू शुरू में, हवाइयां उड़ी रहती हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन ऑल टुगेदर बहुत अच्छा गुजरा, काफी मजा आया और सुबह जो थी बहुत ही एक्साइटिंग बनी। एंड थैंक्स टू ऑल आवर लिसनर्स।
2: हां एग्जैक्टली,
0: ये तो हमें थैंक यू करना
2: चाहिए। मुझे भी बहुत मजा आया, जितने अरसे मैं करती रही हूं तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तो बहुत मजा आया। मतलब ये शो अब हमारा, क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है और कल लास्ट डे है, लेकिन ये कि एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन बहुत इंजॉय किया।
0: हाँ, हमें इस तरह का बिल्कुल रिस्पांस एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे और बहुत ही मजा आया। और मुझे लगता था कि सुबह सुबह जो एक मोटिवेशन चाहिए थी, जो हमें खुद को किक चाहिए, वो हमें लिसनर्स से मिली। एंड आई डोंट नो, इट्स अ वाइस वर्सा लिसनर्स को भी।
2: मुझे लगा कि समर्स जो है ना, इसके लिए परफेक्ट टाइम था। हाँ। क्योंकि क्या होता है समर में कि आप सुबह शो करो, सुबह सुबह ठंडे ठंडे में आए, ठंडे ठंडे में वापस चले गए, तो थोड़ा सा एक सुकून का माहौल रहता है आपका ना, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा फील होता है। अदरवाइज अगर आप दोपहर के आफ्टरनून वाला शो अगर समर्स में कर रहे हो ना, तो तबीयत अजीब सी चलती है। तो मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगा कि सुबह सुबह ठंडा ठंडा माहौल फील नहीं हुई, गर्मी वाला वो एहसास नहीं हुआ।
0: और मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा टाइम हमें मिल गया।
2: exactly.
0: मतलब पूरा दिन मिलता तो लगता था इतना बड़ा दिन है, क्योंकि वैसे आप यूजुअली सो जाते हैं या फिर आपको उस तरह से अर्ली स्टार्ट नहीं होता, तो फिर सारे काम डिले होते ही चले जाते हैं।
2: एग्जैक्टली,
0: सो दैट वे काफी अच्छा रहा। तो
2: बस 3 घंटे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मतलब आपको इतना मौका मिला है लिस्टनर से बात करने का और सब कुछ। और मुझे लगता है कि अभी तक का था, अभी जो अभी आगे के 4 महीने आने वाले उसमें तो शायद मौका नहीं मिल सकेगा उतना, लेकिन फिर भी चलो खैर, मतलब ये अच्छा रहा,
0: ये बहुत अच्छा रहा। और मैंने सोचा पहले ये था कि 3 घंटे उसमें इनिशियली, 1 घंटा तो फिर खैर विदाउट म्यूजिक है, लेकिन यू वोंट बिलीव 3 घंटे में मुश्किल से 3 या 4 सॉन्ग्स चल पाते थे।
2: ऐसे ही
0: मुश्किल से
2: बिल्कुल।
0: सो देन आई रियलाइज्ड कि लोग जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और वो मॉर्निंग टाइम में एक अलग ही वाइब थी। तो बस दोस्तों, हम जो है आज अपना सेकंड लास्ट डे है हमारे इस शो का समर मॉर्निंग्स, तो हम तो आपको मिस करेंगे, बट आई एम श्योर कि आप हमारे साथ जो है हमारे शोज में भी डेफिनेटली जुड़ेंगे। वेल, हम आफ्टरनून में है 1:30 से और महविश 10 बजे से है आपके साथ।
2: 10 से 11 होंगे, यस इंशाल्लाह ताला, यू मैटर।
0: तो अच्छा, कैसी रही वैसे वेकेशंस? बाय द वे,
2: वेकेशंस अच्छी रही बहुत। और मुझे, मैंने ये रियलाइज किया क्योंकि मैंने पहली दफा इस मौसम में जो समर वेकेशंस हैं उसमें वेकेशंस ली हैं अपनी। हाँ। तो एक जितना मतलब यहाँ पे आप रहते हो और जो टाइम गुजरता है, तो मुझे पहले मतलब सोच रही थी कि यार समर्स में आप इतना घूम फिर नहीं सकते ना यहाँ पे, तो बिल्कुल भी। लेकिन कम से कम ये सुकून था यार कि मतलब गर्मी का पता ही नहीं चला, गर्मी आई और चली गई, ये वाला सीन है। तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, इस वक्त आपको लेनी चाहिए छुट्टी।
0: हाँ, तो यानी विंटर्स के कंपैरिजन में समर्स में ब्रेक लेना ज्यादा बेहतर है,
2: आपको थोड़ा सुकून का टाइम घर पे। वरना क्या होता है ना कि हम लोगों का, क्योंकि माइग्रेन का इशू है, तो ये जो इस तरह की गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, तो एकदम से अटैक होता है। तो मेरी लास्ट समर मुझे याद है कि मुझे रोज सर में दर्द होता था। अब मैंने इस दफा मतलब ये रियलाइज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह सर में दर्द नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ज्यादा गर्मी वगैरह से आपको होता है, तो अच्छा है आप अगर थोड़ा ले सकते हो वेकेशन तो समर में लेकर सुकून करो घर पे, कुछ नहीं, आराम से रहो। तो वो उसमें मजा होता है।
0: तो चलिए फिर, मैं तो
2: टाइम आपको मिल जाता,
0: मैंने तो हमेशा समर्स में ही लिया, तो आई डोंट नो कि विंटर्स में कैसा लगता होगा। कभी मैं प्लान करूँ कि मैं विंटर्स में लूँ तो देखते हैं।
2: विंटर्स में क्या होता है ना कि विंटर में जब आप छुट्टी लेते हो, तो यहाँ अगर आप कतर में ही रहना है आपको, तो कतर इंतहाई खूबसूरत लग रहा होता है। आप घूमो फिरो आराम से, इधर उधर जाओ, सब कुछ ना, तो आप इंजॉय कर सकते हो। समर में बस ये है कि गाड़ी गाड़ी में बैठ के आप घूमते रहो, बाकी या फिर मॉल मतलब इधर, इससे ज्यादा आपके पास नहीं है ऑप्शन।
0: मुझे लगता है समर्स आपको कहीं ना कहीं टाइम देता है अपनी फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी सारी एक्टिविटीज देख रहे हैं, स्पेशली जो हम लोग, हम जैसी मदर्स हैं जो वर्किंग है,

0: उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो अब टाइम निकल के आता है तो उस ब्रेक में आप बच्चों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको पता चलता है उनके क्या एग्जैक्टली हॉबीज हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं. तो वो एक आपका स्ट्रॉन्ग नाइस. तो चलिए यहाँ पर तो बहुत ही कूल सी समर्स को इंजॉय करने के बाद महवेश आ चुके हैं. आइडियली आज और कल दो ही दिन हम हैं आपके साथ इस शो में, पर डिफरेंट आवर्स में डिफरेंट शो में डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें तो आज भी हम लेकर आए होती रहेंगे. आज आज एक्साइटमेंट का लेवल भी हमारा कुछ अलग है क्योंकि महवेश भी साथ में है, बहुत सारी बातें महवेश के पास भी हैं, हमारे पास तो रहती हैं. आपके पास क्या कुछ है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए. नंबर्स हैं हमारे 666-22-107 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं. अब हम 640 ऑनवर्ड्स जैसा आप जानते ही हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसे रिवील कर देते हैं, वहाँ पर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ओवर द कॉल जुड़ें. हमारा नंबर है 443-443-77. वेल मॉर्निंग के शो की शुरुआत करते हैं सुबह के असकार के साथ. छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर मौसम का हालचाल, कुछ आपका हालचाल, कुछ और बात. स्टे हुक टू एफएम 107, दिल से देसी.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिके बुकरतं व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार एफ एम 107 पर.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

राइट गाइज, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. नाजी और महविश हम दोनों आपके साथ हैं. 6:18 ऑन द क्लॉक वापस आ चुके हैं. तो चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं मौसम की और आज कैसे रहने वाला है मौसम, वो हम आपको बताएं. तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, कुछ गर्म ही गर्म रहने वाला है. धूप रहेगी पूरे टाइम. टेम्परेचर की बात की जाए तो तकरीबन 42 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम. मिनिमम रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हाँ, ठीक ठाक तरीके से ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से आपको फील होगा 47. इसके अलावा बात की जाए ह्यूमिडिटी की तो ह्यूमिडिटी है आज लगभग 65%, जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा आफ्टरनून्स में हो सकता है आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप अपने वाटर इनटेक का खास ख्याल रखिएगा. ये हम हमेशा से आपसे बोलते जा रहे हैं. ये वेट नहीं करना है कि जब प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगा. नहीं, आपको जो है थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहना है. वहीं पर अगर यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो आज है यूवी इंडेक्स 11, जो कि अगेन हाई कैटेगरी में आता है. वहीं पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इस टाइम डायरेक्ट सनलाइट से जो है वो परहेज कीजिए. और अगर आपका काम ऐसा है कि आपका एक्सपोजर हो ही रहा है सनलाइट में, देन यू कैरी योर सनस्क्रीन, सनग्लासेस, कैप्स या फिर अम्ब्रेलास का इस्तेमाल कीजिए. वहीं पर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड इज 15 to 25 किलोमीटर, तो ये भी ठीक ठाक है. और सनराइज की बात हो तो आज सनराइज हुआ 5:20 AM पर और आज सनसेट होगा 6 PM पर. यानी ऑल टुगेदर 12 घंटे और 40 मिनट का डे लाइट टाइम हमें और आपको मिल रहा है. सो वो लोग जो अर्ली राइजर्स हैं उनके लिए तो कमाल की बात है कि सुबह उठे और अपनी एक्सरसाइज या जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो प्लान कर सकते हैं. लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा लेट उठते हैं और फिर उनके पास टाइम नहीं होता तो वो जो है इवनिंग्स में प्लान कर सकते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्लान करना ही करना है. तो ये था मौसम का हाल चाल. और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं महविश आज के दिन के हवाले से. आज है संडे एंड August 30. तो आज कुछ डेज जो हैं वो पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस. तो ये दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो लापता हो जाते हैं या किसी वजह से उन्हें जो है हटना पड़ता है, रीलोकेट किया जाता है या फिर वो अपनी एक्चुअल पहचान को खो बैठते हैं. तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में डिजास्टर्स और भी दूसरी वजहों के चलते, बहुत सारे रीजंस के चलते ये फोर्स्ड होते हैं अपनी जगहों को छोड़ने के लिए. सो फॉर देम आज का दिन उनके लिए है. वही है आज इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे. ये मछली और इसके तहफ़ और इसके हवाले से अवेयरनेस जो है वो आज फैलाई जाती है, इस पर बात की जाती है. तो बस ये आज ये भी दिन है. इसके अलावा है नेशनल बीच डे. मतलब बीच की जो खूबसूरती है या फिर जो सफाई है उसको प्रमोट करने के लिए ये दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है. इसके साथ देखा जाए तो आज है नेशनल हॉलिस्टिक पेट डे. यानी पेट्स की जो उनकी सेहत है या उनको कैसे बेहतर उनकी देखभाल करना चाहिए, इस हवाले से ये वाला दिन सेलिब्रेट किया जाता है. कभी कभी मैं विश में सोच रही होती हूँ इतने सारे दिन हैं और इतने सारे दिन बड़े

0: अलग से
1: और बनाना आइसक्रीम डे अभी हमने रिसेंटली मनाया था और आज है मार्शमेलो डे.
0: वाओ
1: देखिए पता नहीं कितने लोगों को पसंद है बट यस आज है ये दिन और इसके साथ है आज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ कजाकिस्तान. तो आज कजाकिस्तान में ये दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है. तो इस तरह से 30th of August आज कुछ ये ऑब्जर्वेंसेस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए और कुछ आपके मैसेजेस जो अब हम जो है वो रीड करने वाले हैं.
0: तो मैसेजेस की तरफ चलते हैं. नूर मोहम्मद मंसूर और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आसमां में तो एक तारा तो था, आज एक चांद भी आ गया. वेलकम आपसे. थैंक यू नूर भाई, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. और इसके साथ ही जी हमारे पास मैसेज जो है ना ये है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग
0: आरजे मिस नाजिया एंड द वंडरफुल टीम एट एफएम 107. द वर्ल्ड वेकअप्स टू योर वॉइस, ब्रिंग द वॉर्म्थ and light up the earwaves and make someone's day a little brighter today.
1: Oh,
0: Yusuf
1: nice.
0: Shamim.
1: Oh, that's a beautiful line. Bahut bahut shukriya ji. Bahut shukriya. Aapke pyare se message ka.
0: जी और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर, उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगी.
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्लाह सलामत रखे और मावश को शो पढ़ाने में खुश आमदेद. उम्मीद है कि आपकी छुट्टियां खूब अच्छी गुजरी होंगी, दुआओं में याद रखिएगा. वस्सलाम. और ये नाम तो नहीं लिखा लेकिन मैं समझ गई हूँ, जफर अली है.
1: अच्छा जफर जी, ओके,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जफर अली आपके वेलकम करने का. और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. और ये कहते हैं नाम इनका जो है ना, हेलो आई एम यूजिंग व्हाट्सएप बिजनेस, बस ये लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा,
1: नाम नहीं होते कुछ लोग. तो
0: और इंजीनियर मोहम्मद फैजान ने कहा वेलकम बैक मावश जी, गुड मॉर्निंग नाजिया जी,
1: वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच.
0: गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है. और अस्सलाम वालेकुम बोथ ब्यूटीफुल लेडीज.
1: सुमी, थैंक यू सो मच सुमी. तो बस दोस्तों अब से थोड़ी देर बाद जब हमारी वापसी होगी तो कुछ अपडेट्स हैं, लोकल अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे एंड देन आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो बस आपको हमारे साथ उस वक्त जब हम अपना टॉपिक रिवील कर देते हैं उस टाइम आपको हमारे साथ जुड़ना ही जुड़ना है ओवर ए कॉल. नंबर है 4434377. तो फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे तो ढेर सारी बातें आपके लिए. जुड़े रहिए सुनते रहिए 107 दिल से देसी.
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो. यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम. आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें. हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर.
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है. उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है. स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं. आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें.
4: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
5: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है. पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक. ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर. एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी.
6: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में

0: हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। गेम चेंजर
1: सीजन 2। आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन एफ एम 107।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: Absolute cinema.
7: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: ready, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 107 show है ये summer morning और एक दफा फिर हम आ गए हैं आपके साथ. और आज जो एक और जो चीज हुई है ना, मतलब मेरी भी वापसी हुई है और एक और वापसी हुई है बच्चों की स्कूल की.
1: हाँ जी बिल्कुल सही.
0: हाँ तो आज अब बच्चे बिल्कुल तैयार हैं भाई स्कूल ज्वाइन करने के लिए. और ये कहा गया है कि क्लासरूम और स्कूल जोन से लेके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, हेल्थ कैंपेन्स और फैमिलीज की शॉपिंग तक कदर ने 2026-2027 के एकेडमिक ईयर के लिए वसी पैमाने पे तैयारी जो है अपनी मुकम्मल कर ली और स्टूडेंट्स आज से स्कूल वापस जा रहे हैं. और कतर भर के कोई 649 स्कूल्स हैं जहां पे तकरीबन 419,000 तादाद है सना की, उनका इस्तकबाल किया जाएगा. और इसके लिए महीनों से एजुकेशनल फैसिलिटीज, करिकुलम, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल सेफ्टी और स्टूडेंट सर्विसेज पर काम किया गया.

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर घर की अपनी कहानी होती है, कभी पेरेंटिंग का चैलेंज, कभी बच्चों की तरबियत की फिक्र, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश। तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिस्कशन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया हर वेडनेसडे शाम 5 बजे से ओनली ऑन FM 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: गेम चेंजर सीजन 2।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: Pretty, welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग. एक दफा हम लोग आ गए फिर से आपके साथ और अब वक्त आ गया है कि हम अपना टॉपिक रिवील करेंगे.
1: Yes. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने रखा है, बहुत ही दिलचस्प है. जिंदगी में एक चीज जो हम सबको बड़ी पसंद आती है वो है दूसरों को राय देना, मशवरा देना. जब बात आती है अमल करने की, तो चाहे हम हों, हम हमेशा चाहे बच्चे हों, मतलब बच्चों को तो हम देते ही रहते हैं बहुत सारी एडवाइस, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अगर हम पर भी बात आती है तो हमें जो है ना उन पर अमल करना काफी चैलेंजिंग लगता है. लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसे पॉइंट पे आपने महसूस किया होगा कि किसी ने आपको लाइफ की वो एडवाइस दे दी चलते फिरते हल्के से मुस्कुरा के, जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनती है. और वाकई आप सोचते हैं, हालांकि उसने बहुत ही कैजुअल वे में आपको दी होती है, लेकिन आप जनरली बैठते हैं और सोचते हैं कि वाकई ये मेरी जिंदगी का वाकई टर्निंग पॉइंट है. और हम जो है ना अपने मसलों को जिस तरह से देखते हैं, मसलों वो हम ऐसे देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन दूसरा जब हमें देख रहा होता है और सजेस्ट कर रहा होता है तो वो ऐसे कर रहा होता है जैसे ये सोल्यूशन है. हमारा फोकस अपने प्रॉब्लम्स पे रहता है, लेकिन दूसरा जब हमें कोई एडवाइस या कोई चीज़ देता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा सोल्यूशन होता है. एक तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको एडवाइस देता है, जो आपको मशवरा देता है, जो आपको गाइड करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है. तो इससे इरिटेट ना हो, इसको बहुत ज़्यादा अनोइंग ना समझें, बल्कि उन एडवाइसेस जो आपको मिली हैं उन पर अमल कीजिए. तो आज हमने सोचा क्यों ना क्विक रिकैप करा जाए आपके साथ और आपसे पूछा जाए कि आपको आपकी लाइफ में किसी ने अभी तक जो बेस्ट एडवाइस दी, जो वाकई आपके जहन में है और उस एडवाइस ने आपकी लाइफ को चेंज किया, बेहतर चेंजेस आपके अंदर आए, पॉजिटिव चेंज लेकर आई वो एडवाइस, वो मशवरा, तो वो शख्स का नाम और उस एडवाइस को हमारे साथ शेयर कीजिए. हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें 443-443-77 पर. मैं और महविश भी आपको बताएंगे कि हमें जो है बेस्ट एडवाइस किसने दी. हालांकि बहुत सारी एडवाइसेस हमें मिलती ही रहती हैं, लेकिन ऐसी एडवाइस जो आपको लगे कि आपके लिए आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनी, तो वो आपको हमारे साथ शेयर करनी है.
0: बिल्कुल,
1: बस आज यही आज हमारा सवाल है. तो पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बिल्कुल खैरियत से. आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं आप?
2: जी, जैसे सुबह सुबह फूल खिलता है तो कमाल की लगता है, जैसे आप दोनों की जोड़ी आता है तो लाजवाब लगता है.
1: ये तो नूर जी हैं, तो शायरी के साथ. तो आप बताइए आपकी जो है वो सुबह कैसी जा रही है?
2: सुबह तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बहुत अच्छा गया था, मौसम बहुत लाजवाब था. आज थोड़ा सा उसके मतलब नेगेटिव की मतलब बोले तो थोड़ा सा गर्मी आ गया था
1: कल, थोड़ी सी गर्मी से आता
2: है.
1: हां चलिए, अब तो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है.
2: हां बहुत गर्मी थी. मैं बस और तो सिर्फ इसलिए लगाया कि बस आप दोनों जाने वाले हैं, मैं सोचा क्या पता दोबारा बात करने को मिले ना मिले.
1: अरे शहजादा जी, हम यहाँ इस टाइम से हट रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसे हम निकल थोड़ी रहे हैं. तो नूर जी आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे टाइम्स जो डिफरेंट है उसमें भी.

0: आफ्टरनून में और लेट मॉर्निंग में महवेश के साथ।
1: सोमवार को आप प्रोग्राम करके मंगलवार को आप लोग विदा हो रहे हैं, दो तीन दिन बाद मैं विदा हो रहा हूँ कतर से 2 महीने के लिए।
2: अच्छा, आ रहे हैं आज। सही,
0: तो आप वेकेशन पे जा रहे हैं?
2: अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर रखे। और बताएं आपके घर पे सब लोग ठीक हैं? नेपाल में अभी जो वो आया है सैलाब वगैरह, महफूज होंगे इंशाल्लाह?
1: हम लोग की तरफ तो बहुत महफूज है अभी
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: पर पानी यहाँ तक भी आ गया है, पर हमारे घर से भी लगभग 10 किलोमीटर दूर है, एक नदी है, 10 से 15 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग का इतना खतरा नहीं है, लेकिन हुआ जो भी हुआ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक चीज आज मैंने नोटिस की कि जो हालात दुनिया में चल रहा है, इतने हालात बिगड़ने के बावजूद भी हर हमारे नेपाल को बहुत भरोसा दिलाया है और मदद भी किया है। इसी तरह से हम हर इंसान एक दूसरे के जो गिबत करते हैं या बुराई करते हैं, इसके साथ ऐसा हुआ किसी का बदुआ न करे, क्योंकि अभी देखिए ना, इंसान पैसे के पीछे कितना भागता है। आज उस इंसान को मैं मुझे बता हुआ कि मेरा पास अल्लाह ताला कुछ नहीं दिया है, इसका पास दोनों हाथ भी है, आंख भी है, पांव भी है, और कमाता और खाता भी है। अब उस इंसान के बारे में जिसके पास खाने तो दूर की बात, रहने की तक कपड़े पहनने के लिए भी है, वो इंसान अल्लाह ताला के मतलब मोहताज है, मतलब फिर भी अल्लाह पे भरोसा करता। हम लोग भी अल्लाह ताला से हर चीज दे या ना दे, उस हर चीज के लिए खुश रहे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, बोलने का इतना तजुर्बा नहीं है, पर जो मैं कहना चाहता हूँ जितना लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ,
2: शुक्र गुजार रहे हमेशा, चाहे जिस किस्म के भी हालात हो, जो भी हो, लेकिन आपको शुक्र गुजारी जरूरी है आपके लिए।
0: सही बात है, बिल्कुल। तो आई थिंक ये आपकी तरफ से सबको एक बेस्ट एडवाइस है कि चाहे जैसा भी हो, इंसान जो है वो खुश रहे, पॉजिटिव रहे।
1: और आज टॉपिक जो आप दोनों लेके आए हैं ना, इसके मुताबिक जैसे कहते हैं ना कि भाई कुछ न कुछ टेंशन नहीं लो, हम है तुम्हारे साथ। जब खुद के साथ आता है तो महसूस करो कि उसके साथ ऐसा हुआ हो तो कितना मतलब लाचार हुआ होगा। तो किसी का मजाक पुराना हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसे भी तो बस पुराने मस्जिद में तो अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमाते हैं, दुनिया में हर चीज का इनकार कर सकता है इंसान, अल्लाह का इनकार करने वाला है, नबी का इनकार करने वाला, हर चीज का, लेकिन मौत का इनकार करने वाला शायद आज तक दुनिया में कुछ नहीं, ना परिंदा है ना इंसान है, मौत बरहक है, हर चीज जानता है। तो भाई दुनिया में मौत का भी मुझे चखना है। तो अमल की बात क्या है ना कि हम तो दूसरे को एडवाइस बहुत देते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, जब खुद के ऊपर आता है, तबलीग की बात है, तबलीगी वाले हमारे रूम में, तो हम लोग एक दूसरे को एडवाइस दे रहे थे, यार नेपाल में ऐसा हुआ, इतना पैसा दे दे, ये करो वो करो, जब तबलीगी वाले आया बोला चलो भाई साथ में नमाज पढ़ने के लिए, तो इसमें से दो आदमी बोले इंशाल्लाह आता हूँ, इंशाल्लाह बोलने का मतलब सोचते अल्लाह ने चाहा तो, मतलब वो तो सही, अल्लाह ने चाहा तो आप जाओगे, लेकिन वो हमको लेने के लिए आया है, उसकी थोड़ा ख्याल कर, उसके साथ ले जाने से क्या मुश्किल है, वैसे भी जाने वाले हैं, साथ में उसका भी मतलब मन रह जाएगा, उसका भी मन नहीं टूटेगा। तो आज की टॉपिक में तो मेरे को इतना कहने का तजुर्बा नहीं है, पर टॉपिक बहुत मस्त है, खुद भी अमल करने के बाद
0: ये बात तो है।
1: और कॉल तो मैं पहले इसलिए मिला कि पता नहीं आज किसका कॉल मिलेगा किसका नहीं मिलेगा।
0: अरे नहीं नहीं, आपकी तो मिलती है, बस
1: नए नए गेस्ट आया है आज 2 दिन के लिए, कॉल करने के लिए तो सब लाइन लगे होंगे, तो आज मेरे तरफ से गुजारिश है कि बस शॉर्टकट में जितना बात कीजिए उतना अच्छा रहेगा, और इसके साथ मैं कॉल करता हूँ, और हमारे नेपाल के लिए खुशी से दुआ कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, येट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम आपसे पूछ ही रहे हैं कि आपको अब तक की सबसे बेहतरीन या यादगार एडवाइस किससे मिली जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऐसे तो छोटी छोटी एडवाइसेस हमें मिलती ही रहती है, लेकिन एक बड़ी पावरफुल इम्पैक्टफुल एडवाइस जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया,

0: क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया जो आपने रियलाइज किया कि ओ इस तरफ तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं जा रहा था. तो वैसे अगर मैं ये सवाल महवेश तुमसे पूछूं तो कोई अभी तक तुम्हारे जहन में ऐसी है पावरफुल रिसेंटली कोई ऐसी एडवाइस तुम्हें किसी ने दी?
1: अच्छा, जो वाकई लाइफ चेंजर थी, लाइफ चेंजर भी कह सकते हो या एक तरह का आपका होता है रिमाइंडर. बहुत सारी चीजें आपके जहन में होती हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर वो आपको एक रिमाइंडर के तौर पे भी होती हैं. तो मेरे अब जब तुम बात कर रही थी तो उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था कि जब मैंने यहाँ पे रेडियो ज्वाइन करना था ना, उससे पहले वो जाहिर सी बात आपका होता है कि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह निकलवा लेते हो जहाँ पे आपने काम किया हुआ है. तो मैं गई थी अपने जो साप का रेडियो था, तो उनसे मैंने कहा, मैंने कहा सर वो जो मैंने किया था एक्सपीरियंस लेटर मुझे चाहिए तो प्लीज़ दे दें. तो वो जब तक बन रहा था जब तक मैं उनके साथ वहाँ पे बैठी हुई थी, और उस वक्त हानी जो था मेरा ख्याल 5 साल के करीब था और अफान 2 साल का भी नहीं था, ऐसा छोटा था. तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक बात ना मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये बात आपको हो सकता है कि लगे कि मैं क्यों मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरी एडवाइस है आपके लिए कि मेरे ना अपने 4 बेटे हैं और मैं जब मतलब छोटे हुआ करते थे सब कुछ, तो उस वक्त ये था कि मेरे जो साथ के लोग थे जो काम कर रहे थे हम लोग हमारे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो लोग प्रॉपर्टीज बना रहे थे और हम लोग ना रेंट के घर पे रहते थे, मेरा कोई घर नहीं था कुछ नहीं. लेकिन एक जो चीज़ मैं कर रहा था वो ये कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था. मतलब मेरी पूरी तवज्जो ये थी कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई उसकी तरबियत और इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करता रहा, और मैंने कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बनाई. तो आज माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो है वो जवान हो गए हैं, मेरे बच्चों ने 2 बच्चों ने जॉब कर ली है, और अब हम लोग अपना घर भी खरीद चुके हैं. मतलब अभी जॉब उसकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी उनकी बच्चों की जॉब्स वगैरह जो है ना स्टार्ट हुई थी. और जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी थी उनके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे और किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, तो आज वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं बड़े होके उनके बच्चे. तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करें ना करें अपने बच्चों के लिए, लेकिन उनकी पढ़ाई के ऊपर ना बहुत तवज्जो देना. क्योंकि इस वक्त आप जो इन्वेस्ट करोगे अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा. इस वक्त अगर आप बेशक प्लॉट अक्सर होता है बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं उनका मेन फोकस होता है प्लॉट खरीद लो, इधर इन्वेस्टमेंट कर लो, उधर कर लो, और अक्सर ये होता है पढ़ाई के मामले में कि चलो यार जो सस्ते से सस्ता हो सकता है जो कुछ हो सकता है वो कर रहे होते हैं अक्सर. मतलब दिमाग में होती है कि यार कुछ बचा लेंगे. तो उन्होंने ये बात बोली थी और मुझे बड़ी ही दिल को लगी थी. फिर मैंने आके अपने हस्बैंड से शेयर की थी तो उन्होंने कहा था बड़ी मतलब जबरदस्त इन्होंने बात की है, और बाकी ये बड़ी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो, आपको वही मिलेगा. क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, आप देखो बहुत सारी जगहों पर आपने देखा है कि आपके बड़े अच्छे खुशहाल घराने होते हैं, सब कुछ होता है. औलाद बड़ी होती है या तो वो कहानी बदल सकती है, बहुत आगे पहुंचा सकती है आपको, या फिर ये कि बिल्कुल ही डुबो सकती है. तो ये आपके अपने हाथ में.
0: सच बात,
1: मुझे ये बड़ी दिल को लगी थी.
0: मुझे भी बहुत अच्छी लगी जिस तरह से तुमने कहा कि वो लोग घर आज बेच रहे हैं बच्चे, देखो
1: और वो बना रहे हैं. उनके बेटों ने फॉरन से मतलब 2-2 साल हुए और माशाल्लाह.
0: हालांकि उनका कुछ बनता नहीं था, कोई एज सच कोई रिलेटिव नहीं है, कोई एज सच बहुत नियर नहीं थे, बट उन्होंने एक एडवाइस दी.
1: एडवाइस बच्चे छोटे हैं तो अभी ये जो ना फोकस करना है. तो अच्छा, हम लोगों के दिमाग में पहले भी ये बात थी लेकिन उसके बाद और ज्यादा ना उनकी बात बड़े दिल को लगी थी कि यार ये बड़ी सही बात है, आप पढ़ाई पे अपने बच्चों के लाजमी
0: कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है.
1: Exactly.
0: तो बहुत ही अच्छी बात. तो देखिए जैसे महवेश ने बताया कि ये इनके लिए एक जो था लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, 2 था एम्फसाइज कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पर ही फोकस करना है. लेकिन कोई बाहर से आपको देखता है, जज करता है, कहता है, कोई अच्छी एडवाइस देता है और हो सकता है वो आपके एकदम दिल को छू जाए, और वाकई जब आप उस पर अमल करते हैं और फायदा होता है तो आप उसे भी थैंक यू कह रहे होते हैं.
1: इसी तरह से एक और जो एडवाइस जो हमेशा मुझे लगता है कि महमूद साहब मिलते थे ना, तो वो हमेशा एक बात करते थे, कहते थे अच्छा आप लोग माशाल्लाह से यंग हैं, आप मेरी बेटी की उम्र, हमेशा इसी तरह से बात शुरू करते हैं वो, आप मेरी बेटी की उम्र की हैं, यंग हैं. तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है गैर जरूरी लगता है, पहले हमें भी लगता था, इतनी इंपॉर्टेंस फील नहीं होती थी, लेकिन जब गाड़ी में सफर किया करें ना तो कुछ ना कुछ जिक्र किया करें, कुछ अपने पास लगा लें या मतलब पढ़ते रहें, क्योंकि आप इस उम्र में आके आपको रियलाइज होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे जहन में ये एडवाइस भी हमेशा महमूद साहब की रहती है कि खास तौर पे अगर आप जिस वक्त गाड़ी पे मौजूद हो तो कुछ भी, चाहे आप कलमा पढ़ो चाहे कुछ भी, कोशिश करनी चाहिए कि वो कर सकें. तो ये महमूद साहब की एडवाइस है जो मुझे हमेशा याद
0: रहती है. मुझे भी याद आती है, उन्होंने कहा थोड़ा कंसिस्टेंट रहें. हाँ. मतलब ये नहीं कि आपने 2 दिन तो सुन लिया और फिर आप 3rd-4th दिन भूल गए. तो आप जो है कोशिश ये करें कि 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, जितने भी आप शुरुआत कर सकते हैं, बट आप कंसिस्टेंट रहिए. तो ये बहुत ही जबरदस्त एडवाइसेस दोनों महवेश ने हमारे साथ शेयर की. एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए. हेलो,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Khushamdeed.
0: Sorry, आपको हमने खोल पे रखा थोड़ी देर.
2: आपने महमी सैम के लिए सबसे पहले वेलकम टू द शो.
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई. क्या हाल है? ठीक ठाक है.
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा रहा वैकेशन आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त रहा.
2: जी नाजिया मैम.
0: हाँ जी.
2: क्या कहते हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. मैं कह रही थी कि पहले तो आपसे माजरत, सॉरी कि हमने आपको थोड़ी देर तक कॉल पे होल्ड रखा, रोके रखा, तो उसके लिए
2: इसलिए कि ना सबर का फल मीठा.
0: आपको अपनी एडवाइसेस याद आती जाए महवेश की तरह, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्योंकि कई बार कोई आपका क्लोज नहीं होता, आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके जो है वो स्पाउस या कोई आपका बहुत नियर नहीं बंदा होता, लेकिन बड़ी अच्छी एडवाइस दे जाते और आप दिल ही दिल जो है वो सोचते हैं वाह इधर मेरा कभी ध्यान ही नहीं था, या फिर इधर मेरा ध्यान था लेकिन उस तरह से नहीं था, तो वो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है. तो है कुछ ऐसा?
2: है बिल्कुल. और बिल्कुल महमिश मैम ने अभी जो कहा ना उनसे कुछ रिलेटेड होता हुआ ही है, क्योंकि मेरे अपने ही खानदान में ना, तो मेरी जो बड़ी खाला है ना, बड़ी खाला के चार बेटे चार बेटियां है ना, तो वो है ना किराए के घर में थे. तो जब उनका मंजिला बेटे थे ना, मेरी छोटी बहन है ना मेरे बाद वाली, उसकी रिश्ते की बात लगी ना शादी की, तो उन्होंने कहा शादियों में तो लोग आते हैं खाते हैं, बहुत कुछ खर्चा होता है, तो मैं एक काम करूँ, ये जो जहेज की शक्ल में खर्चा करने की शक्ल में है ना, इस सारे पैसे ना दे दो, एक घर खरीद के दे दो, तो ये जो तुम्हारी बहन के रहेंगे तुम्हारी बहनाई के रहेंगे ये. तो मैंने उसी तरह हल किया, बाकी जो तुमसे बन सकता है ना जो 19 जो भी होगा वो सब एडजस्ट कर लो. तो वैसे ही किया हमने, वो जो जहेज की शक्ल में कैश बड़ी रकम दिया उस टाइम पे, और घर खरीद लिया. और उनके बाकी बच्चों के पास किसी के पास अपने घर नहीं है, किसी का अपनी प्रॉपर्टी नहीं, सब रेंट पे रहते. सिर्फ एक मेरी वाहिद बहन ऐसी है कि उसके अपने जाती घर है, उनका घर है. अगर उस टाइम पे हम शोर शाह धूम धड़ाका डीजे वीजे बजा देते और दावत में सब बजा देते तो शायद नहीं हो पाता. वो भी
0: अच्छी, बहुत ही अच्छी मशवरा,
1: सही बात है.
0: और मुझे लगा लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया इतने अच्छे से. हाँ, बहुत बड़ी बात है.
1: वेरी नाइस.
0: ये वाकई करना चाहिए कि हम पैसे इतना फिजूल खर्च कर देते हैं शादियों में दिखावे पर, वही पैसे अगर दे दिए जाएं तो शायद आगे उनकी लाइफ और बेहतर करने में कामयाब कपल के. तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी.
2: जी उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी ना, और इतना भारी अमाउंट. और मैं जब उस टाइम पे सऊदी में था
0: जी,
2: तो उस टाइम पे एक हमारी जैसे मैं जॉब कर रहा, तो मेरी कैपेसिटी है, और उस टाइम पे एक मतलब पॉसिबल था कि प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, तो इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता था, सस्ता टाइम था ना इसी तरह से. तो वो एक चीज बन गई और दोनों खुश है, मेरी बहन बनाई है ना, और माशाल्लाह बच्चों को भी अच्छा पढ़ाई, और मेरा खुद भांजा ने मास्टरी किया अभी वो उधर कैलिफोर्निया में है. तो माशाल्लाह काफी कुछ अच्छा मतलब एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है ना वो मिला. बहुत बेहतर. हाँ तो वो एडवाइस मैंने उनकी जो नसीहत थी ना वो मैंने फॉलो करके उसी पे चला, और अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी अब हाँ मेरे सब बहनों के अपने अपने घर है. हाँ जी
1: माशाल्लाह
0: और बहुत ही अच्छी एडवाइस और बहुत ही अच्छी बात है. थैंक यू कि आपको याद आ गई और आपने शेयर की हम सबके लिए. ऐसे ही एडवाइसेस हम चाहेंगे जो थोड़ा कहीं ना कहीं हम सबको पुश भी करें, मोटिवेट भी करें, और हम सबके लिए लर्निंग का सोर्स भी हो और आपकी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट हो. जी जी जी
3: Please continue to hold.
1: अच्छा कॉल आ गई इनको. चलें भाई हम बढ़ते हैं अपने टाइम चेक की तरफ.
0: बिल्कुल अब हम बढ़ते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ. वापस आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे.

FM 107. Time check. Time check. राइट दोस्तों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ और मेरे साथ है महविश. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:02.

0: सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: राइट गाइस, एक बार वापस आपको सभी को वेलकम कहेंगे इस शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स। नाजिया और महविश हम दोनों आपके साथ हैं 7-8 ऑन द क्लॉक एंड यस वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं। हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं
2: नाजिया जी एंड महविश खान?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम इस्माइल खान है। मैं किसी टाइम में चैंपियन हुआ करता था गेम्स में, पर अभी हमारी ड्यूटी नाइट में हो गई, हमसे चमगादड़ बन गए, तो उसी की तरह चमगादड़ों की तरह रात में निकलते हैं, सुबह जल्दी वापस आ जाते।
1: तो आज आपने कैसे सोच लिया कि आज मैं सोऊंगा नहीं और जागूंगा और बात करूंगा?
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपको शो लगा लिया। मैं बोला देखता हूँ सुबह में वेद है या कौन है नाजिर। इतना मैं सुना था कि नाजिर जी शो कर रही है, तो मैं सोचा लाजिम बात करना है। अभी आके बस सोने की तैयारी कर रहा था, चले बात कर लेते हैं।
1: Nice. सही, सही। तो आपके जहन पर जोर डालने की आपकी पोजीशन है अपने जहन पर जोर डालने की?
2: इतना वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, दो तीन कॉल तो सुन ली।
1: अच्छा।
2: बस एक ही एडवाइस जिस पे मैंने अमल किया है, किसी मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फिर मशवरा दिया कि आप लाइसेंस जो है कतर में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए क्या, तो वो लाइसेंस लेके अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी तक चल रहा है उसी पे अमल करके, और जॉब भी उसी से रिलेटेड है।
1: गुड,
2: तो अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहा है। तो वो और किसी के ज्यादा मैंने कभी सुनी नहीं है, लोगों ने बहुत सारी एडवाइस दिया पर सिर्फ एक ही एक सुनी है, ये इसी पे अमल कर रहा हूँ, बाकी बस जो मेरा दिल करता है वही करता हूँ।
1: सही हो गया, ये काफी प्रैक्टिकल और बड़ी अच्छी एडवाइस आपको जिसने भी दी, अच्छी दी कि आप यहाँ पे लाइसेंस ले और उससे वाकई आपके और जो है रास्ते खुल जाते हैं।
2: बेस्ट फ्रेंड भी है और क्लासमेट भी है, तो उसने मुझे पाकिस्तान में बिजनेस करता है, तो उसने कहा यहाँ पे रहते हो तो लाइसेंस जरूरी है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसके लिए करते हैं।
1: Nice.
2: और एक और बात पूछनी थी नाजे जी।
1: हाँ जी पूछिए।
2: मैं अंडर-17 वर्ल्ड कप में विनर था 500 रियाल के, मैं बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे मैसेज भी आया, आपको फॉरवर्ड किया मैं वो मैसेज, अभी आप चेक कर सकते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
2: पर अभी तक प्राइज नहीं मिला। मेरे साथ दूसरा मोहम्मद गफार भाई, उसको मिला, चेक मिला, लेकिन पता नहीं उससे मैं पहले जीता था, पर अभी तक पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ, मैंने आईडी भी सेट किया, बैंक स्टेटमेंट भी सेट की।
1: ये बहुत सारे तो लोग जो हैं पूछ भी रहे हैं, हम भी लगातार पूछ रहे हैं, और वो हमें एक ही जवाब मिल रहा है कि जैसे ही ऊपर से पैसे और वो आएंगे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप सब लोग के नेम्स हैं, अब मैं कह सकती हूँ कुछ लोग
2: मेरे बाद में जो जीते हैं ना
1: वो जीत उन्हें मिल गया,
2: मेरे बाद में जीते उनको मिला। सर्वर के और आपके शो में मैं और गफार भाई जो हम एक टीम हुआ करते थे, और इलेक्शन था तो हम सब इकट्ठे सुनते थे, तो मेरे उस फ्रेंड को मिला है।
1: हाँ उन्हें मिला है, तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा, डोंट वरी। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है,
2: थोड़ा पूछ सकते हैं, तो मैसेज मैंने आपको सेंड किया जो एडमिनिस्ट्रेशन।
1: अरे इस्माइल जी, मैं तो पूछ पूछ के मुझे बैठा

0: लियो उन्होंने गाय ने बंद कर लो इतना रोज आके पूछती है एक सा सवाल और उन्होंने मुझे एडवाइस दी आपको समझ में नहीं आता दिमाग के इलाज करा नहीं मुझे देखिए उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स
1: है और कॉलर होंगे एक और कॉलर वेटिंग में
2: चलें बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल का
1: थैंक यू बहुत अच्छा है शायद मैं इस वक्त आपकी शो सुनने के लिए जागता रहूंगा
2: हमारे साथ है और इसके साथ कोई और कॉलर है हमारे साथ अच्छा चले अभी हम ऐसा करते हैं कुछ मैसेजेस आए हुए काफी देर से वो शामिल कर लेते हैं
0: बिल्कुल
2: लतीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू
0: वालेकुम अस्सलाम वेरी गुड मॉर्निंग
2: सुबह खैर और रब कायनात आपको वो सब अदा करे जो आपकी दुआ है
0: आमीन सुमामीन बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत
2: शहजादा सलीम का भी मैसेज था अस्सलाम वालेकुम वेलकम वेलकम टू द शो हम हैं आपके साथ
0: शहजादा जी
2: और
0: एक कॉलर हमारे साथ है यहाँ पे हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम गुड गुड गुड गुड मॉर्निंग
0: वेरी गुड मॉर्निंग
3: महवेश ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया मैं पूछा था कि भाई कब आ रहे हो हम तो इंतजार कर रहे हैं
2: सॉरी बस वो पता है क्या जब छुट्टियां शुरू हो जाती है ना तो एक अलग जोन स्टार्ट हो जाता है मैं तो कुछ नहीं देखती फिर
3: मुझे बिल्कुल नहीं दिया आदमी का माइंड सेट वो उस हिसाब से होता है यहाँ का डिलीट करना पड़ता है मैं खुद घर पे रहता हूँ तो यहाँ के माहौल से थोड़ा सा दूरी बना के उसी माहौल में आदमी को रहता है वो मैं समझ सकता हूँ
2: जी जी तो शिकायत ना करें
3: मैंने आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है
2: अच्छा नहीं मैं बिल्कुल अब देख लूंगी आपका मैसेज इंशाल्लाह
3: हम बहुत मिस कर नहीं मतलब बस हम लोगों का कुछ दिन ही भी कुछ बातचीत होता रहता है
2: जी जी जी जी जी जी
3: मकसद है किसी का नहीं दिल पड़ा था इतला और एक दूसरे को हम अगर किसी से कुछ फायदा हमें मिल जाए तो ये हमारे लिए समझ लो कि बहुत बड़ी कामयाबी है दुनिया का ये कुसूल है कि हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: ये जरूरी है आपने एक वीडियो भेजा था वहाँ पे आप खड़ी थी मतलब अपने वहाँ पे अपने भाइयों के साथ अपने साथियों के साथ में तो थोड़ा सा वो भी मैंने देखा था शायद
2: कौन सा वीडियो
3: भी दिया था
2: कौन सा वीडियो
3: कराची में थी आप वहाँ पे कुछ कंप्लेन था कि ये क्या हो रहा है लोगों के साथ जो जुल्म जाती हो रहा है उसके ऊपर
2: अच्छा मैं नहीं खड़ी थी मैं नहीं खड़ी थी और लोग खड़े होंगे और लोग खड़े होंगे
3: आप भी खड़ी थी मैं बोलो फिर से रिटर्न आपके पास भेज दूँ
2: नहीं नहीं मैं तो कराची गई नहीं हूँ तो मैं कहाँ से खड़ी हूँ
3: कहीं
2: या कहीं और थी लेकिन वहाँ
3: का वीडियो कराची का नहीं है या कहीं का भी है मतलब लेकिन वहाँ नहीं किया था थोड़ा आपका चेहरा उसमें आया था और कुछ लोग मतलब खिलाफ मतलब हुकूमत के खिलाफ कुछ बातें कर रहे थे
2: नहीं नहीं भाई मैं नहीं थी मैं नहीं थी मैं बात कर नहीं सकते कभी नहीं
3: हम नहीं पहचानते क्या आपको हमको वो समझ लिए क्या लल्लू
2: नहीं रईस भाई एक काम करें वो मुझे भेजें ताकि मुझे पता चले
0: आज का बेस्ट मशवरा इनको हम लोग देंगे रईस आप जो है आई चेक करें अपना आई टेस्ट करें
2: अच्छा नहीं नहीं आप एक काम करें भेजें मैं देखती हूँ मुझसे मिलता हुआ कौन
3: है पुराना है कभी का लेकिन आपने भेजा था आपकी छुट्टी के टाइम का
2: कहाँ भेजा था मतलब अच्छा फेसबुक पे पोस्ट किया मैंने कुछ
3: फेसबुक पे नहीं मैंने मैसेंजर पे देखा था आप फेसबुक मैसेंजर पे देखा था
2: मैं अच्छा मैं चेक करती हूँ मैं चेक करती हूँ आप किसका हवाला दे रहे हैं मैं देखती हूँ लेकिन मैं कहीं भी नहीं खड़ी थी मैं पक्का बता दूं आपको
0: नहीं जब आपने फोटो देखा कि ये यहाँ खड़ी है उस वक्त किचन में खड़ी थी अपने
2: अच्छा मुझे आप भेजें मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज की बात करें मुझे ऐसा कुछ पता तो नहीं चल रहा कि क्या मैंने आपको भेजा है
3: नहीं आप मुझे आपने मतलब या तो
0: नहीं मानेंगे
3: या मैंने देखा था
0: आज देखकर क्या है मानूंगा नहीं
3: आप समझ गई हैं?
2: नहीं मैं नहीं समझी रईस भाई भाई भी नहीं समझी
0: कैसे
2: आप मुझे
0: कैसे मानेंगे चाय पी के मानेंगे ब्रेड पकाने
3: वो वीडियो भी शायद मेरे सामने अब वो मिलेगा नहीं जल्दी
2: हाय अल्लाह बस जैसे मिले मुझे भेजे जैसे ही मिले मुझे भेजे मैं बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही हूँ
3: या कोई उसमें कोई उलूल कोई बातें थी ना आप वहाँ पे बाकायदा पर्दे के साथ मतलब फेस खुला हुआ था बाकायदा आप पर्दे में हिजाब में थी वहाँ पे ऐसे नहीं
2: अच्छा कर क्या रही थी आप तो नहीं देखा रईस भाई आपने
3: आप खड़ी थी वहाँ पर हम आपको
0: अच्छा जो खड़ा है वो मानने को तैयार
3: ना तैयार हो भैया
0: लेकिन आप रईस जी का मानना है आप खड़ी थी तो थी
2: हो सकता है
0: आपने इतना, इन्हें कहा आप खड़ी थी या आप खड़ी हो गई?
2: मैं अब खड़ी हो जाऊंगी।

0: ये मैंने बेसिकली एक कराची के हवाले से एक पोस्ट की थी, मेरा ख्याल है उनको लगा होगा कि मैं हूँ,
1: कोई मिलता जुलता होगा शायद,
2: मेरा ख्याल पता है वहाँ पे कुछ लोग मतलब नौजवानों के बारे में कुछ बात।
0: हाँ वो एक बेसिकली एक अभी हुआ है वाकया कराची में, तो उसके हवाले से मैंने डाला है, तो शायद उस पे लग रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा लग भी रहा है, सीरियसली लग रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ नाजिया, तुम भी कहोगी कि रईस भाई गलत नहीं है भाई, थोड़ा सा कोने पे देखो, है ना,
1: ये तो सही है,
0: ये बंदी तो मेरी हमशक्ल निकली है यार। मैं नहीं हूँ रईस भाई, मैं नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं।
1: हाँ ये काफी रिजेंबल कर रही है, क्योंकि पूरा फोकस नहीं है तो क्लियर भी नहीं हो रहा।
0: हाँ नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, ये कोई और है। अच्छा चश्मा भी लगाया हुआ है,
1: चश्मा भी वैसे ही
0: इनके कहने पे मुझे याद है खड़े खड़े बोल रहे हैं, मैंने कहा अच्छा ये मीर रजा वाला जो वाकया मैंने पोस्ट किया था,
2: तो आपने आपने कुछ बोला नहीं है मतलब।
0: हाँ मैं समझ गई, लेकिन
1: देख लिया,
0: मैं नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ। नाजिया तो गवाह है इस बात की, उसको पता है मैं कराची नहीं गई हूँ।
1: हाँ नहीं है,
2: हो सकता है भाई, हो सकता है,
1: बहुत देर बाद इन्होंने माना, दो गवाही ली।
0: मैसेंजर पे भेजा, मैंने कहा मैंने इनको खास तौर पे भेजा, तो ये कौन सी चीज है जो मैंने भेजी।
2: मैसेंजर पे नहीं, मैसेंजर पे नहीं था,
0: पोस्ट किया था,
2: लग रहा फेसबुक पे, फेसबुक
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: मैंने देखा था, मैसेंजर पे नहीं था कोई मतलब स्पेशल की मेरे लिए कोई, मैं मुझे कोई क्या पाकिस्तान का माना रहने वाला हूँ ना, मुझे
0: नहीं नहीं वो सही है, नहीं कंफ्यूजन आपको क्या किसी और को भी हो सकती थी,
1: थोड़ा बहुत
0: काफी मिलता हुआ लग रहा है।
2: तो मैं 100% समझ रहा था कि आप
0: नहीं नहीं मैं नहीं, अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि मैं ही हूँ।
1: अब आप मान गए कि और भी दलील पेश की जाए,
2: कुंभ के मेले में खोने वाली बहन तो
0: सीरियसली मतलब मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे,
1: कुछ ना कुछ
0: काफी हद तक कुछ लग रहा है। हाँ
1: अगर कोई ध्यान से ना देखे तो शायद कंफ्यूज
0: लगेगा,
1: थोड़ा ध्यान से देखेगा तब तो खैर पहचान ही लेगा, तो खैर ऐसा है। अच्छा रईस जी आज, अब ये तो आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें
0: करी, ये तो बड़ा ही कुछ अलग ले गए।
1: बहुत ही अलग,
2: बहुत दिन हो गया था, गप सब थोड़ा सा करना चाहिए, जरूरी था
1: करना चाहिए। अच्छा आज हम पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ की बेस्ट एडवाइस, ऐसी एडवाइस जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, वो किसने दी और क्या थी, वो हमारे साथ शेयर कीजिए।
2: बहुत सी चीजें हैं, अब थोड़ा सा मैंने तो कुछ बिल्कुल सुना नहीं हमारे भाइयों का किसी का फोन कॉल,
1: और अपना बताइए आप सोच के।
2: मतलब थोड़ा सा हम दूसरे माइंड में थे, अभी आपने दूसरा माइंड सेट किया, तो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट के मतलब लाइफ में जैसे
1: छोटा मशवरा भी होता है बड़ा भी होता है, कोई एडवाइस आपको किसी ने ऐसे मशवरा कोई ऐसी एडवाइस दी जो आपको लगा हाँ ये मेरे दिल को छू गए और वाकई उस पर आपने अमल भी किया और फिर आपने देखा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया।
2: आज तो मुझे आप मैं बहुत बहुत तकरीर करता था लेकिन आज मुझे मतलब एकदम आपने
1: चलो आखिर में आते आते हमने इसी को
2: महवस की खुशी आने की खुशी में मैं पूछा
1: भूल गए
2: मैंने कितने पूछा।
1: अरे बहुत बहुत पूछा आपने, बहुत पूछा और मुझे नहीं पता था आप इसलिए पूछ रहे हैं कि कहां खड़े हैं,
0: मैं कहां खड़ी थी।
2: नहीं, वो वीडियो कोई खास मायने नहीं रखता
1: था। अच्छा, हमें लगा कि इतना पूछ इसीलिए रहते, कहां खड़ी थी आप।
2: नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कोई
0: नहीं, लग रहा है। पहली नजर में लगता है, फिर दूसरी नजर में वो आयशा मुजाहिद भी लग रही है।
1: अच्छा
0: मैंने और से देखा, मैंने कहा दूसरी नजर में कोई आयशा मुजाहिद समझाएगा,
1: अब तीसरी में मुझे ना समझ ले।
2: आयशा मुजाहिद मतलब को भी मैंने देखा है थोड़ा, लेकिन आयशा मुजाहिद से मतलब
0: नहीं, वो थोड़ा सा क्योंकि उनका गोल सा फेस है ना, आयशा मुजाहिद का गोल फेस है, मेरा गोल नहीं है, तो वो जो फेस है ना वो थोड़ा सा गोल है उनका, अगर आप गौर से देखे फिर देखिएगा वीडियो रईस भाई, आपको अंदाजा होगा वो फेस गोल है, लेकिन
1: स्टॉप करके देखते रहिए,
0: नीचे सर झुकाया हुआ है ना तो वो लग रहा है मेरी तरह और देख मेरी तरह रही है वो।
1: हाँ मेरे ख्याल से फर्स्ट रिल्स में देखे तो ध्यान से नहीं, जी जी
2: उन उन यूथ के बगल में आप खड़ी है,
0: हाँ,
2: कोई
0: हाँ,
2: मतलब
0: नहीं, नहीं वो मतलब खड़ी है, वो
2: जो खातून खड़ी है जो भी जी।
0: नहीं वैसे मजे का जी, आपकी मजे की ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी बहन को बताऊंगी, मैं इंतजार करी, मैं अपनी बहन में कहूंगी देखो निमरा मैं खड़ी हूँ तुमसे मिली नहीं कराची आगे, ये अलग बात है।
1: ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कॉन्फिडेंस की कि रईस मैंने काफी देर तक बहस की, नहीं नहीं आप ही
0: आप ही
1: जो खड़ा है वो मना कर रहे हैं, हम नहीं आप भूल रही है लेकिन आप ही हैं।

0: अब उन्होंने खुद भी वजाहत किया कि मतलब कोई भी रहेगा बंदा तो
1: कंफ्यूज हो सकता है, ये बात तो आपने सही कही। बहुत ज्यादा उनकी शक्ल मिल रही है कहीं ना कहीं, तो इस तरह से लगा मुझे भी हल्की

0: चेहरे के साथ देख के मतलब उन्होंने हाँ, मतलब वो है और उस पर हाँ, भी अगर आपको लगा कि मेरी तना लग रही है तो हैरत है भाई, हैरत है।
1: चलिए फिर एडवाइस तो आज आप दे नहीं पा रहे हैं ना,
0: हाँ,
1: बता रहे
0: इस बार दोबारा वीडियो देखेंगे जाके
1: स्टक हो गए।
0: अच्छा चलें कोई मसला नहीं रेज भाई,
2: कॉल लंबी हो जाएगी, ठीक है
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए, इंशाल्लाह कल बात करते हैं, थैंक यू,
1: वालेकुम
0: अस्सलाम,
1: ये तो खैर अच्छी बात है इन्होंने
0: मजे का हो गया। अच्छा चलें तो हम मैसेज शामिल कर लेते हैं, अभी जो हमारे पास कॉल आई थी इस्माइल भाई की तो अभी हाँ जाग भी रहे होंगे तो उनका हाँ, मैसेज पढ़ देते हैं। और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुपरस्टार्स आरजे नाज़िया नविश खान, कैसे हैं आप दोनों, ये तो पता चल गया। और शो में अच्छा वो फिर आपने बाद में वाली जो बात है वो तो
1: हाँ, उसका ये कि इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, परेशान ना हो,
0: मिलेंगे जरूर
1: इंशाल्लाह मिलेंगे,
0: बेफिक्र हो जाएं। और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हिशाम का मैसेज है,
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: तौफीक भाई का भी मैसेज है, कहते हैं महावर नाजी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद तौफीक फ्रॉम अलवकरा।
1: अच्छा ये भी गए हुए थे पाकिस्तान,
0: अच्छा अच्छा
1: इनके फादर की जो है वो डेथ हुई थी तो उस सिलसिले में, तो अब बताइएगा तौफीक जी कि आप आ गए वापस यहाँ कतर या वहीं से हमें मैसेज करें, आई थिंक आ ही गए होंगे,
0: अलवकरा से लिखा है,
1: अलवकरा से तो दैट मीन्स आ गए। तो चलिए और बड़ी अच्छी चीज हुई महावेश, एक चीज जितने भी हमारे मॉर्निंग के लिसनर्स थे वो आपस में इतने ज्यादा कनेक्टेड हुए कि उन्होंने एक ग्रुप बकायदा फॉर्म किया और सब एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए सबने और सब एक दूसरे के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्तियां बन गई। तो मैंने कहा वाह,
0: जब मैं थी तो उस वक्त में भी जावेद बाजवा साहब और उनके साथ काफी जो लिसनर्स है हमारे शहजादा सलीम रईस भाई और ये सारे सारे के सारे मिले हैं आपस में, तो वो भी मतलब उस दौरान भी रहा था। अब अच्छा जावेद साहब की कॉल नहीं आई,
1: जावेद साहब जो है वो ट्रैवल मतलब वो कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री है, आ गए थे और शायद फिर उन्हें कहीं जाना था जैसा उन्होंने कहा था। तो चलिए इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बट बिफोर दैट वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर। हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम,
1: माय नेम इज समीरा। हाय वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं समीरा आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह समीरा, और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आपका मैसेज तो आता रहता है ना?
3: जी मोस्टली द साइलेंट लिस्टनर।
0: बिल्कुल आपका नाम पड़ा हुआ है काफी।
1: चलिए नाइस एंड ग्लैड कि फाइनली आप जो है आज हमारे साथ ओवर अ कॉल जुड़ी। हमारा सवाल आज ये है बेस्ट एडवाइस को लेकर, कोई ऐसी एडवाइस जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
3: जी हाँ बेशक, अच्छा तो एडवाइस बहुत सारी मिली है, बट मैं जो इस्लामिक क्लासेस हम जो अटेंड करते हैं डॉक्टर फरहत हाशमी एक सादा की, उसमें उन्होंने एक दफा कहा था कि आप कुछ काम करने से पहले, बीइंग अ वुमन स्पेशली, आप कुछ काम करने से पहले 10 दफा सोचते हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, मैं आपके घर वाले हो, आपके ससुराल वाले हो, आपका शौहर हो, आपके बच्चे हो, अगर आप ये काम करोगे तो आप सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर सामने वाले के भी सोचने का काम आप करोगे तो वो क्या करेगा।
1: वाह जबरदस्त, सही।
3: हाँ मुझे वो इतनी सही लगी बात की, अगर आपको कोई चीज सूट हो रही है, आपको काम कर रहे हो, सामने वाला क्या सोचता है, अगर आप भी वो सोचोगे तो आखिर वो क्या करेगा। अपना काम उसको करने दो, आप अपना काम अल्लाह पर छोड़ो और अपना काम अगर सही है तो करो।
1: और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी एडवाइस है, ज्यादातर हम काम नहीं कर पाते वो कि लोग क्या सोचेंगे इस डर से या इस उससे कि नहीं पता नहीं क्या हमें लोग सोचेंगे, सही समझेंगे, और बहुत सारी ऐसी अच्छे काम है जो इस सोच के चलते पूरे नहीं हो पाते। तो ये एडवाइस आई थिंक बेस्ट एडवाइस है, हाँ स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन,
3: हर जगह जज होते हैं तो हाँ, मुझे अब कोई मुझे कहता है ना ये करोगे तो वो क्या सोचेंगे, मतलब मेरा काम नहीं है।
1: हाँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी एडवाइस हो गई आज की, और मैं भी अब ये कहीं ना कहीं यूज कर सकती हूँ। So nice. This is really nice. Thank you, Samira. Thank you कि आप जुड़ी और इतनी अच्छी आपने बात हमारी listeners के साथ हमारे साथ शेयर की। Thank you so very much. बहुत शुक्रिया।
0: Thank you.
1: Thank you जी, अपना ख्याल रखिएगा। Have a nice day. Allah Hafiz. बाय। ऑलराइट, तो आज जो है वो इतनी अच्छी अच्छी एडवाइसेस हमें मिल रही हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे और किसी तरह के वेलबींग को लेकर हो। कोशिश यही है कि छोटी छोटी एडवाइसेस जो लोगों को मिली शायद आपके लिए भी आज टर्निंग पॉइंट साबित हो, शायद आप सोच सकें, शायद आप उन पर गौर कर सकें और शायद अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। फिलहाल एक और कॉलम मेरे साथ।

0: ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वहां से कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये चीज खत्म हो गई कि मैं फेल हूं तो मैं छुपाऊं. फेल को मैंने एक्सेप्ट करना सीखा. ये मेरी लाइफ में बड़ी चीज थी कि मैंने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखा और उससे मैं खुद को इम्प्रूव कर पाई. क्योंकि हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्टेंस सबसे लास्ट में रखते हैं जबकि वो सबसे पहले आती है. अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली हम जो है अच्छी स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे ही करेंगे खुद को सुधारने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते शायद उस तरह से. तो अभी इनके कहने से, जैसे इनके अब्बा ने सख्ती से कहा ना कि साइंस स्ट्रीम ली है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तो मुझे भी याद आई है कि हाँ ऐसे मुझे भी कहा था कि अब तुम खुद को प्रूव करो.
1: जबरदस्त.
0: तो ये तो है
1: जबरदस्त. अच्छा, मेरे पेरेंट्स का ऐसा रहा कि वो मुझे हर बात पे ही अप्रिशिएट करते थे मुझे. मैं सोच रही हूँ, मैं जैसे हम लोग बीच में मेरी नानी की तबीयत खराब हुई थी तो एक साल पाकिस्तान में आके पढ़ा, तो वहाँ पे सिंधी होती है ना हमारे सिलेबस में, तो सिंधी जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मैं उसमें फेल हुई सिंधी के पेपर में. तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया अगले साल की, मतलब अभी प्रमोट कर देते हैं. तो उस पर मुझे याद है कि मेरे घर वालों ने जो मेरी ट्यूटर पढ़ा रही थी तो उनको बकायदा पूरा गिफ्ट दिया और सब कुछ, मिठाई लेके गए वहाँ पे, फिर सब कुछ इस तरह से. अच्छा, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से फिर हम लोग कुवैत गए तो वहाँ पे फिर मेरा दोबारा एडमिशन हुआ और फिर वही हुआ कि अब वहाँ पे प्रॉब्लम की मैं बात कर रही हूँ 2-3 क्लास इस तरह से, तो वहाँ पे फिर दोबारा से एडमिशन होता है.
0: तभी थर्ड लैंग्वेज पे आ जाती थी.
1: हाँ, मतलब सिंधी शुरू से होती है हमारी. हाँ, तो वो वहाँ गई तो फिर उसके बाद क्योंकि अब बिल्कुल एक जोन चेंज और सब कुछ, तो वहाँ पे भी फिर मैं दोबारा फेल हुई. तो लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने उनको जो ट्यूटर थी मिस नूरा, मुझे नाम याद है उनका आज तक, तो उनको जाके जो है उन्होंने गिफ्ट वगैरह दिया, बड़ा मतलब सेलिब्रेट किया उस चीज को कि पास तो कुछ पेपर्स में तो पास हुई है. कुछ में तो पास हुई है.
0: ये भी तरीका था मोटिवेट करने का.
1: हाँ, तो कभी भी मतलब किसी चीज पे भी ये नहीं करते थे कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया. वो हर चीज कुछ कोई भी चीज है, मैंने जो जैसे रेडियो ज्वाइन करने का भी जब था मैं बहुत छोटी थी, सब कुछ मुझे लगता था पापा नहीं मानेंगे, लेकिन वो माने भी, बल्कि मुझे खुद लेके गए ऑडिशन के लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पेरेंट्स का भी इस तरह का होना ना
0: बहुत
1: कि आपके साथ खड़े हो, हर चीज में आपको इनकरेज करें, आपके फैसलों को मतलब जो है ना एक तरह से सेकंड कर रहे हो, आपके साथ साथ सपोर्ट सिस्टम हो आपका, तो ये बड़ी बात होती है.
0: बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आई थिंक. मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं जैसे मेरे अब्बा ने मुझे डिस्करेज किया, बट उनका ये था कि अगर मैं उनके हिसाब से नहीं हूँ तो फिर मैं अपने हिसाब से उनको साबित करूँ.
1: हाँ, नहीं वो तो जरूरी
0: तो
1: है.
0: उसमें कई बार ये होता है कि आप अंदर से चाह भी रहे होते कि अरे मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मेरे लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी.
1: हाँ.
0: लेकिन अब नहीं मिलता तो फिर आप मंच के निकलते हैं.
1: सबसे बढ़कर जो चीज है ना वो ये हो जाती है कि जब एक पेरेंट है आपका, सिंगल पेरेंटिंग है, तो वहां पे उसी बंदे ने हर तरह का रोल निभाना है, तो वो एक अलग बात आ जाती है. तो वो जाहिर सी बात है कि और वालिद के तौर पर, और जैसे तुम बताती हो उन्होंने फिर शादी भी नहीं की जबकि बहुत अर्ली एक हो गया था, तो वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें आपको माँ बाप दोनों बनना है और दोनों तरह से हर चीज में समझाना है. तो डेफिनेटली उनका रोल बिल्कुल सही था अपने तौर पर.
0: हाँ, शायद उन्होंने हमें राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिपेंडेंट बनाना था और वो हम दोनों को बनाया.
1: हाँ.
0: और उस वक्त हम रोते थे, लेकिन आज हम जो है वो सारे काम आसानी से कर पाते हैं.
1: Exactly.
0: अकेले
1: बिल्कुल ऐसे.
0: तो ये फायदा.
1: अच्छा, एक मैसेज है बहुत देर से और ये जो है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. मुझे तो एडवाइस रोज मिलती है अपने भाई से और मेरे भाई ये भी एडवाइस देते हैं कि किसी को भी बार बार मत बोलो अपना कोई काम, एक या दो बार बोलो बस, ज्यादा मत बोलो. उन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ इनका, सलाम मैंने पहले पढ़ लिया था.
0: बार बार
1: न बोलो. और अस्सलाम वालेकुम का मैसेज मोहम्मद इब्राहिम का है. इसके साथ ही जी, अच्छा नाम अब लिखेंगे ये जो भाई है ना, जो जिन्होंने भाई का बोला.
0: अच्छा.
1: और मोहसिन नाम है इनका. जी, जबरदस्त. तो अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर आपका कोई सिबलिंग है ना जो आपको एक अच्छी राय देता है, अच्छा मशवरा देता है आपके पास, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास कि आपके पास आपका कोई भाई बहन मौजूद है ना जो आपको हमेशा गाइड कर रहा है. अच्छा जी, जी आई एम हियर इन कतर, शुक्रिया. और ये मोहम्मद तौफीक है.
0: अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह.
1: फयाज भाई, सैयद भाई, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, माशाल्लाह टू जेम्स टुगेदर अगेन. और मिठाई शिठाई आई हुई है, चॉकलेट्स, माशाल्लाह.
0: अच्छा, माशाल्लाह जी, थैंक यू. मैंने कहा चल मैं से पूछ रहे हैं कि मिठाई लाई हैं.
1: नहीं नहीं, इन्होंने भेजे हैं चॉकलेट्स भी. बहुत शुक्रिया सैयद भाई और थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए.
0: चलिए जी, यहाँ पे हमारी जो एडवाइसेस है वो जारी रहेंगी. आपके पास भी कुछ है जो आपकी लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. हमारे नंबर्स है 4434377.

नहीं, हाँ आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22-107। और अभी के लिए हर्षित सक्सेना की आवाज में मर्डर मूवी का एक बहुत ही कमाल धमाल का ट्रैक एंजॉय कीजिए एंड स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं विशु नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं 7:54 ऑन द क्लॉक। और यस, आज बात हो रही है आपकी लाइफ की ऐसी एडवाइस जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो हो सकता है कभी कभी एडवाइस जो हैं बहुत हार्ड या हार्श होती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आपके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आप पे पड़ता है, या ये कहें कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। तो बस आज उसी को याद करेंगे, उसी पर बात करेंगे। तो कुछ है आपके पास, जरूर शेयर कीजिए 666-22-107 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर।
1: अच्छा, मोहसिन कह रहे हैं मैं तो एक वीक से आ रहा हूँ, लेकिन मैम नाजिया को मेरा नाम नहीं याद हुआ है अभी तक।
0: मोहसिन जी, तो मुझे तो याद ही है, मैसेज में तो मैं देख के पढ़ती हूँ आपसे कौन से मेरी।
1: हाँ, लेकिन अभी मैं मैसेज पढ़ रही हूँ ना, तो वो मैं हो सकता है नाजिया पढ़ती तो पहचान जाती है मोहसिन का मैसेज है, लेकिन मैं नहीं पहचानी हूँ, बेसिकली मेरा है।
0: अब मैं ये कहूँगी मोहसिन जी, एक वीक से आप मुझे सुन रहे हैं, आवाज नहीं पहचान पाया ये है।
1: अच्छा जी, तो कॉल का हम वेट कर रहे हैं, आपने बताना है कि आपको मिली हो कोई बहुत ही अच्छी एडवाइस जो कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपको लगा हो कि आपकी जिंदगी में उस एडवाइस ने बहुत ही किरदार अदा किया है। वैसे हम जैसे शुरू में बात कर रहे थे, मशवरे हमारी है ना सबको देने की एक तो बड़ी आदत होती है। तो कहते हैं अच्छा, मशवरा जब भी आपसे कोई मांगे ना तो आप ऐसे दो कि जैसे आप अपना मसला समझ के आप मशवरा दे रहे हो। कभी भी ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी कह दिया, तो वो वाला मामला होता है ना, मशवरा मतलब देना ही देना है, कुछ भी है बताना है, चाहे आपको समझ में आई बात या नहीं समझ में आई, लेकिन आपने मशवरा उठा के चिपकाना है वहाँ पे, तो वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। आप हमेशा मतलब जरा सोचें समझें, टाइम लें। और कहते भी हैं कि वैसे भी ना, मतलब अगर किसी चीज के ऊपर भी आप सिंसियर होके अगर सोच रहे होते हो ना किसी चीज के बारे में, तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। इंसान वो जो खुद अपने तौर पे होता है, जिसकी अगर समझे कोई परेशानी है तो मुमकिन है कि उसको उस परेशानी वो इतनी ज्यादा हावी हुई भी है उसके ऊपर कि वो सामने जो रास्ता दिख रहा होता है ना वो भी नजर नहीं आ रहा होता, बंदा जब पैनिक में होता है। लेकिन अगर कोई दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और वो अपने तौर पे थोड़ा सा सोचता है, थोड़ा गौर फिक्र करता है, उसके बाद फिर बात बोलता है, तो यूजुअली कहते हैं ना वो चीज आपके पास अल्लाह की तरफ से आती है, कोई अच्छी बात अगर आप करना चाह रहे हो।
0: इसलिए कहते भी हैं कि मशवरा करना चाहिए।
1: हाँ,
0: और ऐसे शख्स से जिस पे आपको थोड़ा सा यकीन हो, एतमाद हो, आपको पता हो कि वो एक तो एक्सपीरियंस्ड है, दूसरा फिर वो आपका जो है वो वेल विशर है। तो वो आपको एक अच्छा मशवरा दे, और मशवरे में आफियत होती है।
1: Exactly.
0: एक दो लोगों से करना चाहिए,
1: सबसे नहीं मांगना चाहिए,
0: लेकिन एक दो लोगों से जो भी आपके वेल विशर
1: लगता है और जिनको आप अकलमंद भी समझते हो, क्योंकि अक्सर लोग वेल विशर होते हैं लेकिन अकलमंद समझते होते मशवरा मांगना भी चाहिए, क्योंकि बाज़ोगत क्या होता है कि मशवरों की वजह से इंसान और फंस जाता है।
0: कुछ लोग जो है उस तरह से नहीं देते अच्छे या जेन्युइन, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम
1: अपने अच्छा ही सोच रहे होते हैं,
0: लेकिन अपना होता है और हम पे वो चीज उतनी अच्छे से

0: जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती. तो ये तो है. एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हाँ जी,
1: मेरा नाम बासित है.
0: बासित, ओके. कैसे हैं आप बासित? खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: हम दोनों खैरियत से हैं. सो क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा मशवरा जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ?
1: लाइफ के टर्निंग पॉइंट तो नहीं, ये दो मशवरे मुझे मिले थे.
0: अच्छा,
1: मैं सबको देता हूँ. मतलब भाई, लाइफ के अंदर कैरियर हो या आपकी जिंदगी हो, इन दो मशवरों पर अमल करो और ये के फायदा ही होगा. दो मशवरे मुझे अर्ली कैरियर में मिले थे. एक तो मेरे सीईओ थे एक कंपनी के पुराने, उनका नाम तो ले नहीं सकता खैर, उनका नाम अमीन गनी साहब था, आज तक याद है. 15 साल हो गए उस बात को. मगर वो जो मशवरा था ये था कि बेटा, अगर जिंदगी के अंदर हम कुछ नहीं, हमारे जो भी इज्जत है, जो कुछ मिला है, वो अल्लाह के दिया हुआ है. बाकी और तुम्हारी कोई हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ये चीज अचीव कर सके. हाँ, मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह का देने वाला है. मगर जब भी कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करे, या कोई आके तुम्हें बोले या तुम्हें तारीफ की गई है या तुम्हें कोई चीज खुशखबरी मिली हो, तो दिल के अंदर या महफिल में बैठे हो तुम, कोई तारीफ करो तुम्हारे मुंह पे, तो उसको सिंपल अपने दिल में कलमा पढ़ो और अल्हम्दुलिल्लाह करो अल्लाह का. और ये के उसकी तारीफ है, हम एक जर्रे के बराबर, और उसके अंदर उसकी बरकत ये होती है, फौरन जो अल्हम्दुलिल्लाह करते हो ना, तुम उस वक्त तो उसके अल्लाह उसका अजर देता है. और ये वाकई के और के नजरे बच से ही बचाता है काफी चीजें होती है जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने देखी चीजों के अंदर.
0: सही, बिल्कुल.
1: तो एक चीज है, और दूसरा एक कैरियर का मशवरा है कि हम और जिंदगी के अंदर भी उन्होंने बोला कि बेटा ये देखे, आप मुख्तलिफ डिसीजन लेते हैं, आपके पास चीजें आती है, राइट. हम इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं या काम के अंदर कोई प्रोजेक्ट होता है किस चीज के लिए, तो उसके लिए डिटेल्स में जाओ. डिटेल डिटेल डिटेल में जाओ.
0: सही,
1: उस लेवल पे डिटेल पे जाओ कि तुम्हारे पे बोलो कि ये ना, एक तरीके ना से शुरू करो कि ना उसके अंदर नीचे तक जाओगे डिटेल के अंदर, और ताकि तुम्हें पता चल सके ये चीज है क्या या किस तरीके से चल रही है, ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो. डेप्थ तक जाना है वो एक्सपीरियंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता.
0: सही, बहुत ही कमाल की, बहुत अच्छी बात. आई थिंक दोनों ही बहुत ही बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत ही अच्छे आपको मशवरे, दोनों अच्छे एडवाइसेस आपको मिले.
2: बिल्कुल,
0: और अच्छी बात है कि आप उस पर काम भी कर रहे हैं.
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ या कहीं कोई मशवरा मांगते हैं तो मैं यही मशवरे होते हैं कि मेरा भाई, इसके अलावा तो मेरे पास कोई मशवरा नहीं है. आप जिंदगी में दो तीन कर रहे हो, शायद गलतियां हो जाती हैं,
0: सही बात है,
1: सुधार लेते हो. ये तो मशवरे हैं, इनको आप प्रैक्टिकली रख के चलो, जिंदगी का कामयाबी हो गया.
0: So, यहाँ पर वैसे हमारे पास और भी कॉल्स हैं, बट अभी हम एक मैंडेटरी ब्रेक लेना है. वापस आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: रेडियो राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 पे शो समर मॉर्निंग और हमारी घड़ी में वक्त हो गया 8:03 और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे और हमारे साथ एक कॉलर हैं भी तो उनको हम लेते हैं ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
4: हम लोग खैरियत से हैं, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अहमद है और मैं सुनता रहता हूँ रेगुलरली, लेकिन क्या नाम है, बहुत कम ही मैं कॉल करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि डॉक्टर तो अच्छा है, इसमें कुछ एक दो बात रखनी चाहिए।
4: अरे वाह, प्लीज गो अहेड। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज जो हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं फाइनली वो हमारे साथ जुड़े हैं ओवर अ कॉल, सो दैट्स नाइस। प्लीज गो अहेड, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने ये सोचा और जुड़े क्योंकि अब टाइमिंग्स हम दोनों के ही चेंज हो रहे हैं। मैं आफ्टरनून में हूँ 1:30 से और महविश आपको मिलेंगी लेट मॉर्निंग्स 10 बजे से, तो वहाँ जुड़िएगा प्लीज। ऐसा नहीं है कि ये मॉर्निंग्स में ही जुड़ने का सिलसिला है, आप प्लीज आप सब हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़े हमारे टाइम्स में, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी शोज हैं उनमें आप भरपूर तरीके से आप जो है पार्टिसिपेट करते रहेंगे इंशाल्लाह।
3: जुड़ते भी रहते हैं, सुनते रहे, मतलब सुनते तो रहते हैं जब भी मौका मिलता है, लेकिन
4: हाँ ये उधर नहीं कर पाते बहुत लोग, सुनते तो हैं बट उस तरह से कॉल नहीं कर पाते हैं, बिजी भी होते हैं। जी जी,
3: मुझे तो अपने बैकग्राउंड में भी लगा के सुनने की आदत, मैं घर पे सुनता हूँ कई बार,
4: चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे शोज जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा आपके काम में किसी तरह का, लेकिन आपका ये टैलेंट ही हम कहेंगे। अच्छा,
3: पॉजिटिव अप्रोच रहती है कई बार की बैकग्राउंड में कुछ आपको एक अच्छी चीज हो सकता है और काम आपको लाइटर नोट पे हो जाता है, और सीरियस काम हो तो आदमी ऑब्वियसली टेंशन होकर से करेगा, लेकिन जब कैजुअल रूटीन वर्क होते हैं तो ग्रुप में आदमी कुछ बैकग्राउंड में सुनता रहे तो मुझे अच्छा लगता है।
4: नाइस, चलिए जबरदस्त। तो आपके लिए आपकी लाइफ में ऐसी एडवाइस जो आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित हुई वो कौन सी थी?
3: एडवाइस मैं इसमें दो चीजें रखना चाहूंगा, पहले तो आप लोग जो पिछले पहले शुरू कर रहे थे कि एडवाइस लेना या देना, वो उसके भी कुछ एथिक्स हैं, आदाब हैं या उसके भी तरीके हैं, उसमें तो एक छोटी सी क्या नाम है हमारे हदीस जो है, मैं बस याद दिला दूंगा बहुत इन शॉर्ट में कि भाई मशवरा लेने में मतलब भलाई है, तो उसमें दो चीजें और आती हैं, उसमें एक तो ये कि आप मशवरा जिससे लें उसमें दो क्वालिटीज देखनी होनी चाहिए। पहली चीज तो आप जिस मौजू को मशवरा ले रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप उसे सजेशन देने जा रहे हैं, आप उससे मशवरा लें जो उस चीज का जानकार हो, ये नहीं कि मेरे वाले साहब बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं, मेरे शहनशाह हैं, तो मैं उनसे मशवरा ऐसी चीज में लूंगा जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं
4: पता। सही,
3: That's not logical. अब दूसरी चीज ये होती है कि वो वेल विशर हो, आपका सरसा हो, बहुत बड़ा एक्सपर्ट है लेकिन आपको जानता नहीं है, आपके साथ उसकी कोई सरसाई नहीं है, आपके साथ उसकी कोई हमदर्दी नहीं है, तो उसका मशवरा भी आपको उस तरह से जेन्युइनिटी से नहीं मिलेगा। ये तो दो बातें होंगी। तीसरी उसी हदीस मतलब जो एक मेंशन है वो इशारतन जिक्र करते ना, वो है कि अल्लाह ताला से भी मशवरा करना चाहिए, जो इस्तिखारे की तरह इशारा है।
4: बहुत अच्छा,
3: ये तीन चीजें जो है जमीन मैंने हर्ज कर दी। बाकी मुझे जिंदगी में जो सबसे बेहतरीन मशवरे मिले हैं चंद एक, उनमें से मैं आपके सामने दो रखूंगा। एक मशवरा तो मुझको ये मिला था जो कि बहुत क्रिटिकल टाइम पे था, कि जैसे हम एज अ यूथ, मेरी उम्र अभी 27 ईयर है जैसे, और मैं 27 भी अभी लास्ट वीक ही हुआ हूँ, तो मुझे अपने अर्ली 20s में एक सजेशन ये साथी ने हमें दिया था सीनियर ने, लाइफ के बहुत सारे मौके में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहाँ पर आपका डिसीशन आपके पड़ोस से, पेरेंट्स से, या कई बार आपके बड़े भाई वगैरह हों, या रिश्तेदार हो उनसे मैच नहीं करे उस टाइम पे कभी भी सिर्फ सिर्फ ये वैल्यू पे क्योंकि ये वालिदैन कह रहे हैं या ये वालिदा कह रही है किसी डिसीजन को नहीं ले लेना है उसको भी उसी तरह एनालाइज किया जाएगा जिस तरह से किसी का भी कोई भी आपको सजेशन दे मतलब एडवाइस यही है कि किसी की भी एडवाइस सेफ वैल्यू पे ना ली जाए उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए और उस एडवाइस को अच्छी तरह से समझ के फिर उसको अप्लाई किया जाए चाहे कोई भी दे चाहे आपके वालिदैन दे रहे हो कोई भी दे रहे हो मतलब एज लॉन्ग एज यू कैन बेयर द लॉस ऑफ दैट एडवाइस यू कैन टेक इट काइंडली मतलब कोई भी एडवाइस है जिससे आपका कोई छोटा सा मान लीजिए मुझे आज के रेस्टोरेंट में जाना है या घर पे क्या खाना बनाना है इससे ना आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ा मेजर लॉस है ना किसी का यू कैन टेक काइंडली बट लेकिन लाइफ चेंजिंग कोई भी अगर काम हो रहा है उसमें आपके सिर्फ फ्रेंड ने कह दिया या आपके सिर्फ भाई ने कह दिया या आपके सिर्फ दादा ने कह दिया चाचा ने कह दिया इसलिए डिसीजन ले लिया ये नहीं करना है अल्टीमेटली अगर वो डिसीजन आपके बारे में है तो यू आर गोइंग टू बेयर इट लाइक इसका मेजर एग्जांपल शादी होती है बिजनेस होता है करियर होता है आप क्या पढ़ने वाले हैं या किस फील्ड में प्रोफेशनल करियर बनाने वाले इन सारे डिसीजन में जैसे अब थोड़ा और जो एल्डरली हमारे ऑडियंस है जो ज्यादातर है बच्चों की पढ़ाई होती है या बच्चों की शादियां होती हैं या करियर स्विच मारना होता है तो ये जितने बड़े मेजर डिसीजन होते हैं तो उन सारे डिसीजन में फेस वैल्यू पे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए
4: लेनी चाहिए
3: और इसमें भी शर्माना नहीं चाहिए कि चले हमारे वालिदैन घर वाले सब लोग कह रहे हैं लेकिन क्या पता जितने भी आपके रिश्तेदार हो घर वाले हैं उनमें कोई उस तरह का एक्सपर्ट ना हो बाहर कोई एक्सपर्ट मिल जाए आपको तो उस एक्सपर्ट की एडवाइस ले और ये भी ध्यान रखें कि मशवरा कम है बहुत ज्यादा लोगों से मशवरा नहीं लिया जाता हमारे साले मोहतरम कहते थे कि अगर दो लोगों से ज्यादा मशवरा मतलब अगर उनसे कोई मशवरा लेने जाता था हम भी पूछने जाते थे कि उस्ताद ये बताइए क्या करना है तो उस्ताद कहते थे क्या मैं पहला या दूसरा बंदा हूँ जिससे तुम पूछ रहे हो ठीक है अगर मैं तीसरा हूँ तो फिर फायदा नहीं है तुम दो बंदों से ज्यादा मशवरा अगर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा डिसीजन अभी ऑलरेडी मुतासर हो चुका है तुमने इसमें सीरियसली वर्कआउट ही नहीं किया बहुत रेयर केस में है कि आप बहुत ज्यादा लोगों से मशवरा लेने की जरूरत है आप पहले खुद भी तो वर्क कीजिए कुछ दिन उसको खुद सोचिए कोई बड़ा डिसीजन है आपने खुद सकारा किया आपने खुद उसको स्टडी किया आपने खुद एनालाइज किया सारे चीज के आपने मैक्सिमम दो लोग चुनी दुनिया के हर बंदे से मशवरा नहीं लिया जाता इतने ज्यादा लोगों का मशवरा उतना ज्यादा क्या नाम है खराब मशवरा हो जाएगा आपका दिमाग उसमें डिस्ट्रैक्टेड होगा और कोई नई नई चीजें बताएगा अपने अपने एंगल से बताएगा और वो एक्सपर्ट होगा तो शायद कुछ सही एंगल बता भी पाए बहुत सारे इररिलेवेंट एंगल सामने आएंगे जो लोग आपको मशवरा देंगे क्योंकि जिन्होंने जिस एंगल से चीजों को देखा होगा वो उसी एंगल से आपको बताएंगे उनका पर्सपेक्टिव वही रहने वाला है दे विल एक्सप्लेन यू द व्यू द व्हिच दे हैव व्यूड द थिंग्स नॉट विद द नेचुरल व्यू और द जेन्युइन व्यू तो इसलिए डोंट सीक सजेशंस फ्रॉम एनीबॉडी
2: वेरी नाइस बहुत जबरदस्त
3: ऐसा नहीं हो रहा कि आप हर किसी से सजेशन लेते चले
4: जाए बहुत ही अच्छी बात कही आपने
3: ये जो दो चीजें हैं इनका बहुत ज्यादा
2: ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल सही
3: मशवरे के बारे में ही एडवाइस मुझे मिली है
2: नहीं बड़ी अच्छी एडवाइस बहुत ही अच्छी आपने दी
3: और खुद भी मशवरा देते वक्त इन सब चीजों का ख्याल रखें कि इसलिए जेन्युइन क्वेश्चन एटलीस्ट अगर आप जैसे नहीं है अल्लाह
4: अच्छा मैंने देखा लोग वाकई ये बहुत ज्यादा शर्म समझते हैं या बड़ा रिलक्टेंट होते हैं कि अगर हमसे किसी ने मशवरा मांगा तो हमें देना ही देना है अब शायद हम उसमें हमारी नॉलेज नहीं है अरे भाई साफ कह दीजिए कि हमें इसमें ज्यादा वक्फियत नहीं हम नहीं दे सकते हम नहीं सही बता पाएंगे बट हम बता के ही छूटते हैं
3: That's something like we are like a generation like aap log isme fir bhi thoda sa mujhe lagta hai you are much better if unless someone is wants to be a self posting person or something like that but most of that like hamari jo gen z hai the ones which we are like younger generation jo hamari hai hum logo mein ek to like information bombardment is tarike se hui hai chahe wo reels ke zariye ho shorts ke zariye ho social media ke zariye ho ki hamare paas har cheez mein kuch na kuch information hoti hai दिमाग में हर टॉपिक में कुछ ना कुछ दिमाग में भरा हुआ है कुछ ना कुछ हर चीज में तो वी हैव दैट टेंडेंसी टू स्पीक एनीथिंग ऑन एनीथिंग कोई भी पूछ दे कुछ भी सो वी हैव समथिंग टू से ऑन इट तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है तो फॉर अस जेन ज़ी मैं ये सबसे

0: मिनट अगर वक्त पड़ गया तो एक घंटा भी रुकेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है।
1: क्या बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो, यूं ऐसे कॉल पे हम रखें, क्योंकि बहुत अच्छी बात कह रही थी महवेश, तो मैंने कहा कंप्लीट कर ले उसके बाद ही हम फिर आपके साथ जुड़े।
0: वो मेरी नसीब है जो अल्लाह का एहसान है, जो महवेश जो है ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नबी जिक्र करे, यानी मेरी खुश नसीबी है जो मैं सुनने को मेरे को नसीब हुआ हूँ। अलहमदुल्ला
1: भाई, सईद भाई है क्या, अजहर जी, अजहर है। अच्छा अच्छा, सईद भाई लग रहे
0: हैं।
1: अच्छा, दोनों वॉइसेस मिलती
2: मिलती हुई है बहुत।
1: मैं भी शुरू में इनको सईद जी बोल रही थी, फिर मैं समझ गई। तो आप बताएंगे कोई आपको ऐसी एडवाइस, कोई ऐसा मशवरा मिला जो आपको लगा कि आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ?
0: अब इस बात से तो ऐसा है नाज़िया जी, कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अभी भी जो है सो माइज जो है सो जो भी अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोले, यानी बहुत बड़ी नेमत है वो, बहुत बड़ी, यानी एक जिंदगी में इंसान के लिए जो ना हर चीज हासिल कर सकता अगर वो इसी नसीहत अगर किसी को मिल गई तो। तो उन्होंने जो फरमाए, यानी ऐसी वैसी हस्ती के बारे में नहीं बोले उन्होंने, सुबह सुबह जो है ना इस रेडियो में उन्होंने कुछ ऐसे प्यारे अल्फाज बोले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत, यही हमारी दुआ है। और रही बात एडवाइस की, तो किसी से लेना और किसी से देने की एक बात, छोटी बात कम्प्लीट बोल के कम्प्लीट कर दूंगा। आज के यानी आज के दौर में आपको भी शायद अच्छी तरीके से मालूम है, आज के दौर में अगर किसी को कुछ अच्छी एडवाइस भी देना है तो जो है ना एक नहीं, पहले एक बार सुनना, 10 बार सुनना पड़ता था, लेकिन आज 100 बार सोचना पड़ता है किसी को कुछ एडवाइस देने से पहले। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा हो गया तो नहीं, यकीनन आपको जो है ना वो चीज का एहसास नहीं रखेगा। अगर बुरा हो गया वो एडवाइस देने से पहले यही बोलेगा कि जो है ना नाज़िया जी मैं आपको पूछा अगर काश इसके जगह आप दूसरी अगर एडवाइस देते तो शायद कुछ होता था, ये देखे गलत कर दिया तुम बोल के ये बात आती है। अगर आपके सामने अगर नहीं भी आई तो किसी और के सामने अगर कोई अगर बात बोल दिए, बाद में अगर आपको मालूम हो गया आपको अपने आप अफसोस करना पड़ता रही, ये क्या नहीं, मैं क्या गलत करा, आगे वाला एडवाइस पूछा मेरे को जो समझ में आया मैं बोल दिया। तो दुनिया का
1: मोहतात रहे आप, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, भर के एडवाइस देने लग जाए, क्योंकि खुदा ना खासा ऊंच नीच हुई तो आप पर ही आएगी। ये बात तो सही है, ये तो सोच ही नहीं रहते हम,
2: बिल्कुल सही बात
1: भी है,
0: ये हकीकत है, ये दुनिया का दस्तूर है। आप अगर कुछ अगर जो है ना अच्छी एडवाइस दे दो हो गया ना, यकीन मानो अगर बाद में अगर अरे क्या हुआ, अरे नहीं हो गया काम, अरे फिर बोले अरे नहीं जी जहन से निकल गया। देखो यानी इंसान की जो है ना जरूरत पूरी हो गई उसके बाद जैसे आगे वाले को एडवाइस दे, सबसे पहले एडवाइस देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन नसीब में जो है अल्लाह ताला मुकद्दर में जो लिखा वो होना ही छोना है, वो चाहे जाओ
1: सही
0: इधर की उधर हो जाओ, नसीब में जो होना है होता, बस एक इंसान क्या है एक जैसे एक रीजन है, एक सहारा है, बस एक छत के नीचे छाऊं को जैसा सहारा था ना वैसा एक सहारा, क्या करना ये करना, अगर ये करने के बाद अगर आगे वाले को ऐसा से फायदा हो दो ना को दो जिससे एडवाइस दिया, हाँ भाई ये करा था मैं ऐसा हो गया, चलो मुश्किल नहीं नसीब में जो था वो हो गया, बोले तो आगे वाला भी मुतमिन होता, अरे चलो भाई अल्लाह इसके लिए जो भी करेगा बेहतर करेगा। रही बात जो है सो ये एक बात ये हो गई, रही बात किसी से एडवाइस लेना और किसी की ऐसी लाइफ चेंज होना, वैसा तो अपने को आज तक कभी हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है अपन ना किसी से ज्यादा कुछ ऐसी एडवाइस लिए, जो भी है तवक्कल तो अल्लाह हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील बोल के आज तक जो भी अपने को जब तक जब से होश आया जब से काम करना चालू करे जो भी है बस नसीब में जो होना है वही होना है, मैं आपको अभी भी वही बात बोला चाहे आप कुछ भी कर लो बस नसीब में जो होना है वही होता, चाहे इधर का उधर हो जाओ उधर का इधर हो जाओ बस।
1: बात सही। और यही पॉइंट जो आपने कहा ना कि बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि खुदा ना हंसना ऊंच नीच होगी तो आप तो फंसेंगे,
2: बिल्कुल
1: वो मंदा सबसे पहले आपसे थोड़ा ख्याल रहिए, ख्याल रखिए, मोहतात भी रहे अगर आप दे रहे हैं।
0: नहीं, नहीं, मैं ज्यादा किसी को एडवाइस नहीं देता हूँ, यही बोलता हूँ कि नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ एक एडवाइस देता हूँ मैं, अगर भाई ये देखो अगर नहीं समझ में आ रहा ज्यादा प्रेशर न खोलियो, वजू बनाओ, दो रकअत सलातुल हज्जा की नमाज पढ़ो, बस अल्लाह जो नसीब में तुम्हारे बेहतर में इशारा जिधर देगा उधर चले जाओ बस खत्म, दूसरी बात ही नहीं।
1: बहुत अच्छा
0: जी, क्योंकि अगर किसी को अगर अगर अगर कुछ उससे अपने अपन बोलने के बाद अगर उससे बुरा भी अगर कुछ हो गया उन्हें सवाल नहीं कर सकता अपने को, अरे भाई तुम मेरे को नमाज पढ़ो बोले, क्योंकि नमाज के लिए तो कोई सवाल कर सकता नहीं ना कोई बोल सकता, बेहतर यही है कि जो ना उनको जो ना अल्लाह और रसूल की बात बोल के बस उसको खामोश बिठा दो, बस यही इंसान के लिए बेहतर है बस।
1: बहुत सही।

0: नाइस, जबरदस्त, बहुत ही अच्छी कॉल और बहुत अच्छा पॉइंट आपने हमारे साथ शेयर,
1: बहुत अच्छी बात।
2: मैं सबसे पहले आप दोनों का शुक्रिया, और जो है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप फिर बोले, मैं बार बार उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं नाजिया जी को बोला लास्ट टाइम मैं उमरे को जाके, मैं यकीन मानिए जब कभी भी मैं जो है ना अल्लाह उनके रसूल की बारगाह में जब कभी सुनता हूँ, कभी कुछ देखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, मेरा दिल रोने के सिवा कुछ नहीं आता मेरे को, क्योंकि बस अल्लाह से दुआ,
1: अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ, अल्लाह हमारे दिलों को भी आप जैसा बनाए, और अल्लाह ताला आपके दिल को हमेशा इसी तरह से रखे। बहुत बड़ी बात होती है कि जब इतना मतलब ना एहसास हो इस बात का, ये एहसास बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत जरूरी भी है।
2: नहीं, मैं जाके आने के बाद नाजिया जी, मैं यकीन मानिए मेरा दिल एक यानी एक सेकंड का, एक घंटा, एक दिन यहाँ पे रुकने का कोई मन ही नहीं है मेरे को, बस फिर कब जाऊँ उनकी बारगाह में, फिर कब उनके रोजे मुबारक की जो है ना दीदार करूँ मैं उनकी, यानी जब कभी भी याद करा मेरा दिल रोता, और उनकी जब भी याद आई मैं अल्फाज बोलने से तुम मगर खैर,
1: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मतलब वाकई दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी के दिल को आप जैसा बना दे, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मोहब्बत हमारे दिलों में भी अल्लाह ताला किसी तरह से पैदा कर दे,
2: यही मोहब्बत बरकरार, यही जज्बा
1: बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक
0: यू जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो उन्होंने रखा, तो हमें समझ में भी आया कि भाई आपकी पकड़ भी है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये नहीं कि आप दे के एडवाइस फ्री हो गए, तो अगला बंदा लौटता भी है कई बार कि आपने हमें मशवरा दिया और हमारा नुकसान हो गया,
1: बिल्कुल।
0: तो आप बहुत मोहतात रहें, जैसे कहा कि बहुत जरूरी है सोच समझ के दें, हर इंसान की हर फील्ड की एक्सपर्टीज भी नहीं होती, तो आपको जरूरत नहीं है कि हर फील्ड में आप मशवरा दें, जहां आपको लगता है कि आप दे सकते हैं वहां दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो साफ कह दीजिए, इसमें शर्म नहीं है कि नहीं हमसे कोई पूछ रहा तो हमें देना ही देना है, कुछ ना कुछ देखिए।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ मैसेजेस हम साथ में शामिल कर देते हैं।
0: यस,
1: ये जो है मुबीन बुखारी, ये आ गए हैं भाई बहुत सारे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मावश मैम क्या बात है, गुड मॉर्निंग, और आपको तमाम लिस्टर्स को, नाज़िर मैम आपको गुड मॉर्निंग, और कहते हैं कि मतलब मैम मावश जी ने इस नंबर पे कब्जा कर लिया है आते ही। मोहसिन भाई मोहसिन भाई कह रहे हैं कि अच्छा भाई आपने कर लिया था, एक मैसेज आया बहुत क्यूट और सुनने में अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा,
1: अच्छा, जब से ये मैसेज मैंने इनका देखा ना, मैं कोशिश कर रही हूँ ना बोलूं कि लग रहा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग नाज़िर जी, मावस जी, कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड, मेरा तो लंबा था मेरा काफी अच्छा रहा, लंबा था और कैसी नहीं छुट्टे अल्हम्दुलिल्लाह। और अबाउट द टॉपिक, मेरी माँ की एडवाइस ये, या कहूँ कि उनकी नसीहत, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से क्वेश्चन है तो यही है कि मेरी अम्मी हमेशा से नसीहत करती थी कि हम सब बच्चों को कि जहाँ तक हो सके झूठ ना बोलने की कोशिश करें, तभी इंसान की कामयाबी दुनिया में भी और आखिरत में भी होती है, और वो मेरे जहन में बहुत गहरे तौर पर बैठ गई और अभी तक वही मैं फॉलो करता हूँ, और ये झूठ भी नहीं कहूंगा कि कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, जहां पर मजबूरी होती है बोलता हूँ, जहां पे किसी का नुकसान नहीं होता है वहां पे मुझे झूठ बोलना पड़ता है,
0: पड़ता है
1: ऐसा ही है।
0: चलिए, अच्छी नसीहत, काफी अच्छी एडवाइस।
1: हादिम भाई का मैसेज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नाज़िया बहन, मावश बहन, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, और अल्लाह सुभान व तआला सबकी परेशानियां दूर फरमाए, सब अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे इंशाल्लाह।
0: बहुत अच्छा मैसेज।
1: हाँ,
0: और यहाँ पे मुझे एक और महविश याद आ रही है, मुझे रूममेट की बात। अच्छा, हम लोग जब छोटे होते थे तो जिससे भी मिल रहे हैं, जो भी हमारे साथ है, मैं हर किसी को अपना फ्रेंड समझ लेती थी और मेरे जहन में आता था कि ये तो फ्रेंड है,
1: जो मिला फ्रेंड है।
0: हाँ, मतलब एक बचपन में एक चार्म भी होता है शायद, फ्रेंडशिप की डेफिनेशन भी हमें नहीं पता होती, और हर अगला बंदा जो हंस के मिल रहा है वो आपका फ्रेंड हो जाता था, क्लास में और इस जगह तो होता ही था। तो मुझे याद है कि मेरी जब एक रूममेट जो मेरी थी मेरे साथ, वो पटना बिहार की थी, तो जब उससे मेरी ठीक ठाक जब लड़ाई, मतलब लड़ाई हुई नहीं, उसने लड़ाई निकाली और अच्छी खासी हुई, तो जब हम वार्डन के पास पहुंचे और उसने जब बातें कहनी शुरू करी और जब बोली बुरा, तो मैं बड़ा रोती हुई वहां से लौटी और मैंने रूम में एंटर होते ही उससे कहा, मैंने कहा मैं तो तुम्हें अपना फ्रेंड समझती थी, तुमने इस तरह की बातें, इस तरह के झूठ झूठ बात, मतलब इस तरह की चीजें निकाली, तो उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं फ्रेंड हूँ। हम लोग रूम स्पेस, ये स्पेस शेयर कर रहे हैं, हम आपस में रूममेट्स हैं, हम दोस्त नहीं है। तो वहां से मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज और लेसन और ये एडवाइस भी मिली कि हर बंदा जो आपके साथ आप उससे जानते हैं, पहचानते हैं, हाय हेलो या बातचीत है, वो आपका दोस्त नहीं है।
1: नहीं।

0: मुझे एक बड़ा लेसन उसने दिया और वहां से मैंने सीखा और समझा कि हर कोई जिससे आप मिल रहे हैं वो आपका दोस्त नहीं है. दोस्त कौन है वो आपके पास अलग होने चाहिए, उसके लिए आपका अपना अलग क्राइटेरिया होना चाहिए. तो वो लेसन मैंने कहा अच्छा मैं आज समझी कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो. जस्ट कब है हम दोस्त, हम रूममेट्स हैं जस्ट स्टार्ट. तो देखो छोटी छोटी चीजें कई बार आपके जहन में रह जाती हैं.
1: हाँ, और कुछ लोग बड़े मिच्योर होते हैं. मैं मुतासिर हो रही हूँ उस बंदी से.
0: राइट, नहीं वो थी
1: बड़ी, मतलब क्लियर थी अपनी थॉट्स में.
0: वो क्लियर के साथ मैंने एक अपना शो रखा था, उसमें मैंने ये बात भी जिक्र की थी कि वो लक, मैं उसको कहती थी वो मुझसे कम पढ़ती थी बट उसके ग्रेड ज्यादा आते थे.
1: हाँ, ज़हीन होगी.
0: I don't know, कैसे मैं उससे बहुत ज्यादा पढ़ती थी बट मेरे उस तरह के ग्रेड्स नहीं आ पाते थे. मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, वो कम पढ़ के अच्छे नंबर लाती थी और मैं हमेशा ये कहती थी वो कितनी लकी है, पढ़ती भी नहीं है लेकिन इसके मार्क्स अच्छे आते हैं. मेरे जहन में ये नहीं था कि वो ज़हीन है, मेरे जहन में ये था कि मैं खुद से कंपेयर कर रही हूँ कि वो पढ़ती भी नहीं है फिर भी लकी है.
1: हाँ, गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ लोग, और ये भी एक ज़हानत की बात है कि मतलब अगर कोई बंदा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है ना कि नहीं भाई हम दोस्त नहीं हैं,
0: ये तो बहुत बड़ी अर्ली
1: एज में तो बड़ी बात है.
0: नहीं, ये थोड़ा सा मैं बड़े क्लास में आते थे बता रही हूँ. अच्छा, नाइन्थ टेंथ के. लेकिन हाँ, फिर भी तो वो मेरे लिए वहाँ पे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि भाई आपके दोस्त अलग होते हैं. मैं हर किसी को दोस्त समझती हूँ, ये दोस्त नहीं. और एक और मशवरा मुझे याद आ गया मेरे अब्बा का.
1: अच्छा.
0: वो बहुत ही अच्छा मशवरा है और मुझे लगता है हर एज में हर बार, स्पेशली जब आप अपनी जॉब में हो, ये बहुत ही काम, बहुत ही यूजफुल है. वो हमेशा ये कहते थे जो कुछ तुम्हारी सैलरी, जितना तुम्हारी हैसियत है उसके आधे दिखो लोगों को, उससे जलन हसद इन सबसे भी बचोगे और तुम भी सुकून में रहोगे.
1: Exactly.
0: तो जितनी आपकी हैसियत है वो उससे, कुछ लोग कोशिश करते हैं उससे ज्यादा दिखाने की.
1: हाँ.
0: उनका ये कहना था कि जितनी है उसके आधे दिखो, जस्ट हाफ. तो इससे बड़ा सुकून रहता है लाइफ में और इससे आप भी सुकून में रहते हो, सामने वाला भी बड़ा खुश रहता है, सुकून में रहता है कि इसकी कमी
1: है.
0: इसीलिए लोग देखो ज्यादातर ना अपनी सैलरीज जो है वो सही नहीं बताते, कम बताते हैं कि भाई ये चले. ये तो खैर मेरे अब्बा ने मुझे मशवरा दिया था लेकिन सब तक पहुंचा हुआ है. तो ये भी मुझे लगता है काफी प्रैक्टिकल मशवरा है जो बैठे बैठे याद आ गया.
1: सही.
0: चलिए, तो आज तो बहुत सारे हमारे पास जो है एडवाइसेस आती रही, आपकी भी आएंगी, बट आई थिंक अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे क्योंकि वापस आएंगे तो हम आपके साथ.
1: अच्छा, गेम के साथ जुड़ेंगे. मैसेजेस पढ़ देती हूं क्योंकि फिर वो रह जाएंगे. ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक बोथ ऑफ यू, डूइंग गुड जॉब, कीप रॉकिंग. और ये नाम इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, मैं जल्दी में देख लेती हूँ फिर भी खैर कि नाम इन्होंने क्या. मकसूद नाम है.
0: थैंक यू सो मच.
1: और इसके साथ ही सिस्टर अच्छा लगता है बोलो. जल्दी. और मुमताज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़िम मैम, आवश मैम, और कैसे हैं आप दोनों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. और मुझे कहा हुआ है, और मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस लिया, उसको घर अभी रिसेंटली बोला कौन सा फ्लाइट टू फ्लाइट लो, तो मैंने अच्छा एडवाइस दिया, अभी मेरा सामान ही नहीं लेके जा रहा.
0: देखो पता नहीं उसको ये एडवाइस सही लगी है कि नहीं, ये क्रॉस चेक कीजिए. मुमताज
1: क्या करें. और अफरोज़ान चकवा भी वेलकम बैक कहते हैं मैम बिजी हूँ. चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन आपने फिर भी मतलब बिजी होने के बावजूद आपने हमें मैसेज किया. अस्सलाम वालेकुम हावश जी, नाजिया जी, गुड मॉर्निंग, आई एम अवेज, और आपकी वॉइस सुन के मैसेज किया है महावश जी. और अभी दोहा में आके 25 डेज हो गए, हॉलीडे गया था शादी के लिए, मेरी अपनी शादी, होए होए होए, अपनी शादी, अपनी पर्सनल शादी में गए थे. और भतीजी है. अच्छा, मुझे तो लगा मतलब ये इन्होंने कोई अपने बच्चे बच्चे की तस्वीर भेजी है, लेकिन नहीं भाई. अभी तो मतलब सीन कुछ और है, अभी तो शादी हुई है. और महावश जी नाराज है क्या? मैं क्यों नाराज होंगी भाई, मैं तो खुश हूं. हां माशाल्लाह आपकी शादी हुई है, बहुत मुबारक हो. और हमारी जो भाभी है उनको भी मुबारकबाद दीजिएगा.
0: ये तो नहीं सोचा कि आपने हमें गिफ्ट नहीं भेजा.
1: अरे हाय, आपने बताया नहीं था पहले. गुड मॉर्निंग लेडीज, वेलकम हावश, आई होप यू हैड अ लवली वेकेशन. बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह. और ये प्रसन्न प्रसन्न, थैंक यू प्रसन्न,
0: थैंक यू सो मच. और फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक दोस्तों, वापस आएंगे तो बस जस्ट वन लाइनर कंक्लूजन होगा और फिर हमारा आज का गेम होगा. एंड द गेम इज द सेम, वॉइसेस हैं आपको पहचाननी है, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है और आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं जरूर इस गेम में. फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: राइट गाइज, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं विश्वनाज़िया, हम दोनों आपके साथ हैं और हमने यूसुफ जी को अपने साथ कनेक्ट किया है.
1: सही,
0: तो हमारे साथ यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ जी जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप दोनों? ठीक
0: है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल खैरियत से हैं. हमें लगा कि लास्ट मिनट कोई खेल सकता है, खेला तो वो आप ही हैं. मेरा मतलब है आप जो है, हमने पूरे हक से ये समझा कि आप खेलेंगे हमारे साथ, अच्छा अच्छा स्कोर भी करेंगे.
2: जी इंशाल्लाह. नहीं, मैं करने वाला ही था, मैं समझा दूसरों को मौका दें इसलिए नहीं.
0: अरे अब बस दो ही दिन बचे, आज और कल. आज आप और कल शायद हमारे साथ राज जुड़ जाएं तो जाएंगे.
2: राज तो छुट्टी गए ना.
0: हाँ, उन्होंने बोला था ओनम के लिए जा रहे हैं, फॉर अ वीक बोला था, जहाँ तक मुझे याद है.
2: हाँ, संडे आ जाएंगे बोले.
0: अच्छा, तो आज ही आ जाएंगे. चलिए फिर तो इंशाल्लाह, उम्मीद है हमारी कल बात हो उनसे. तो बस आपके साथ हम जो है वो गेम का आगाज करेंगे. टाइम हमारे पास बहुत कम है, 30 seconds आपके पास है. सो लेट्स सी आप 30 seconds में कितनी वॉइसेस पहचान पाते हैं. आप तैयार हैं? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
3: कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में.
2: वो मैंने रानी.
0: बिल्कुल सही.
4: मैं 20 साल से पुलिस में हूँ और 20,000 मुजरिमों से एक ही साल.
5: ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है. मुझे मेरा फर्ज मुबारक. अगर आपके पीछे से प्रश्न खत्म हो गया.
6: कहाँ के रहने वाले हो? किसने सीखा आपने? कितने सरगम है? अच्छा, कितने सूर होते हैं?
2: अनु मलिक.
0: सही.
7: हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे?
0: हेमा माली इज द राइट आंसर. हेमा जी आपने पहचान लिया, अनु मलिक आपने पहचान लिया और आपने बमन ईरानी पहचाना. दो नहीं पहचान है ना बीच के. हाँ ओके, चलिए इस हिसाब से आपका 3 का स्कोर है. क्योंकि नई वॉइसेस से तो थोड़ा सा था भी टफ, बट एनीवेज आपने स्कोर किया 3. नॉट एट ऑल बैड. एंड थैंक यू फाइनली जुड़ने के लिए. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा जी. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, बाय. ऑलराइट, यहाँ पर दोस्तों गेम स्टार्ट हो गया. हमें पता है मशवरा देना, लेना, बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ पार्टिसिपेट करना गेम में, हार जीत के मतलब हार जीत को एक्सेप्ट करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. बट हम चाहेंगे कि अगर आप खुद को ट्राई करना चाहते हैं, अपना लक आजमाना चाहते हैं, देन वाई नॉट कनेक्ट होइए हमारे साथ. नंबर है 4434377. या फिर आप हमें कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं और हाई हेलो लिख के भेजिए, तो दैट मीन्स हम खुद आपको कॉल करेंगे. तो फिलहाल के लिए हम चाहेंगे कि जुड़िए प्लीज़, हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम ही है. और हाँ, हमें जो था इस टॉपिक को कंक्लूड भी करना था, तो कंक्लूजन में तो मैं बस यही कहूँगी कि देखो एडवाइस देना बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये आसान होता नहीं है. बहुत ही मुश्किल और बड़ी जिम्मेदारी का काम है. और जितने भी हमारे लिसनर्स जुड़े, जितने भी लिसनर्स आए, उन सब ने कहा कि एडवाइस देना चाहिए और ज़रूरी है. और अगर आपको नहीं समझ में आता, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो एडवाइस ना दें. लेकिन एक चीज़ में मैं कहूँगी कि आप हर किसी को एडवाइस दे सकते, वो है कि पॉजिटिव कहने की. ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की एडवाइस दी जा सकती है. कभी कभी छोटी सी आपकी बात एक पॉजिटिव वे में किसी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिम्मत देती है. उसके उसके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप नहीं देते हैं, लेकिन आप कहीं उसे हल्का सा पुश दे रहे होते हैं. और वो हल्का सा पुश भी लाइफ में चाहिए होता है, वो रिक्वायर्ड होता है.
1: बिल्कुल.
0: हालांकि कुछ और भी बोलना है, लेकिन कॉलर यहाँ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो इनसे बात कर लेते हैं. हेलो
8: जी, अस्सलाम वालेकुम मैम. आपको मैं विश मैम को.
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है
0: जी? आज एक जमाने के बाद आप जो है वो फोन से फोन की तरफ आए, मतलब मैसेजेस से फोन की तरफ आए.
8: बच्चों ने बुला लिया था छुट्टी के लिए, तो मैं चला गया.
0: तो अब आप जुड़े हैं, तो हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, तो गेम तो आपको खेलना ही पड़ेगा. ठीक है? चलिए, आपका टाइम कम है, इसलिए जल्दी से मैं आपके साथ गेम स्टार्ट कर रही हूँ. और टाइम स्टार्ट होता है अब.
3: कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में.
0: बिल्कुल सही.
4: मैं 20 साल से पुलिस में और 20,000 मुजरिमों से
5: ये वो लोग जाने जिन्हें टेबल कुर्सी और एसी की हवा से मतलब है. मुझे मेरा फर्ज मुबारक. अगर आपके किसी सरकार जैसे प्रश्न खत्म हो गए हो, तो मैं चलूं. आप क्या पूछना चाहते हो मेजर? मेरे चश्मे का नंबर.
3: जिसने भी ये सोचा कि मैं डर गया.
0: अक्षय कुमार सर, राइट आंसर.
9: क्या है एडमिशन के लिए किसको मिलने का? अरे भाई को रे, ये चिरकुट.
0: अर्शद वारसी इज द राइट आंसर. तो इस तरह से आपने अर्शद वारसी, अक्षय कुमार और पहचाना बमन ईरानी. तीन का स्कोर, दैट मींस इट्स अ टाई. आप दोनों ने तीन तीन का स्कोर किया, पर चलिए आपने ट्राई किया ये बड़ी बात थी अपने आप में. ट्राई करना ही जीत की निशानी है, तो कई बार जो है लोग ट्राई ही नहीं करते. बट थैंक यू जी, बहुत टाइम के बाद आपसे बात हुई और हम चाहते थे बड़ी लंबी बात करें बट टाइम नहीं है. कल जुड़िएगा है ना, इंशाल्लाह. कल हमारे लास्ट
10: 11 बजे के बाद में कोई भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे. मॉर्निंग में बहुत मुश्किल है.
1: मैं निकल गई, ये पहले निकले हैं।
0: जो अभी तक लिसनर्स थे वो कह रहे थे कि मैम हम मॉर्निंग में हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहता है और फिर आफ्टरनून मुश्किल है. बट ही इज लाइक द वन जिनका आफ्टरनून
1: मिलेंगे. अरे मैं तो 10 बजे आ रही हूं.
0: चलिए जी, आप इंजॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग.
1: बहुत शुक्रिया,
0: ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया कि हम आपसे इजाजत लें
1: जाने का और इंशाल्लाह ताला कल आते हैं. कल इस शो में मेरा और नाजिया का फिलहाल के लिए आखिरी मतलब दिन होगा, आगे का कुछ पता नहीं. फिर हम आपको दोबारा मिले, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे. अल्लाह हाफिज, बाय.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे कतर के एक वन ऑफ द लीडिंग बॉक्सर्स के बारे में जिनका नाम है हुज़म नवा। या दोस्तों, हुज़म नवा कतर के तारीख के सबसे नुमाया बॉक्सर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और बेहतरीन टेक्निक की बदौलत मुल्क का नाम एशिया भर में रोशन किया। दोहा में मुनाकिद 2006 एशियन गेम्स में उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा था, जहां उन्होंने लाइट हैवीवेट कैटेगरी में शानदार मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये कामयाबी कतर के बॉक्सिंग की तारीख में एक अहम मोड़ था और नए बॉक्सर्स के लिए एक मिसाल बनी। हुज़म नवा ने मुख्तलिफ बैन अक्वामी टूर्नामेंट्स में कतर की नुमाइंदगी की और हमेशा पुरजोश अंदाज में रिंग में उतरे। दोस्तों, उनकी बॉक्सिंग का अंदाज, ताकत, रफ्तार और बेहतरीन डिफेंस का खूबसूरत मिक्सचर था। हर मुकाबले में वो मुख्तलिफ बॉक्सर को सख्त चैलेंज देते थे और अपनी डिसिप्लिन और फिटनेस की वजह से पहचाने जाते थे। उनकी कामयाबी ने कतर में बॉक्सिंग के खेल को मजीद मकबूल बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। आज भी हुज़म नवा को कतर के बेहतरीन बॉक्सर में शुमार किया जाता है। उनकी मेहनत और अज़म नए खिलाड़ियों को ये पैगाम देता है कि लगन, सब्र और मुसलसल मेहनत से बैन-अल-अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि सफर के दौरान खुद को बीमारियों से कैसे महफूज रखा जाए। खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ आप साबुन से जरूर धो लीजिए, और अगर पानी दस्तियाब ना हो तो फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। सफर में अक्सर नींद का मामूल मुतासिर हो जाता है, जिससे थकन और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इसलिए मुनासिब आराम कीजिए। और अगर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नए वक्त के मुताबिक अपने सोने और जागने का मामूल बनाइए। बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक से परहेज कीजिए। अगर आप गर्म इलाके में सफर कर रहे हैं तो हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए, टोपी और सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। धूप में ज्यादा देर रहने से गुरेज कीजिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने इल्म और साइंस के मैदान में एक अजीम कामयाबी हासिल की, और उनका नाम है अल-बत्तानी। वो ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और स्कॉलर भी थे। आज हम इनकी जिंदगी और इनके काम का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने वक्त की साइंस और टेक्नोलॉजी को नए दायरे दिए। तो चलिए आज के इस सफर का आगाज करते हैं और बात करते हैं इस अजीम इल्मदार के बारे में। दोस्तों, अल-बत्तानी का असल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबर अल-बत्तानी था, लेकिन दुनिया उन्हें अल-बत्तानी के नाम से ज्यादा जानती है। वो सन 858 में, जो कि आजकल का सीरिया है, उस वक्त के हर्रान शहर में पैदा हुए। हर्रान एक इल्मी मरकज था जहां पर सबसे बेहतरीन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट रहते थे। अल-बत्तानी का बचपन भी इल्म की रोशनी में गुजरा। उन्होंने अपनी तालीम अपने वालिद और कुछ और मशहूर इल्मदारों से हासिल की। उन्होंने अपने पहले इल्म का सफर अपने शहर के मसरूफ इल्मदारों से किया और उनकी तालीमात काफी गहरी और पूरी थी। अल-बत्तानी की शख्सियत और सोच उनको उनके वक्त के बाज इल्मदारों से अलग करती है। आज भी उनका इल्मी सफर और इल्म को समझने का तरीका दुनिया भर के इल्मदारों के लिए एक मिसाल है। हर्रान में उनकी जिंदगी ने उन्हें वो फाउंडेशन दी जो उन्हें आगे चलकर एक अजीम इल्मदार बनने की राह पर ले गई। दोस्तों, नजर डालें अगर अचीवमेंट्स और एस्ट्रोनॉमी पर, तो अल-बत्तानी को उस वक्त की एस्ट्रोनॉमी के सबसे अजीम स्कॉलर्स में से एक माना जाता है। उनका सबसे बड़ा काम था एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की तैयारी। इसका मतलब है कि उन्होंने तारीखी तौर पर सबसे एक्यूरेट स्टार चार्ट्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए उनकी टेबल्स बनाई। इन टेबल्स में उन्होंने प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स और उनकी मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया, जो उस वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस था। जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की, तो हम उन टेबल्स का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने स्काई के ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली मेजर करते हुए बनाई थी। ये टेबल्स दुनिया की सबसे एक्यूरेट टेबल्स थी जो उस वक्त तक कभी नहीं देखी गई थी। अल-बत्तानी ने अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस के जरिए दुनिया को दिखाया कि कैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए उनमें अर्थ की रोटेशन और एक्सल टिल्ट का भी तफसीली जिक्र किया। ये वो टाइम था जब यूरोप में और पूरी दुनिया में किसी को भी इस तरह की एक्यूरेसी का पता नहीं था। अल-बत्तानी ने अपने टाइम के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को नए दायरे दिए। और इसके बाद यूरोपियन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने भी उनकी थ्योरीज को अपनाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनके एक्यूरेट कैलकुलेशंस के जरिए अर्थ एक्सल टिल्ट का पता चलाना। अल्बतानी ने ये जाना कि अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्रीज पर टिल्ट होता है, जो कि पहले किसी ने नहीं जाना था। उनका ये काम आज भी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक पिवोटल डिस्कवरी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि अल्बतानी की कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के हवाले से क्या रही। तो अल्बतानी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे बल्कि एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड में भी काफी अहम काम किया। ट्रिग्नोमेट्री उस वक्त काफी नई तहकीकात की तरफ जा रही थी और अल्बतानी ने इसको अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए एक नया एंगल दिया। उन्होंने साइन, टेंजेंट और कॉन्टेजेंट के फॉर्मूलाज को बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। उनकी इस कंट्रीब्यूशन से हम समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने इल्म से पूरी दुनिया को नए तरीकों से सोचने पर मजबूर कर दिया। अल्बतानी ने अपने फॉर्मूलाज में एक्यूरेसी और प्रेसिशन को फोकस किया। ये वो दौर था जब मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था और अल्बतानी ने अपनी कैलकुलेशंस के जरिए वो सब कुछ डिफाइन किया जो बाद में यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया है। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को एक्यूरेट तरीके से एग्जीक्यूट किया। आज भी उनका काम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। उनकी मैथमेटिकल थ्योरीज और मेथड्स ने दुनिया को नई डायमेंशंस दिए और उनका कंट्रीब्यूशन हर दौर के इल्मदार के लिए मुफीद है। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, बारिश के मौसम में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ बेसिक ड्राइविंग टिप्स फॉलो करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बारिश में ड्राइविंग करते वक्त मदद दे सकते हैं। सबसे पहले, ओवरटेक ना करें। बारिश में रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं, इसलिए ओवरटेकिंग से बचना चाहिए। ऐसे में आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचने में आसानी होगी। दूसरा ये कि स्पीड को कम रखें। बारिश में स्पीड लिमिट से तेज चलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी स्पीड को कम करें ताकि आप ज्यादा कंट्रोल में रहें और किसी भी सडन सिचुएशन का सामना कर सकें। हजार्ड लाइट्स का यूज ना करें। बारिश के दौरान हजार्ड लाइट्स का यूज करना जरूरी नहीं होता और ये दूसरे ड्राइवर्स को कंफ्यूज कर सकता है। ब्रेक्स धीरे धीरे लगाएं। अगर आपको ब्रेक लगानी हो तो इसीरे धीरे लगाएं। ज्यादा तेज ब्रेक लगाने से आपका कंट्रोल चला जा सकता है और गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ सकता है। सेफ डिस्टेंस रखें। बारिश में रोड स्लिपरी होती है और व्हीकल को रुकने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अपने आगे वाली गाड़ी से अच्छा सेफ डिस्टेंस रखें ताकि आप रेयर एंड कोलिजन से बच सकें। पडल्स से बचें। रास्ते पर पानी के जो भी पडल्स बन जाते हैं उनसे दूर रहें। इनको टेस्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपकी व्हीकल पानी में फंस सकती है या एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है। बारिश में ड्राइविंग करते वक्त इन गाइडलाइंस को फॉलो करना हमारे लिए सेफ ट्रेवल को इंश्योर करता है और एक्सीडेंट के रिस्क को कम करता है। आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हमेशा इन टिप्स को याद रखें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। अल्बतानी का काम सिर्फ अपने वक्त में नहीं बल्कि बाद के इल्मदारों के लिए भी एक इंस्पिरेशन रहा। जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने उनकी बुक्स को रीड किया तो उन्होंने अलबत्तानी के काम को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया। उनका काम टॉलेमी के काम को रिवाइज करता था और उन्होंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को भी अपनी रिसर्च से नया डायरेक्शन दिया। उनका काम जब रेनेसेंस के दौरान यूरोपियन स्कॉलर्स के पास गया तो उन्होंने इससे काफी सीखा। एक तरफ उनकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी और दूसरी तरफ उनके मैथमेटिकल मेथड्स ने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया। आज तक अलबत्तानी की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को एक फंडामेंटल रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को देखें तो उनका काम हर स्टेप पर इन्फ्लुएंस करता है। उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट्स और डेटा एनालिसिस ने पूरी दुनिया को साइंस और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में नई सोच का तरीका दिया। अलबत्तानी की जिंदगी का एक और अहम पहलू ये था कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को अपनी रिसर्च में यूज किया। मतलब ये कि वो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते थे और फिर उनको वैलिडेट करते थे। ये उनका काम उस वक्त के ट्रेडिशनल साइंस के तरीकों से काफी आगे था। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स को साइंटिफिक मेथड के जरिए सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया, जो उनके वक्त का एक रेवोल्यूशन था। जब हम साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो हम समझते हैं कि किस तरह ऑब्जर्वेशंस, टेस्टिंग्स और डेटा एनालिसिस का यूज करते हुए हम अपनी फाइंडिंग्स को प्रूफ कर सकते हैं। अलबत्तानी ने इस मेथड को अपनी रिसर्च में इंप्लीमेंट करते हुए अपनी थ्योरीज को वैलिडेट किया। आज हम जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद में अलबत्तानी का काफी बड़ा हिस्सा है। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया, जो कि मॉडर्न साइंस

का एक एसेंशियल हिस्सा बना। अलबतानी का इल्म दुनिया भर में सिर्फ उनके वक्त तक नहीं बल्कि उनकी लेगेसी आज तक जिंदा है। बात करें गोल्डन एज की, तो जब हम अलबतानी की बात करते हैं तो हम उस जमाने की इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में भी सोचने लगते हैं। ये वो दौर था जब इस्लामिक वर्ल्ड में इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी। इस वक्त दुनिया भर के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट इंक्लूडिंग अलबत्तानी अपने काम से दुनिया को नए तरीकों से सोचने का मौका दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये एरा भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन और कल्चरल चेंजेस ने इल्म के इस दौर को मानिए जैसे के रोक सा दिया। लेकिन इसके बावजूद अलबत्तानी का काम आज तक जिंदा है। आज भी उनके काम को दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जाता है। उनका नाम उन इल्मदारों में शामिल है जो दुनिया की साइंस को आगे लेकर गए हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें, PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है A, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है S, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो। और चौथा है दोबारा से एस, यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें। FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। अलबत्तानी को वसत इस्लामी दुनिया के सबसे अजीम और मशहूर एस्ट्रोनॉमर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने जमाने के किसी भी दूसरे एस्ट्रोनॉमर के मुकाबले में रात के आसमान का ज्यादा एक्यूरेट मुशाहिदा किया। वो हाउस ऑफ विजडम के बनाए जाने के बाद 8वीं सदी के एक नए दौर के इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स के पहले शुमार होते हैं। उनकी तदरीस और तरीके से किए गए मुशाहिदे दूसरों को उनके नताइज का जायजा लेने में मदद देते हैं। लेकिन उनके कुछ हवाले जो प्लैनेट्स की हरकतों के बारे में दिए गए वो पूरे तरीके से लिखे नहीं गए और उनमें कुछ गलतियां भी थीं। अलबत्तानी को कभी कभी टॉलेमी ऑफ द अरब्स भी कहा जाता है। उनके काम से ये साबित होता है कि वो टॉलेमी के जियोसेंट्रिक मॉडल पर ईमान रखते थे। उन्होंने टॉलेमी की अलमेजेस्ट में दिए गए मुशाहिदों को रिफाइन किया और सूरज और चांद के नए टेबल्स तैयार किए जो पहले से ही ऑथोरिटेटिव समझे जाते थे। अलबत्तानी ने अपना खुद का ऑब्जर्वेटरी रक्का में बना लिया था। उन्होंने ये तजवीज दी कि उनके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक मीटर से ज्यादा
लंबा हो।

0: ताकि ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की जा सके। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ज्यादा बड़े थे उनमें छोटी वैल्यूज को मेजर करने की सलाहियत थी, और ये पहले के इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा प्रिसाइज थे। उनके कुछ मेजरमेंट्स रेनेसेंस के दौरान पोलिश एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस निकोलस कॉपरनिकस के मुकाबले में भी ज्यादा एक्यूरेट थे। इसकी वजह ये समझी जाती है कि रक्का में उनकी ऑब्जर्वेशन का मकाम ज्यादा करीब था अर्ध के इक्वेटर के, जिससे सन और एक्लिप्टिक ज्यादा आसमान में उठे होते थे और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के असरात कम होते थे। उनके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की केयरफुल कंस्ट्रक्शन और अलाइनमेंट ने उन्हें इक्विनॉक्सेस और सोलस्टिसेस के मुशाहिदे में वो एक्यूरेसी दी जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। अल्बत्तानी उन पहले एस्ट्रोनॉमर्स में से थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जमीन और सूरज के दरमियान फासला साल भर के दौरान तब्दील होता है, जो इस बात का सबब बना कि उन्होंने समझा कि एनुलर सोलर एक्लिप्स कैसे होते हैं। उन्होंने देखा कि वो जगह जहां सूरज का एंगुलर डायमीटर सबसे छोटा नजर आता था वो अब उस जगह से नहीं था जहां टॉलेमी ने उसे रखा था, और ये टॉलेमी के वक्त से लेकर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन 16 डिग्री तक बढ़ गया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अल्बत्तानी ने अपने इल्म, रिसर्च और कंट्रीब्यूशन से दुनिया को नए तरीकों से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में बेहतरीन काम किए, बल्कि उनकी डिस्कवरीज और मेथड्स आज तक साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के लिए एक रे ऑफ लाइट हैं। उनकी जिंदगी और उनके काम से हम ये सीखते हैं कि इल्म का कोई वक्त और सूरत नहीं होती। अगर हम अपनी रिसर्च को ढंग से करें तो हम भी अपने इल्मी सफर में नए रास्ते तलाश कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से किसी और इल्मदार की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और इल्म के सफर में अपना हिस्सा डालिए। इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने कहा, अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। देसी। गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हला हला भैया, वीकेंड की छुट्टियां और रिलैक्सेशन का कहना चाहिए मजा लेना और वो देर से उठना, ये सब हो गया खत्म। भैया आ गया है नया वीक, संडे आ गया है, 11:01।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: देखो भाई, 30 तारीख को जो है ना, पहली बात तो याद दिला दूं कि सफा बात कर रही। वैसे मेरी आवाज को इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, नाम तो सुना होगा। तो भाई देखो, ये जो सरवर भाई ने तो वीकेंड से कैलकुलेट किया ना 30 तारीख को, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये अगस्त का महीना बहुत लंबा खिंच गया है। क्योंकि सरवर भाई मेरे साथ क्या हुआ है, यूं करके पर पंख लगाकर आया माल और यूं करके ऐसा लगा जैसे जहाज ने भी लैंडिंग भी नहीं की और वो उड़ गया।
2: माल मतलब
3: देखिए, वो जो खुशी होती है ना 28 तारीख की और 27 तारीख की,
2: तनख्वाह आई थी
3: वो आखिर। हाँ, यही तो बात थी।
2: क्या तनख्वाह
3: एग्जैक्टली जैसे वो होता है ना अक्सर औकात, कभी एक आधा बर्गर जो आप खा लेते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या खाया था मैंने, तो वो खाया भी था कि नहीं खाया। सरवर भाई को तो एक आधा सूट नहीं करता ना, तो ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ।
2: तो इसलिए दो तनख्वाह मिलनी चाहिए,
3: दो तनख्वाह मिलनी चाहिए।
2: भाई अब देखिए, 60-65 किलो के आदमी या 40-45-50 किलो की जो लेडी है उनको भी उतनी तनख्वाह और हमें भी उतनी तनख्वाह, ऐसा कैसे पॉसिबल?
3: ये जुल्म है भाई, ये जुल्म है।
2: दो तनख्वाह मिलनी चाहिए। बहरहाल ये आपने दूसरा मौजू छेड़ दिया इस वक्त। तो भाई अगर वीकेंड के बाद आज सगेरे सगेरे आपको अलार्म ने परेशान किया है तो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि उठ गए आप और मीटर डाउन होना चाहिए भाई, दूसरा महीना शुरू हो रहा है, तनख्वाह उठा दी उसकी।
3: अरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये अगस्त का महीना खत्म क्यों नहीं हो रहा।
2: हो गया बस।
3: कसम खुदा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज से सितंबर शुरू होगा। फिर आप खुली, फिर वही 30 अभी एक दिन और है इस अगस्त को खत्म होने में।
2: एक भाई याद है आपको, थोड़े दिनों पहले मार्च नहीं खत्म हो रहा था और अब आ गया।
3: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रैंडम फीलिंग ना कैलकुलेटेड सबको होती है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो गले में ना
2: नहीं जाते हैं। ये जहन का मामला है, जिन औकात आप खुश होते हैं वो वक्त जल्दी गुजर जाता है, आप नॉर्मल होते हैं या कोई टेंशन नहीं होती। जब आपके पास टेंशन होती है और जब घर पे होती है ना,

0: क्या तो नब्ज, सरवर भाई ने वो वाला काम किया, नब्ज देखकर मर्ज का इलाज बता दूं।
1: टेंशन का नाम भी बता सकता हूँ मगर बताना अच्छा नहीं होगा।
0: सर भाई क्यों मुझे घर वापस जाना है? सर भाई मुझे घर वापस जाना,
1: इसलिए आपको ये अगस्त जो है गुजरना मुमकिन नहीं लग रहा है। बहरहाल अब ये वक्त जो है 11 से 1 का गुजरने वाला है आपका बहुत ही शानदार, क्योंकि भाई आ गए हैं हम दोनों और धूम मचाने वाले,
0: साउंड पर आ गए हैं, आपके साथ जुड़ गए हैं। और भाई सर भाई देखें, आप जो है ना ये बोल रहे हैं लोगों को कि वीकेंड चला गया है, कुछ लोगों का वीकेंड संडे को आज है, शुभ भाई याद है
1: तो
0: भाई कैसे हो शुभ भाई,
1: सुन रहे होंगे जबकि बात है। तो भाई जिनका वीकेंड है मतलब जिनकी छुट्टी है हफ्ते की, हफ्तावार छुट्टी, वो एंजॉय करें, हमारे साथ बने रहिए।
0: भाई ऐसे भी थे जो कह रहे थे मंडे को उनकी छुट्टी होती है।
1: हाँ मतलब जाहिर बात है भाई, वो तो अपने हिसाब से मेरे ख्याल में मिल जाती है जब आप वीकेंड पर काम करते हैं, जैसे कि मेरे साथ होता था। तो कभी कभी आप तय भी कर पाते, कभी कभार आप तय नहीं कर पाते। एनी हाउ आप जो भी तय कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, 666-22107 पे जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22107, और कॉल करने के लिए नंबर आपको बताइए क्या है सफा,
0: कॉल करने के नंबर है 443-443-77। और भाई कॉल करके मुझे सबसे पहली चीज, सब मुद्दा तो बाद में छेड़ेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ कि किस किसने कौन कौन सी मूवी देखी है पर। क्योंकि मैं मूवीज देखती नहीं हूँ, मूवीज नहीं देखती, लेकिन मैंने एक दो मूवीज ऐसी देख ली कि मेरा तो भाई, मैंने कहा मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब देखी थी मूवी, मैंने मुझे याद ही नहीं है।
1: मैंने लगाई एक फिल्म कॉकटेल, और मेरे ख्याल में
0: कॉकटेल टू,
1: हाँ टू, और
0: कॉकटेल टू मैंने भी देखी,
1: वो पूरी नहीं कर पाया मैं किसी वजह से। हेलो सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम, आओ महाराजी आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे बड़े जमाने के बाद।
0: अरे बबुआ,
1: अरे भाई क्या कह रहे,
0: हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए?
2: अरे भैया बता देंगे, पता चल जाएगा।
0: बिहार से, बिहार से हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बिहार से हैं।
1: मेरे ख्याल में नसीम भाई हैं।
0: नहीं नसीम भाई नहीं है, नसीम नसीम भाई नहीं है, मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है
2: बिहारी बता दिए यार, अब भैया यूपी के हैं,
0: हम रईस बात कर रहे हैं, रईस भाई,
1: रईस भाई, रईस
2: भाई, पंजाबी कंफ्यूज हो जाएंगे, पंजाब करा जिला है, करा ग्राही है, वो शुरू हो जाते हैं फिर और बाकी लैंग्वेज शुरू हो जाते हैं।
1: यार ये देखिए, ये होती है पहली कॉल प्रोग्राम में जो दिन और प्रोग्राम दोनों सेट कर देती है।
2: मराठियों के साथ लग जाते हैं, महाराष्ट्र का मतलब तो महाराष्ट्रियन उसमें पूछने लग जाते हैं कहाँ के,
0: टैलेंट है, टैलेंट
1: टैलेंट है,
0: सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा,
2: कौन जिला बात हो रहा
1: सारे तिराए चौराहे देख लिए इन्होंने और हमें भी दिखा दिए बैठे बैठे। भाई क्या बात है रईस भाई, लग रहा वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा, माशाल्लाह माशाल्लाह
2: माशाल्लाह, बस गुजरते रहा यार, बस बड़े दिन के बाद जुड़ पाए, असल में थोड़ा ड्यूटी बड़ा ये हो जा रहा था, इसके लिए आपके से बात करने के लिए मैंने तो
0: मैं भी यही शिकायत करने वाली थी कि रईस भाई कहाँ घूमते,
2: थोड़ा दिन तक तो मैंने इनसे बात किया था,
0: मैं सफा सफा सफा मैं सफा
2: सफा से मेरा बात होते रहता था कभी कभार, क्योंकि उस टाइम ड्यूटी थोड़ा ज्यादा था, असल में हम लोग का ट्रिप सिस्टम काम है तो काम कम रहता है तो पहले से फिर बीच में रोक दिया जाता है।
1: रईस भाई अम्मी जान कहा करती थी कोई ट्रिप छोटी बड़ी नहीं होती
0: थी।
2: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: अहलन व सहलन। और अभी तक का दिन कैसा रहा सुबह से बताइए?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह, जो भी मुझे गर्मी का तो भाई है, ये सीजन ही है भाई, अगस्त में गर्मी की अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारे इतना अकलमंद कौन है।
1: भैया गर्मी नहीं आएगी तो आम कैसे पकेंगे, खजूर कैसे पकेंगी, हम कैसे पकेंगे, हमारा भी पकना जरूरी है।
0: अगर हम ना पकेंगे तो सर्दी का इंतजार कैसे करेंगे, दुआएं कैसे मांगेंगे?
2: आप लोगों को गर्मी लगती है भाया, आप लोग तो भाई एसी में बैठे,
0: आप लोग नहीं रईस भाई, आप लोग नहीं ये सर्वर भाई, ये अभी कसम खुदा की मैंने अभी एसी बंद करवाया है।
1: नहीं
0: मेरी
2: अमर भाई को तो यार दौड़ाना चाहिए, कोई कोई काले होते ना ये गर्मियों में, मैं देखता हूँ 10 बजे 11 बजे ले दारा दर्जेर रोलिंग
0: पीछे ना पीछे वो आपने देखा है वो स्पेन में होती है वो बुल फाइट या कुछ ऐसा होता है कुछ एक मौसम, इनको वहाँ पे छोड़ देना चाहिए।
1: अरे नहीं नाम लो यार, मैंने अभी एक वीडियो देखा थोड़े दिनों पहले, उसमें वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, ये सीजनल होता है ना, तो उसमें
0: उड़ा दिया,
1: हाँ एक आदमी की जान चली गई।
0: इट इज वेरी यूजुअल, तभी तो कहा सरवाई को भगाएंगे उसके अंदर,
1: अल्लाह ना करे भाई
0: सरवाई देने जान बची,
1: मैं आखिर किसी की जान क्यों लूंगा,
0: बेचारा बुल जो है ना उल्टा पड़ा होगा।
2: इनके फैट को थोड़ा सा बस ये है कि भाई, लेकिन ये

0: में कुदरती है ये मतलब जरूरत।
1: लेकिन रईस भाई एक बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, समाज सर्वर भाई ना दुबले पतले होकर अच्छे ना लगेंगे मुझे तो बिल्कुल भी। मैं तो कहूंगी मेरा भाई मुझे अपना भाई कैसा, सर्वर भाई जैसा, ऐसा वाला अपना भाई ऐसा वाला चाहिए।
2: मुझे
0: तो पहचान नहीं पाता हूँ कभी कभी चेहरे से,
1: मजा नहीं आता।
0: वही अदनान समी है जो मतलब पहले था। अच्छा उसको सामी सामी क्यों बोलते हैं लोग, ये सामी भी नाम चलता है वहाँ पे, ये सामी सामी क्यों लोग बोला
1: लिखने में जो है ना SAMI लिखा जाता है।
0: वैसे मेरे नाम में अलिफ अलिफ रईस की जगह पे RAIS पे तो उसने अरबी में अलिफ लगा दिया है, राइस भाई बोला।
1: हाँ, वो ऑटो आ जाता है।
0: लोगों भी मतलब इनको अभी इतना पता नहीं है कि लोग इतना गलतियां कर जाते हैं कि बस मेरे समझ में नहीं आता।
1: रईस भाई मामला पता है क्या है, वो जो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर होता है ना वो ऑटो ऐसे करता है। मेरे नाम में भी ऐसा ही है, सफा हमजा लिखा हुआ है जबकि मेरा नाम स्वाद पे।
2: अरे वो रईस भाई भूख लग रही होगी तो इसलिए राइस हो गया, वो चावल याद आ रहे होंगे उस वक्त में चावल वगैरह याद आ रहे होंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
0: मुझे ऐसे लग रहा है, मैं बोला यार ये कौन से स्कूल में लोगों को कम से कम अपने उसको तो कम से कम।
2: अच्छा मुद्दे पे आ जाते हैं
1: कंट्रोल।
2: अच्छा रईस भाई ये बताइए कि आपके नजदीक जिंदगी में कामयाबी के लिए अकेले रहना ज्यादा अच्छा होता है, जरूरी होता है, या फिर लोगों से रابطे अच्छे होते हैं?
0: भैया रابطे से मैं मतलब इसके मतलब ये मतलब इख्तलाफ है मेरा, बहुत ज्यादा रابطे रखोगे तो फिर आपका जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगा।
1: रईस भाई क्या तो बात बोलिए, मुकर्रर मुकर्रर रईस भाई, आप तो मेरी पार्टी के निकले।
0: मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आप अगर ज्यादा मतलब उनसे लोगों से ये लोगे तो इसमें मेरे ख्याल से मजा नहीं है। आप खुद मतलब जज करें लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठे उठे वहाँ पे आप खुद जज करें कि वहाँ पे हमें
1: और क्वांटिटी
0: क्या क्या क्या सीख रहे हैं हम, और उनसे मतलब ये करके आप थोड़ा सा खुद सीख सकते हैं। हमारे
1: दिल जीत लिया आपने ये बात करके,
0: छोटी चीजों के बारे में रहनुमाई किया गया है हमें, दीन के बारे में। अगर हम उससे जुड़े रहें और अच्छे लोगों के साथ हम, तो इंशाल्लाह उनसे आपको मतलब आपका रास्ता बंद करने वाला मतलब ये नहीं खोलने वाला ही जरिया मिलेगा।
1: सही,
0: तो
1: सही।
0: आप बहुत ज्यादा लोगों से ये रह के ये करेंगे ना तो शायद मजा नहीं है फिर उसमें, फिर आप दूसरे पे ब्लेम भी करना शुरू कर यार फला के वजह से यार मैं उसने मुझे मतलब ये, तो थोड़ा सा अपना भी देख के लोगों का जज करें कि किस तरीके से हमें क्या फायदा। और मैंने अपने लाइफ कम लोगों से मैं भाई दूसरों का भाई हो सकता है लोगों के उससे अल्लाह ताला उनको कामयाबी के उससे बुलंदी पे चढ़ाया, लेकिन मैं तकरीबन मैं खुद मतलब अपने जिंदगी में मैंने अपने खुद फैसला लिया और ये करके, और ज्यादातर अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह पे भरोसा रखा। मुझे मतलब थोड़ा सा मुश्किल भाई हर एक की जिंदगी में है, मतलब ये तो आना कोई बड़ी बात नहीं है,
1: मतलब कि समझ जाए सब।
2: तो इन शॉर्ट ये है कि आप ये कहते हैं कि रابطे जरूरी हैं बट वो लिमिटेड रखे जाएं, काम से काम के रखे जाएं, जिनसे जो काम है ज्यादा मतलब ही नहीं हो रहे। अम्मी जान ने जब से समझाया कोई भी रابطा छोटा बड़ा नहीं होता।
0: मतलब ही देखो हम लोग हमारा जुड़ना मतलब हम जुड़े रहते हैं, हम कभी किसी को इग्नोर नहीं करते, बिल्कुल नहीं, इसके खिलाफ। लेकिन हर एक की बातों को नहीं लिया जा सकता मेरे भाई सर्वर।
2: अच्छा।
0: हर एक की बातों को नहीं लिया जा सकता है, मतलब उनके उनके उनसे मतलब हम रابطे में रहे और उनके उससे रहे, लेकिन उनके उससे उनकी लाइफ में भी तो आप देखेंगे थोड़ा सा झांकेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा ना कि हाँ ये बंदा कितना कामयाब है और इसके साथ अभी तक, तो उसको जज करके आप खुद मतलब करीब से फिर अपने आप को मतलब ये करें ना कि उसके ऊपर कल को उससे ये लेके फिर कल को उसके ऊपर ढाल दे रहे भैया तुम्हारे वजह से तुम्हारा देखी देखा मैंने भी किया ये किया, गलत हो जाता है फिर।
2: चलिए भाई क्या बात है, जबरदस्त बात और जबरदस्त वाइब के साथ आए हमारे रईस भाई इस वीक को अच्छा बनाने के लिए,
1: धमाल करने आते
2: हैं, मचाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। भाई आप मशगूलियत में आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: वालेकुम
2: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई ये थे हमारे प्यारे प्यारे रईस भाई जिन्होंने सफा से मुतालिक बात करी।
1: सफा से मुतालिक सर भाई वैसे एक बात तो बताएं, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव सा है भाई, ये लाइट नोट वाला मुद्दा नहीं है। मैं इस चीज़ को बड़ा सेंसिटिव होकर लेती हूँ, मैं इसके बारे में बड़ी इमोशनली अटैच हूँ इस टॉपिक के ऊपर। कि आपको क्या लगता है कि जिंदगी

0: जिंदगी में आपके नजदीक कामयाबी के लिए इंसान को अकेला रहना ज्यादा जरूरी है, या मैं इसे ऐसे कहूंगी कि अकेला नहीं, अकेला तो इंसान रह नहीं सकता, तभी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, हायरार्की बनाई है। यूं कह लें कि आपको कम लोग पसंद है अपने इर्द गिर्द, एक होता है ना अपना एक सर्कल होता है, और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारा सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ह्यूज, सबसे तैयार होती है।
1: नहीं ये आप ऐसे मत इसको मिलाइए, सर्कल तो आपकी लाइकिंग पे है। हाँ। कामयाबी के लिए खुसूसतन अगर हम बात करें,
0: अच्छा,
1: करें स्पेसिफिकली, तो वो राबते जो आप आगे बढ़ने के लिए बनाते हैं, वेदर दोज रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और नॉट,
0: वो जैसे हम कहते हैं वो पर्ची सिस्टम,
1: मेरे पास 10 दोस्त हैं वो मेरे लेजर टाइम के लिए हैं, मेरे भाई बहन हैं मेरे लेजर टाइम के लिए, मैं ये नहीं नापता कि भाई ये मेरे लिए कुछ करें, आप समझ रहे हैं, यहाँ पे
0: मफाद होती है, वो वास्ता होता है, हम लोग कहते हैं ठीक है।
1: वो रबते जो आप आगे बढ़ने के लिए रखते हैं, क्या आप ऐसे हैं, क्या आप रखते हैं, क्या आप आगे बढ़ने के लिए रबते बनाते हैं, या फिर आप कहते हैं देखी जाएगी। तो चलिए आइए सबसे पहले से वेदर का हालचाल भी जान लेते हैं ब्रेक पे जाने से पहले, और क्या है
2: वेदर का हाल 107 दिनाल।
1: भाई वेदर तो इस वक्त बेहतर होता चला जा रहा है, मेरे ख्याल में मेरी बात से सब इत्तेफाक करेंगे ही, गर्मी अपनी जगह है बट कम होती चली जा रही
0: है। भाई ये फील्स लाइक 50 हो रहा है
1: यार, तो फील्स लाइक 50 में भी फर्क है ना, देखिए 52 से 51 अब 50, तो
0: हवाओं की रफ्तार इस वक्त जो है वो कुछ ऐसी चल रही है कि आप कह लें कि भाई 15 किलोमीटर 12 to 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चल रही है। ह्यूमिडिटी हमारे ऊपर जरा भी रहम नहीं खा रही है, लेकिन पहले से तो कम ही है ना भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो।
1: इसके अंदर और ऐड करता चलूं सफा, पिछले साल के अगर उसमें जाए कंपैरिजन में मुकाबले में तो इस साल कम है।
0: अच्छा,
1: अभी तक
0: ये मैंने नहीं देखा।
1: अब भैया सितंबर, हमारी दादी क्या करती थी, सितंबर का महीना आने वाला, उसमें बड़ों की बातें ऐसी होती थी, तो अब सितंबर के महीने में देखेंगे
0: तो भाई नहीं, सितंबर के महीने में जो है ना वो कम ही होगा
1: इंशाल्लाह,
0: मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, मुझे सफा फोकस ऑन द पॉजिटिव। अच्छा भाई अभी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी 33% पे चल रही है, जो कि पहले से नॉट बैड, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जा रहा है मामला, नीचे जा रहा है। अच्छा आज का अगर देखा जाए हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो जाएगा 44 डिग्री सेल्सियस तक, और लोएस्ट जो जाएगा वो 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और भाई अगर किसी ने आज अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजे तो अपना अपना हाल बताओ,
1: मुद्दा अब आया है निकल के।
0: देखो आज किसके सामने बच्चे स्कूल नहीं भेजे,
1: भैया सभी को बहुत बहुत मुबारक जो चाह रहे थे कि बच्चों का स्कूल जल्दी से शुरू हो जाए, और समझ रहे होंगे मेरी बात कहने का मतलब। बाकी ये है कि वाकई मुबारकबाद कि आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह के रहे,
0: सबको मुबारकबाद, जिन बच्चों
1: खैरियत से जा रहा है स्कूल भाई, अल्लाह का रहम है,
0: जिनके नए नए सेशन शुरू हुए उनको मुबारकबाद, जिनके पुराने कंटिन्यू चल रहे हैं उनको भी मुबारकबाद,
1: वो हमें सुन नहीं रहे होंगे इस वक्त, बट ऑल द बेस्ट अम्मा अब्बा के लिए कह दें हम, और
0: इंशाल्लाह अम्मा बहुत खुश होंगे भाई,
1: यही खैर हो इंशाल्लाह, और बच्चे जो हैं कामयाब हो, और अल्लाह ताला हम सबको अपने जुबान में रखे। तो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे, कमिंग अप फॉर यू

0: जानेंगे और साथ तो हमारा आपका बना हुआ ही है। फिलहाल कुसू कुसू एंजॉय कीजिए नूरा फतेही और जहरान खान एंड देव नेगी की आवाज में। सबा कैसा गाना लगता है आपको, अच्छा लगता है
1: भाई? ये कोई पूछने वाली बात है?
0: ये तो आपकी बात हो रही है। एंजॉय कीजिए ट्रैक्स एंड साउंड पे सरवन और सबा आपके साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से
1: देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: हलवा तो नहीं खाया बट हाँ नाश्ता किया था मदनसर भाई, ये बात सही है। काफी बार ऐसा भी होता है कि नाश्ता नहीं हो पाता मगर आज हुआ हुआ है।
1: अच्छा
0: ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप बताइए कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सपा के घर के आस पास घूम रहे
2: हैं। मतार करीम के पास पास घूम रहे हैं?
1: मतार करीम में हूं।
2: अच्छा, अगर हम होते तो फिर आपको दावत पे इनवाइट करते, लेकिन शुक्र है अभी हम घर पे नहीं है।
0: थैंक गॉड आपने ऐसे वक्त में बताया। हैं
1: साहब अभी मैं आप फुल
2: क्या क्या क्या
0: आवाज क्लियर नहीं है मुदस्सर भाई।
2: मुदस्सर भाई आप क्या हेडफोन लगाए हुए कि क्या है, मजा कुछ मजा नहीं आ रहा।
1: हाँ अभी सही है।
0: हाँ अभी तो पहले से अच्छी है, पहले से अच्छी है जी। अब बताइए क्या कह रहे थे?
1: मैं कह रहा हूँ कि सब आपकी इनवाइट की जरूरत नहीं है, अभी नाश्ता किया है हम फूल है, कुछ भी नहीं
2: बेचारे। तंग नहीं कर रहे
0: इतनी, इतनी बात सुनने के लिए हमने माइक क्लियर करवाया था।
1: बात यही है कि आरजे से कुछ निकलना बहुत मुश्किल है।
2: क्या क्या क्या आप
0: आरजे से कुछ निकालना बहुत मुश्किल है?
2: ये तारा दे रहे हैं जिनको इनाम नहीं मिले, तो वो हम हमारी जेब से थोड़ी ना निकलने थे। वो
1: आरजे नहीं है, जितने मिर्जा साहब को भी बोलेगा वो बोलते है इधर है वो है, वो बात इधर उधर करता है बस निकलता है।
2: देखें ये बात आप मिर्जा साहब के कंधे पे रखकर बोले ना, सबको क्यों लता रहे हैं?
1: नहीं सब है, सब है, सब है, सिर्फ मिर्जा साहब का नहीं है ना, सब मिर्जा साहब के चारा तो सिर्फ नहीं है ना,
0: सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। शेर सुना
2: दूं नाना पाटेकर की तरह, किसका खून है ये?
0: ये तेरा ये मेरा बता। मैंने कहा भैया टेस्ट कराना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ये तो एक सा रंग हो गया दोनों का। अच्छा बहरहाल, तो मैडी भाई ये बताइए कि जिंदगी में आपके नजदीक कामयाबी के लिए अकेले रहना ज्यादा जरूरी है या लोगों से रابطे रखना?
1: लोगों से रابطे करना जरूरी है।
0: वजह उसके पीछे?
1: वजह यही है कि मसलन मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, ठीक है?
0: ओके।
1: तो आजकल के हिसाब से जब देखोगे ना, तो तुम जिधर भी काम करते हो ना, वही भी तुम सिर्फ वो काम कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में होते, ठीक है?
0: ओके।
1: जब दूसरी जगह पे जाओगे ना, वहाँ आपकी रात नहीं होता है ना, आपकी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये कहना हूँ कि दूसरे के साथ रابطہ करना भी बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में।
0: ऑल राइट। चलिए भाई बड़ी अच्छी बात कही आपने और मैं सहमति रखता हूँ आपकी बात से, और अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, आप तशरीफ लाइएगा गेम खेलने के लिए अभी मैडी भाई। ओके
1: अभी गेम खेलेगा?
0: अभी नहीं, आप तशरीफ लाइएगा घंटे बाद, अगर खेलेंगे तो उस वक्त आप शिरकत कीजिएगा। ओके। तो भाई क्या कहती हैं सफा, अब हम अजान की तरफ भी बढ़ रहे हैं,
2: यहाँ पर
0: कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास, तो वो शामिल कर लेते हैं। एक दो तीन मैसेज शहजादा भाई आ गए हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ एफएम 107, बहुत बहुत शुक्रिया शोखो, हम भी आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर सर, कैसे हो आप, बहुत मिस किया आपको। और सर मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं 12 अलार्म लगाता हूँ।
2: 12 अलार्म भाई, वाह मुझे स्पीचलेस कर दिया, मैं सोचती थी मैं सिर्फ 4 से 6 लगाती
0: हूँ। ये सुन के हमारे 12 बज गए। तो फिलहाल मीठी मीठी बोलियां आर्को सचित टंडन और रश्मि विराग एक दूसरे का दे रहे हैं इस गाने में साथ, जैसे मैं और सफा हैं आपके साथ। बहुत देर है, बहुत देर है, अभी अपने पास 1.5 घंटा है, कहीं भी नहीं जाना भाई।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर।

0: अगर पहले से दोस्ती है और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो ये खुशी की बात है। लेकिन अगर आप कई कई दिन औलाद से कोई आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं करते तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस पर जरूर गौर कीजिए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
5: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन व सहलन, खुश आमदी, स्वागत है एंड हैप्पी हैप्पी संडे आप सभी को। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस वो करते हैं पहले हम अपने प्रोग्राम में शामिल, ताकि कोई नाराजगी ना रह जाए भाई, और उसके बाद कॉल भी लेंगे। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सफा नूर और सरवर भाई? प्लीज ना जाया करें आप छुट्टी पे, कसम से दिन बहुत लंबा हो जाता है, गाड़ी चलाने का दिल नहीं करता। मेरा भाई कैसा, कौन है? रोहेल भाई, आप पे पैसा ही पैसा। ओके, बढ़ते हैं आगे। यार फिर हमारा भी तो दिल है छुट्टी पे जा लेगा, अब ये कहते छुट्टी खत्म की हो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई एंड भाई, हैं दो भाई, सफा तुम्हें भाई कह रहे हैं, कह रहे हैं मूवी दिखाना का ख्याल आया था, बट फिर याद आया लाइफ ही फिल्म बनी हुई है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन है हमारे साथ, इतना अच्छा मैसेज करना है? काशिफ फ्रॉम कश्मीर, के कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? रोयल भाई ने दिल की बात कह दी। हाय मेरा भाई कैसा, के भाई पे भी पैसा ही पैसा, सारे मेरे भाइयों पे पैसा, ये क्या भेज दिया भाई। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, सफा जी क्या है, हाल है आपके? और ये भेजा है इन्होंने मुझे फ्लेवर्ड मिल्क है, मैंगो फ्लेवर का, और साथ में एक टोस्ट। एक खाली स्लाइस भेज रहे हो भैया, इसमें कौन कौन खावेगा? आदिल भाई क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर? ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सफा जी एंड सरवर भाई, कैसे हो आप दोनों? उम्मीद है कि सफा जी वैसी की वैसी होंगी जैसे कल थी, और सरवर भाई तो ठीक ही हैं खुशबू लगा के। इधर तो सफा जी मदार कदीम का वैसे के वैसे ही गर्मी है, शौकत अली खान। हाँ ओके, गर्मी वैसी की वैसी है सफा, इस वक्त मदार कदीम पे समझ रही है आप बात को। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कबीर भाई को विश कैसे करें, नंबर तो बता दीजिए। अरे मुलाकात होगी उनसे भाई आज आपकी शाम में, इसलिए तो मैंने कहा है, और मैसेज करने के लिए यही नंबर है, इसी पे करिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहना जरूरी है। अकेले रहना जरूरी है। मोहम्मद सलीम शाह, सलीम भाई इतना अकेले रह रहे हो, कबीर भाई को विश करने आए, हमारी खरीद भी ना पूछी तुमने, अब देख लो तुम, मैं नहीं मान रहा। ओके बढ़ते हैं आगे। खान भाई हमारे साथ हैं, यूसुफ भाई कहाँ से शुरू होगी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सभा जी और सरवर भाई, कैसे हम दोनों? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड, दिल से देसी। यूसुफ खान, हैप्पी संडे मॉर्निंग सबको विश कर रहे हैं, कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड? होप गुड, मेरा अच्छा।

रहा, सफा ने भी बता दिया अच्छा ही रहा। यूसुफ भाई होपफुली आपका भी वीकेंड अच्छा ही गुजरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कौन हमारे साथ? दिलबर गाना लगा दूंगा भी, रुक जाओ, दिलबर भाई के नाम पे। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे पहले आप बारिश में सर्वाइव करने का तरीका बता रहे थे वो सुनकर मुझे जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि गर्मी से हमारी जान जा रही है और आप बारिश के मौजू को ड्राइविंग का तरीका बता रहे हैं। आप कोई एड में बता रहे थे कि बारिश का हो तो सर्वाइव इन रेनी वेदर। अच्छा, कैन यू कॉल मी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जरूर यार, आपको हम कॉल भी कर लेंगे हम। ओके, अभी तो एक छोटा सा ब्रेक लेने वाला हूं मैं, और वापस आने के बाद आपको कॉल भी करेंगे, आपके मैसेजेस जो यहां पर प्यारे प्यारे हैं वो भी शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ले चलते हैं नुसरत भाई की याद दिलाने। थोड़े थोड़े दिनों बाद ये जो टचअप्स है ना, ये होते रहने चाहिए, जरूरी है भाई।

म्यूजिक और उसमें ये शायरी। एंजॉय कीजिए ट्रैक आफरीन आफरीन नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में ओनली 1 FM 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: जाने दिया, जाने दिया, चले जाओ, चले जाओ
1: यार, जाने दो। वैसे कायदा यही है कि जाने भी देना चाहिए भाई।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: वैसे एक बात है, कुछ लोगों को
1: कुछ कहना चाह रही है
0: कुछ लोगों को और कुछ बातों को चाहे धक्का मार के जितना भी दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, वो नहीं जाते।
1: ये बात घूम फिर के वही आ गई जो वीकेंड खराब हुआ बना देता हूँ क्यों खराब कर रहा
0: सर भाई। मुझे जिंदगी मुझे इतनी जिंदगी जीनी है सर भाई। अच्छा। मुझे उड़ना है, मुझे अच्छा रहना है, मुझे खुश रहना है सर भाई। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।
1: चलो देख लेते हैं कि ये भी क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं हमसे और अपनी जिंदगी से। हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे ऐसा लग रहा है अभी जैसे हबल टेलीस्कोप के ऊपर चढ़ के कोई आसमान से ऊपर, या पायलट होता है ना, पायलट वो जो बात करते हैं जहाज में, ऐसी आवाजें आ रही है इसकी।
1: क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ?
3: नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, शायद से वो थोड़ा बहुत साउंड।
1: गाड़ी आप इस वक्त चलाते हुए बात कर रहे हैं हेडफोन से या ब्लूटूथ से?
3: हेडफोन लगाए हुए हैं।
1: अच्छा, हेडफोन लगाए हुए। चलिए,
0: अच्छा, हवाएं तेज चल रही हैं।
1: वैसे अगर आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर लेते तो बहुत अच्छा होता।
3: बस पार्किंग में ही जाएगी अभी। मोबाइल दूर है, मोबाइल हाथ में नहीं है।
1: नाम नहीं बताया आपने।
3: काशिफ
1: भाई फ्रॉम कश्मीर। केके,
3: बिल्कुल वही।
0: देखो हमारे पास अपना वर्जन है केके का।
1: यार केके इस मैं क्या बताऊं, बस मेरे बहुत करीबी दोस्त का नाम है काशिफ ख्वाजा, तो केके से मैं इनको मिलाने लगा क्योंकि लिखते हैं काशिफ कश्मीर, फ्रॉम कश्मीर। एक्चुअली कश्मीर में कहां से हैं काशिफ भाई?
3: मैं कश्मीर में सदनोती, जिला सदनोती है ना, होटल सॉरी प्लंदरी
0: भाई। हम जैसे लोग जो ना।
1: अच्छा, पहले तो ये बताइए पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से?
3: बस पाकिस्तान वाले कश्मीर।
1: अच्छा
0: फिर मेरे पर टोपी आती है। हाँ। मेरा मामला ये, मैंने बड़ी कोशिश की है कश्मीर जाने की भाई, मैं मरी से ऊपर जा ही नहीं पाती।
1: बस वो मरी पे जाके और सफा मरी मरी पे जाके कहते हैं भाई वाह मरी,
0: मैंने
1: और फिर आगे नहीं जाती कह रहे हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो काशिफ भाई, काशिफ भाई इतनी गर्मी में एक तो कश्मीर वाले से बात करना बड़ा मुश्किल है यार।
0: काशिफ भाई का ना हाल यहाँ पर ऐसा होगा कि हम कह सकते हैं वो बच्चों का एल्सा वाला कार्टून है ना, उसमें ऑलिफ आता है, वो जो स्नो का स्नोमैन होता है ना, वो है। क्योंकि कश्मीर वालों के पास मुझे इतना पता है कि मौसम माशाल्लाह हरियाली और मौसम बड़ा अच्छा खूबसूरत मौसम।
3: अभी सच्ची बताओ ना, अभी इधर की आदत सी हो गई है, तकरीबन मुझे इधर 6 साल हो गए हैं
0: माशाल्लाह।
3: फर्स्ट टाइम मैं गया था शायद से 5 साल बाद शायद से मैं गया था फर्स्ट टाइम वापस वेकेशन पे।
0: अरे भाई ना करें, 5 साल बाद।
3: हाँ, 5 साल बाद मैं गया था, जब
1: पिघल गए होंगे यार काशिफ भाई आप तो।
3: मैं चला भी गया कितना, दिसंबर के महीने में।
0: इनका तो मेरी तरह कुल्फी जम गई होगी फिर।
1: नहीं भाई, ये तो खुद कुल्फी वाले।
3: पहले 3-4 दिन तो
0: बीमार,
3: मैं समझ पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या गलती कर दी भाई, इतनी ठंड, इतनी ठंड।
0: बॉडी हमारी वो हो जाती है, यूज्ड टू हो जाती है एक टेम्परेचर की, 6-5 साल।
1: यार मुझे तो ठंड इतनी पसंद है यार कि बस क्या ही कहूं, मैं तो ढूंढता रहता हूं ऐसा मौसम।
0: जिस चक्की का आटा सर भाई खाते ना, वो आप मैसेज में पूछ लीजिएगा वो कंपनी कौन सी है।
1: काशिफ भाई चलो इस बात में, काशिफ भाई जिंदगी गुजारने के लिए रास्ते बनाना जरूरी है या नहीं, आगे जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए?
3: नहीं, वो बात तो करूंगा मैं। अच्छा, उसी बात से याद है, कल सवा जी आपने एक शो किया, वो प्रोग्राम किया था इको स्विच का।
0: हाँ जी।
3: ऑर्डर जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो थोड़ा देर से करें, आप एक ऑर्डर कर लिया आपने जल्दी जल्दी में, याद
0: आया।
3: तो उस टाइम पे मैं खुद डिलीवरी का काम करता हूँ, उस टाइम पे मैं ड्यूटी में आया तो सुनते सुनते आया मैं।
0: सही, इन्होंने कहा मेरी
3: सुनते सुनते आया। उस टाइम पे एक ऑर्डर मैंने किया था।
0: हाँ जी।
3: फिर उसके बाद अगला 1.5-2 घंटे तक ऑर्डर ही नहीं आया मुझे।
0: लो जी,
3: वो 1.5-2 घंटे तक आपकी मेरे दिमाग में चलती रही, सुन ली इनकी बात।

0: अल्लाह माफ करे। देखिए वो इको स्विच का मामला पता है क्या है, वो सुन सुन के ना मैंने भी अपने आप को बड़ा बड़ा काबू में रखा है। अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑनलाइन होने की वजह से ना सिस्टम को अब्यूज कर देते हैं, मतलब उससे फिर सही बात है ना, पैकेजिंग वेस्ट हो रही है उससे जो ना प्लास्टिक में। लेकिन मेरा ये मामला बिल्कुल नहीं था कि मैं आपकी रोजी रोटी के ऊपर से ना कोई सवाल उठवाऊं।
1: नहीं, अगले दो घंटे मुझे ऑर्डर ही नहीं यार, मैं पक्का मेरे दिमाग में चल रहा है मान ली इनकी बात, कतर वालों ने मान लिया इनकी बात।
0: भाई इतना भी कोई ना सुनता।
2: अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है साहब, अब तो बताइए कि क्या जरूरी है।
1: जरूरी मेरे हिसाब से तो रابطہ जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ओवर हो जाएं या फिर आप बिल्कुल ही वो रिश्ता खत्म कर दें, पता ही ना हो दुनिया का आता। हाँ, पता
0: आइसोलेशन में नहीं चले जाएं,
1: थोड़ा फ्रेंडली तो रहना चाहिए, थोड़ा रिश्ता आपको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से जगह ऐसी आ जाती है ना, कभी कभी ऐसा सिस्टम
2: नहीं, और माजरत आपको मैं रोक रहा हूँ ताकि मुझे वो जवाब मिले आपसे जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जो कहना चाहिए नौकरी के हवाले से या काम के हवाले से मजबूरन जो रابطہ बनाना पड़ता है, बॉस बहुत ही घटिया जोक सुना रहा मगर मैं हंस रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरे हंसने का दिल नहीं है। वो वाला जो रابطہ है उसमें उसमें क्या क्या कहना है आपका।
1: उसमें तो सर्वर भाई सच्ची बताऊं तो उस रابطے में तो मुझसे कमजोर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो, क्योंकि मुझसे तो ये होता ही नहीं है।
0: काशिप भाई मैं आपके साथ इसी लाइन में खड़ी हूँ।
2: वो रील देखिए, वो दोस्त एक दूसरे को जोक सुनाते हुए इधर वो करके और
0: जबरदस्ती हंस रहे। काशिप भाई मेरा भी यही मामला है, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मेरी जब किसी मुझे जब कोई समझ में नहीं आता ना, तो चाहे फिर वो कोई भी हो, मैंने उस थाली का हिस्सा बनना ही नहीं कि जिसके अंदर मुझे समझ में ना आ रहा हो,
2: जिसमें मुझे बेहतर बनना पड़े।
1: मैं जितना मर्जी कोशिश भी कर लूँ ना, मैं सम टाइम कोशिश भी करता हूँ यार कि इसके साथ थोड़ा सा तल्लक अच्छा रखूँ, बाद में बंदा काम आ सकता है, लेकिन फिर उस बंदे की एक ना एक हरकत ऐसी हो जाती है कि जाओ मेरी
0: प्रेशर कुकर की सीटी की तरह
2: ऐसा शेर सुना देता है वो जिंदगी में जो कभी नहीं सुना, और उससे फिर आगे बढ़ना।
0: मेरा अपना ये मसला है, मैं एक दफा किसी ऐसे शख्स से मिलूँ ना कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, दूसरी दफा मैं अपने आप को एड़ी चोटी का जोर लगा लूं, भाई मुझे वो नहीं समझ में आ रहा, मैं अपने आपको 10 चीजें याद दिलवाऊंगी, अच्छा इससे ये काम निकल सकता है, अच्छा इससे ये हो सकता है, इसको ये सीवी दी जा सकती है, इससे ये मतलब हो सकता है, लेकिन वो 10,000 रीजंस भी काम नहीं आते।
1: वो सब सिर्फ अपने दिमाग में आता है, जब वो बंदा सामने आता है ना
0: तो फिर कुछ नहीं आता,
1: जाने दे वो 10 के 10 काम रुकने दे, मुझे नहीं काम।
2: वाह वाह,
0: ये होता है, ये मैं मानती हूँ।
2: अच्छी लाए, अच्छी लाए। और
1: सर वो भाई आपने जो बात की ना कि वैसे अगर आप नॉर्मल जिंदगी के रास्ते की बात करें तो वो तो जरूरी है, लेकिन ये जो नौकरी के हवाले से
2: उसके बगैर तो काम ही नहीं,
1: ये ना ना ना भाई ना
2: नहीं हो पाएगा
1: हमारे हाथ में।
2: चलिए अच्छी बात है ये तो, और देखते हैं आगे लोगों का कहना है। भाई बड़ा अच्छा लगा काशिप भाई बात करके आपसे, ठंडी ठंडी हवाएं कश्मीर की आई हमारे स्टूडियो तक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू,
2: वेलकम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: सर भाई वैसे मुझे आपका एक रिव्यू चाहिए, एक ओपिनियन चाहिए। ये ऐसा नहीं है जैसे कि आपने किसी से मतलब से ताल्लुक रखा हो, Isn't it? कि आपको वो लोग समझ में नहीं आ रहे। अच्छा आपको ये भी पता है कि
2: मुद्दा ये सफा आज बात करने का, ऑब्वियसली वो मतलब ही तो है ताल्लुक रखना, दिल नहीं है
0: देखिए,
2: मगर अब क्या करें,
0: अब चार लोग ऐसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई दूध का धुलावा हो, ठीक है, चार लोग ऐसे होते हैं
2: कुछ पानी के भी धुले होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत महंगा चल रहा है
0: मिनरल वाटर। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर बात ये आती है कि आपको पता होता है कि ये बैक बाइटिंग करते हैं, आपको पता होता है कि ये पीठ पीछे आपका मजाक भी उड़ा रहे होंगे, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, और आपको पता है अच्छी तरीके
2: से अराउंड सफा,
0: तो आपको ये बात हजम हो जाएगी,
2: करनी पड़ रही है हजम, क्या करें।
0: नहीं भाई मुझसे तो ना होगी, मेरा ये मामला है, मैं कहती हूँ इट्स बेटर, इट्स बेटर कि मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर हूँ।
2: इसमें मैं क्या कहता हूँ कि यार ये हद देखो मेरे
0: सबर की, बर्दाश्त
2: सबर की और बर्दाश्त की और
0: आस्तीनों की, आस्तीनों के वजन की, आस्तीनों से निकल रहे हैं ना,
2: जो मेरे घर से मुझे अखलाक मिले हैं उनको देखो और मेरी बात समझो।
0: नहीं ये पीपल प्लीजिंग वाली बात नहीं,
2: ऐसा मत करो,
0: इसके अंदर कहीं ना कहीं
2: हाँ बिल्कुल आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। इसके बहुत सारे वो हैं कहने के तरीके, मैं अभी बताता हूँ, एक जरूरी ब्रेक ले

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब बजे हम सबके 12:06। चलिए भाई यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस। ये देखिए पूरा खत आया है सफा आपके लिए।
3: सर भाई मुझे इस वक्त सिर्फ टिश्यू नजर आ रहा है जो कि इस
2: कोई बात नहीं है, कोई भी चीज जो जारी है उसको रोकना नहीं चाहिए, इसको जारी रहने दीजिए।
3: सर भाई ने ना फिर 12 पे टेम्परेचर किया हुआ, इनकी और मेरी जंग यही रहती है
2: यार। ये एसी जो है समझता नहीं है बात को, उसको इतना समझा के आया था मैं कि भाई देख अपने आपको 13 तक रखियो, वो कह रहा है नहीं साहब 12।
3: और आज मैं गलती से अपनी वो 13 kg वाली नहीं 23 kg वाली जैकेट लाना।
2: हमारा एसी जो है ना 13 तूरा नहीं करता, ये आप जनाब पे रहता है। इसे हाँ, कह रहा मैं 13 भी नहीं रह सकता, I'll go on 12। तो कहते हैं मेरी मंजिल शायद इंतहा ही है, मेरी मंजिल शायद तन्हाई है, सॉरी तन्हाई ही है, क्योंकि हुजूम में रहकर भी इंसान अक्सर अकेला ही रह जाता है।
3: अच्छा ये सबकी कहानी है, ये किसी एक की नहीं है।
2: आज के जमाने में चेहरों की कमी नहीं मगर खुलूस की कमी जरूर है, इसलिए अब मुझे किसी के साथ होने का शौक नहीं। ओए होए, मुझे अपने सुकून के साथ रहना है, लोगों से नफरत नहीं बस उनकी बदलती हुई नियतों से फासला है इनका। मेरी जिंदगी का उसूल अब यही है, कम लोग कम तवक्कात कम शोर और ज्यादा सुकून। जो वाकई अपना होगा उसे साबित करने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए ओए ओए
3: भाई ये मैंने ही कहीं मैसेज तो नहीं कर दिया नंबर बदल कर।
2: खान भाई है, मिस्टर खान। अच्छा बैठे हुए भी अकेले हैं आग के सामने डेजर्ट में।
3: खान भाई मैं आपकी इस बात की पर बिल्कुल अग्री करती हूँ। सर भाई नहीं करते लेकिन मैं जरूर करती हूँ।
2: नहीं मैं तो ये फोटो पे अग्री नहीं करता, ये अकेले डेजर्ट में आग जला के बैठ रहा, बताओ भैया
3: सनसेट है,
2: कुछ मसला हो जाए अगर तो हमें बचाने कौन आ रहा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ओके एक नंबर से हमें कहा गया कॉल करने के लिए, वो भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु, ये है दूसरा मैसेज। अपना ही सर पकड़ के ये पूछूं कि क्या हुआ। ओए होए होए सफा, अपना ही सर पकड़ के पूछूं कि क्या हुआ, अपनी ही नब्ज देख के कह दूं उदास हूं। ओए होए ये कौन हो सकता है बताओ।
3: ये सब ऐसे ऐसे दिल पे ठाक क्यों लग रहे हैं।
2: गाना लाऊंगा चल लग जाता है लेकिन मेरे ठाक करके इनको जरा सा अच्छा लगेगा। ये दिस इज खादिम भाई। खादिम भाई क्यों इतने सैड हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू, कहते हैं सफा बहन और मोहम्मद सरवर मिर्ज़ा भाई ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब आदाब
3: आदाब।
2: भाई क्या हो गया, सब खैरियत तो है, वीकेंड अच्छा गुजरा आपका, मेरी याद आई आपको।
3: सब चोट खाए में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सबने चोट खाई हुई है तो क्या हम अभी
2: चोट
3: की बात कर रहे थे,
2: चोट मार कौन रहा है।
3: अच्छा ये बताओ कि हम क्या खुद भी दूध के दूल्हे ने कभी ये सोचा है
2: ना भाई, हमने तो किसी को चोट नहीं लगा दी। हम अवेल ही नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ पानी से नहा रहे हैं उसका भी बिल दे रहे, बड़ा मसला हो रहा है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा भी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन यूसुफ भाई। अच्छा वीकेंड अच्छा रहा, मैंने
3: वीकेंड के बारे में बात नहीं करना, समझ में आ रही है।
2: हर दफा आप ऐसे कहते हो कि गाना लगा दूंगा।

0: दिलबर का पर लगाते नहीं है, चाहिए दिलबर खुद होंगे अपनी शिकायत कर रहे। अच्छा वाह, दिलबर दिलबर सॉन्ग लगाना है अभी दिलबर के लिए, ठीक है, क्योंकि सबके दिलबर है।
1: कंसोल पे खुद बैठे भाई, बोल मुझे रहे
0: भाई, ये कह रहा है नाम ये रख लो कि लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, नाम दिलबर रख लो, अब सबके दिलबर हो गए,
1: सब गुनगुनाते रहोगे,
0: सबके दिलबर हो गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात।
1: कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद आजम।
1: मोहम्मद आजम, अरे माशाल्लाह, नाम आपका बड़ा भारी भरकम नाम है। अच्छा भाई मोहम्मद आजम भाई,
2: हाल है सफा मैम?
1: मैं बिल्कुल
2: ठीक हूं। आप कैसी हैं? सरवर भाई कैसे हैं?
1: सरवर भाई माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जो है ना वो 12 टेम्परेचर पे रखा है।
2: पहनी हुई है कि नहीं जैकेट? पहनी हुई है सरवर भाई ने कि नहीं?
0: हाँ मैंने जैकेट
1: पहनी है। सरवर भाई नहीं
0: मानती नहीं है सफा, इतना ज्यादा ठंडा करना चाहती है स्टूडियो को।
1: अरे भाई उल्टा बोल रहे हैं आप, सरवर भाई ने जो है वो एक टी शर्ट पहनी हुई और मेरी जो 23 kg की जैकेट है वो गाड़ी में रह गई है, तो मुझे जो है ना इतनी सर्दी लग रही है मेरे।
0: आजम भाई कहाँ है आप अभी?
2: मैं हूँ सनैया में।
0: दूर है वरना जैकेट मंगा लेते।
2: सरवर भाई जैकेट पहने ना पहने माशाल्लाह एक जैसे हैं।
1: ये
0: अल्हम्दुलिल्लाह ने जैकेट पहनाई हुई है।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, दूसरों के ऊपर रहम कर लो।
0: कैसे हैं आजम भाई, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
0: तो क्या क्या नई ताजी है आज? नया हफ्ता नई क्या है, ताजे क्या है ये बताइए।
2: नई ताजा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, जो वक्त गुजर जाए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरना चाहिए।
1: वही चमड़ी है, वही खाल है, वही
0: पॉजिटिव पॉजिटिव रहे वीकेंड पे। तो क्या कहते हैं आजम भाई,
1: हम तो पॉजिटिव रह लेते, लोग रहने नहीं देते।
2: लेकिन आप सफा मैम का ख्याल किया करें सरवर भाई।
0: मैं बहुत करता हूँ,
1: लेकिन बहनों का ख्याल ही नहीं आता इस आदमी को।
0: मैं बचपने से करता आ रहा हूँ उनका ख्याल, मुझसे ज्यादा तो घर वाले नहीं कर रहे।
2: माशाल्लाह
0: माशाल्लाह। ओके तो आजम भाई क्या कहते हैं आपके नजदीक जिंदगी में कामयाबी के लिए अकेले रहना ज्यादा जरूरी है या लोगों से राबता रखना?
2: नहीं राबता रखना जरूरी है जी,
1: राबता रखना जरूरी है। अच्छा आपको ये पता हो आजम भाई, ये सोच लें आपको ये पता हो कि ये मुनाफिक लोग हैं फिर भी राबते रखना जरूरी है,
0: अगर उनसे आपका काम निकल रहा हो, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं जाएगा, पता चल गया। एक मिनट आजम भाई देखिए, उनसे पता चल गया कि मैं सफा को क्लियर कर दूं पहले, पता चल गया कि ये नुकसानदेह हैं तो आदमी कोई नहीं जाएगा, बट उनसे काम निकल रहा है, उनसे दब रही है, अब क्या करें?
2: आप भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, क्या पता उन्हें समझ आ जाए।
1: जिनको कोई ना समझा पाए उनको हम क्या ही समझा पाएंगे, उनकी तो नेचर ही देखें, एक इंसान की ना आदत बदल सकती, फितरत नहीं बदल सकती, तो हम लोग जो है उनको तब्दील तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी माशरे में एक बहुत बड़ा, जाहिरी बात है जिस शख्स से काम निकल रहा हो वो अपनी किसी एक अच्छी पोजीशन पर होगा, किसी एक अच्छे ओहदे पे फायज होगा, लेकिन उसकी अपनी नेचर है।
2: बस बिल्कुल सही, इसी तरह
0: चलिए यार,
1: ये रखेंगे, ये आपकी तरह
0: रखना पड़ेगा,
2: कोशिश करते रहें बस।
0: दुम दबी हुई है क्या करें, पैर के नीचे
2: सरवर भाई,
0: अब मैं चुपकली तो होनी कि वो दुम छोड़ के भाग जाऊं।
1: आप ये कहना चाह रहे मैं चुपकली हूँ?
2: देख ले सरवर मैम, अब आप खुद सोच ले, माशाल्लाह
1: सरवर भाई,
2: और आप
0: खुद ही
2: देख ले
0: सरवर भाई। ओके ऑलराइट वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगा बात करके आजम भाई, अब खेल लेते हैं गेम, सही है?
2: गेम क्या है जी आज की?
0: गेम वही वही वही उल्टी गिनती चल रही है, अभी ये हफ्ता उल्टी गिनती ही रहने वाली।
2: हाँ वही 400 से 700, 700 से 400।
0: हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ ना कहाँ से कहाँ तक, तो आज 900 पे हैं हम लोग, क्योंकि अब हमारा सीजन जो है वो बदलने जा रहा है सफा, मैं आपको रियली मिस करूंगा और ये बात आप तो नहीं कह पाएंगी मुझसे
1: सर भाई, बिल्कुल भी नहीं। एसी सबसे पहले बंद करूंगी मैं,
0: जब ही तो कह रहा हूँ
1: मेरे नाखून नीले पड़ गए भाई।
0: सभी लोगों को बता दें हम कि इंशाल्लाह ताला पहली तारीख से 1st of September
2: से 19 पे कर दें
1: भाई, इनके जो है ना कान लाल होना शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं जैसे पिघल जाएंगे नहीं पिघल गए।
0: मेरा जो टाइम है वो सफा के साथ पूरा हुआ।
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: ताला, दूसरा कोई आएगा उसको सताने का नंबर मुझे मिलेगा और दूसरा सताने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा जो आने वाला,
1: क्योंकि जो
0: और भी एंजॉय करूंगा
2: आपको, क्योंकि आपकी जो बॉडी है माशाल्लाह सेम जो है ना
1: वाली है सरवर भाई की बॉडी जो है ना वो जिम वाली बॉडी है, जिम वाली,
0: वहां काम होगा उसमें जाकर। काम होगा, मेरी तारीफें हो गई हैं तो अब हम गिनती खेल लेते हैं, क्या कहते हैं आदम भाई, गिनती रेडी कर?
2: बिल्कुल
0: एक मिनट मैं अपनी घड़ी जरा सा रेडी कर लूं इधर रख के, ये
2: कोशिश करेंगे हम,
0: हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं कोशिश करने वाले की कभी हानि होती है आदम भाई। तो 999 से 989,
2: ठीक है,
0: क्या बात है, एक ही बार में रेडी है अपना आदमी। चलिए तो साहब आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 999, 998, 997, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999
0: एंड वेरी गुड, एक ही बार में समझ भी लिया, बहुत क्लियर किया जी।
2: पास तो थे लेकिन अभी एज का भी मसला है ना, एज के साथ ही होता है सारा, सांस का लेना वो जो है ना।
0: क्या एज है आपकी आदम भाई, जान सकता हूँ मैं?
2: 48
0: माशाल्लाह।
1: से तो नहीं लग रहा
0: यार, मैं तो समझ रहा था किसी 28-27 साल के लड़के से बात हो रही मेरी यार। मतलब इवन दो आप अभी भी लड़के हैं, आप 58 हो जाए 68 हो जाए वो तो कोई बात ही नहीं,
2: बिल्कुल माँ बाप के लिए तो बच्चे रहेंगे जी।
0: बिल्कुल, किसी ना किसी के लाल तो हम रहेंगे ही, भले कितने पीले हो जाए, धूप में जल जल के जितने ही पीले हो जाए। चलिए भाई आदम भाई, आपने जबरदस्त खेला, 10 सेकंड का आपका स्कोर है जो अभी तक तो टॉप पे ही है, जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: अल्लाह दोनों को खुश रखे, खुशियां दे अल्लाह, खुशियां बांटते रहे, खुशियां से ही नवाजता रहे अल्लाह।
0: आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, लाइक वाइज, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये थे प्यारे प्यारे आजम भाई, खूब सारी दुआएं और खूब सारी हमारी बातें समझते हुए और ताकीद और तनकीद सारे ही अकीद करते हुए अकीदा बदल गए। ओके, कोई और है यहाँ पर हमारे साथ, हेलो सलाम वालेकुम एंड हाय।
1: हेलो हेलो, नहीं बात नहीं करना चाहिए, जाओ नहीं करूंगा बात, क्या कर लोगे?
0: येलो
1: ब्लू पर्पल।
3: हेलो,
0: अरे भाई वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे, आवाज ही नहीं आ रही थी हमारी आपको।
3: हम दोनों मेरी तरफ से आप दोनों सितारों को सलाम पहले।
1: है सितारे, सितारे तो टूट जाते हैं जैसे दिल टूट जाता
0: मैं
1: है।
0: मैं तो चांद हूँ अपनी अम्मा का
3: यार, तुम तो चमकने वाला सितारे हो दोनों, तुम लोग एफएम चमक गया तुम लोगों से भाई।
1: फिर सर्वर भाई तो बहुत बड़े वाले सितारे हुए फिर तो।
0: आज अभी तो चांद हूँ, सबका चांद हूँ,
1: लोग समझने लगे कि चांद है।
0: अच्छा कौन है हमारे साथ ये तो बताइए।
3: यूसुफ खान।
1: यूसुफ भाई माशाल्लाह,
0: यार ये हमारे वो वाले यूसुफ भाई तो नहीं है, ये तो दूसरे वाले यूसुफ भाई है, मतलब बॉलीवुड वाले यूसुफ भाई नहीं है ये।
1: दो दो यूसुफ भाई हो गए हमारे पास
0: ये। अच्छा ऐसी आदमी को ढूंढ रहे थे हम, ऐसी आदमी। वो देखिए आपने यार फराह खान की, अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म थी, 30 मार खान देखी आपने,
1: जो की फ्लॉप गई थी।
0: उसमें अंग्रेज देखा था जो बताया था। यूसुफ भाई ने अपनी एंट्री खुद दी है, तो हम भी ऐसी ही फिल्म बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को। एनी हाउ प्यारे प्यारे यूसुफ भाई, अहलन व सहलन, कैसे हैं, आज का दिन कैसा रहा आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी तक तो सही चल रहा है
0: यार। आज आपने ऐसी बात कर दी ना, अब ताउम्र इंशाल्लाह जब तक हमारा आपका साथ है मैं तो आपको यूसुफ खान हॉलीवुड ही कहने वाले, किसी का नाम ऐसे ही पड़ जाता है, अब आज से आप हॉलीवुड वाले ही हैं, ठीक है?
1: अच्छा मुझे यकीन नहीं आ रहा।
0: चलिए तो गेम खेलने के लिए रेडी है?
3: चलो खेलने का क्या मुश्किल नहीं है, अभी तो प्रियो में।
0: अच्छा चलिए, तो 976 से 966 जाना है आपने,
3: 976 से 966 तक जाना है।
0: हाँ ठीक है, घड़ी मैं अपनी कर लेता हूँ सेट, और आप भी हैं क्या सेट यूसुफ भाई?
3: ओके बिल्कुल।
1: हाँ कह रहे हैं बिल्कुल सेट है।
0: ओके बिल्कुल, तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: ओके 976, 975, 974, 973, 972, 971, 972, 969, 978, 977, 966।
1: ये क्या हुआ?
0: ये कुछ यहाँ पे
1: कुछ गड़बड़ हुई
0: जाल, ये कुछ तो दाल
1: इन्होंने इतना इन्होंने मक्खन की तरह स्मूथ गलती की है कि किसी को समझ में ना आए,
0: पता नहीं चले इन्होंने किया क्या है। मैं बताऊं ये 70 पे ही दोबारा से इन्होंने जो है ब्रेड पे दो बार मक्खन लगाया इन्होंने
1: और इतना स्मूथ ट्रांजैक्शन किया इन्होंने
0: कि पता ना चले,
1: पता ही ना चले
0: क्या बात है ये भाई। यार ये काम भी करते हो
1: चूना मक्खन लगा के
3: मार के मुझे उल्टा करते सब कुछ।
0: अच्छा चलिए फिर एक बार दोबारा से करते हैं ठीक है भाई। 76 से 66 की तरफ जाना है, 68 67 66 आप तो वही के वही घूम रहे
1: हैं। आपने तो सर्वर भाई का मिजानिया घुमा दिया सर भाई, क्या हुआ
0: ये क्या हो रहा है भाई। चलिए
3: 66 से 76 तक आप जा रहे हैं ना।
0: 76 से 66 76 66 ठीक है चलिए दोबारा शुरू करते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 976 975 973 974 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977
0: अभी भी मिलावट से माने नहीं बहुत मिलावट करते हैं ये, बहुत मिलावट करता है आदमी यार ये तो
1: सोने का काम नहीं कर सकते कभी।
0: इनको टॉप करवा दूं मैं लिस्ट में सबसे नीचे नाम लिख दूं।
3: हैं अभी तो सही था।
0: हाँ अभी बहुत सही था। 72 कौन देगा जो आप लेके चले जा रहे हैं मेरे 72 अब 72 के बाद 71 फिर 73 क्या बात है, बहुत घपला कर रहे हैं भाई। चलिए बहरहाल अच्छा तो खेले, कहीं ना कहीं तो रखेंगे लिस्ट में यूसुफ भाई को, ऐसी बात नहीं है,
1: कहीं तो होना चाहिए।
0: हाँ, कहीं तो ऐसे आदमी की हमें बहुत जरूरत है,
1: वो यूनिक यूनिक वाला।
0: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच यूसुफ भाई फ्रॉम हॉलीवुड। ऑलराइट देन ख्वातीन हजरात, दोस्तों बुजुर्गों बच्चों, आप भी अगर हमारे साथ खेलना चाहते हैं उल्टी गिनती तो हमें कॉल कीजिए 443-443-77 पे, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम आपको कॉल करें या नहीं करें। इसी के साथ कुछ मैसेजेस सबक कहती हैं शामिल कर लूँ,
1: मैसेज शामिल कर लें,
0: बहुत सारे मैसेज हैं शामिल करूंगा तो हमारे चैंपियन निकल जाएंगे। चलो टाइम तो हमारे पास है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई एंड भाई, यार ये मैसेज तुम्हारे सामने ही आया था एक्चुअली, तो मैं भी भाई लिख रहे हैं क्या करूं,
1: कुछ नहीं करें,
0: मूवी देखने का
1: तो ख्याल आया था
0: बट फिर याद आया लाइफ ही फिल्म बनी हुई है लड़का था रोयल है। कहते हैं भाई गर्मी किधर है, इधर तो बर्फ पड़ी हुई है, बस फ्रिज छोटा है मैं अंदर नहीं जा सकता।
1: आप हमारे स्टूडियो में आ जाएं, जो मेरा हाल चल रहा है ना सर, जो मेरी नाक की सूजन
0: इनको वापस बुलाना, इन्होंने ऐसा जोक मारा है मेरा दिल कर रहा है इनको मैं यहाँ लेके आऊं और बैठा लूं 45 मिनट।
1: मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग एक दफा आकर ना सौरभ भाई के साथ एक्सपीरियंस करें जिंदगी कैसी, स्टूडियो कैसा होता है सौरभ भाई के साथ,
0: कैसी हो जाती है सौरभ भाई के साथ, क्या करी हो यार। गुड आफ्टरनून मिस एंड सर्वर भाई, होप यू आर डूइंग वेल। और यहाँ पे इन्होंने शॉन द शीप हमारे लिए भेज दिया, ओके गुड। इकराम हसन है हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे।
1: जिसको अभी तक जुकाम नहीं हुआ ना वो हमारे स्टूडियो में सर्व भाई के साथ बैठे एक दफा।
0: सर मैंने भी कॉल प्रोग्राम सुना, अच्छा कल वो प्रोग्राम सुना था, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी
1: बाकी में सबने सुन लिया था क्या।
0: हाँ इनको भी टेंशन हो गई थी, अरबाज अरबाज भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का सुना है आपने। अस्सलाम वालेकुम, इसी बात पे वो एक बहुत है कि एक बार जो दिल से उतर गया फिर ना जाने वो किधर गया। ओए ओए हमजा हमजा क्या बात,
1: छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटा।
0: तो एक बार दिल से उतर गया वो जाने किधर गया, आए है, ये तो मैं यूज करूंगा यार आज, किसी ना किसी को मारूंगा जाके, मतलब ये बात ऐसे नहीं। वी नीड ओके, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है मोहम्मद भाई, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है और मैं पहुंचा भी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सरूर भाई एंड सफा सिस्टर, माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, मैं आपको राबते के हवाले से शेर सुनाता हूँ। आहा उंगलियों के परों पे राबते मौसर हैं,
1: परों पर
0: पोरों होगा ये, पोरों लिखना असल में वो
1: रोमन उर्दू।
0: हाँ तो उंगलियों के पोरों पे राबते मौसर हैं फिर भी गर ये दूरी है,
1: ना करें कोशिश ना करें,
0: जानना जरूरी है फासले जमान के हैं या दिलों में दूरी है।
1: बस साइलेंट कर दिया। देखिए ये आपकी जो बात थी ना उसने सर्वर भाई को साइलेंट कर दिया।
0: शेर अच्छा है मैं बता दूं, मैं पढ़ने में मैं वो कर रहा हूं भाई, वो अपने हिसाब से जैसे
1: ज्ञानी है, ज्ञानी आप
0: उर्दू में भेजते तो बड़ा मजा आता पढ़ने में। उंगलियों के पोरों पे राब्ते मासर, फिर भी घर ये दूरी है, फिर बेघर या बी घर ये थोड़ा टूट रहा है यहाँ पे। एनी आओ फैसल इमरान भाई, बहुत अच्छा शेर है, मुझे

0: अब आएगा फिर मजा, मिला दिया है मैंने। एक कॉल मुझे डिस्कनेक्ट करनी पड़ी क्योंकि ये भी करना पड़ा। हाय
1: हेलो, अच्छा अभी कॉल जा रही है,
0: अभी तो पू विनी द पू। हेलो वाम सलाम रहमतुल्ला, रेहान भाई कैसे हैं? देखिए हमने कॉल कर लिया आपको, कहाँ किसी सूटकेस वगैरह में है क्या?
1: पायलट बने पायलट
0: नहीं, किसी सूटकेस में
2: दफना में बीच साइड पे खड़ा था ना, तो इसलिए हवा जा रही
1: थी। मतलब भाई ने कॉल इसलिए करवाई है कि हमें जला सकें।
0: कोयले नहीं थे आपके पास वहाँ बीच में, हमें जला रहे हैं?
2: नहीं नहीं सर, आपको कैसे जला सकते हैं
1: आप, तो आप कहाँ जलने वाले इतनी आसानी से
0: क्या कहना चाहते हो?
2: नहीं नहीं ये नहीं कह रहा था, कुछ भी आपको गलत नहीं कह रहा था, बस ये कह रहा था कि हम तो यहाँ पे आए थे अपने काम से रिलेटेड, इस वजह से खड़े हुए हैं और बाकी घूमने के लिए काम से रिलेटेड आए थे, तो हमने कहा कि कॉल करवा लेते हैं, प्लस आप लोग को बोल देते हैं तो आप लोग कर लेते हैं, बाकी जो आरजीएस है उनके पास खुद से कर लेते हैं, क्योंकि मालूम है शायद तो वो इतना बिजी होंगे ना कर पाए।
0: अच्छा? क्या जानते हो मैंने कॉल काट के इनकी कॉल लगाई है ये और ये हमारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
1: बहुत मासूम बंदे ये, बहुत मासूम बंदे।
0: चलिए गेम खेलने के लिए रेडी है रेहान?
2: जी जी।
0: चलिए 932 से 10 वापस जाना है आपको।
2: अच्छा ठीक है, आप मुझे एक दो सेकंड दे, मैं थोड़ा सा मन में रिपीट कर लूं,
0: प्यारे लग रहे हैं और हैं भी, ऐसी बात नहीं है रेहान भाई। तो चलिए आप रेडी कर लीजिए अपने आपको।
2: 932 से 922 तक,
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: ठीक है, चले रेडी
0: रेडी आए हैं, चलिए हम भी रेडी हैं। आपका टाइम शुरू होता है रेहान भाई अब।
1: 932, 931, 932, 929, 928, 929, 925, 924, 926, 925, 926, 922.
0: वो है, वो है। कितने सेकंड? भाई 7 सेकंड में कर दिया यार, देख रहे हैं शराफत की जो कहना चाहिए बौछार हो रही थी ना, बौछार उसके पीछे ये खाद निकली है। आपके लिए तालियां,
1: आज तालियों वाले को तनख्वाह मिली थी तो आए हैं।
0: और यकीन जानिए मैं जरूर हाजिर हो जाता अगर आप मुझे ये बताते कि आप कुछ खाने पीने का इंतजाम करके गए। क्या बात है,
1: बारबेक्यू शारबेक्यू का बंदोबस्त
0: जितने सच्चे हैं उसी हिसाब से
1: आप ना भी बुलाते तो सरभ भाई वैसे ही आधा मरते,
0: बिल्कुल हाजिर हो जाते। अफसोस कि आप काम से गए इस वक्त और वहाँ आपको जाना पड़ा
1: आप सरभ भाई के बगैर।
0: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके बाय। ऑलराइट सफा कह रही है गाना अब तो लगा दिया जाए, बिल्कुल। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं और वापस आने के बाद ये जो चर्चा है इसको हम जारी रखेंगे और
1: भाई
0: गेम को भी जारी रखेंगे। वो नहीं है जो तुम समझ रही हो,
1: मैंने सोचा वो
0: अच्छा,
1: है
0: नहीं वही है, वही वही वही वही वही वही वही
1: मैंने कहा कैसे भूल सकती हूं,
0: आपके कहने से पहले कह दिया मैंने, वही है।
1: कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके वॉल्यूम हाई कर लेना चाहिए।
0: एक्चुअली ए आर रहमान जिनकी वजह से उदित और कविता इस प्यारे से गाने को और भी प्यारा बना रहे हैं। एंजॉय कीजिए ट्रैक सन एंड साउंड पे सर्वर और सब आपके साथ हैं ओनली ऑन एफएम 107
1: दिल से देसी।

0: जबरदस्ती के भाई देखो ये बजा के देखो यहाँ पे पी होती है,
1: हाँ, हाँ, है ना, वो उनको पता होना चाहिए,
0: पता रहेगा कि पी यहाँ से होती है एक्चुअली,
1: मतलब
0: पी पी मैं हॉर्न की आवाज निकाल रहा हूँ, मैं दूसरी पी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों को ये समझाएं, इंशाल्लाह ताला खैर होगी, इसमें परेशान ना हो, बट ये है कि इसको ज़हन में रखें, बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को सिखाओ आप, उनको नॉलेज दो,
0: बिल्कुल सिखाएं,
1: इसलिए नहीं खुदा ना खास्ता कि कुछ ऐसा होगा, इसलिए कि यू शुड नो इफ इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस।
0: और मैं तो कहता हूं कि जिस वक्त वो बस में जा रहे हो, चढ़ रहे हो, खैर आजकल तो एकदम लेट और कभी जल्दी का मामला है, जरा सा रूटीन सेट हो जाए तो जो स्कूल की बस है ना उसमें भी चढ़ाते वक्त आप दिखा दिए कि देखो भाई ये होता है यहाँ पे पी पी होता है, अगर छोटा इतना है उसको ये तो समझ में आ जाएगा, तो उसको पता रहेगा कि यहाँ से पी पी होता है, भाई कोई ऐसी बात होगी, खुदा ना खास्ता
1: केजी के बच्चे जो होते हैं
0: वैसे तो सब जिम्मेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, अल्लाह ताला खैर वाफी का मामला खड़े। और कुछ गर्मा गर्म ट्रिविया जो है अभी पेश करने वाली है टेबल पे सफा हमारे लिए,
1: देखिए गर्मा गर्म ट्रिविया नहीं है, ठंडा ठंडा, हाँ गर्मा गर्म ही कह लें,
0: अच्छा ठंडा ही ठंडा सही,
1: ठंडा ठंडा कूल कूल रिलेटेड भी है। देखिए अक्सर औकात ना लोग समझते हैं गर्मियों में ना लोग भागते हैं बीचेस की तरफ, तो अक्सर औकात लोग समझते हैं बीच सारे के सारे ठंडे होते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ट्रिविया फन ट्रिविया ये है कि एक्सट्रीम बीच एंड नेचर भी होती है। आज का मैं कहूंगी कि एक्सट्रीम समर ट्रिविया ये है कि कुछ बीचेस दुनिया में सिर्फ खूबसूरत नहीं होते बल्कि बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं। हमारे जो नॉर्मल बीचेस हैं सरवाई वो तो मैं बता रहा हम थोड़ा सा भी आगे जाएंगे घुटनों तक जाएंगे ठंडा ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन कुछ बीचेस ऐसे होते हैं जिनका पानी गर्म रहता है। और जैसे कि पर्शियन कोस्टल डेजर्ट्स है ना, पर्शियन कोस्टल डेजर्ट्स की साइड पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से होता है ये कि सिर्फ रेत ही नहीं
0: हमारे यहाँ तक भी आ जाए, अगर खलीज की तरफ भी बढ़ जाए वहां से तो वो बिल्कुल वही बात सही है।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो ना पानी का जो ठंडा होना होता है ना वो मुतासर होता है उससे, तो पानी का टेम्परेचर भी, और मजे की बात है रेत का जो टेम्परेचर होता है, आप जाते हैं ना बीचेस तो हम लोग अगर दिन दिन के टाइम जाएं वो दोपहर की जाएं तो रेत के ऊपर कैसे पांव छलक रहे होते हैं, हाँ भाग रहे होते हैं, तो वो वाला सीन होता है वाकई में। और इंटरेस्टिंग बात, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वाइट सैंड बीचेस होते हैं ना, लोग अक्सर पूछते हैं कि जो वाइट सैंड बीच होते हैं किस चीज से बनते हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, कुछ लोगों को सुन के खार आएगी लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो है ना समंदरी क्रश्ड कोरल्स होते हैं ना जो आप कह लें इसके अंदर फिशेस के बोन्स हो गई, मुख्तलिफ डेकेड्स हो गए, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अक्सर औकात मुख्तलिफ मखलूकात की वजह से वो जो क्रश हो जाती हैं इनकी हड्डियाँ, या वो जो कह लें गल्स हट जाती हैं, या
0: जो, हो जाता जो डिके होता है ऑब्वियसली, हाँ,
1: तो उसकी वजह से ये सफेद वाली या ये जो हमारी खाकी सी रेत बनती है समंदर
0: की, मिक्स होती है,
1: तो वो उसके अंदर मिक्स्ड होती है।
0: जब भी कहूँ मैं बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसका,
1: नमकीन नमकीन,
0: अरे मैं अभी मतलब आप कब से आपने नहीं चखा वो पानी सफा, हम जाते तो रहते ही हैं मगर यूजुअली ऐसा नहीं होता कि उस पानी का मजा भी लें, बच्चों और बुजुर्गों को हम ये जरा सा देखने में लग जाते हैं फैमिली के, तो भारत इस बार तो मैं अभी मजा लिया मैंने वहां पे, और मैंने नोटिस किया कि पानी तो दादा ही खा रहा हो गया तो वो मजा जो सफा बता रही है वो आ रहा था उसमें।
1: एक और मजे की बात बताऊं कि ये जो अरेबियन सी है इधर हमारे साथ कनेक्ट करता है, ये
0: और यहाँ पर आ गए हैं हमारे भाई जान, कहते हैं मेरे भाई दुआओं में याद रखें, थोड़ी सी परेशानी अल्लाह ताला खैर करे भाई, ये क्या लिख दिया, क्या हो गया, खैरियत है, मुझे जरूर बताइए।
1: इस्तेमाई दुआ,
0: कहते हैं मेरी बेचैनी तो तेरे साथ से जाएगी, मेरी बेचैनी तो तेरे साथ से जाएगी, फूल खिले या बारिश आए मुझको उससे क्या,
1: आए दिल जले,
0: बिल्कुल जला दिया सफा ने, बिल्कुल काला कर दिया जला के इस वक्त। कादम भाई खैर होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज ठंड भेजो, कौन है ये आसिफ होंगे,
1: याद ना दिलाना, अभी भी एसी बन गया है मैंने,
0: क्या हो गया आसिफ भाई, एसी बन गया जब ही मैं घूमू
1: भाई,
0: सफाई कब कर दिया तुमने,
1: मेरी ऑन एयर जो है ना लोगों ने चीखे भी सुनी
0: सफा तुम। अस्सलाम वालेकुम गोभी दे फूलो, आई एंजॉयड योर लाफ्टर ब्रो, भाई सॉन्ग को जाने भी दे जो हमने लगाया था उससे पहले। इतने हेल्दी सितारे यार, आप दोनों का रिएक्शन ओहो हो, ना रीड करें सरवर भाई, ये ना हो के आप अपनी रियल लैंग्वेज भूल जाए, किसके बीच में ये कॉल है। सैयद अली क्या बात है यार, बाद लगाया हुआ है अली ने इस वक्त बहुत बड़ा सा।
1: बाज़े फल्कन है
0: ये, क्या हो गया,
1: बाज़े फल्कन नहीं होता
0: ये, मैं इनका खुल क्यों नहीं रहा है। हाँ करीबी है, करीबी है दोनों,
1: वो तो मुझे ही पता है कि फैमिली से मिला,
0: एक अंग्रेज की है एक उर्दू है। ओके बढ़ते हैं आगे। ओहो कॉल बहुत सारी मिस हो गई, अब मुझे डांट भी पड़ सकती है इसके ऊपर। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज फर्स्ट डे। ओके इकराम हसन साहब ने भेज दिया है, क्या ये आयशा इकराम हसन है? हाँ बिल्कुल, प्यारी प्यारी आयशा है।
1: माशाल्लाह फर्स्ट डे स्कूल, अरे वाह,
0: अच्छा था पोस्टर बनाया है यार, ये देखो ये है सेलिब्रेशन, ये है खुशी,
1: माँ बाप की खुशी।
0: हाँ बिल्कुल, अपने बच्चे को स्कूल भेजने की। हेलो सलाम वालेकुम। हमजा, अभी आपका मैसेज पढ़ के ही चुका था मैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं?
1: मैं ठीक ठाक हूँ मेरे भाई। हमजा भाई आज कुछ लो चल रही है बैटरी, हमजा भाई पिछले एक दो हफ्ते से कुछ लो चल रहे हैं,
0: तबीयत भी सही नहीं थी।
2: अरे नहीं नहीं, मेरी आवाज ही नॉर्मल ही रहती है, ऊंचा बोलूंगा तो आप लोग गुस्सा कर रहे हैं हमारे।
1: हमजा भाई मेरे साथ भी यही होता है, मैं जब ऊंचा बोलती हूँ तो लोग कहते हैं क्यों गुस्से में बात कर रही हो, मैंने कहा मैं गुस्से में कहाँ बात कर रही हूँ भाई, मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ।
0: खाते पीते घर के लोग ऐसे बोलते हैं।
1: देखिए हमजा भाई हमारे जैसे लोग हैं ना, वो जो है वो क्या कहते हैं, दिल में तो आते हैं लेकिन समझ में नहीं है कि नहीं, ये बात हुई ना, कह सकते हैं कह सकते हैं।
0: तो क्या नहीं ताजे और कैसा रहा अभी तक का दिन हमजा?
2: अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ताजे, यही है कि सरदार भाई आप और मैं गलत तरह कंट्री में आ गए, ये कंट्री हमारे लिए नहीं, ये सफा मैन के लिए बनी है। तो हम लोगों को या तो फिर उधर आइसलैंड वगैरह में होना चाहिए था, जहाँ पे समझ लेके 12 महीने मौसम ठंडा ही रहता,
0: यार ये बात तो सही है, बट हर जगह का वेदर अपने हिसाब से है भाई, अल्लाह ताला खैर का मामला करे सभी के साथ। चलिए हम तो जल्दी से गेम खेल लेते हैं, क्या कहते हैं, रेडी? टाइम भी हुआ जा रहा है।
2: गेम तो खेलते आपको एक और फन ट्रिविया बताता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ मैं ऐसा बंदा हूँ मुझे एसी के अंदर बैठे भी पसीना आता
0: है। हाँ
1: बिल्कुल सच में। ये फिर आप सर्वर भाई की कैटेगरी वाले हैं कि 12 के टेम्परेचर पे कह रहे हैं मुझे गर्मी लग रही है सफा। चुप रहो चुप।
2: आप यकीन करें गाड़ी का एसी फुल है और दोनों जो है फैन तो मेरे फेस की तरफ और मेरे फेस पे भी पसीना।
0: अल्लाह ताला सेहत दे भाई एसी को। ओके ओके हमजा अब हम गेम खेल लेते हैं, रेडी है?
1: एक दूसरे को हमजा भाई
0: 920 से 910 वापस जाना है, ठीक है? 920 से 910 बहुत ईजी,
1: 920 से 910
0: ओके ऑलराइट देन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910
0: क्या बात है यार, मिल गया आज का चैंपियन हमें।
1: जलने वाले कहेंगे कि हमजा भाई को हमजा भाई जलने वाले कहेंगे कि हमजा भाई को तो इजी दे दिया था।
0: अच्छा ये इजी था? इजी नहीं है, लगता है कि दस, वो असल में साइकोलॉजी है कि जितना आगे जाएंगे उतना टफ होता जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभार शुरुआत ही टफ होती है। और अच्छा खेले भाई हमजा, आपने 6 सेकंड में किया जो इसका रिकॉर्ड रहा है गेम का।
2: इजी हमेशा वो चीज होती है जो सीधी जा रही है, वो कभी इजी नहीं।
0: हां बिल्कुल, ये तो हम उल्टे जा रहे हैं। चलिए
1: उल्टा जाना नॉर्मल बात नहीं है आपके लिए सरवर भाई?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उल्टा ही जा रहा हूँ आजकल ज्यादा, अब आदत हो गई
2: जिंदगी के।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है भाई हमजा ने, जबरदस्त। चलिए साहब
2: सरवर भाई आपने आगे मेरा वो एक लाइन पढ़ी थी, एक बार जो नजरों से उधर गया फिर वो ना जाने की लड़कियां, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है कि हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, लोग हमको ढूंढेंगे ना जाने हम कहां।
1: अरे भाई ऐसी बात है ना कि ऐसा ना करीना।
0: नहीं अभी तो आपको बने रहना इस महफिल में, इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे, खैरियत से रखे और खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। तो भाई जल्दी से अब यहाँ पर कुछ मैसेजेस कवर कर लेते हैं।

0: क्योंकि टाइम भी हो गया है।
1: अमीन भाई ने आकर पछाड़ देना।
0: रेहान है हमें कुछ वीडियो भेजा है और कहते हैं कैसा है व्यू, कहाँ का है, घर का है, कमरे का है,
1: दुकान का भेजा होगा।
0: सलाम सरवर भाई एंड सफा बहन, एक रात सोया मैं उसकी यादें भूलने के लिए, अगले दिन लोग रोने लगे मुझे उठाने के लिए। ओ
1: इतने सारे इतने दिल जले वाले मैसेजेस कहाँ से लेकर आते हो भाई?
0: अरमान मलिक नाम भी ऐसा लाए, आजकल गाने इतने चल रहे हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम, आई एम न्यू टुडे, गुड मॉर्निंग, ओ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं? एंड अली हैं हमारे साथ, अली भाई एलन व सैलन कहाँ थे यार? पहले पढ़ लेता है मैसेज तो आपको मैं कॉल लगा लेता, मुझे लगता है मशगूल होंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे जरूर बात होगी, कोशिश करिएगा कि कॉल करें अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वादा करता हूँ कि फिर आपको छोड़ने नहीं दूंगा अपने आप को, मेरा मतलब है FM 107 को आप याद ही रखेंगे। MBB के 176 मैसेज आज मैंने आपको, अरे यार इन्होंने कहा था कॉल करने के लिए, अब टाइम पूरा हो गया, आज मैंने आपका बहुत वेट किया लेकिन आपने कॉल नहीं की और मेरी कॉल लग नहीं रही थी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वाकई यार आई एम वेरी सॉरी मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, हसनैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात समझी। तौफीक भाई आ गए, कहते हैं सरोर भाई एंड सफा अस्सलाम वालेकुम। तौफीक भाई केदार भैया वाकरा में कौन से राउंड अबाउट पे? ओके मुबीन भाई के यहाँ पर खूब सारे मैसेज हैं। MBB थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। कॉल करें आप, कोई अच्छा सा बीच बता दें, कोई अच्छा सा बीच बता दें जल्दी से सफा
1: भाई। मुझे तो वो अपना अज़रबैजानी बीच बहुत मजे का लगता है, बहुत दूर है लेकिन बहुत मजे का लगता है, इतना क्लीन बीच ना मैं उसकी कायल हो गई हूँ।
0: चलिए साहब,
1: आप गए कभी अज़रबैजानी बीच?
0: मैं कौन से बीच पे नहीं गया सफा, ये तो सभी जानते हैं। नहीं और उसके लिए आपने अगर बीच की खूबसूरती देखनी है खाने के साथ, तो आपने देखना है FM 107 की तरफ से बनाया गया प्रोग्राम सुहाना सफर, जिसमें आप सारी चीजें देख घूम सकते हैं और वो खाने भी इंजॉय कर सकते हैं जो कतर में है इंशाल्लाह ताला।
1: चलिए भाई अपना प्रमोशन करते हुए सरवर भाई,
0: इसी के साथ अब टाइम हो गया कि इजाजत ले लें, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सफा जाते जाते अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आज आपकी तबीयत बहुत अच्छी है।
1: जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, याद रखें देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आज मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं, अम्मा मेरी हमेशा कहा करती थी, मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं बेटा बुरे दिन नहीं, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, जिस जिसका थोड़ा सा हैवी टाइम चल रहा है टेंशन नहीं लो, बेशक मुश्किल के बाद आसानी।
0: और इसी से मिलती जुलती बात ये कि भाई ये जो खराब वक्त है ना, अच्छी बात इसकी है कि ये भी गुजर जाएगा और हम भी गुजर रहे हैं हमेशा के लिए, इंशाल्लाह ताला कल खैरियत से आपके पास दोबारा होंगे। आज के चैंपियन रहे हमजा उल्टी गिनती के, तो बहुत बहुत मुबारक। आजम भाई, यूसुफ भाई, रेहान भाई, शौकत भाई, सब अच्छा खेले, आज के चैंपियन रहे हमजा। इंशाल्लाह ताला कल फिर देखेंगे कि कौन चैंपियन बनता है। अब दीजिए इजाजत क्योंकि आपसे थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे मोहम्मद अमीन को, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो आपको दुनिया भर की खेल की खबर से आगाह करेंगे ओनली ऑन FM 107। तो अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए, सुनते और देखते रहिए
1: 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी
4: एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
6: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
7: Game Changer Season 2.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम एंड इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। समर स्पोर्ट्स, समर इस वक्त, समर क्या मतलब, अभी भी बहुत ज़्यादा ही समर है। अगस्त एंड है लेकिन मौसम अभी भी वैसा के वैसा ही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सितंबर आए या थोड़ा बहुत इंटेंसिटी जो है इस हीट, इस गर्मी की, वो इंटेंसिटी कम हो जाए। लेकिन स्पोर्ट्स की इंटेंसिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। और किस लिए? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स दैट गोइंग अराउंड इन कतर, और कतर के अलावा बाकी ममालिक में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट जारी है। और कतर में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट से मुराद देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू। लेकिन पहले अपना फ़ोन उठा लीजिए। बात यह है कि फ़ोन उठाएंगे तो एक सवाल पूछूंगा और इस सवाल से आप लोग इंगेज हो जाएंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्पोर्ट्स प्रोग्राम में अगर आप लोग इंगेज हो जाएं तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट। और आज का सवाल क्रिकेट से ही होगा, और क्रिकेट में ये एक सवाल है जो आप लोगों के सामने तो एकदम बिल्कुल पानी पानी है, बिल्कुल एकदम इजी इजी पीजी क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। तो आज का सवाल ये है, काइंडली पिक अप योर फ़ोन जो भी मुझे सुन रहे होंगे अभी रेडियो पर FM 107 को और इस प्रोग्राम को जिसका नाम है स्पोर्ट्स, समर स्पोर्ट्स। और समर स्पोर्ट्स में आज का ये सवाल जो है वो है कि किस भारतीय बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लेने का वो मकाम हासिल किया था। किस भारतीय बॉलर ने, किस इंडियन बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहला हैट्रिक लिया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह पता है आपको, मॉडर्न इंडियन टीम के वन ऑफ द लीडिंग बॉलर्स हैं। ऑप्शन बी है इरफान पठान। ऑप्शन सी है हरभजन सिंह। आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, रिपीट, ऑप्शन बी है इरफान पठान और ऑप्शन सी है हरभजन सिंह। किस भारतीय बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला हैट्रिक लिया था? सो आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662107 पर, एंड इस पर आप जुड़ सकते हैं आपके इनपुट्स के साथ एंड ओपिनियन ऑन स्पोर्ट्स। आप बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेजेस में पढ़ दूंगा। आपको क्या लगता है, मतलब यू नो सीइंग दिस स्पोर्ट्स, कतर में इतने सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, इसके बारे में भी अपना अपना जो नो आपके राय है वो आप लिख सकते हैं। आई कैन ऑलवेज रीड इट आउट विथ योर नेम। जी हाँ, नाम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम के बिना अधूरा है। ठीक है, दोबारा अगर आप चाहें तो मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। इस क्विज जो है वो है, किस भारतीय बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे फर्स्ट हैट्रिक, यू नो फर्स्ट टाइम इन्होंने हैट्रिक लिया था, उस बॉलर का नाम आपको बताना है। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी है इरफान पठान, ऑप्शन सी है हरभजन सिंह। तो अभी चलते हैं हमारे आज मेजर हाइलाइट्स में, देखते हैं कतर में क्या हो रहा है, कतर के अलावा बाहर में क्या हो रहा है, बाहर से मुराद यू नो आउटसाइड कतर में क्या क्या स्पोर्ट्स हो रहे हैं इन इस टाइम ऑफ। क्रिकेट से शुरू करूं मैं, हॉकी से शुरू करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए क्रिकेट से शुरू कर देते हैं। और क्रिकेट में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये सेकेंड टेस्ट मैच जारी है। इस तीन जो तीन मैचों पर मुश्तमिल जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके दूसरे मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बर्तरी जो है 342 रन्स तक उन्होंने आउट इसको थोड़ा सा अमेंड कर देते हैं, 362 रन्स, और आज खेल का चौथा दिन है और फर्स्ट सेशन का मैच जारी है, और इसमें इंग्लैंड लीड बाय 362 रन्स। पाकिस्तान की इनिंग्स जो है 110 पर सिमट गई है, एंड उस पर काफ़ी कुछ बातें होने लगी कि यू नो इमामुल हक जो है क्या वो अपने जो इंजरी है इस इंजरी को वो फेक कर रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं। टीममेट्स, कोचेस, एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इमामुल हक इस फिट हैं लेकिन वो अनफिट का थोड़ा सा ड्रामा करें, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह के न्यूज़, ये इस तरह के मीडिया में अफवाहें हैं, ये हमें देखने को मिलेगा बाद में। इंग्लैंड की पहली पारी जो है 290 पर सिमट गई थी, और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स पर 182 रन्स और 7 विकेट्स जा चुके हैं। फिलहाल मैं अपडेट दे दूं कि इंग्लैंड की बैटिंग में कौन कौन बल्लेबाजी कर रहे हैं। डैन लॉरेंस जो है 54 रन बनाकर नॉट आउट हैं, ओली रॉबिन्सन जो है 3 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और अगर पाकिस्तान की इनिंग्स की बात करूं 110 पर इट वाज अ वेरी बैड बिगिनिंग शान मसूद जो है वो सिर्फ महज एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं उसके बाद आजान अवैस जो है वो 46 रन बनाते हैं एंड सबसे बड़ी बात है ये इस यंगस्टर ने 46 रन सबसे ज़्यादा टॉप स्कोर किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 46 रन बना चुके हैं फिर भी मैं कहूँगा कि ही शोज दैट काइंड ऑफ यू नो ग्रिट जो डिटर्मिनेशन है वो एक इनमें देखने को मिलता है एंड काफ़ी एक्सपर्ट्स ने काफ़ी फॉर्मर यू नो पाकिस्तान के ग्रेट्स जो हैं वो कहते हैं कि ही इज़ अ पोटेंशियल टैलेंट है जिसको सही तरह से थोड़ा सा यू नो संभालना चाहिए थोड़ा एक्सपोजर के साथ थोड़ा सा और यू नो ट्रेनिंग देनी चाहिए एंड ही कुड इवॉल्व इनटू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अगर नहीं कहूँगा तो कम से कम एक स्टार बल्लेबाज के तौर पर ये उभर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी ओपनर और उसके बाद मैं देख रहा हूँ स्कोर लाइन पर अब्दुल्ला शफीक 5 बाबर आजम जो कप्तान है वो 8 रन सऊद शकील जो है वो 16 रन मोहम्मद रिजवान 7 रन आली उस्मान 1 रन खुर्रम शहजाद जो है 1 रन मोहम्मद अब्बास 2 रन और मोहम्मद अली जो है 3 रन इमामुल हक जो है वो एबसेंट हर्ट यानी रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे तो ओवरऑल पाकिस्तान 110 पर दे वर ऑल आउट सो अब देखने की बारी है कि क्या इंग्लैंड इस लीड को 400 रन तक पहुंचा देते हैं और आखिरी दिन जो कल होने जा रहा है कि क्या वहां पर पाकिस्तान के बल्लेबाज डटे खड़े होंगे या दे विल हैव टू यू नो अगेन दे विल यू नो जिसको कहते हैं कि ताश के पत्तों के जैसा फिर से लड़खड़ा जाएँ और गिर जाएँ And that's a time to tell and वहाँ पर हमें wait करना पड़ेगा अच्छा moving on to the next news जो है कि दोहा में हमें अल वक्रा आप लोग अगर जाते हैं तो जुनूब स्टेडियम आप लोगों ने देखा होगा तो जुनूब स्टेडियम में जुनूब अरीना बनाया गया है अल जुनूब अरीना और ब्यूटीफुल बनाया गया बहुत खूबसूरत और फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027 जो कतर में होने जा रहा है उसके लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अल जुनूब अरीना का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आप देखिएगा जाइएगा थोड़ा सा इंजॉय कीजिए बास्केटबॉल को भी इंजॉय कीजिए और ये उन 4 वेन्यूज में से होगा जहां फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 के मैचेस खेले जाएंगे इट्स अ वंडरफुल स्ट्रक्चर वंडरफुल वेन्यू जो कि इस बात को दोबारा यू नो दे मोहर लगाया जाता है कि कतर व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स कतर इज ऑलवेज द बेस्ट अच्छा अब हॉकी की बात कर लेते हैं कल हॉकी में जो क्लासिफिकेशन मैचेस हुए थे उनमें से एक मैच पे यू नो आई मेरी नज़र उस पर ही फोकस आया और वो इंडिया वर्सेज बेल्जियम के इस मैच में बेसिकली 7th और 8th पोजिशन का मैच था और इसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा मैच गोललेस ड्रॉ रहा लेकिन टाई ब्रेकर यानी शूटआउट में यहां पे बेल्जियम ने इंडिया को हराकर 7th पोजीशन हासिल की इंडिया के लिए काफ़ी आई वुड नॉट से कि बहुत ही इम्प्रूव परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा बिकॉज इंडिया आर द रेनिंग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन द ओलंपिक्स सो 8th पोजीशन इज़ अ वेरी बैड रिजल्ट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और हॉकी इंडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं कि चेंजेस होनी चाहिए क्या क्या यू नो टेक्निकल फ्लॉज रहे हैं उसको देखना है और वहीं अगर इंडियन वीमेंस टीम की बात करूँ दे फिनिश्ड 5th और काफ़ी सालों के बाद काफ़ी है ना मोर देन 3 डेकेड्स के बाद इंडियन टीम हैज़ फिनिश्ड अ पोजिशन 5th पोजिशन इन वर्ल्ड कप हॉकी पर फुटबॉल में क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कतर स्टार्स लीग जारी है नाल साहब ने क्या धमाके के साथ अपना दूसरा हफ्ता भी इस मैच को जीता है इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एंड कतर स्टार्स लीग में ये मैच जो था 6-2 कतर स्पोर्ट्स क्लब के अगेंस्ट में अल सद की ये जीत हुई थी 6-2 की इस शानदार जीत एंड अल सद क्लब राइट नाउ आर लीडिंग द टेबल और वहीं अगर अल दोहेल की बात करूं अल दोहेल वर्सेस अल अरबी का मुकाबला जो है 1-1 गोल से ड्रॉ रहा हमेशा से हमने देखा है कि अल सद और अल दोहेल जो है बेसिकली राइवल क्लब्स हैं और अल सद को हमेशा अल दोहेल क्लब जो है हमेशा परेशान करने में आता है लेकिन यहाँ पर अल सद जो है फिलहाल पिछले सीजन में अल सद वाज़ द चैंपियन तो इस बार भी थोड़ा दोहेल को पीछे धकेल के रखा हुआ है वहीं कतर ने जॉर्डन में जारी एशियन मेंस अंडर 19 हैंडबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में पहुंचकर 2027 अंडर 19 वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कतर नेशनल अंडर 19 हैंडबॉल टीम और कतर ने क्वार्टर फाइनल में मेजबान जॉर्डन को 13 पॉइंट्स के मुकाबले में 33 पॉइंट्स से शिकस्त दी और कल ही दोहा में मुनक्किदा अंडर 17 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 के दूसरे एडिशन के फाइनल में फ्रांस को ईरान ने मात दी और ईरान बिकेम द चैंपियन ऑफ दिस इवेंट। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद क्यों ना हम इस अपडेट्स को और मजीद आगे बढ़ाएं, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले ये सवाल दोबारा नहीं तो मैंने बहुत बार दबाव मैंने रिपीट कर दिया, फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। किस भारतीय बॉलर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लेने का वो अचीवमेंट वो माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया था? ऑप्शन ए है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी है इरफान पठान और ऑप्शन सी है हरभजन सिंह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107 दिल से देसी।

अंदर में एकदम एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई तुम्हें जो करना है आप करो, अपना जो टैलेंट है वो दिखा दो। हर कोई चाहता है कप्तान ऐसे ही हो, यू नो, आपके टीम में ऐसा कप्तान मिलना बड़ा ही, यू नो, आप

एफपीआई में 236 मैचेस खेलने के बाद उन्होंने लिया 269। सो ही वाज अ बॉलर जो कि खेलना, उनको खेलना, उनके अगेंस्ट में बैटिंग करना वाज नामुमकिन। बेस्ट बॉलिंग अटैक, बेस्ट बॉलिंग अगर उनके परफॉर्मेंस है वो है 84 रन देकर 8 विकेट और ओडीआई में 31 रन देकर 5 विकेट्स। सो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने ये मैसेज किया एंड आने वाले में प्रोग्राम्स में भी आप लोग मैसेज करते रहिएगा। अभी फिलहाल मैं लेता हूँ इजाजत और हमेशा की तरह आप लोग स्पोर्टी रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी वक्त हो चला है
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी
1: यस तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है हफ्ते का नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो

चुका है 3-2-1 कहते ही हमारे एस्केप रूम में. वैसे तो आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है, कैसे हैं आप सब, कैसा गुजरा आपका वीकेंड. आई नो दिस इज अ वेरी वेरी, वो कहते ना क्लीशे क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना जब हफ्ता नया शुरू होता है. अगर आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी, है कि नहीं. तो कैसा गुजरा वीकेंड थोड़ा बताओ बताओ. 666-2-1-0-7 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. और आई नो कि ये सवाल हर किसी के दिल में होता है कि एक दूसरे से हम पूछते हैं कि कैसा रहा वीकेंड, तो हमारे लिसनर्स कहते हैं अमिता हमसे तो पूछ लेती हो, अपना बता दो. देखो भाई, मेरा जो वीकेंड है ना बड़ा सुकून में गया. मतलब अब गर्मियाँ बड़ी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर इन समर टाइम पे फैमिली टाइम ही जाता है. घर में मूवी आफ्टरनून्स हो जाते हैं, तो कभी मूवी नाइट्स हो जाती हैं, और खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं होता. तो यूँ सुकून में मैंने तो अपना वीकेंड बिताया है. आपने क्या किया है शेयर कर सकते हो. फिलहाल एस्केप रूम में देखो, वीकेंड जब होता है तो शोर शराबा लाजमी है, लेकिन हफ्ते का नया दिन हो और एस्केप रूम की सिचुएशन एकदम शांत हो जाए, मतलब आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई ना दे, तो ऐसे चैलेंज से आप कैसे बाहर निकलेंगे. यस, ये बड़ा चैलेंजिंग है जो कि कुछ ही देर में डिटेल में आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ. तो एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद एस्केप रूम की आज की सिचुएशन आपके सामने आने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड. हाँ, और अभी के लिए थोड़ा लूजन अप हो जाइए, जो भी आपको करना है थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि माइंड की एक्सरसाइज होगी बस कुछ ही देर के बाद. तो रेडी हो जाना है. नंबर नोट करें 666-2-1-0-7 666-2-1-0-7. इसके जरिए हमारी बातचीत चलने वाली है और आपकी एनर्जी लेवल्स को बरकरार रखने के लिए भाई ये गाना इट्स वन ऑफ माय फेवरेट. एंजॉय करें. स्टेडियम टू एफएम 107 दिल

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर।

0: 2026 आरजे फजील के साथ। रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन एफएम 107।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से दी।
3: Yes, my Desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और अभी हमारे एक लिसनर भाई हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं हमको, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपका ये जो टॉप 10 शो सुनकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है अभी लाइव। भाई अभी ये टॉप 10 नहीं है, ये है एस्केप रूम, और इंशाल्लाह इस हफ्ते से आप टॉप 10 अपनी ए फॉर अमिता की आवाज़ में भी सुनेंगे। लेकिन अभी कहाँ हैं हम, एस्केप रूम पर। देखो जब ये सीरियस म्यूजिक शुरू हो जाए ना, तो मतलब अब सोचने का समझने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब एक सिचुएशन में हम फंसने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी जहाँ कहीं भी हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की सिचुएशन ना मतलब एक अलग ही तरह का इसमें चैलेंज है। ठीक है, आपको आपकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देने वाली है। आज हमने कदम रखा है एक ऐसी दुनिया में जो कि सबसे अनसेटलिंग है। ये एक ऐसा कमरा है जिसे हम द साइलेंस चेंबर कहते हैं, एंड इस चेंबर में इसकी दीवारें अजीब से नुकीले फोम वेजेस से ढकी हुई है जो 99.9% साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ कोई एको नहीं सुनाई दे रहा, एसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बाहर का ट्रैफिक का शोर नहीं है। शुरुआत में तो ये बड़ा सुकून भरा लगता है कि वाह यार, मतलब कितनी सुकून की जगह में आ गए, अच्छी नींद आ जाएगी बिना किसी टेंशन के। बट जैसे जैसे आप इस कमरे में रहेंगे, जो कमरा बहुत बड़ा है, तो थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, घूमेंगे, तो ये सुकून भरा जो कमरा है ना, आपको लगेगा कि सुकून गुजर गया, अब खामोशी बहुत ज़्यादा भारी महसूस होने लगी है। अब जब बाहर की दुनिया का शोर ख़त्म हो जाता है, तो आपके कान अंदर की तरफ ना मुड़ जाते हैं, यानी आपको अपनी आवाज़, अंदरूनी आवाज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। आपकी सांसें, आपके फेफड़ों के फूलने की आवाज़, दिल की धड़कन, सब कुछ ऐसा लगता है कि आपके कानों में एक ड्रम की तरह बज रही है। यहाँ तक कि आपकी रगों में जो दौड़ता हुआ खून है ना, वो भी सुनाई दे सकता है। मतलब सोच रहे हैं आप, इतना ज़्यादा नाटा है। अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हमें उस चीज़ का सामना करना पड़ता है जिसे हम अक्सर भागते हैं, इनफैक्ट जिससे हम अक्सर भागते हैं, हमारा अपना इनर मोनोलॉग। यस, तो अगर हमें बाहर निकलना है तो इस खामोशी से डरना बंद करना होगा। वेल, ये जिस कमरे में आज द साइलेंस चेंबर में हम हैं, यहाँ पर 45 मिनट भी निकालना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर अपने अंदरूनी आवाज़ें सुनते रहे, और जब कुछ रहेगा ही नहीं, एकदम शांत रहेगा, तो ख्याल भी अलग अलग आएंगे, तो हम हेल्यूसिनेट करने लगेंगे बस। तो ये बैलेंस हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना होगा। यहाँ आप सिर्फ साइलेंस नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी बायोलॉजी सुन रहे हैं। इट्स अ रिमाइंडर कि हम कभी वाकई खामोश नहीं होते, है कि नहीं, हम जिंदा सांस लेती हुई मशीन्स हैं। तो जनाब, अभी वक्त है क्लू नंबर 1 को सॉल्व करने का, ताकि ये जो साइलेंस चेंबर है जहाँ हमको स्टार्टिंग में सुकून मिला, अब इतनी शांति है, इतना सन्नाटा है, कि अब ये हमारे लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। तो मेक श्योर करें कि हमें यहाँ से निकलना है। क्लू नंबर 1 आपकी राहों में ये रहा, मेरा अपना कोई वजूद या एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ का अक्स हूँ। ठीक है, पहाड़ों में मैं चिल्ला कर जवाब देता हूँ, मगर इस कमरे की दीवारें मुझे जिंदा निगल लेती हैं। बताओ मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ठीक है, तो 666-22-107, 666-22-107 इज़ आर नंबर, इस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दें। ये चीज़

कौन सी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं. क्लू नंबर वन हमें सॉल्व करना है. मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मैं सिर्फ आपकी आवाज का अक्स हूँ. पहाड़ों में मैं आपको चिल्ला कर जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इस कमरे की दीवारें मुझे जिंदा निकल ले रही हैं. क्या चीज हूं मैं? सोचे और मुझे जवाब दें. और अभी के लिए, सोचने के लिए, मैं आपको एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक दे देती हूँ. So B Prague, Hardy Sandhu का ग्रेट कॉम्बिनेशन है. चल इस गाने को एंजॉय करें और बने रहे हमारे साथ FM 107 पर दिल से देसी.

0: सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. एस्केप रूम की गलियों में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और आज हम ऐसी जगह पर कैद हैं जिसका नाम है द साइलेंस चेंबर. हाँ जी, यहाँ पर दीवारें इतनी मतलब मोटे फोम की बनी हुई हैं कि 99.9% जो साउंड है वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं. जहाँ पर हमको एसी की आवाज़ नहीं आ रही, ट्रैफिक का शोर नहीं हो रहा, कुछ भी हमें बाहर का सुनाई नहीं दे रहा, अब हमको अपनी अंदरूनी आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे दिल की धड़कन, खून का रश, एवरीथिंग ठीक है. यहाँ इतनी शांति में अपने आप को रखना जहाँ पर कोई है भी नहीं, अकेले हैं आप, और ये वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल है. तो यहाँ से निकलना है, नहीं तो हम अलग अलग ख्यालों की दुनिया में खो जाएंगे और वहीं गुम होके रह जाएंगे. सो क्लू नंबर वन, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ का अक्स हूँ. पहाड़ों में मैं चिल्लाकर आपको जवाब दे सकता हूँ, मगर इस कमरे की दीवारें मुझे ज़िंदा निगल लेती हैं, तो मैं क्या हूँ. आइए ज़रा हमारे लिसनर्स के जवाब देखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हमें क्या जवाब दिए हैं. सो कुछ लोग कह रहे हैं साउंड, कुछ ने कहा है एको, कुछ ने कहा है म्यूज़िक. ओके, चलिए सही जवाब की तरफ रुख करते हैं. तो सही जवाब इज एको, यानी कि गूंज. जोरदार तालियां हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की, पहला पड़ाव पार किया. आइए उनके नाम देखें. सो मोहम्मद आदि अफजल रियाद है. और भी हमारे लिसनर्स अभी मैसेजेस करते जा रहे हैं. देखिए आपने अब जवाब सुन लिया है. सोहेल ने हमको सही जवाब दिया है, अब्दुल्ला ने भी सही जवाब दिया है, और कौन हो सकता है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी, वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं, है कि नहीं. और कौन है हमारे साथ, आइए ज़रा. सादत अफरीदी का भी मैं जवाब शामिल करूँगी. आरिफ ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें. अनम एंड रूहान, ओ हो, ये हमारे प्यारे बच्चों की जोड़ी है, ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इन्होंने भी आज शामिल होकर एस्केप रूम में सही जवाब दिया. सो गुड जॉब गाइस, आप सब सही जवाब देकर बिल्कुल पहले पड़ाव को पार कर गए हैं. अब आप इस कमरे में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं. अब खामोशी आपके कानों में बज रही है, इट्स रिंगिंग. इतना मुश्किल क्यों हो जाता है चुप रहना, है ना. जब अपन इतनी बातें करते हैं और अगर कोई एकदम से कह दे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बड़ी मुश्किल होती है. हम अपनी पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. बस शांत होने से ना थोड़ा डर लगता है. जब सो जाते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन वैसे अगर अपने होशो आवास में है तो शांत रहना हर किसी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि नहीं. लेकिन अब क्या करें, आज की सिचुएशन द साइलेंट चेंबर में हम फंसे हैं और यही हमारा काम है कि नहीं. एक उदासी सी फील हो रही है हमको इस वक्त, लेकिन अगर दूसरी

तरफ देखें तो इट्स अ सुपर पावर, क्योंकि यहाँ आप खुद से मुलाकात कर सकते हैं. जब आप खुद को सुन सकते हैं तब वो वक्त बहुत डिफरेंट होता है कि नहीं. चलिए, क्लू नंबर टू आपकी राहों में आ रहा है ताकि आप इस कैद से बाहर निकल सके. अक्सर लोग मुझसे डरते हैं, ठीक है. क्लू नंबर टू, अक्सर लोग मुझसे डरते हैं और बातों के शोर में मुझे दबा देते हैं, लेकिन मैं ही वो जगह हूँ जहाँ आप वाकई अपने ख्यालों को सुन सकते हैं. ये जगह कौन सी है, ये चीज़ क्या है, जब आप अपने आप से मुलाकात कर सकते हैं, जब आप अपने आप को सुन सकते हैं, कैसी जगह है, क्या होता है, यह बताएं मुझे. 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दें. लेट मी सी आपका इमेजिनेशन क्या कहता है. अक्सर लोग मुझसे डरते हैं. देखिए, आज का पूरा जो एपिसोड है वो इसी से रिलेटेड है. अक्सर लोग मुझसे डरते हैं और बातों के शोर में मुझे दबा देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ही वो जगह हूँ जहाँ आप वाकई अपने ख्यालों को सुन सकते हैं. वो जगह कौन सी है, हमारे लिसनर्स ने मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए. आई थिंक कि आप सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन सबके इमेजिनेशंस अलग अलग जवाबों में आ रहे हैं. चलिए देखते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सटीक होगा. आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर. 666-22-107, 666-22-107 पर. और अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 2:01 यहाँ पर दो नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये वो वक्त होता है जब आप ये विश कर सकते हैं ये दुआ मांग सकते हैं कि आज के इस साइलेंस चेंबर से आप आज़ाद हो पाएं और सिर्फ अपने ही नहीं लेकिन और भी कई सारी आवाज़ों को जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करती हैं उसे सुन पाएं
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी
2: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम की सिचुएशन आज हम एक साइलेंस चेंबर के अंदर कैद हो गए भाई इतनी ज्यादा शांति है कि हमें घबराहट सी हो रही है कि अरे मतलब अपने सुन रहे हैं जो कि प्लस पॉइंट है लेकिन अगर बहुत लंबे वक्त तक अपने आप को ही सुनना पड़े और कोई शोरगुल ना हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा है कि नहीं सो क्लू नंबर वन हम सब ने मिलकर सॉल्व किया सही जवाब था एको गूंज ठीक है अब क्लू नंबर टू हमें सॉल्व करना था और वो ये था कि अक्सर लोग मुझसे डरते हैं और बातों के शोर में और अपनी बातों के शोर में मुझे दबा देते हैं लेकिन मैं ही वो जगह हूँ जहाँ आप वाकई अपने ख्यालों को सुन सकते हैं ये क्लू आपको सॉल्व करना था और हमारे जो लिसनर्स हैं अलग अलग जवाब दे रहे हैं कोई आईना कह रहा है मिरर कोई ख्वाब कह रहा है कोई अपना कमरा कह रहा है देखिए वैसे अगर कहा जाए तो ये जगहें हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं अपने आप को समझ सकते हैं लेकिन आज के सिनेरियो में ये जो क्लू नंबर टू है अक्सर लोग मुझसे डरते हैं क्या चीज़ है जो लोगों को डरा सकती है और बातों के शोर में मुझे दबा देते हैं तो यहाँ तो सिंपल हो जाता है कि वो चीज़ क्या है वो चीज़ है खामोशी साइलेंस है कि नहीं और यही वो जगह है जहाँ पर आप अपने ख्यालों को सुन सकते हैं तो जिन्होंने ये लिखा है भाई ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया क्या बात है आइए ज़रा देखें हमारे लिसनर्स जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की है अनम रूहान भाई टॉप पे चल रहे क्या बात है मोहम्मद आदि अफजल रियाद एब्सोल्युटली सही जवाब दिया है इन्होंने आरिफ ने भी सही जवाब दिया है ये जनाब का नाम क्या है मनदीप ओ वेरी गुड मनदीप ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है अब्दुल्ला ने सही जवाब दिया है सादत अफरीदी ने सही जवाब दिया है सो गुड जॉब गाइस आप सभी ने मिलकर ये दूसरे पड़ाव को भी पार कर लिया है अब इस कमरे के आगे अपने को क्या दिख रहा है एग्जिट हैंडल बिल्कुल आपके सामने आ गया है देखा दिस इज द मैजिक जब आप एक के बाद एक पड़ाव पार करते जाते हैं भले आप एक ही कमरे में कैद हों आपको सही जवाब और या यूं कहें आपको सही राह अपने आप दिख जाती है सो एग्जिट हैंडल बिल्कुल आपके सामने है लेकिन ये भाई लॉक है क्या करें अब बाहर तो निकलने के लिए कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा अब इसे खोलने के लिए आपको कोई पासवर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है तो क्या करना है इनफैक्ट अगर आप ज़ोर से चिल्लाएंगे तो ये दीवारें आपकी आवाज़ को निगल लेंगी तो ये लॉक आपके फोकस पर रिएक्ट करेगा ठीक है अब आपको फोकस करना है ये चाहता है कि आप अपने थॉट्स के बीच की वो खाली जगह पर ध्यान दें वो करें जो हम इस भागम भाग वाली दुनिया में भूल चुके हैं आइए ये आखिरी रुकावट को हम सॉल्व करते हैं क्लू नंबर थ्री की तरफ आगे बढ़ते हैं मैं वो हूँ जब आप अपने कानों से जो आप अपने कानों से करते हैं लेकिन दिल से भी करते हैं ओके की ढूंढने के लिए आपको बोलना बंद करके बस डैश करना होगा यानी कि इस ब्लैंक को आपको भरना है वो

शब्द क्या है, वो वर्ड क्या है जो आप अपने कानों से करते हैं. सोचें, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्लू. मतलब मुझे लगता है आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे. तो इस क्लू को एक बार फिर से दोहराऊंगी, ध्यान से सुने. ये कौन सी चीज़ है जो आप अपने कानों से, ईयर्स, अपने कानों से करते, ठीक है? और की आपको ढूंढनी है, क्योंकि आपको एग्जिट को अनलॉक करना है. आपको इस की को ढूंढने के लिए बोलना बंद करना होगा, बस डैश करना होगा. क्या करना होगा, सोचे. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो 666-22107, 666-22107 इज आवर नंबर. अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव पार करना है. एंड देन द साइलेंस चेंबर आपके लिए खुल जाएगा और आप दुनिया भर की आवाज़ों को सुन पाएंगे और अच्छा महसूस कर पाएंगे. तो इस आखिरी पड़ाव को पार कीजिए. और अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुख कर रहे हैं. Wow, what a happy song. इस गाने को सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना. Senorita is on your way. Stay tuned to FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। इस वक्त एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि भाई एकदम साइलेंट चेंबर में आ चुके हैं। मतलब हमें तो बातचीत करने की आदत है, अपनों से मतलब मिलने की आदत है, इतनी सारी मस्ती चीज़ें

नहीं की आदत है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमें सबसे दूर कर दिया गया है, एक साइलेंट चेंबर में डाल दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये चैलेंज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ से निकलने के लिए तीन क्लू सॉल्व करने हैं। पहला क्लू हमने सॉल्व किया, सही जवाब था एको, गूंज। दूसरा क्लू भी हमने सॉल्व कर लिया, सही जवाब था साइलेंस, खामोशी। और तीसरे क्लू पर हम भाई आकर अटक गए हैं। एग्जिट हैंडल बिल्कुल हमारे सामने है इस साइलेंस चेंबर का, लेकिन ये लॉक्ड है। जाहिर सी बात है अब इसकी कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि फिजिकल की नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको फोकस करना है अपने आप पर और ध्यान से क्लू नंबर 3 को सॉल्व करना। ये आखिरी रुकावट है हमारे यहाँ से बाहर निकलने की, एस्केप करने की, इसे हमें सुनकर सॉल्व करना है। तो मैं वो हूँ जो आप अपने कानों से करते हैं, अपने ईयर से करते हैं, ठीक है। मैं वो हूँ जो आप अपने कानों से करते हैं, और की इस एग्जिट डोर की ढूंढने के लिए आपको बोलना बंद करना होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलना है, बस डैश करना होगा। इस ब्लैंक को हमें फिल करना है एक शब्द से, एक वर्ड से। वो वर्ड क्या होगा, वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने कानों से करते हैं, सोचें। सही जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन, व्हाट्सएप स्क्रीन पर सबके इमेजिनेटिव आंसर्स आ रहे हैं और बहुत सारे जवाब गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आखिरी मौका है जो मैंने आपको दिया है, क्लू नंबर थ्री को ध्यान से सुने और इसे सॉल्व करें, ताकि आप यहाँ से बाहर निकल पाएं और अपनों से मिल पाएं, बातचीत कर पाएं, मतलब इतने साइलेंस वाले चेंबर में ना रहें, क्या कहते हो। सो क्लू नंबर 3 एक बार फिर से दोहराऊंगी, मैं वो हूँ जो आप अपने कानों से करते हैं। कौन सी चीज़ करते हैं अपने कानों से, सोचें। और ये एग्जिट डोर की ढूंढने के लिए बस हमको बोलना बंद करना है, टोटली साइलेंट होना है। बोलना बंद कीजिए और डैश करना होगा, तो इस ब्लैंक को फिल कीजिए। देखते हैं आज कितने लोग इस साइलेंस चेंबर से बाहर निकल पाते हैं। सो 666-22107 इस नंबर पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए, और मैं आपको देती हूँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. हमारे एस्केप रूम का आखिरी पड़ाव चल रहा है साइलेंस चेंबर में. आज हम फंस गए थे जनाब. हमें कोई आवाज, कोई शोर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सिवाय अपनी सांसों के. अपने इनर वॉइसेस सुनाई दे रही हैं. मुश्किल में तो है क्योंकि हमें यहाँ से निकलना ज़रूरी है. और हम वो कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, तो उनको इतने अकेले में रहना अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं. तो हमें एक एक करके क्लू सॉल्व करने थे. क्लू नंबर 1 हमने सॉल्व किया, सही जवाब था एको. क्लू नंबर 2 हमने सॉल्व किया, सही जवाब था साइलेंस. अब क्लू नंबर 3, हम एग्ज़िट गेट के सामने हैं. एग्ज़िट हैंडल अभी लॉक है और उसे खोलने के लिए हमें क्लू नंबर 3 सॉल्व करना है. अब क्लू नंबर 3 क्या था. मैं वो हूँ जो आप अपने कानों से करते हैं, ठीक है. और ये जो एग्ज़िट डोर है, इसकी की ढूंढने के लिए आपको बोलना बंद करके डैश करना होगा. तो सही जवाब क्या हो सकता है जनाब. सही जवाब है आपको सुनना होगा.

लिसन करना होगा. कुछ लोग ने हियरिंग तक लिखा है, क्योंकि जो आपके कान करते हैं वो सुनना, लिसनिंग, हियरिंग. हाँ, जिन्होंने भी ये सब लिखा है, बिल्कुल सही जवाब है. जोरदार तालियां हो जाए सबके.

वो है अनम रूहान, मोहम्मद यूसुफ खान, सादत अफरीदी, मंदीप ने हमें सही जवाब दिया है, अब्दुल्ला खान ने हमें सही जवाब दिया है, इशाक ने सही जवाब दिया है, असरफ ने भी हमें सही जवाब दिया है, अफजल है आदि, मोहम्मद रियाद ने भी सही जवाब दिया है. सो कंग्रेचुलेशन गाइज, आप सब यहाँ से बाहर निकल गए हैं. वेल, जैसे ही आपने सही जवाब दिया, ये जो आवाज़ अब आप सुनने वाले हैं, उफ, ये जो अब दरवाज़ा खुलता है, एक सुकून आपको मिला और आप बाहर निकल गए, क्या बात है. कभी कभी कहते हैं ना कि जब आप खुद खामोश रहते हैं और बाहर की आवाज़ें सुनते हैं तो आप और अच्छे से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और अच्छे से लोगों से बात कर पाते हैं. इससे भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, समझ रहे हैं आप. तो आज ये स्किल तो आपने सीख ही ली और ज़्यादा डेवलप कर ली, आई शुड से, है कि नहीं. चलिए इसी बात के साथ, आज के हमारे लकी विनर कौन है जिसे हम क्वाइट ऑब्जर्वर कहेंगे. भाई देखो, आज के हमारे जो लकी विनर है ना, बड़े क्यूट क्यूट से है और उनका नाम है अनम रूहान. जोरदार तालियां भाई ये दोनों डुएट के लिए. ये डुओ बड़े प्यारे बच्चे हैं और हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हैं और आज तो कमाल ही कर दिया, क्या बात है. और हमारे सारे लिसनर्स जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़े रहे और लगातार हमें जवाब देते रहे, भाई आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना एस्केप रूम की जान शान कुछ भी नहीं है, है कि नहीं. वेल, कल एक नया चैलेंज आएगा और उसके लिए आपको दोपहर 1:30 बजे हमारा एस्केप रूम सुनना पड़ेगा. और कल का एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड है सीज़न का, क्योंकि उसके बाद आपके लिए कुछ नया होने वाला है. सो कल का इंतजार कीजिए और फिलहाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के. अपनी आरजे अभी तक भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और जाने से पहले ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. तो क्या करना है, बस बने रहना हमारे साथ. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, आजकल हम अक्सर एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। न्यूज में, सोशल मीडिया पर, स्कूल्स में, हर जगह क्लाइमेट चेंज का जिक्र होता ही होता है। लेकिन भाई, सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? अच्छा, सिंपल अल्फाज में समझें तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के मौसम के पैटर्न्स जो होते हैं उनमें लंबी मुद्दत तक आने वाली तब्दीली। टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर, बारिश, हवा और सीजन्स के नॉर्मल पैटर्न में चेंजेस आना। तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज सिंपल एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज को आसान अल्फाज में समझाना। साथियों, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हमारी जमीन का क्लाइमेट हमेशा से थोड़ा चेंज होता रहा है, लेकिन आज जो चेंजेस देखे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह है, क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा होना। अच्छा, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आप कह लें, क्या कह लें, हाँ, ऑयल, गैस और कोल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लें कि ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, या आप कह लें फॉरेस्ट को काटते हैं, कम करते हैं, या

0: ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है भाई, उससे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अच्छा, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सॉल्यूशंस देती हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। पहली चीज तो ये कि एनर्जी स्मार्टली यूज करें, जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और अप्लायंसेस बंद करें। एनर्जी बचाना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। वेस्ट कम करें, चीजों को रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें या अननेसेसरी शॉपिंग से बचने की कोशिश करें। कम वेस्ट का मतलब है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। प्लांट और ग्रीन स्पेसेस को सपोर्ट करें। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। घर में पौधे लगाना या आप कह लें कि ग्रीनरी को सपोर्ट करना एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। चौथी चीज ये कि स्मार्ट ट्रेवल चॉइसेस करें, जहां मुमकिन हो वॉकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर्ड ट्रांसपोर्ट जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटा एफर्ट एनवायरमेंट के लिए बेहतर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस फैलाएं। क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखना और दूसरों को बताना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब लोग समझते हैं तभी लोग बेहतर डिसीजन भी लेते हैं। इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, सिंपल सी, तो क्लाइमेट चेंज को एक सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें, तो अगर एक कमरा पूरा बंद हो और उसमें हीट फंस जाए, ठीक है, पूरी तरह से कमरा बंद है, उसके अंदर हीट फंस जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म महसूस होना शुरू हो जाता है ना। हमारी जमीन के एटमोसफेयर में भी कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती है। ऐसी जब इन गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है तो टेम्परेचर और वेदर पैटर्न पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और टेम्परेचर चेंजेस देखे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है भाई। तो भाई लिसनर्स, हमारा आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आज अपने दिन की एक ऐसी एक्टिविटी सोचिए जहां आप एनवायरनमेंट के लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी सेव करना हो, वेस्ट कम करना हो या नेचर के करीब रहना हो। और हमें जरूर बताएं आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सबसे पहला और छोटा स्टेप क्या होना चाहिए। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, जमीन हमारा घर है और हर छोटी जिम्मेदारी इस घर को बेहतर बना सकती है। तो भाई, छोटी सी आदत डालें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे सोने से पहले शुक्र अदा करने के बारे में। दिन के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना एक बहुत खूबसूरत आदत है। चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो, हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं। शुक्र करने से दिल हल्का होता है और इंसान पॉजिटिव फील करता है। यह आदत हमें नेगेटिव सोच से दूर रखती है और जिंदगी के अच्छे पहलुओं को हाईलाइट करती है। सोने से पहले शुक्र करने से नींद भी पुरसुकून होती है, अगला दिन भी बेहतर फील होता है। ये सिर्फ एक मिनट का अमल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद करें और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
4: आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं ई गेमिंग पर। क्या वीडियो गेम्स मुस्तकबिल का स्पोर्ट्स बन चुके हैं या बन रहे हैं या पूरी तरह से बन जाएंगे? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और खास तौर पर यंग जनरेशन में तो बहुत ही पॉपुलर। ई गेमिंग या फिर ई स्पोर्ट्स, एक वक्त था जब वीडियो गेम्स को सिर्फ बच्चों का एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता था। पेरेंट्स अक्सर कहते थे कि गेम्स खेलकर वक्त जाया मत करो, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रोफेशनल प्लेयर्स, टीम्स, टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप सब कुछ मौजूद है। सवाल ये है कि क्या ई गेमिंग वाकई एक स्पोर्ट है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है? वेल, ई गेमिंग या ई स्पोर्ट से मुराद कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स है। यहाँ प्लेयर्स इंडिविजुअल या टीम की शक्ल में गेम्स खेलते हैं और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरह। यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, स्ट्रैटेजीज हैं, टीम वर्क की जरूरत होती है। आज देखा जाए तो दुनिया भर में गेम्स जैसे फुटबॉल सिमुलेशंस, रेसिंग गेम्स, बैटल गेम्स, स्ट्रैटेजी गेम्स कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेले जाते हैं। कुछ टूर्नामेंट्स को लाखों और कभी कभी मिलियन लोग ऑनलाइन देखते हैं। क्या गेमिंग सिर्फ और सिर्फ तफरी का जरिया है? बहुत से लोग समझते हैं कि गेमिंग सिर्फ टाइम पास है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत सी स्किल्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे फास्ट डिसीजन मेकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टीम कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। प्रोफेशनल गेमर्स अक्सर रोज कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल एथलीट्स की तरह। उन्हें भी प्रेशर हैंडल करना पड़ता है और टूर्नामेंट के लिए मेंटली तैयार होना पड़ता है। अब ई गेमिंग इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर प्लेयर किसी दूसरे मुल्क के प्लेयर के साथ कम्पीट कर सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने गेमिंग को और भी एक्सेसिबल बना दिया है। अब लोग सिर्फ गेम्स नहीं खेलते बल्कि दूसरों को गेम्स खेलते हुए भी देखते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम फुटबॉल या क्रिकेट मैचेस देखते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि ई गेमिंग सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत सी जॉब्स भी मौजूद हैं, जैसे गेम डेवलपर्स, कमेंटेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स, टीम मैनेजर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स। यानी अगर वे प्रोफेशनल गेमर ना बन पाए फिर भी गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बना सकता है। वैसे गेमिंग के फायदे भी हैं, आई मीन टू से ई गेमिंग के फायदे भी हैं। जी हाँ, गेमिंग अगर बैलेंस के साथ की जाए तो कई पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। प्लेयर्स टीम वर्क सीखते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, रिएक्शन स्पीड बेहतर होता है और कई गेम्स क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भी प्रमोट करते हैं। कुछ एजुकेशनल गेम्स लर्निंग को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वहीं इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। हर चीज की तरह गेमिंग के कुछ चैलेंजेस सामने आते ही हैं और एक बड़ा चैलेंज है एडिक्शन। हर कोई शख्स बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पर गुजार रहा है, उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो कम हो रही है। कुछ बच्चों के, कुछ गेमर्स के तो स्लीप रूटीन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये एडिक्शन बहुत बड़ा कंसर्न है। शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गेमिंग और रियल लाइफ के दरमियान बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे ई गेमिंग का फ्यूचर क्या होगा? मुस्तकबिल में ई गेमिंग और भी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेयर्स की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस एनालाइज करने में मदद देते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी गेमिंग स्कॉलरशिप्स ऑफर करने लगे। यू नेवर नो। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ई गेमिंग फ्यूचर का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बनेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ई गेमिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे।

0: ना ना ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही लेकिन हाँ मुमकिन है कि पॉपुलैरिटी ई स्पोर्ट्स की ज्यादा बढ़ जाए एक तरफ फुटबॉल और क्रिकेट हो और दूसरी तरफ डिजिटल स्टेडियम्स में सेम गेम जो है टूर्नामेंट्स चल रहे हो सकता क्या ऐसा ही होने वाला है लेकिन कुछ सवाल है जो हमें और आपको ढूंढने हैं क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गेमर बने क्या आपको ऐसा लगता है कि ई गेमिंग एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन बन सकता है अपने आप में बड़े दिलचस्प सवाल हैं पता नहीं शायद हम एज अ पेरेंट अगर इस सवाल का जवाब दें तो कुछ भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो है टेक्नोलॉजी जी हाँ टेक्नोलॉजी ने गेमिंग को एंटरटेनमेंट से निकाल कर प्रोफेशनल और ग्लोबल कॉम्पिटिशन बना दिया है अहम बात ये नहीं कि आप गेम खेलते हैं या नहीं आपका बच्चा गेम खेलना चाहता है कि नहीं अहम बात यह है कि हर चीज़ की तरह गेमिंग में भी बैलेंस हो डिसिप्लिन हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस फील्ड में फ्यूचर बनाना बुरा नहीं चलिए यहीं पर इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाज़त दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी

0: हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। डिस्टेंस छोटी मगर बहुत ही ताकतवर आदत है जो हमारी सेहत को हैरत अंगेज तौर पर बदल देती है। जी हाँ, हम यही बात करेंगे आज माइक्रो हैबिट्स पर, वो छोटी 30 सेकंड या एक मिनट की आदत जो सेहत पर बहुत ही अच्छा असर डालती हैं। ये आदत मुश्किल नहीं है मगर मुसलसल अपनाई जाए तो नींद, हमारा दिमाग, हमारा वजन और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा दिल सब बेहतर होते चले जाते हैं। अब ये कि जो माइक्रो हैबिट्स हैं वो हैं क्या और ये छोटे छोटे से अमल हैं, इनमें वक्त कम लगता है और लंबे प्लान की ज़रूरत नहीं होती मगर उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। मिसाल के तौर पर 30 सेकंड के लिए कुछ पानी पीना और 2 मिनट स्ट्रेचिंग करना, 1 मिनट डीप ब्रीदिंग करना, ये सब हमारे जिस्म के जो निज़ाम हैं या हमारा जो सिस्टम है उसको रीसेट करते हैं। इसी तरह से फिर यह कि सुबह उठकर एक गिलास नीम गर्म पानी लीजिए, वो हमारा जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें फ्लश आउट करता है और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह से 5 सेकंड आप इनहेल कीजिए और 5 सेकंड जो हैं उसे रोके रखिए और जब एक्सहेल करें तब भी आप 5 सेकंड जरूर लीजिए, उससे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ सही हो जाती है, ज़हनी दबाव कम होता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। खाने से पहले 30 सेकंड के लिए रुकना यानी ये ब्रेन को प्रिपेयर्ड करता सिग्नल देता है, ओवर ईटिंग कम करता है और जो शुगर की स्पाइक आती है उसे भी कम कर देता है। तो हर 30 से 40 मिनट के बाद 1 मिनट खड़े होकर चलना और जो मोबाइल फ़ोन है वो सोने से 40 मिनट पहले बंद कर दीजिए। और इसी तरह से नमकीन चीज़ों के बाद 2 जो सिप्स हैं वो आप इजाफी पानी ले लीजिए। हर 3 घंटे के बाद आप 12 बार डीप शोल्डर रोल्स जो है वो आप कीजिए। इन तमाम चीज़ों पर हमें फोकस करना है, छोटी छोटी सी आदत हैं मगर ये है कि हम अगर इसे अपनाएं, क्योंकि सेहत बदलने के लिए, सेहत को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे नहीं बल्कि छोटे छोटे आसान और रोज़मर्रा के जो माइक्रो स्टेप्स हैं वो हमें चाहिए। और अगर आप और हम आज से ही सिर्फ 3 माइक्रो हैबिट्स जो शुरू कर दें तो आप 4 हफ्तों में अपनी सेहत में बहुत ही वाज़े बेहतरी देखेंगे। Health for All,
0: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: हाँ भाई, क्या हाल चाल। 4:01 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: दिल से देसी। और क्या है हाल चाल भाई, कैसा रहा वीकेंड, कहाँ एंजॉय करा भाई साहब? जिंदगी तो तुम लोगों की सेट है भाई, है मजे ही मजे चल रहे। नहीं सच बताना, अब तो मौसम भी ठीक ठीक ओके ओके टाइप्स हो रहा है। कल शाम को बहुत दिनों बाद ऐसा कार से बाहर निकल के 10 मिनट के लिए मैं बाहर खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि हाँ यार नहीं बाहर निकल सकते हैं अपन वरना मेरे कदम जो है ना या तो घर पे या कार में या डायरेक्ट एसी पे।

बस इसके अलावा और इधर उधर मैं बहुत कम कर पा रहा हूँ, लेकिन ये तो बात है कि भाई गर्मी जो है वो अभी भी तेज ही है। बाकी धीरे धीरे इंशाल्लाह जो है वो गर्मी एकदम से खत्म हो जानी है। लेकिन हमारे FM 107 पे जो गानों की गर्मी है भाई, वो चलती रहेगी और तड़कती बड़कती चलती रहेगी बिल्कुल। और ये शो है द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने होते हैं, और जहां आपके अपने मर्जी के गाने तो जवान लोग गर्मजोशी से आते हैं और बताते हैं कि भाई उनके गाने कौन से होने वाले हैं। तो द रिक्वेस्ट शो में आपके अपने मर्जी के गाने होते हैं, लेकिन थीम के अकॉर्डिंग। हर रोज वीकडे में जब ये शो आता है शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक, तो आप दी हुई थीम से अपने मर्जी के गाने मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो गाना यहाँ पर प्ले होता है। नंबर होता है 666-22107, 666-22107। ये वो नंबर है जहां से आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मर्जी के गाने। और आज की थीम क्या है? आज की थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत लेट कर दिया, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ये आज की जो थीम है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है गुरु रंधावा के गाने। ऑल दो इनके गाने कहीं ना कहीं प्ले हो गए होंगे, बाई चांस ही सही, क्यों हुए होंगे, क्योंकि अलग अलग जैसे कि हाई बीट के गाने जब हमने चलाए या फिर रैप गाने हमने चलाए तब इनके गाने कहीं ना कहीं रहे होंगे, पंजाबी सॉन्ग हमने चलाए तो आपने रिक्वेस्ट किया तो चले होंगे इनके गाने भी, लेकिन स्पेसिफिक इनके गाने अभी तक नहीं प्ले हुए। तो आज हम गुरु रंधावा के गाने सुनेंगे FM 107 के इस शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अगर डेटा ऑन नहीं किया है तो डेटा ऑन कर लो, 666-22107 सेव नहीं किया है तो सेव कर लो, और आ जाओ व्हाट्सएप पे छलांग लगाते हुए, लंबी लंबी छलांगों के साथ रब्ता करते हैं। बाकी धीरे धीरे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं? इन्होंने रिक्वेस्ट भी कर लिया। यूसुफ भाई एकदम ऑन टॉप, इनको पता है कि करना क्या है, सलाम और रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ हो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहाँ सन्नाटा है यार, देखो आ गए, देखो लिखा है इन्होंने फुज भाई। अरे फजील नाम है भाई, आप तो फ्यूजी कर दिए हमको। गुलाम शरीफ साहब, शरीफ तो नहीं है आप। ओके आगे, सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम। किल्ला के दिल हार दिया, बहुत ही उम्दा गाने की रिक्वेस्ट कर लिए, क्या बात है सरफराज आलम। ओके तो सरफराज भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना भी चलेगा। फिर रमेश भाई ने कहा है नच नच मेरी रानी, ओहो क्या मतलब, शौकीन तो हैं लोग, मतलब ऐसा नहीं है। अरे मेरा मतलब गाने के शौकीन तो हैं लोग, आप कुछ और समझ, मतलब देखिए आप इधर उधर मत निकला करो, ठीक है? कोड़े वाला बाबा हमें इस पर भी मार देगा फिर किसी दिन। बाकी लोगों का मैसेज है, आरिफ अंसारी कहते हैं सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, जग गुमिया तेरे जैसा कोई नहीं। अरे मेरा भाई, पता है मेरा खून कम क्यों हो रहा है? कल डॉक्टर को दिखाया तो उनने कहा है कि आपका खून 3 अलग अलग वजहों से कम हो रहा है। मैं कहा अच्छा तो पहली वजह कौन है? उनने बताया पहली वजह तो वो शख्स है जो आपसे कहता है हर रोज के भाई जग घूमिया प्ले कर दो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा दूसरा क्या है? ये दूसरे वो लोग हैं जो थीम से हट के गाने की रिक्वेस्ट करते हैं, उससे आपका खून खोलता है तो खून जो है आपका कम हो गया है। मैं कहा चल ठीक है। कह तीसरा, कह रहे तीसरा नहीं बता सकते। मैं क्यों तीसरा नहीं बता सकते? कहने देखिए तीसरी वजह मैं आपको नहीं बता सकता, आप मानिए आपका खून कम हो रहा है, लेकिन बस 2 वजह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो 2 वजह सुधार लीजिए। मैंने कहा नहीं तीसरा बताओ। तो उन्होंने कहा तीसरा नहीं बताएंगे, जो करना है आप कर लीजिए। मैंने कहा अरे ऐसी क्या बात हो गई? तो कहने लगे अरे आपकी घर वाली बगल में है। मैंने कहा ए जवान संभाल के बात करना। तो कह रहा था हम बहुत देर से संभाल ले जवान, आप हमने आप पीछे ही पड़े हुए थे, संभालने नहीं दिया आपने। तो उनने पूरी बात नहीं बताई, तीसरी वजह अभी भी नहीं बताई है पूरी। तो हमने कहा हो कि कोई प्राइवेट बात अपना नहीं बता रहा तीसरी वजह खून खोल के कम होने की, तो ठीक है। बाकी आरिफ भाई, थीम से हटकर मैं गाना जो है नहीं प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि सामने जो है कोड़े वाले शख्स जो है हमारे बैठे रहते हैं, ठीक है? हमें क्यों कुटवाना भाई आपको, कोड़ा लेकर बैठा हुआ। मुमताज़ भाई ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फजल भाई कल गोविंदा की थीम क्योंकि

कि आपका लास्ट शो है कल. हाँ कल लास्ट शो होगा, ऐसा मत सोचना अरे फजील भाई जा रहे हो बड़ी याद आएगी कफन यहीं पर या उधर, नहीं ऐसा कुछ नहीं इधर ही लेकिन अपन शाम को 1 बजे सॉरी शाम को 1 तारीख से शाम को 6 से 7 मिलूंगा अनप्लग्ड इवनिंग के शो में, जहां पर हमारा और आपका रब्ता होगा, कॉल पर बातें होंगी, सारी दुनिया की चीज़ें होंगी. ठीक है, बाकी मुमताज़ भाई सलाम अलैकुम. जो कल की थीम है वो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया, वो देखेंगे कुछ देर में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम भाई, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ. हीरू साहब आप सुनाएं कैसे हैं? बाकी बस खून जो है वो जल रहा है, देखी जाएगी. बिजली भाई गुरु शाकिब या साकिब, साकिब मुगल इनका नाम है. ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल गाने की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, क्योंकि फिर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. यूसुफ भाई ने कहा इन्नी सोनी गाना है किसका? गुरु रंधावा नहीं हुए तो फिर हैं, गुरु रंधावा हैं, बच गए भाई, साहू मूवी का ट्रैक है. तो सबसे पहले और सबसे सटीक वक्त पे रिक्वेस्ट किया था यूसुफ भाई ने, इनके गाने अपन जो है वो प्ले कर रहे हैं. फिर उसके बाद सरफराज ने कहा था कि लग दी लाहौर दिया, लाहौर दिया, ये गाना भी अपन जो है गुरु रंधावा तुलसी कुमार का ये गाना 2020 में एक मूवी आई थी स्ट्रीट डांसर, उसका है ये गाना. दूसरे नंबर पे हमारे पास ये भी तैयार हो गया. कोई हल्के हाथ से ना गोरिए कह देता तो मैं प्ले कर देता. खैर आप आपकी रिक्वेस्ट के आगे अपन नहीं जा सकते. नाच नाच मेरी रानी, अच्छा ये वाला गाना देखो मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि अलग नाम से होगा, लेकिन फिलहाल इन्नी सोनी से तो शुरू करते हैं और फिर आप रिक्वेस्ट करते रहिए. नंबर 8666221107.

0: हाय हाय, ये होता है भाई। गाना तो असल में ये है, बहुत बहुत थोड़ा लेट कर दिया, दिल लगा दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, देर आए दुरुस्त है यार।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, दिल से देसी FM 107, 4:21 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, बाकी के 3 गाने तैयार बैठे हैं हम। और सबसे पहला गाना आ रहा है नेहा कक्कड़, गुरु रंधावा, तनिष्क बागची और पंजाबी MC। ये गाना है मोरनी बन के, मोरनी बन गए। ये गाना रिक्वेस्ट किया है मोहम्मद अशफाक साहब ने, तो ये गाना। और उसके बाद गाना है पटोला, और दिलबर अली ने इस गाने की रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा क्यों नहीं। इन्होंने एक्चुअली लिखा कुछ और है, इसकी लिरिक्स जो है ना वो लिख दिया है, और फिर हाई रेटेड गबरू, ये गबरू गाना सुनना चाहता है रिजवान साहब। तो इन तीनों की रिक्वेस्ट अपने पास तैयार है, और रिजवान ने जब ये रिक्वेस्ट करी है तो मैंने पहले थोड़ी देर में मेरे को समझ में आया कि अच्छा, हाई रेटेड गबरू ये वाला भी कर्रा वाला गाना है। लेकिन इसके दो गाने, एक 2018 नवाबजादे में ये गाना था, और एक गाना इंडियन पॉप है 2017 का है, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा नवाबजादे वाला भी अच्छा है, लेकिन इंडियन पॉप थोड़ा मस्त मज़ेदार वाला है, अच्छे बीट्स हैं उसमें। और जब बीट्स के बारे में बात ही हो रही है, तो क्यों ना ये गाना ही।

0: हाइड्रेटेड गबरू का इंडियन पॉप वर्जन। बाकी फिर अभी अभी डॉक्टर ने कहा यार, अभी उन्होंने जब कल रिपोर्ट ले रहे थे ना मेरी, वो क्या आपका फजील साहब खून क्यों कम हो रहा है ना, तो हीमोग्लोबिन कम आया भाई साहब, और उसमें एक और वजह बताई है फाइनली उन्होंने, कहा तीन वजह, एक तो वो बताए नहीं, तीसरा वाला भी बता दिया। कहते हैं कि एक्चुअली में आपको कोई ये भी कह रहा है क्या कि तो फिर ये गाना प्ले करने को, मैं कहा हाँ ये वाले भी रिक्वेस्ट आते हैं, तो कह रहे नहीं वो थीम से हट के जब जब आपके पास आएगा और एक कोई गाने के पीछे ही पड़ जाएगा जग घूमिया के, तो होगा भाई आपके खून कम होंगे, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, बशारत साहब थीम से हट के मत प्ले करवाओ मेरा भाई, आप क्यों ऐसा मेरी लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं, मेरे हेमोग्लोबिन के पीछे पड़े हुए हैं, बख्श दो भाई। बाकी आगे बढ़ते हैं मैसेज की तरफ। और सलाम वालेकुम अस्सलाम, आई विल मिस यू फजील। अरे मिस यू अरे यार ऐसा कह रहे जैसे कि फजील भाई आप चले जाएंगे, बड़ा तकलीफ हो वापस लौट के जरूर आएंगे फजील भाई। भाई अपन यहीं पर रहेंगे, बस थोड़ा दो घंटों का फर्क होगा यार, चार से पांच नहीं छह से सात मिल लेंगे यार, ऐसा क्या चलो एक काम करना तुम 4 बजे सलाम ही कर लेना, मैं कहूँ फजील भाई आपको मिस कर रहे हैं अल्लाह हाफिज, ये कर लेना। वैसे अमीता रहेगी यार, द रिक्वेस्ट शो आपका कहीं नहीं जा रहा है, ये तो आपका यहीं पर रहेगा। हुसैन भाई ने कहा है सलाम वालेकुम भाई, मेड इन इंडिया लगा दी है ब्रांडेड तेरे कपड़े हैं, ये भी गाना है, हाय अल्लाह कौन कौन सा गाना बना दिया लेकिन ठीक है ये वाला भी अपन ढूंढेंगे, तलाशी जो है वो हमारी जारी रहेगी, उसके बाद हम देखते हैं। डांस मेरी रानी एमडी हुसैन साहब हो गई, ये वाला एक्चुअली में है वो नाच, लेकिन ठीक है ये दूसरे वाले मोहम्मद हुसैन। फिर लड़की ब्यूटीफुल कुछ दिन पहले, तो यार ये वाला हो गया है तो इसके पीछे अपन नहीं भागेंगे। आसिफ भाई ने कहा सलाम फजील भाई क्या हाल है, लगाओ 440 यार। इनने एक और बात कही डॉक्टर ने, कहा आसिफ से दूर रहना आसिफ कभी भी थीम पर नहीं रहता है ना उन्होंने कहा कि ब्लॉक का ऑप्शन है क्या, उन्होंने कहा है तो, लेकिन फिर वो कोड़े वाला आदमी बैठा रहता है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर छोड़ो भाई इग्नोर, देखो एक ऑप्शन होता है, मैं हाँ ये वाला है ठीक है। फिर एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, मर्जी सॉन्ग, मर्जी ये गाना गुरु रंधावा ने अगर गाया होगा तो बिल्कुल प्ले कर दिया जाएगा दोस्त। बाकी अब हम तीन गाने की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहला आ रहा है नेहा और गुरु रंधावा का गाया हुआ ये लाजवाब ट्रैक,
1: मरनी बनके

0: बनके।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

गुरु रंधावा की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पे हबीबी। फिलहाल 4:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आ गया है गुरु रंधावा के उन गानों को पहचानने का जिनके आप फैन हैं। इस वक्त मेरे साथ 3 गाने तैयार हैं। इन 3 गानों को मैं एक एक करके प्ले करूंगा और आपको गाने का नाम बताना है। पहचान कौन में, नए लोगों के लिए पहचान कौन में होता ऐसा है कि मैं गाना कहीं से भी प्ले कर देता हूं और उस लिरिक्स को सुनने के बाद आपको अपना दिमाग चलाना होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना होता है और आपको बताना होता है कि गाने का असली नाम क्या है, या फिर हुक अगर आपको याद आ रहा हो तो आप हुक भी बता सकते हैं। नंबर है 666-22-107 जहां पर आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल सबसे पहला जो गाना आ रहा है, अच्छा आज के गेम की सबसे अहम बात यही है कि ये गाने बड़े फेमस हैं, लेकिन क्योंकि गुरु रंधावा के एक धमी नए जमाने के गाने और जो हमें सुनने वाले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पुराने गानों के ज़्यादा बड़े फैन हैं। थोड़ा टफ ज़रूर होगा, लेकिन लेट्स सी कितना आपको असल में याद है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो आप लोगों ने लगातार भर के की है। पहला गाना जो आ रहा है वो है ये।

हाँ जी, गाने का नाम बताओ। ये गाया है गुरु रंधावा, और एक और शख्स है उनका नाम बता देंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कम गाने गुरु रंधावा के साथ गाए हैं। नाम बताइए। 666-22-107 666-22-107 यहाँ पर आके आप बता सकते हैं। वेल, कुछ लोगों का जवाब आना शुरू हो गया, जिसमें माशूक भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, गगन ने सही जवाब दिया है, और नाम है स्वप्निल साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। और फिर इनका नाम क्या है, हैशाम साहब ने भी सही जवाब दिया है। लेकिन रैंकिंग की अगर बात करें तो इतने गलत जवाब हैं इसमें कि कहीं मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि पहले गलत, फिर सही, फिर गलत, फिर सही, तो उसमें मिस हो जा रहा कहीं ना कहीं। लेकिन ठीक है, ये जो हमें मिले हैं फलक एसआर के, उन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया, उसके बाद वो लोग थे। ठीक है, मैंने ऊपर से पढ़ना शुरू कर दिया था। फैयाज़ भाई ने भी बहुत धीमे धीमे जवाब दिया है, फिर यूसुफ भाई ने भी सही जवाब दिया है, हिशाम साहब ने सही जवाब दिया है और कह रहे हैं मुझे लगा ही था। ओ ठीक है, आसिफ भाई आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं तो कह लें। फैयाज़ कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉमेडी करते। अरे हाँ भाई, मेरा काम है कॉमेडी करना ये कौन सी बात है ये आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं साहब, हमारे घर पे भी आके हंसा दो थोड़ा, ये तो बात नहीं हुई, लेकिन ठीक है। फिर एक और एक मैसेज है दिलबर साहब का, और बिल्कुल सही जवाब बताया है इन्होंने, और कहा है मार दिया श्याम के रख दो। गाना आपने सही बताया, उसके बाद जो लिखी है अच्छी कॉमेडी है वो भी

0: हाँ जी, गुरु रंधावा पिटबुल का गाया हुआ असल में गाना है। अरे फंसारी, ये डूब गया गाना नहीं है। अगर ये डूब गया गाना होता तो आप नहीं डूबे होते, लेकिन आप डूब गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम महवेश, डियर फैमिली शो ऑन होगा यार। ये तो अभी आप 1 सितंबर तक तो रुक जाओ यार, कल का दिन और है, कल बर्दाश्त कर लो फिर उसके बाद पता चल जाएगा। काका का कोई सॉन्ग चला दो। काका कौन है भाई जो गाना गाए चले जा रहे हैं? गुड इवनिंग भाई ओएस सलमान, गुड इवनिंग मेरा भाई, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। अब्दुल्ला कहते हैं एक गाना सुना दो, ओ सनम ओ सनम। अरे यहाँ कोड़े वाला आदमी बैठा हुआ है भाई, वो मेरे पीठ पे निशान बना देगा यार, मेरे पीठ पे ओ सनम बना रहेगा, समझ में आ रहा है? अगर हमने गाना प्ले कर दिया, बॉबी देओल जो है गाना बॉबी देओल का सुनना चाहते हैं। अब्दुल्ला भाई आपका सबसे, ऐसा लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि थोड़ा अगला आदमी कुटे पिटे तो मजा आए, दूसरे गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा गाना भाई समझो, हल्लू वाले हाथ से अपने कान से काम लो।
1: मोटी मोटी अख तेरी कर दी सवाल, टेढ़ा टेढ़ा तके हुई जांदा बुरा हाल, कच दा शरीर तेरा करदा कमाल, जे तू माइनर कर दे
0: बस इसके बाद भाई, इसके बाद नहीं भैया, इसी के बाद तो मेन लाइन है मेरे को चिल्लाना पड़ता, डर लगता कहीं इसके बाद ना हो जाए। इसे गाया है गुरु रंधावा, हनी सिंह, नेहा कक्कड़ ने और जसल सिंह भी हैं इसमें। लेकिन गाने का नाम बताओ एक बार फिर से सुन लो।
1: मोटी मोटी अख तेरी कर दी सवाल, टेढ़ा टेढ़ा तके हुई जांदा बुरा हाल, कच दा शरीर तेरा करदा कमाल, जे तू माइंड ना कर।
0: बस बस नहीं, नहीं माइंड कर रहा, कोई नहीं माइंड कर रहा भाजी, आप गुरु भाई निकल जाते हैं। लेकिन इसमें पहली रैंकिंग पे आ गए हैं एक बार फिर से फलक एसआर के, और दूसरी रैंकिंग आसिफ भाई अजीब बात कुछ कहा है, दूसरे नंबर पे है हिशाम भाई बहुत ही उम्दा, और तीसरे नंबर पे हैं सचनी सोहनी लगदी, ना भाई ना ये गाना नहीं है यूसुफ भाई। अभी हमें दूसरी रैंकिंग मिल गई है, और गलत जवाब के साथ फैयाज भाई आए हैं, बहुत ही बड़े लेवल का गलत जवाब है। दो सही जवाब, ओके बिल्कुल सही जवाब है भाई, और फाइनली जो है मोहसिन, हाँ पिछला भाई मोहसिन सॉरी, आपने उस वक्त भी सही टाइमिंग पे जवाब दी थी, मैं आपका मैसेज भूल गया, लेकिन मोहसिन ने भी सही जवाब दिया। तो पहले नंबर पे हैं फलक, दूसरे नंबर पे हैं हिशाम, तीसरे पे मोहसिन, ठीक है। अभी तीसरा सॉन्ग आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये वाला सॉन्ग तो बता दे कौन सा है ये सॉन्ग।

इसी लाइन के बाद था भैया, तो हमने कहा कि हल्लू हल्लू आओ। चलो तीसरा गाना आ रहा है, और तीसरा गाना अगर आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा परफेक्ट आदमी है पहले रैंकिंग या दूसरे रैंकिंग या तीसरे रैंकिंग में आने के लिए। गाना पहचानो, नंबर है 666-221-07।

बस पाजी इसकी आगे नहीं गाना, बताओ गाने का नाम क्या है। 666-22107, 666-22107। एक बार फिर से अगर सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, बड़ा ही, नहीं वो लफ्ज बोल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा फेमस

कुछ ऐसा होता है ना कि लिरिक्स नहीं पता है लेकिन मजा आ रहा है, ये वही वाला गाना है दोस्तों, बताओ 666-2107। और एक मैसेज है, फैजल साहब का हाई लिखा है, फलक एसआर के पहली रैंकिंग पे आते हुए बहुत ही उम्दा हुसैन भाई, अभी तो अब तो जागे हैं हुसैन साहब, बहुत देर में जागे हैं, लेकिन ठीक है बिल्कुल सही जवाब बताया। और माज कह रहे हैं पहली बार सुना है बस भाई, मैं तो कह रहा हूँ गाने का शौक नहीं है फिर आपको, मुझे लग रहा है वैसे गाने का शौक है इनको, ऐसा भी नहीं है तभी तो FM 107 सुन रहे हैं। फिलहाल हिशाम भाई ने दूसरी रैंकिंग हासिल कर ली है, बहुत ही उम्दा हिट सॉन्ग है, फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही है, ये मैंने पढ़ लिया, अब डिलीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूसुफ भाई, बोतलें जो तोड़ दिए ये कौन सा गाना गाया था भाई, गुरु भाई ये सब गाने गा रहे हो क्या? दिलबर अली ने ये गलत जवाब दिया है और एहसान ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन बाकी के सही जवाब नहीं है। और फाइनली एक और जवाब आया है, सर के ऊपर से गया पहले लिखा लेकिन उसके बाद सही जवाब दिया फैयाज साहब ने, और फिर उसके बाद यूसुफ भाई ने सॉरी लिखा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमारे पास सिर्फ रैंकिंग आज तीसरी रैंकिंग आई नहीं क्या यार, मैंने तो शुरुआत में ही बता दिया था अगर आपने इस गाने को पहचान लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप गानों को लेकर परफेक्ट है, गाने का नाम भी परफेक्ट है। आपकी गाने की लिस्ट परफेक्ट है, गाने का नाम है परफेक्ट, जिसे गाया है गुरु।

टोटल यू नो तीन महीने से ये शो चल रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है भाई कि दो लोगों ने रैंकिंग हासिल करी हो, सिर्फ दो लोगों ने रैंकिंग हासिल करी है, फलक एसआर के और है शाम, क्योंकि आपने तीसरा गाना पहचाना ही नहीं, और तीन के तीन गाने सही होंगे तभी रैंकिंग आएगी, और बाकी जो लोगों ने पहचाना है उसमें बस दो गाने फिर छोड़ दिए, फिर किसी ने एक गाना छोड़ दिया नहीं पहचान पाए। गाने का नाम बिल्कुल सही है, परफेक्ट। एक और भाई ने जवाब दिया है, सर तो ये पता नहीं क्या लिखा है। ओके, तो भाई मैंने कहा ना, मुझे लगा ही था कि आज बहुत कम रैंकिंग में आएंगे लोग। हाँ यार आसिफ भाई यही हुआ, यही प्ले कर दीजिए। अब पहले नंबर के रैंकिंग वाले शख्स ने कहा है इस गाने को प्ले करने को, तो परफेक्ट ही गाना मैं प्ले कर रहा हूँ एफ एम 107 पे, और मेरा जाने का यहाँ से कल्टी मारने का वक्त भी आ गया है, तो अल्लाह हाफिज। फलक एस आरके ने कहा इस गाने को प्ले करने को, और इसी के साथ मेरा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, और आप करें एंजॉय शाम को इस गाने के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गाने के साथ, दिल से।

0: FM 106 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: ओके क्लास एवरीबडी, एवरीबडी स्टे साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। आज प्रोफेसर साहब का बर्थडे है इसलिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी एवरीबडी। ओके सब मजे करेंगे, अपने अपने व्हाट्सएप निकालो और 666-22107 पे भेज दो। बड़ी अच्छी क्लास है माशाल्लाह, माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, नजर लगी माशाल्लाह।

0: शाबाशी देने के लिए मेरे पास शुरुआत से ही कॉल आना शुरू हो चुके भाई तो मैंने कॉल लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: शाबाश माद बच्ची, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मेरी जान के टोटे।
1: इस वक्त सीन ये है कि हम होम मिनिस्टर के साथ निकले

0: अच्छा ओके
1: वालेकुम
0: अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच मालिक, इनका ख्याल रखिएगा, बहुत मासूम हैं ये, इधर उधर भटक जाते हैं थोड़े से लेकिन है बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: थैंक यू कबीर भाई, थैंक यू।
0: शरारत मत करना ठीक है बेटे।
1: तो अभी कड़क ले रहे हैं घास में और रेडी हो रहे हैं स्टोरी सुनने के लिए।
0: थैंक यू सो मच भाई, मैं बाकियों को बात बता दूं, ये माज भाई वही हैं जो हर किसी चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं, इनसे कोई बहस नहीं, इनके पास तमाम लोगों के खिलाफ सबूत है।
1: आपकी इत्तला के लिए कसम हाँ। खुदा की आज मैं लिख कर आया हूँ
0: हाँ।
1: कि आज कबीर का बर्थडे है, उसको विश करना है।
0: अरे भाई साहब भाई साहब आज मैंने माज भाई को बोला मैंने जासूसी कंपनी को शुरू कर लो भाई, लेकिन माज भाई इज अ स्वीट हार्ट, शुरुआत से माज भाई जुड़े हुए, माज भाई ने मेरा बहुत साथ दिया, माज भाई को बहुत सारा प्यार, आई होप भाभी बुरा ना माने, बहुत सारा प्यार, हमारा प्यार अलग है, भाईचारा ऑन टॉप ब्रो। अरे क्या तभी आवाज में, थैंक यू भाई, ओके मेरा भाई, डन है भाई, बस पार्टी वार्टी के सीन बता देंगे, पहले कहानी सुनो, कहानी सुन के जाना आज, ठीक है मेरा भाई, डन डन डन डन, ओके मेरा भाई। तो माज भाई एक बात कुछ मैसेज पढ़ते जिसे क्या नाम है साहब का, मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम, जजाकल्लाह बहुत शुक्रिया, आरिफ अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम, और वैसे हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, जो भी लोग विशेस दे रहे हैं थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल करीम भाई थैंक यू, इनके बाद उस्मान बिन शफीक भाई का मैसेज है, अशफाक भाई का मैसेज है, मोहम्मद भाई का मैसेज है, आप सबको बहुत बहुत सारा प्यार, और मलिक वकार साहब लिख रहे हैं वेलकम टू अनदर ब्लेसिंग वीक, बाकी थर्सडे वाली स्टोरी में जॉन मैकेफी को कोई का दूसरा नाम नहीं था, अच्छा थैंक यू सो मच भाई, जजाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ओवेज भाई लिखते हैं सलाम भाई, चार मिनट में इतनी एनर्जी माशाल्लाह, भाई को बहुत सारा प्यार क्या, और उसामा नॉट उस्मान, सॉरी सॉरी यार, एक तो मैं बड़ा कन्फ्यूज होता हूँ भाई, आई एम रियली सॉरी, उस्मान और उसामा दोनों मेरे करीबी हैं इसलिए दिक्कत हो जाती है, उसामा बिन शफीक भाई बहुत सारा प्यार उसामा भाई को, गाबा जी क्या हाल है भाई के, और मैसेज आया कबीर भाई और भाई ने दिल लगाया है भाई, थैंक यू सो मच, ये एहतशाम अब्बासी भाई का मैसेज है, थैंक यू सो मच भाई, फिर हाय ब्रो ये मैसेज क्या है, उस्मान, ये तो उस्मान ही है ना, हाँ ये उस्मान है, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी गलती हो जाती, और वालेकुम अस्सलाम ये क्या नाम है इनका, मोहम्मद आसिफ भाई, थैंक यू सो मच नियाज भाई, जजाकल्लाह बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई कह रहे हैं हम भी वो जो तुम्हारा शो सुनने आते हैं, वरना FM ऐसा मत किया करो यार, कह रहे हैं उड़ता परिंदा है तो दिखला दे जिंदा है तू, कर हर मैदान फतेह, इनका कुछ करो, मुझे कोई दिक्कत लग रही है, आसिफ भाई सब ठीक है, अरे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, ईश्वर करे भाई साहब आपका ये साल ढेर सारी खुशियाँ, अच्छी सेहत और कामयाबी लिख रहा है, आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच भाई। और फयाज भाई वालेकुम अस्सलाम, जजाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन भाई बहुत सारा प्यार क्या, थैंक यू। एंड नावी भाई थैंक यू भाई। और हमजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हीरू भाई, तौखीर अहमद भट्ट साहब, वकील साहब, हिशाम साहब, और ये मैसेज किया मुबशर मुबीन भाई ने, थैंक यू। करीम भाई, वकास भाई, मकसूद भाई, थैंक यू सो मच। बाकी मैसेज कुछ देर में पढ़ता हूँ मैं, क्या क्या फ्लो पकड़ा भाई, इंट्रो फिर से बजा, फिर मेरे भाई के लिए इंट्रो नहीं बजेगा तो कैसे भाई। नावी भाई

0: ये था भाई इंट्रो. थैंक यू सो मच मुगल भाई और नावी भाई, थैंक यू सो मच. और खादिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी सारे मैसेज गुजरने पड़ेंगे इंशाल्लाह 11 मिनट 2 सेकंड के बाद सीधा कहानी पे जंप करेंगे. बिकॉज आज की कहानी के बारे में इतना बताना चाहता हूँ आपको, ये कहानी इज समथिंग एल्स ब्रो. मतलब मैं आपको ये कहानी बहुत अलग तरीके से सुनाने वाला हूँ. बिकॉज इट्स माई बर्थडे तो मेरा बनता है कि आज की कहानी मैं अलग तरीके से सुनाऊँ. तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. ज़्यादा लंबी नहीं है बट ये कहानी बस भाई हिला के रख देगी. चाय आप साइड में रख के बोलोगे ये क्या था. 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलते हैं. जाना आपने है नहीं, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. एंड मैं कह रहा था स्टे ट्यून्ड. ठीक है, जाना नहीं, सबसे बढ़िया जगह पर हो आप. हाँ
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर.

तो तैयार हो जाइए कुछ अलग सुनने के लिए, ठीक है। मैं ज़रा सबसे पहले रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ, और जो लोग लाइव सुन रहे हैं प्लीज़ लाइव आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें बर्थडे स्पेशल कहानी है, नहीं, नथिंग लाइक दैट। ये कहानी पहले से तैयार थी, इट्स जस्ट दैट आज का दिन मिला तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है, एफएम 7 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा, लेकिन जो आज का किस्सा है ये भी सच है कि ये एकदम कमाल का है और बहुत ही अलग तरीके से मैं इसको सुनाने वाला हूँ। सो बी रेडी, वॉल्यूम ज़रा बढ़ा ली जाए। तो जी मैं दोहा वाला कबीर एफएम 7 पे, और जो आज का किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं एयर आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले जरा उस शख्स के बारे में जिक्र करूंगा जो एक जगह पर है, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो अप्रैल की एक तारीख थी और एक बंदा था कई सालों पहले, उसकी अचानक से एक जगह पर आंख खुली, और जब उसकी आंख खुली तो उसका सर एकदम घुमा हुआ था, मतलब जैसे किसी बेहोशी से जागा हो। यह महज 18 साल का था, ऑस्ट्रिया का बंदा था, ऑस्ट्रिया में रहने वाला, और उसका नाम था एंड्रियास मिहाविच। तो एंड्रियास जो था, उसकी जब आंख खुली तो पहली बात तो उसे समझ में नहीं आया कि मैं यहां पे आया कैसे, क्योंकि उसने देखा कि पूरी जगह जो है, एक तो अंधेरा है, काफी डैम्प है, और वो जो दीवारों की जो काई होती है, उसकी जो महक होती है, वो आ रही है, डार्क है चारों तरफ, और चारों तरफ एकदम गुप्त अंधेरा है, और इनफैक्ट थोड़ी सी ठंड भी है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था आंखें खोल के कि भाई मैं यहां पे आया कैसे। पर आंख खुलने के साथ साथ एक और चीज हुई, जब उसके बाकी सेंसेस खुले तो उसे आवाजें भी आ रही थी, दूर से लोगों के चलने फिरने की आवाजें, मगर ही वॉज नॉट श्योर कि वो है कहां पे। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, आपकी एकदम से आंख खुले अगली सुबह को, और आप अपने आप को ऐसी जगह पर पाएं जो बिल्कुल ऐसी हो, तो आप क्या करेंगे? लाइक यू लिटरली हैव नो क्लू कि मैं आखिर यहां पे पहुंचा कैसे, ये कौन सी जगह है। और ऊपर से जब आंख खुली तो जैसे मैंने कहा सारे सेंसेस जाग उठे, तो उसको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, और काफी वक्त से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बॉडी और माइंड दोनों धीरे धीरे शट डाउन हो रहे हैं। ये जो चार दीवारी थी जिस पे वो उठा, वो सिर्फ एक मामूली सा गद्दा सा था, मैट्रेस, और साइड में उसके बकेट रखी हुई थी, लाइटें बहुत डिम थी, और एक बड़ा सा दरवाजा था, मेटल डोर, लिटरली लोहे का मेटल डोर था, जो आप कितना भी चीखले चिल्लाने उसके पार आवाज जाने वाली है नहीं, वो वैसा दरवाजा था, और उसको तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चिल्लाने लगा, चीखा चिल्लाया, कोशिश करी, दरवाजे को पीटता रहा, मगर कोई नहीं आया। और वो याद करने की कोशिश कर रहा था एंड्रियास कि क्या हुआ यार, मैं, मेरे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है कि मैं यहां कैसे आया। एंड ही वॉज लिटरली कंफ्यूज्ड, मगर साथ साथ ये भी सोच रहा था कि यार मैंने कुछ तो किया होगा कि मैं यहां पर हूं, ये किसी टॉर्चर रूम जैसा लग रहा है, मैं यहां पर क्यों। एंड जब होता है कि आप कुछ याद करना चाहते हैं मगर याद नहीं आ रहा होता, ये वो सिनारियो था एंड्रियास के लिए। वो बहुत दिमाग पे जोर दे रहा था, सर पकड़ रहा था, और इस खालीपन में उसकी प्यास जो थी भूख से कहीं ज्यादा थी। उसने इधर उधर देखा कि मैं क्या करूं, मुझे प्यास लग रही, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। फिर उसकी नजर गई दीवारों पर, जो दीवारें थी वो सॉलिड ईंट की थी, और ईंट पर होता नहीं कि जब एक सीलन सी आ जाती है तो बूंद बूंद पानी होता है। ये बेचारा इतना तड़प गया था कि उसके पास गया, अपनी जबान बाहर निकाल के उस कंडेंसेशन को ही थोड़ा सा चाट कर, और फिर सोने की कोशिश करी। इसने आंखें बंद कर ली कि शायद एक बुरा ख्वाब हो। इसकी अगली बार जब आंख खुली तो उसने फिर से चलने की आवाजें सुनी, और इस बार जो आवाजें आ रही थी थोड़ी करीब से आ रही थी, तो उसने कहा क्यों ना मैं उठता हूं और जोर से चिल्लाता हूँ। चिल्लाया, कोई है, दरवाजा खोलो, मैं कहाँ हूं, मैं क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, और चिल्लाता रहा लगातार। उसने देखा कि जो दरवाजा है, मेटल डोर उसके सामने, उसके अंदर एक छोटी सी खिड़की है,
और वो ही है जहां से रोशनी आ सकती है, बाकी कहीं से नहीं। वो दरार सा खोला गया, वो दरार थोड़ी सी खुली, उसमें उसने देखा एक बंदा था जो उसे देख रहा था, और इसे भी दिखा कि किसी की आंख नजर आ रही थी। उसने बोला, भाई साहब कौन हो तुम, कौन हो, मैं यहां कैसे हूं, सुनो, अरे सुनो। मगर आंख मिलने के बावजूद और इतना चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसे करके पूरे दिन और भी लोग आते गए, उसे देखते, ये उन्हें देखता, आंखें मिलती, अच्छी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, और फिर वापस वो दरार बंद हो जाती, और उसे लगने लगा कि कोई फायदा नहीं है, मैं शायद यही मर जाऊंगा, शायद यही एक तरीका है कि मैं यहां से निकलूंगा। और इस दौरान वो अपने दिमाग पर जोर दे रहा था, सर पटक रहा था, कोशिश कर रहा था कि शायद वो मोमेंट याद आ जाए। इनफैक्ट उसे अपने बारे में जो चीज़ें याद आ रही थी वो बड़ी वेग थी, मतलब ऐसा था जैसे एक पूरा का पूरा दिन उसे याद ही ना आ रहा हो। यू रिमेंबर इफ यू हैव वॉच्ड मिसिंग संडे जैसी मूवीज जहाँ पे पूरा पूरा दिन गायब हो जाता है, इसके साथ वही हो रहा था। एंड ही कुड नॉट रिमेंबर, लास्ट टाइम जो उसे याद आ रहा था वो ये था कि वो एक जगह पे था, अपने दोस्तों के साथ था, और ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कहीं जाने की, सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद आ रहा था। उसके बाद की जो मेमोरी थी, ये बहुत कोशिश कर रहा था कि जॉग डाउन करूं उस मेमोरी को, लेकिन नहीं याद आ रहा। भूख और प्यास बढ़ती चली जा रही है क्योंकि जिस्म नहीं मानता, उसको तो जिंदा रखने के लिए कुछ चाहिए ना। ये एक दो दिन की बात नहीं थी, कई दिन बीतते गए, दो हफ्ते तक हो चुके थे। और दो हफ्तों के बाद एक चीज़ हुई, एंड्रियास जुछा जो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, उसमें उठने की ताकत भी नहीं बची थी, वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो जो मेमोरी पे जोर देने की कोशिश थी वो भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कहाँ से सोचे, पहले थोड़ी जान थी या वो भी नहीं थी। दो हफ्तों से इसने एक बूंद पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, हालत खराब हो चुकी है, आवाज नहीं निकल रही है। ही कुड नॉट स्क्रीम। उसे नजर आया

कौन हो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बताओ तो मैंने क्या किया, और ये चिल्ला रहा है। वहां से जो बंदा था पहली मर्तबा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो बोला, उसने बोला, ए अंदर बैठ चुपचाप, अंदर बैठ चुपचाप, मिलना नहीं यहां से, और मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समझ भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए अब से। और ये फिर चीखना छोड़कर इसने सोचा हो सकता है बात करके देखूं, तो उसने बोला, भाई प्लीज मुझे बताओ तो मैं यहां क्यों हूं। उसने कुछ नहीं सुना, उसने वो जो छोटा सा सेक्शन था इस मेटल डोर का उसे बंद कर दिया, और उससे लग के बिल्कुल टेक लगा के बैठा रहा कि शायद कोई आएगा और उसकी आवाज सुनेगा। बस चलने की आवाजें आ रही थी और मेटल डोर के क्लिंगिंग की आवाज आ रही थी, और फिर लोगों की बात करने की आवाजें आ रही थी। जब आ रही थी तो लगता था ये शायद सपना देख रहा है और कोशिश कर रहा था। मीनवाइल इंद्रियास बहुत कुछ सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे भागूं। इनफैक्ट उसके नाखून तक टूट चुके थे, क्योंकि इस बीच उसने बहुत कोशिश करी थी इस मेटल डोर को ओपन करने की। इसका दिमाग जानता था कि इलॉजिकल कोशिश है, ये मेटल का दरवाजा खुल नहीं सकता है, पर वो क्या करे, वो कोशिश करता रहा और उसने अपना नाखून तक तोड़ लिया। उसे तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उससे बड़ी तकलीफ थी उसकी भूख जो मिट नहीं रही थी। वो दीवार की सीलन को देखता, कोशिश कर रहा था कि शायद इससे मेरी प्यास बुझ जाए, मगर इससे कहां बुझती है प्यास। उसने मैट्रेस को फाड़ के खाने की भी कोशिश करी, लेकिन उतनी भी जान नहीं थी उसमें, और ये नामुमकिन सा हो रहा था। उसे ये पता था कि शायद उसके पास 48 घंटे भी शायद नहीं है, 24 घंटे आखिरी बचे होंगे, और अब मैं नहीं निकल पाऊंगा यहां से। और अपने सारे के सारे गुनाह, अपनी सारी गलतियों को याद कर रहा था कि शायद मैंने किसी का दिल दुखाया हो, शायद मेरी किसी से लड़ाई हुई हो। बट लिटरली जब उसने सब कुछ याद किया तो उसे एक बंदा भी याद नहीं आया जिससे उसकी लड़ाई हुई होगी। ही जस्ट कुड नॉट रिमेम्बर। फिर आया 17वां दिन, एंड वो इतना कमजोर हो चुका था कि अब आखिरी ताकत लगा के भी वो चिल्ला नहीं सकता था। उसने जब देखा कि वो जो मेटल का जो डोर है उसके बीच का सेक्शन खुला हुआ है, तो उसने अपना हाथ उसमें डालने की कोशिश करी कि वो बात कर सके। उसने एक बंदे की जो कपड़ा था उसको पकड़ा भी, उसने खींचने की कोशिश भी करी, लेकिन उस बंदे ने उस पर डंडा मार दिया। एंड ही वॉज लाइक कि भाई लगता है ये लोग मुझे टॉर्चर ही करना चाहते हैं, तो देयर इज नो चॉइस, मैं कोशिश करूंगा तो खामखा शायद मैं मारा जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। फिर आया 18वां दिन, इस बार उसे कुछ अलग आवाज सुनाई दी। इस बार चलने की आवाजें तो आ रही थी, जिनको देख के उसकी वैसी भी उम्मीद नहीं थी, मगर उसने फिर महसूस ये किया कि कहीं एक बंदा जो है वो दरवाजे के करीब भी आ रहा है, और इस बार ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में चाबी है। वो चाबी की जो आवाज होती है ना, वो उसे सुनाई दे रही थी, और वो कोशिश कर रहा था कान लगा के समझने की कि चाबी की आवाज आखिर किस जगह से आ रही है, क्या ये मेरा ही दरवाजा है। उसे पल्ले नहीं पड़ रहा था, बट ही वाज ट्राइंग टू लिसन टू इट केयरफुली। उसने बिल्कुल कान लगा दिए थे, और फिर एकदम से दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कौन है, क्या है। उसकी ऑलरेडी आंखें बंद हो रही थी, वो बेहोशी की हालत में था, और मैट्रेस दरवाजे के पास लगा के उस पर गिर गया। फिर उसने देखा कि कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने उसे मैट्रेस के साथ ही, उस गद्दे के साथ ही उसको उठाया और ले जाने लगे। वो पूरे के पूरे एक पूरे अंधेरे वाले हॉलवे से ले जा रहे थे उसे। समझ नहीं पा रहा मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो, ये बोलता रहा। उसकी आंखें बंद हो गई। एकदम से उसने नोटिस किया कि ये लोग तो किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, फिर ये लोग उसे सीढ़ी पर ले गए, और फिर एक जगह पर जहां पर पहुंचा वो, वहां पे मैट्रेस को रख दिया उन्होंने, और उसे बड़ी अजीब सी कुछ फीलिंग आ रही थी, जैसे अलग किस्म की सांस ले रहा है, क्योंकि वो 18 दिन से एक ऐसी जगह पे था जो बिल्कुल डार्क डैम्प थी, और अभी कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी, जैसे पता नहीं कौन

उनसी ताज़ी हवा, कोई ऑक्सीजन किसी ने दे दिया हो। उसने अपनी आँखें जितनी ताकत थी उसे खोलने की कोशिश करी। 18 दिन बाद उसने रोशनी देखी, क्योंकि ये पूरा रूम जहाँ पर उसे गद्दे समेत लिटाया गया था, ये पूरा रूम ब्राइटली लिट था, अच्छी खासी रोशनी थी। उसने अपनी आंखों को एडजस्ट किया, आंखें मली तो देखा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग, सबने ब्लू रंग के कपड़े पहने हुए थे। और फिर वो बड़ी मुश्किल से उठ के बैठा। जब वो उठ के बैठा और लोगों को देखा उसने, तो उसके दिल ने बोला, यार ये तो पुलिस स्टेशन है। और उसने लोगों की तरफ देखा, जितने भी वहां बैठे हुए थे सब उसको घूर रहे थे। कुछ लोग गिल्ड से देख रहे थे, कुछ लोग अपनी नजरें झुकाए हुए थे, कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे। एंड ही वाज कंफ्यूज्ड। उसने बोला, सर ये पुलिस स्टेशन है सर। और वो बोलता रहा, ही वाज हॉरिफाइड, वो इससे ज्यादा सवाल कर ही नहीं पा रहा था। तो उसने देखा कि एक बंदा आया उसकी तरफ और उसके हाथ में पानी का ग्लास था, और उसने वो पानी का ग्लास लिया और बिल्कुल जैसे जन्मों के प्यास से, क्योंकि वो ऑलरेडी 18 दिन से पानी नहीं पिया था, उसने पानी पिया, वो भी नहीं पी पा रहा था, वो भी उसने आधा तो भारी निकल गया, बिकॉज उसका थ्रोट बिल्कुल सूख चुका था। और फिर जब पूरी तरह से होश में आया तो उसे थोड़ी चीजें याद आई, और जब चीजें याद आई तो इट वॉज केओस। वो किसी पनिशमेंट के तहत यहां पर नहीं था, उस कमरे में उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो औरों की थी। तो दरअसल हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूं। 1 अप्रैल 1979, पहले अप्रैल की तारीख, एंड्रियास जो था वो निकला था अपने दोस्तों के साथ, जहां तक उसे उसकी मेमोरी ने दिला दिया था याद, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकला था। वो एक गाड़ी में सवार था और इस गाड़ी में वो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ था। सब मजे करते हुए जा रहे थे, अचानक से जो दोस्त उसके साइड में बैठा हुआ था उसकी लड़ाई पीछे बैठे वाले दोस्त से हो गई किसी बात पे, और रिजल्ट ये आया कि इनकी गाड़ी का हो गया बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। ये जगह थी हश्ट ऑस्ट्रिया, और पुलिस वालों को लगा कि ये तो है नशे में, तो पुलिस वालों ने इसके दोस्तों समेत इसे भी धर लिया और इसे पकड़ के पुलिस थाने ले आए। पुलिस स्टेशन जब आए तो बाकी दोस्त थोड़े बहुत होश में थे, लेकिन एंड्रियास के साथ कुछ अलग हुआ। एंड्रियास का जो सर था वो टकराया था डैशबोर्ड से बुरी तरह से, डिस्पाइट हैविंग द सीट बेल्ट, फिर भी उसका सर बुरी तरह टकराया था। और पुलिस वालों को नहीं पता था कि इसका सर टकराया है कि नहीं टकराया है। रिगार्डलेस उन्होंने बोला, इसे जो है होल्डिंग सेल में डालो इसे। और होल्डिंग सेल कहाँ था? होल्डिंग सेल पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था, एक काल कोठरी जैसा मेटल डोर वाला। और जब उसे वहां डाला, ये बोल कर डाला था कि हम तेरे दोस्तों का बयान ले रहे हैं, तब तक नीचे फेंको उसको। और उन्होंने बिना उससे बात करी एंड्रियास को ले गए, और उस टाइम वैसे भी हेजी था, और उसे इस डैम्प काल कोठरी में बंद कर दिया होल्डिंग सेल में। मीनवाइल उसके दोस्तों का इंटरव्यू चल रहा था, उनसे बातचीत करी, दोस्त खुद होश में नहीं थे, डरे हुए थे। दोस्तों का इंटरव्यू हुआ, वो चले गए, और पुलिस वाले भूल गए कि एक बंदे को उन्होंने नीचे बंद कर दिया है, बिल्कुल ही भूल गए। और जो बाकी लोग नीचे आ रहे थे, जब ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो, मेरी गलती क्या है, वो ऑफिसर्स नीचे की जो रखवाली कर रहे थे उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्यों आया है। उन्हें लगा सजा के लिए आया है, सजा भुगत रहा है, और कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। सब बोले थे, अरे वो होंगे बड़े अफसर ने डाला होगा, अरे होंगे बड़े अफसर ने डाला होगा। नोबडी वाज कंसर्न्ड, सब एक दूसरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी डाल रहे थे, और हर कोई बोल रहा था मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा उसने कुछ पढ़ा रहने दो उसे। एंड किसी को नहीं पता था ये कहाँ है। घर वाले इसे ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग थानों में रिपोर्ट लिखवा लिखवा के परेशान हो चुके थे, और पुलिस वाले भूल चुके थे, इस कदर भूल चुके थे कि इसकी माँ ने जब रिपोर्ट लिखवाई, और बहुत जल्दी लिखवा दी थी, 48 घंटों के बाद ही इसी थाने में एंड्रियास की माँ आई थी
कि मेरा बेटा मिसिंग है, वो गया कहां? दोस्तों को भी याद नहीं था, दोस्तों को लगा वो तो छूट गया, दे अज्यूम्ड कि वो तो छूट गया है, वो बाहर जाके खो गया होगा, तो उनको भी नहीं पता। मां जब पुलिस थाने में आई, उसने कहा कि मेरा बेटा मिसिंग है, तो जानते पुलिस वालों ने क्या किया, उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी और वो उसी बंदे को ढूंढ रहे थे जो उन्हीं के बेसमेंट में होल्डिंग सेल में पड़ा हुआ है। ये उसको ढूंढते रहे लगातार, और इन्होंने इनफैक्ट केस को बंद करने का फैसला कर लिया था ये बोलकर एंड्रियास की मां को कि हमें आपका बेटा नहीं मिल रहा है, वी आर स्टिल फाइंडिंग इट। लेकिन 18वें दिन कुछ अलग हुआ। 18वें दिन क्या हुआ, एक ऑफिसर वहां से जा रहा था, होल्डिंग सेल की जांच पड़ताल करते हुए जा रहा था, और उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत बदबूदार स्मेल आ रही थी। तो उसने कहा ये एक दरवाजे को खोलो, और उसने दरवाजे को खोला और उसे बाहर निकाला। एंड देन जो दूसरा ऑफिसर था जिसने पूछताछ करी थी 18 दिन पहले 1 अप्रैल 1969 को, उसको समझ में आया कि उससे क्या गलती हुई है। 18 दिन बिना खाने पीने के आइसोलेशन में 22 किलो वजन एंड्रियास खो चुका था, 22 किलो। शायद 24 घंटे और होते तो वो जिंदा बचता भी नहीं, बट न जाने कैसे, न जाने कौन से कुदरत के करिश्मे से वो सरवाइव कर गया, फुल्ली रिकवर किया। कहानियां खत्म नहीं होती। ये 18 दिन जो वो बिना खाए पिए उस आइसोलेशन में, उस होल्डिंग सेल में रहा, आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है कि वो इतने टाइम तक बिना पानी के रहा है। जो मां थी ऑब्वियसली एंड्रियास की, उन्हें बहुत गुस्सा आया, और वो गुस्सा इतना खतरनाक था कि पूरा का पूरा शहर उनकी तरफ हो गया था, जो कि जाहिर सी बात थी। उस पुलिस वाले को ऑब्वियसली अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जो कि वेल डिजर्व्ड थी। एंड उसके बाद पुलिस महकमे को एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको देना पड़ा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मगर देयर वॉज एन अमाउंट जो एंड्रियास के घर वालों को देना पड़ा। बट एंड्रियास ने पूरी तरह से रिकवर किया एंड फाइनली गॉट आउट। मगर इन तमाम दुख दर्द के बाद एंड्रियास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाया, विच इज फॉर स्टेइंग विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 18 days। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। तो दिस वॉज द स्टोरी, शॉर्ट एंड क्रिस्प, लेकिन आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो 666-22107 नंबर है, 666-22107। आपके मैसेजेस के इंतजार में मैं दुहा वाला कबीर, सीरियसली वेटिंग क्या आप इस कहानी पे क्या बोलेंगे। भाई ऐसा भी होता है बाबा, ऐसा भी होता है। तो ये थी कहानी, बाकी आपके हवाले आ रहे हैं डांडा भाई। 666-22107 बर्थडे को यही कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। माज भाई यार, माज भाई यार, बड़ा ही अच्छी लगी आपको। ये रिकॉर्ड तोड़ने मत निकल जाना भाई, प्लीज फॉर एवर।

0: अरे डांडा भाई ने दिल्ली में परफॉर्म किया यार, आज मैं छुट्टी में जाऊँ तो डांडा भाई का कॉन्सर्ट हो भाई, सबसे पहले मैं ही टिकट लेके आके खड़ा हूँ। लेट्स गो। हाँ तो जी 5:44 हो लिए, एक भाई ने मैसेज किया है फ्राइडे सैटरडे नहीं भाई, फ्राइडे सैटरडे नहीं आता भाई, मैं फ्राइडे सैटरडे गेमिंग का होता भाई। और लास्ट स्टोरी थी उस बंदे को, उसकी बोरिंग की आदत भाई, ये आज की कहानी बहुत अलग थी भाई। और मैसेज भाई, भाई ने मुझे करेक्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग भाई। मैंने 69 बोल दिया था, मैंने 69 नहीं है, 69 इज़ नॉट 69, 79-80, तो मेरी गलती है जी। एक में से क्या ज़बरदस्त कहानी सुनाते हैं भाई, मज़ा आ जाता है सुन के। अभी अब तक सबसे थ्रिलिंग कहानी वो दोहा से कोची की फ़्लाइट वाली थी। थैंक यू सो मच भाई। आज वाली कहानी मैंने भाई जानबूझ के छुट्टी रखी, क्योंकि स्टार्ट है ना हफ्ते का, फिर मॉर्निंग शो भी करना है, तो उसमें बाकी थ्रिलर उधर डालेंगे। तब उसमें मैंने मैसेज करती हैं, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच बहना, बहुत सारा प्यार। और लिखती हैं, स्टोरी बहुत दर्दनाक थी, कैसे उसने सर्वाइव किया 18 दिन, बहन वही जानता, मैं तो सही बताऊँ मेरे, मैं तो खुद बड़ा हैरान था। एक कॉल आ रही, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: क्या हाल है पार्टी?
1: अरे भाई सब ठीक है भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बड़े हो गए फाइनली?
0: हाँ भाई फाइनली, बस भाई अभी 17 का हूँ, 18 हो गए हो जाऊंगा, अभी लाइसेंस निकालूंगा भाई मैं।
1: भाई 18
0: क्रॉस करके लाइसेंस निकालना, नहीं तो कतर में मालूम है ना फाइन बहुत ज्यादा है भाई। तभी तो भाई मैं
1: आराम से पहले बड़ा हो
0: जाऊं, उसके बाद अभी तो बस मैं बग्गी चलाता हूं भाई मैं। भाई आपकी बर्थडे आ गई, अब सोशल मीडिया पे कब आओगे? अब तो बर्थडे भी आ गई, आज पोस्ट आ जाएगा डेफिनेटली।
1: ये तो हो गए भाई, अब आते हैं स्टोरी पे भाई साहब। स्टोरी मैंने पूरी सुनी लाइव, इतना मजा आ रहा था बहुत। अब पता है स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा लग रहा था यार, मैं सोच रहा हूँ अब क्या होगा यार, इसने कुछ किया नहीं, बॉक्स में बंद है, ये निकलेगा कैसे? हाँ। ये आखिर तो कोई निकाल नहीं रहा है, गुंडों ने घेर रखा है। फिर मेरे माइंड में आ रहा है कि दोस्तों ने सुपारी दी होगी। हाँ। क्या बात में जो आधे रास्ते से जो कहानी ने पलटी मारी भाई, मेरे मैं बोला भाई साहब क्या है यार, वाकई में भाई।
0: और लोगों का एक कंफ्यूजन भी है कि उसे खाना पीना क्यों बंद था भाई। देखो मैंने नाम लिया था ना, उसे होल्डिंग सेल कहते हैं। होल्डिंग सेल वो होता है जहां पर बंदे को मीन वाइल रखा जाता है, वो कैदी नहीं होता, मगर ये लोग उसे वहां डाल के भूल गए, इन्हें लगा कि हर रोज कोई ना कोई दूसरा है और किसी ने चेक नहीं किया, दैट्स व्हाई। ये था आंसर।
1: सही बात है, शायद मतलब जिसने रखा होगा उसने इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं।
0: हाँ।
1: मैंने इसको रखा है पूछताछ करनी। हाँ, है
0: exactly.
1: इसलिए लोग आए और उन्होंने सोचा कि नहीं ये कोई ज्यादा लगता है कि पूछताछ होगा अपना, इस वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया।
0: एग्जैक्टली exactly. भाई वो तो क्या बेचारे की बीती
1: हुई है। वही एक मी मेरा भाई, इतनी बड़ी हेरा फेरी यार, बेचारे के साथ भाई रिकॉर्ड बनवा दिया उसका।
0: हाँ रिकॉर्ड, मैं तो कह रहा हूँ अगर वो गलती से नहीं बचता ना तो फिर क्या होता सोच नहीं सकते, मतलब क्या खतरनाक सीन होता।
1: भाई वो तो जाहिर सी बात है, वो दम तोड़ रहा, किसी को ध्यान भी नहीं। एक तो और ऊपर से वो रिपोर्ट भी लिखा है तो भी लोग ढूंढ रहे, ये नहीं सोच रहे कि भाई ये बंदा यहाँ है।
0: हाँ वो पूरा भाई उन्होंने लिटरली आने वाले 11 मतलब कितने 17-16 दिन उन्होंने ढूंढा है उसको, लिटरली बाहर ढूंढा है उन्होंने उसको।
1: बताओ यार बाहर के सुने यार, ऐसे लोग होते हैं यार,
0: कमाल की
1: अच्छा
0: दुनिया।
1: उसकी नौकरी गई भाई, जरूरी थी, नहीं तो और किसी के साथ भी बड़ा हादसा करवा देता।
0: सही में भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग कहानी थी ये मेरे लिए। मैं कहा भाई क्या क्या बीती होगी उनके घर वालों को, सोच रहे हैं बताओ यार।
1: अरे हाँ भाई सही बात है, वो तो वो जिस पे बीतती है वही जानता है वो, और वो 17 दिन से गायब। दोस्त लोग भी एक्सीडेंट हो गया तो सदमा में थे, इस वजह से उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया।
0: उसके दोस्त ने बाद में बयान ये दिया, उसने बोला कि मुझे क्या लगा कि ऑब्वियसली मेरे बयान के बाद उसे छोड़ दिया होगा, तो वो बाहर निकलने के बाद खोया होगा, बिकॉज 48 घंटे ऑलरेडी बीत चुके थे उस बात को, तो उनको ये लगा, उन्हें नहीं पता था कि ये नीचे ही है।
1: बेचारे के साथ बहुत बुरा, हंसी भी आ रही है यार, इमोशन भी, क्या मालूम है क्या कर, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो कैद हो गया।
0: हाँ, तो इसलिए मैंने आज
1: कैद हो गया, ऊपर से रिकॉर्ड भी बनाया, चलो अच्छी बात है।
0: हाँ भाई रिकॉर्ड बन गया ये,
1: रिकॉर्ड सही भाई, कोई नहीं चाहेगा बनाना भाई, नया अधूरी रखो उस रिकॉर्ड को।
0: भाई कोई अटेम्प्ट भी नहीं करना,
1: वो आखिरी रिकॉर्ड था, पहला और आखिरी रिकॉर्ड,
0: पहला और आखिरी रिकॉर्ड है, ये ऐसा रिकॉर्ड है जो टूटने के लिए नहीं बना है, साफ
1: नहीं बना, टूटने के लिए नहीं बना भाई।
0: करेक्ट भाई एकदम, बहुत अच्छा लगा, अच्छी लगी कहानी,
1: बहुत बढ़िया,
0: थैंक यू मेरा भाई।
1: अभी और आपके लिए मैं बर्थडे गिफ्ट रखा है मैंने, अब तो 1 तारीख से आप सुबह में आओगे
0: जी भाई,
1: प्लीज भाई मेरा नंबर सेव कर लो, स्टोरी भेज देना यार, नहीं तो मैं नहीं रह पाऊंगा। चला मेरी जॉब छूट गई।
0: नहीं नहीं नहीं, अरे अल्लाह ना करे भाई, भाई पक्का पक्का पक्का कहानी मिलेगी, उसकी टेंशन मत लो, जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र, मेरा नंबर सेव कर लेना भाई।
0: है भाई, है भाई, है बिल्कुल हुसैन भाई, सेव है मेरी जान, कोई टेंशन नहीं है, मिलेगी आपको।
1: वैसे मैं ट्राई करूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ट्राई करूंगा।
0: नो प्रॉब्लम मेरी जान, मिलेगी आपको कहानी, टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी,
1: क्योंकि अब भाई आदत सी हो गई, अब तो आदत सी है मुझको।
0: अच्छी बात है, मैं यही चाहता भी हूँ, तो इसलिए मैंने ना वो बड़ी बड़ी कहानी पूछा रखी है। अभी
1: एडिक्ट हो गए भाई, एडिक्ट हो गए भाई, क्या बताओ। मेरे व्हाट्सएप पे देखोगे आपकी पूरी स्टोरी मैंने सेव कर करके रखी है, मैं सुनता रहता हूँ एंड टाइम, क्योंकि गाड़ी चलाता हूँ तो मैं सुनता रहता हूँ, मुझे मजा आता है, होता है ना एक।
0: मैं यही कोशिश करता हूँ बस, यही ऐसे ही रहे, मुझे खुद सुनाने में बहुत मजा आता है, तो अभी सुबह भी जब आऊंगा तो इंशाल्लाह मैं भेजूंगा जरूर आपको, उसकी टेंशन मत लो।
1: सॉरी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को और इतना मजा आता है ना कि आधा तक तो मेरा दिमाग घूम गया कि क्या होगा क्या होगा, उसके बाद जो पलटी मारती है ना, ओहो अब बहुत हंसी आती, खुद अकेले में हंसता, बहुत मजा आता है।
0: इसलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाई नहीं थी, मुझे पता था मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाऊंगा ये वाली कहानी, तो ठीक है वो मजेदार होगी पर वैसी नहीं होगी, तो क्यों ना जो उसने अकाउंट बताया उसके हिसाब से बताऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए
1: बहुत मजा आया भाई सुनने में, मतलब होता है ना इंटरवल और क्लाइमेक्स एकदम मजेदार मजेदार था भाई।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यार भाई। ओके मेरे
1: ओके भाई, अल्लाह
0: हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। और हुसैन भाई की मोहब्बत के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मैसेज हो रहे हैं भाई, सुबह किस टाइम आएंगे भाई? 6 बजे से। ये राज भाई आपको बता दिया मैंने, ये राज तो नहीं है मगर अब राज बता दिया है मैंने, 6 बजे से। और एक मैसेज है, ये मॉर्निंग वाली क्या बातें चल रही हैं, अगर ऐसा है जैसे मैं सोच रहा हूँ तो ये चीटिंग है। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, ये हमारे बॉस को उड़ रहा है, बॉस को उड़ रहा भाई, वो तो मानना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कर सके हम। और मैसेज किया है, हैप्पी बर्थडे मे अल्लाह ब्लेस यू, आई मीन सबीन कुरैशी जी ने, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और एक भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एंड क्या हम दो आपके साथ हैं सुबह और शाम, थैंक यू भाई, बहुत सॉलिड। सऊदी अरब से मोहसिन भाई का मैसेज है, एंड देन एक मैसेज है, मुझे भी सुबह में स्टोरी भेज दिया करें, 9 बजे से रहती है मेरी ड्यूटी। ओके, फर्स्ट डे फर्स्ट शो बैंगर भाई, अभी तो सुबह के लिए जो मैंने स्टोरी बचा के रखी है रियान भाई, लोगों को मेरा ना है, बहुत बढ़िया है, बचा के रखी मैंने। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, कबीर क्या लिखा, शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टोरी, क्या एक इंसान 18 दिन विदाउट वाटर जिंदा रह सकता है? अनबिलीवेबल, पुलिस वाले ऐसे भी कैसे लापरवाह हो सकते हैं, किसी को सेल में डाल के भूल जाएंगे। और जो पनिशमेंट या पेनल्टी मिली है पुलिस वालों को वो कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए था, बाकी आगे से गलती, ताकि आगे गलती ना हो। एब्सोल्युटली भाई, पर उन्होंने कुछ अनरिलीज्ड अमाउंट दिया है, वो बताया नहीं गया है। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हैप्पी बर्थडे, जज़ाकअल्लाह अरबाज़ भाई, सर कहानी किस टाइम शुरू करोगे? ख़त्म हो गई भाई। एक मैसेज भाई, इंडिया की पुलिस नहीं थी, ये शुक्र है, वरना तो उसका पता भी नहीं चलना था। अरे हेलीकॉप्टर बना देते हैं भाई दिल्ली में तो। हुसैन भाई और सिद्दीकी भाई, थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, दिस वाज सच अ ट्विस्टेड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एंड्रियास, आई वाज ऑनेस्टली अ लिटिल स्केर्ड व्हाइल लिसनिंग टू इट एंड आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हाउ मच पेन एंड सफरिंग ही मस्ट हैव गॉन थ्रू, इट वाज सच अ पेनफुल एंड डिस्टर्बिंग स्टोरी बट आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू इट। बाय द वे, व्हिच ईयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन भाई? 1979। आगे लिखते हैं, आई माइट हैव मिस्ड इट और परहैप्स यू फॉरगॉट टू मेंशन इट। नहीं भाई, मैंने मेंशन किया, पर मैंने लास्ट मेंशन किया था। और एक मैसेज है, ये मैसेज क्या है मुझे, हसन शाह साहब ने लिखते हैं, मैं तो समझा इंद्रियास के क्या है फेफड़े बाहर आ जाएंगे। वाह सदके जाऊं, लेकिन सर्वाइव कर गया, वाह वाह। लेकिन ऐसी पुलिस स्टिल अवेलेबल इन सम प्लेसेस, ऑफकोर्स भाई। बिल्कुल मणि भाई, क्या ले भाई के। और भाई कह रहे हैं, आइसोलेशन में खाना पीना क्यों बनता? भाई आइसोलेशन उसके लिए था बेचारे के लिए, लेकिन उसे कहते हैं होल्डिंग सेल। होल्डिंग सेल में क्या होता है कि मीन वाइल रखते हैं, मतलब मीन वाइल कि इसको रख दो यार 4-5 घंटे के लिए ही पड़ा रहेगा, बट दे फॉरगॉट कि उसको 4-5 घंटे के बाद निकालना भी है।

समझ ना, उसमें खाने पीने की सुविधा नहीं दी जाती है। अब्दुल करीम भाई कहते हैं लेकिन भाई पुलिस वाले ने ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जिंदगी खत्म होनी। भाई बिल्कुल, वो तो बच गया, नहीं तो लोग पता नहीं क्या करते ऑस्ट्रिया में। और आई थिंक दिस इज पाकिस्तानी पुलिस सर। बस भाई नहीं यार, हमारी पुलिस अच्छी है भाई। और ये रफ्तार पाजी का क्या वीडियो भेजा आपने, और एक मैसेज है ये क्या आसिफ भाई का, भाई कहानी ख़त्म हो जाएगी, भाई को दोबारा सुनाओ अकेले में। भाई ने पूरी कहानी सुन ली भाई, सुना भी दी। सुबह कोई लव स्टोरी है क्या? नहीं भाई, लव स्टोरी तो सुबह भी नहीं है, पर सुबह जो पहली तारीख को मैं कहानी सुनाऊँगा ना भाई, अमेजिंग है वो। मतलब मैंने उसको जानबूझ के बचा के रखा है, मुझे और कोई कहानी मिल भी नहीं रही है ना, तब भी मैंने उसे छुपा के रखा कि मैं नहीं भाई, ये तो मैं 1 सितंबर को ही सुनाऊंगा। और मैं और कबीर कुछ बर्थडे पार्टी वार्टी है कि नहीं? अरे 33 साल के हो गए यूसुफ भाई, कौन सी पार्टी भाई, घर जाएंगे भाई बढ़िया वाला, चाय बिस्कुट खाएंगे सो जाएंगे। अब मॉर्निंग शो है कबीर भाई जी, तबसम बहन 1 तारीख से मॉर्निंग शो है, दैट इज़ फ्रॉम 6 AM। और एक मैसेज हैप्पी बर्थडे कबीर भाई, क्लाइमेक्स सुन नहीं पाया डायरेक्टली आज। ऑल्सो दोहा टू कोची वाली कहानी भी सेंड कर दो, आपको नहीं मिली क्या दोहा से कोची वाली? आई थिंक मैंने सेंड सबको करी थी, अगर नहीं करी तो मिल जाएगी। फिर मेरे बॉस से बात करके मॉर्निंग कराएं प्लीज़। वो कह रहे आपका तो नहीं भरा, मुझे कराएं। कह गए भाई फिर तो कहानी छूट जाएगा। अरे यार नहीं, कहानी आपको मिलेगी भाई, छोटी स्टोरी सुन के बच्चा रुला दिया है। नहीं भाई आज लंबी कहानी का वक्त नहीं था तो इसलिए। यूसुफ भाई कह रहे फिर से लव स्टोरी की फरमाइश शुरू। नो नो नो नो, अरे डरो नहीं, मॉर्निंग स्टोरी मैं लव स्टोरी नहीं सुनाने वाला, डोंट वरी, बिल्कुल भी नहीं। टाइमिंग क्या है सुबह की? मुबशिर मोइन भाई सुबह के 6 बजे से है। क्या अब तो ऐसा लग रहा है जैसे रिश्ता ख़त्म हो रहा है? नहीं नहीं भाई, अभी तो रिश्ता शुरू होगा। एक मैसेज कबीर भाई, लव यू यार, योर स्टोरी इज़ अ गुड वे ऑफ टेलिंग इट, वॉज क्या है, इट वॉज ऑसम एंड हैप्पी बर्थडे मेरा भाई, लगता है आप मुझसे 13 दिन बड़े हो। अरे क्या बात है, ये मैसेज क्या है नौशाद भाई? नौशाद भाई क्या एज होगी आपकी वैसे तो? आई थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे भाई लिखा है। सुबह को आएंगे? हाँ भाई सुबह भी कहानी आएगी, डोंट वरी, सुबह भी आएगी कहानी। और एक मैसेज है हैप्पी बर्थडे मेरा भाई, अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, आमीन आमीन आमीन। कह रहे हैं भाई अल्लाह पाक आपके बॉस को सेहत दे सुबह का शो देने के लिए। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग उतने ही गुस्से में हैं, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। वैसे कबीर भाई की लव स्टोरी में भी सस्पेंस मर्डर हॉरर रहता है। हाँ वैसे बहन मेरे पास एक है, अब बहुत अच्छा दिलाया, मेरे पास एक भाई लव स्टोरी है, उसमें सब कुछ है। उसमें भी बंदे नप जाएंगे भाई। चलो ठीक है, वो कहानी मैं कल सुनाता हूँ। लेट्स ब्रिंग अ लव स्टोरी टुमारो, लेट्स डू इट। कल एकदम थ्रिलिंग शाम की लास्ट स्टोरी कल सुनाते हैं आपको, ठीक है? कल देखो मैं क्या करता हूँ। बाकी मिलते हैं, अभी अजान का वक्त हो गया, कुछ देर में आपसे वापस मुलाकात होगी, जाना आपने नहीं, एंड स्टे ट्यून्ड। बहुत सारी विशेज हैं, आई एम गोना रिप्लाई एवरीबॉडी, बहुत बहुत बहुत सारा भर भर के प्यार। अच्छा आइडिया दिया मैंने आपने, कल देखो मैं क्या करता हूँ, कल देखो मैं क्या करता हूँ, कल लगेगी क्लास।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई साहब 6:02 हो लिए और मेरी टीम को बहुत सारा प्यार, क्योंकि मेरी टीम में जितने भी लोग हैं अभी, रूबी, आयशा, ए फॉर अमिता और हमारे शेबी भाई, शेबाज भाई, नदीम भाई भी भारी मिले मुझे। इतने प्यारे लोग हैं यार ये लोग, मतलब क्या है यार, वो कहते ना फैमिली अवे फ्रॉम होम, भाई मैं इमोशनल कर देती यार ये पब्लिक। यार कितने प्यारे लोग हैं, क्यूटी पटूटी।

0: आज ही सबासी पूरी मिलेगी, बहुत बढ़िया सबासी दी है। कुछ लोग भाई साहब थोड़े से खफा है, मैं जानता हूँ मॉर्निंग शो की वजह से, कुछ लोग खुश है मॉर्निंग शो की वजह से। आई डोंट नो मैं इस टग ऑफ वॉर में क्यों फंस जाता हूँ बार बार। एक भाई कह रहे हैं भाई कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता। भाई देखो ये दुख मैंने नहीं दिया भाई, सूरज भाई बहुत सारा प्यार, लेकिन कहानी मिलेगी भाई। और एक मैसेज है कबीर भाई, वी आर एडिक्टेड टू लिसनिंग टू योर स्टोरी, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर बर्थडे ब्रो, लव यू, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार हसन चाको मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, कि भाई आपके साथ पूरा ऑफिस प्यार करता है। भाई ऑफिस वाले हमारे ऑफिस वाले तो लगते ही नहीं, सारे बहुत बढ़िया लोग हैं एकदम चंगे। और ये पूछ रहे हैं आसिफ भाई आपका सवाल क्या है, मैं सवाल नहीं समझाऊँ, एक रो कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या लहर तो, वालेकुम अस्सलाम, क्या भाई लहर उड़ गई 40-40 फीट की, क्या हाल है भाई के?
1: खैरियत है?
0: मैं खैरियत से हूँ, लेकिन माइक को खा लिया क्या आपने, थोड़ा दूर करो उसको। मैं एकदम ठीक हूँ भाई, आप कैसे?
1: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सुने
1: शाम में बोरिया बिस्तर बांधने वाले हैं?
0: मेरा तो बोरिया बिस्तर दोनों जगह है भाई, दोनों ही मकान मेरे ही हैं, तो कभी सुबह तो कभी शाम। हाँ
1: यानी सिर्फ मकान बदल रहे हैं?
0: बस मकान शिफ्टिंग हो रही है भाई, थोड़ी सी 3-3 महीने की शिफ्टिंग होती है, बस वही है मेरे भाई।
1: फिर हम लोग शाम में आने वाले लोग तो फिर सुबह में मुश्किल।
0: हाँ भाई वही तो मेरे भाई, वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, खींचातानी चल रही है, कुछ लोग सुबह में चाह रहे थे तो सुबह में आ रहा हूँ, और कुछ लोग शाम में थे तो अभी वो शाम वालों को थोड़ी सी मसला है। पर्सनली मुझे भी शाम वाले जचता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, मगर ठीक है चलता है, अभी क्या कर सकते हैं। भाई मैं पूरा थर्मस लेके आता हूँ चाय का मेरी जान, उसके बिना मैं शो कर ही नहीं सकता, मेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। हाँ ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं भाई भी क्या बोलूं भाई, जब भी बात करते हैं अलग ही लहरती हुई टोन होती है। फराज भाई कह रहे क्या टाइमिंग है भाई, सुबह से 6 बजे से और मैं से 5 बजे की टाइमिंग एकदम बेस्ट थी, मॉर्निंग में अगर रख रहे टाइमिंग तो 7 से 8 रखिए भाई, 6 बजे से शो शुरू है, कहानी 7:30 बजे से है, सो नंदलेस आ जाओ भाई मॉर्निंग में। अदिल भाई कह रहे हैं मॉर्निंग में आ जाओ। और एक मैसेज आया, वी डिमांड यू इन इवनिंग। काश ये मेरी भी डिमांड है सईद भाई, ये मेरी भी, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरी जान। और एक मैसेज भाई, आप हो सबसे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच भाई अशफाक भाई, बहुत सारा प्यार आपको, जजाकल्ला। और आसिफ भाई आपका सवाल नहीं समझा मैं, कहते जनता जानना चाहती है कि आप लास्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट किया था, सो प्लीज़ बताइए, अभी आप 33 के हो गए, ये क्या सवाल है, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज़ मुझे इलेबोरेट करके बताएं, केक वगैरह कट किया कि नहीं? नहीं भाई केक वगैरह तो मैं खाता ही कोई नहीं भाई, आज तो घर वाले भी जानते हैं कि केक वगैरह नहीं खाता आपका भाई, मुझे तो भाई वो खिला दो कुछ भी, मतलब मेरा केक होगा तो उसमें हरी मिर्ची लगी हुई भाई। क्या एक मैसेज करो, ये भी मेंशन करो फर्स्ट से, हाँ तो मॉर्निंग शो इज़ फ्रॉम फर्स्ट, आई डोंट नो इफ़ आई कैन प्ले दैट, पता नहीं अभी प्रोमो है कि नहीं, मुझे पता लग जाएगा, मैं पूछ लेता हूँ कि अगर प्रोमो मैं आपको सुना पाऊँगा सुबह को तो मैं सुनाऊँगा। एक मैसेज भाई, मॉर्निंग और इवनिंग दो शो कर लो। डबल पेमेंट लगेगी, डबल पेमेंट, ठीक है। और इस भाई कह रहे हैं कि हाँ 3 महीने भाई, तो मैं छुट्टी पे वैसे भी अक्टूबर में निकल जाऊँगा, तो या दैट्स हाउ इट इज, पता को नहीं लगेगा भाई। 666-22107 फिलहाल नंबर है, और अभी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, जाना अपने यानी बेस्ट जगह पर है आप, और अभी

एक भाई ने रैप सुनने का मैसेज किया, ये क्या है कि ऐसे रैप सॉन्ग किधर से लाते हैं? भाई मैं बहुत सुनता हूँ रैप मैं आपको बताऊँ, अगर आप देख लोगे ना मेरी प्लेलिस्ट तो भाई मेरे साथ कोई गाड़ी में बैठना पसंद करता है, दिन भर रैप सुनते रहता है ये बैठ के बहुत खतरनाक कनेक्शन है मेरी प्लेलिस्ट में। सो इफ यू आर हिप हॉप फैन कम ज्वाइन मी।

बातें तो पूरी मिलेगी, बहुत सारे मैसेजेस तो हैं, लेकिन इस बीच में खबरें बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें हैं। बैक टू स्कूल, भाई बच्चे अब स्कूल की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, तो ये भी बताना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस बारे में क्या कहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने रिमाइंडर दिया है वापस स्टूडेंट्स को, फैमिलीज को और साथ में स्कूल को, फॉर द की सेफ्टी मेजर्स। बेसिकली ट्रैवलिंग के दौरान टू एंड फ्रो फ्रॉम स्कूल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का लिहाज किया जाए और कोई भी हादसा ना हो जो पहले कभी हुआ था। एंड जो बैक टू स्कूल सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन है वो भी शुरू हो चुका है। सो मिनिस्ट्री ने अर्ज किया है स्टूडेंट्स जो कि स्कूल बस का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी डेजिग्नेटेड सीट्स पर ही बैठें, सीट बेल्ट लगा के रखें थ्रू आउट द जर्नी, और स्टूडेंट्स शुड वेट, ये बहुत जरूरी है, शुड वेट अंटिल द बस स्टॉप्स, उनकी जगह पर नहीं आती तब तो भाई आराम से बैठे रहो। ये रूल्स आजकल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या है कि कई सारी चीज़ें देखी गई हैं स्कूल सेफ्टी के लिए जो ली जा रही हैं मेजर्स, कभी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो, फुल अटेंडेंस हो, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप मिनिस्ट्री की तरफ से, और इस बार उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है वो लिख कर दी है, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। इसके अलावा हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर है। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है पर पेशेंट फॉर स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट उसको कम करने की बात करिए, अपना रिकॉर्ड भी साथ में डेटा के थ्रू बात करिए। सो 58 डेज का जो अपॉइंटमेंट मिलता था पहले 16 दिन तक आ गया है मामला। सो वेटिंग लिस्ट अभी थोड़ी सी कम कर दी गई है और ये कोशिश है कि भाई थोड़ा होता ना कि आपने अपॉइंटमेंट ली एंड स्पेशलाइजेशन के लिए आपने ली है कि भाई कोई बहुत स्पेशल चीज़ के लिए आप दिखाना चाह रहे हैं, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और

पेशेंट की एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश है और कतर के पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश है, ताकि आपको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाके आप सोचते हैं ना थोड़ा लगाना पड़ेगा पैसा लेकिन काम हो जाएगा, तो वो यहाँ पर भी उतना ही फायदा मिले आपको। और ये बहुत बहुत अच्छी कोशिश है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन के, मोहम्मद बिन खलीफा अल सुवैदी, उन्होंने बोला कि कॉरपोरेशन ने चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था बहुत पहले ही कि लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, हालांकि इलाज अच्छा हो जाता है, मगर जो वेटिंग लिस्ट है उसमें और भी गिरावट आएगी और इंशाल्लाह सून और लेटर यू विल सी दैट इम्प्रूवमेंट। वैसे इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है, 2024 से लेकर अभी तक का जो डेटा है वो साफ कहता है कि इम्प्रूवमेंट तो आई है, डेफिनेटली आई है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस चीज़ को लेके। एनीवे, अभी तीसरी खबर जो है मौसम के लिहाज से वो भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम करवट खाने को तैयार है। राइट नाउ 39 डिग्री सेल्सियस, जो कि शाम के हिसाब से कतई हाई है भाई, ये तो 40 के पास पहुंचा हुआ है, पर मिनिमम 32 और मैक्सिमम 46 फॉर नाउ। वेंसडे जो आने वाला वेंसडे है, इसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की हवा चलेगी, टेम्परेचर 1-2 degrees डीप थोड़ा सा गिरेगा। अभी एक्चुअल टेम्परेचर जितनी ही गर्मी लगेगी, ह्यूमिडिटी हालांकि बहुत कम है मुकाबले पूरे हफ्ते के, जो 55-56 के आसपास चल रही थी अभी 35% है, विच इज़ रियली रियली गुड। तो ये था मौसम का हाल 666-22107 पे, आप भी कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। एक मैसेज है, सर प्लीज़ प्ले मूव, मूव कौन सा, रफ्तार भाई वाला, वही प्ले कर दूँ एम के साहब, थैंक यू सो मच। और मैसेज है, प्लीज़ सर इस नंबर पे सुबह आएंगे तो मैं भेजूंगा भाई, आप कहानी की टेंशन कोई भी ना ले, वो आपको वैसे भी मिलेगी, सो डोंट वरी। अरे भाई कह रहे कौन सा गाना था भाई, ये गाना जो मैंने चलाया था ये था रफ्तार लेगेसी और कश्मीर, कश्मीर, ये आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। फिर आए हे बेस्ट विशेस ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई ने मैसेज किया है। एंड क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप शो क्यों नहीं कर लेते। वाह जी वाह, लाड में आ रहे हो हैं। और फराज भाई मैं एकदम बढ़िया भाई, आप सुनाओ एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ शेयर द स्टोरी, मैं अभी शेयर करूँगा भाई कुछ देर में, तो डोंट वरी। तो या कल एक और इवनिंग है, फिर तो मॉर्निंग में आना है, तो इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि आपने बताया नहीं, एकदम से सरप्राइज़ हो गया, सुबह सुबह आ गए। तो मैं भाई सुबह 1 तारीख से आऊँगा, 1 सितंबर सुबह 6 बजे, हमारे 3-3 महीने का ऐसा शिफ्टिंग रहता है, तो इस बात को अभी तक तो आपको आदत पड़ गई होगी, आई होप सो, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ। कल शाम को एक और स्टोरी है जो शाम में आपको सुनाऊंगा, एंड वो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एकदम रॉकेट हो जाए आपको, मतलब मजा आ जाए, बोलो भाई ये क्या सुना दिया यार, ये क्या सुना दिया भाई, मुझे आ गए वो। और एक प्रोमो है सुबह का, तो आई एम ट्राइंग कि अभी अगर मैं सुना सकता हूँ आपको तो सुबह का प्रोमो रैप भी आपको सुना दूंगा कुछ देर में। लेकिन 6:16 मैसेज, 1 तारीख से शाम को पूरा आदमी स्टोरी मांगेगा, ये होने वाला है, शाम को जो भी आएगा मेरे ख्याल में फजील भाई आएंगे, फजील भाई आएंगे और सब फजील भाई की जिंदगी में धनिया होने वाले हैं कहानी के लिए, फॉर श्योर। ये तो अब्दुल करीम भाई आपने बिल्कुल सही बात की, आई नो दिस, ये होने वाला है। और ये गाने भी आप मिस करेंगे मुझे पता है, क्योंकि ये गाने आपको

भाई मैं कह रहा था एक चीज पूछनी थी, सुबह का रैप सुनोगे क्या? मैसेज कर देना सुनना हो तो 6221 07 पर। अरे भाई कह रहे हैं सब फजीलू भाई को तंग करने वाले हैं भाई, जो भी आएगा शाम में उसको कहानी के लिए तो पूछा जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। छोड़ेंगे तो नहीं भाई। भाई देखो अगर मेरे पास 7 मैसेज आ लिए ना तो फिर मैं चला दूंगा सुबह वाला जो रैप है, ठीक है। बाकी मैं आज बता दूं कि कौन कौन से दिन है जो इंटरनेशनली मार्क्ड किए गए हैं। आज जो है, आज है नेशनल बीच डे। आज बीच डे, क्या बात है यार, मेरे बर्थडे के दिन बीच डे होता है, क्या बात है। तो आज बीच डे है, हालांकि बीच ऐसा है नहीं अभी जाने वाला, पर जो लोग जिद्दी हैं तो जाके ही रहेंगे, वो जरूर जाएं। आज बड़े फख्र के साथ बता दूं, आज है इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे। कितना बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन क्या हो सकता है। आज इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे है, और आज एक और दिन है, आज फ्रैंकेंस्टाइन डे भी है। ये क्यों है आज, पर ठीक है, आई लव फ्रैंकेंस्टाइन। आज फ्रैंकेंस्टाइन डे भी है। आज है टोस्टेड मार्शमेलो डे। इत्तफाकन एक लौती चीज जो भले ही थोड़ी मीठी है लेकिन इसको रोस्ट करके खाने में जो मजा आता है। इसके बाद आज है, आज कोई और दिन है, सोशल जस्टिस संडे। नहीं थैंक यू, बाकी सब ठीक है। तो मैं अब आपको सुबह वाला रैप सुना देता हूँ। ये भी छोटा ही है मगर दिस इज, ये जो है मॉर्निंग के लिए है, तो मॉर्निंग के हिसाब से लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी डिफरेंट ट्रैक एंड अ डिफरेंट थिंग, और ये मैं चला रहा हूँ। सो 3, 2 एंड 1।

0: घूम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: हाँ तो ये है भाई सुबह वाला प्रोमो ये सुबह का रैप है आपको कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा 666-22-107 पर और एक मैसेज आज बर्थडे पे कबीर भाई अपनी कोई लाइफ की स्टोरी सुनाओ मेरी लाइफ में ऐसे इवेंट है नहीं जो मैं आधे घंटे तक सुना सकूं भाई ओसामा भाई क्या निपट जाएगा किस्सा कोई भी होगा तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लो जो चाहो मैं आपको बता दूंगा नसीम साहब का मैसेज हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो मच और ये सुबह वाला रैप कैसा लगा आपको ज़रूर बताना भाई बिकॉज ये सुनाने का मतलब भी यही था कि आप रेडी हो जाएं जो लोग सुबह सुबह आने वाले हैं सुबह आके आँख नहीं खुलेगी अरे हमसे पूछो हमसे पूछो आँख नहीं खुलेगी कह रहा है अच्छा भाई कह रहे हैं वंस मोर ठीक है वंस मोर चला दूंगा बिफोर आई प्ले द ट्रैक लेकिन ये ज़रूर ज़रूर सुनिए ठीक है तो मैं एक और बार प्ले कर रहा हूँ जस्ट फॉर द जनता जो सुनना चाहे वो सुन सकता है वॉल्यूम बढ़ा सकता है जो रिकॉर्ड करना चाहे वो रिकॉर्ड कर सकता है क्योंकि मेरे पास फ़ोन में नहीं है बट नहीं है क्या पता नहीं बट लेट मी जस्ट प्ले इट फॉर यू तो ये पैगाम है ये एक ऐलान है कि एक तारीख से सुबह 6 बजे ठीक है जो भाई सुबह आ सके प्लीज़ आना 7:30 बजे के करीब सुबह कहानी सुनाएंगे ठीक है सुना दूँ हेलो

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
3: हाँ तो जी आपका फीडबैक चाहिए बता दीजिएगा कैसा लगा आपको. कह रहा ब्रेकअप करवा रहे नहीं वो ब्रेकअप नींद से ब्रेकअप है मेरी जान. कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं मेरे रैप को अच्छी बात है. आजकल बेचने के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिविटी डालनी पड़ती है. खरीदो माल खरीदो कोई टेंशन नहीं है. उसी नोट पे मैं मोटिवेट करना चाहता हूं जो लोग सुबह उठना चाहते हैं. ये आपके लिए गाना है जो सुबह आ सकेंगे उनके लिए. ये कहूँगा भाई लगे रहो लगे रहो मेरी जान लगा रहे. 666-22-107 by Young Stunner straight from Pakistan, Karachi. Yo, let's go. 6:24 by the clock.
4: If I go, let him know I said, ladke laga rahe.

0: know hum ek rooh do jism mein, let them know ke koi mar ke bhi mare na, let them know ye hum maut ki kis mein.
1: Young Stunners laga rahe Talan Jumo Tala Yunus, one of my favorite artists. Maza aa gaya bhai. But I guess what, I don't know कि कितने लोग हिप हॉप सुनते हैं या फॉलो करते हैं, इस बात का मुझे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ तो करंटली इंडिया और पाकिस्तान में 3 रैप शो चल रहे हैं मिला के. पता है आपको, जैसे इंडियन आइडल देखा करते थे, अभी वो जमाना आ गया जब रैप के लिटरली शोज चल रहे हैं. इंडियन आइडल में क्या है या पाकिस्तानी आइडल में क्या है कि जो पुराने गाने हैं वो गाते हैं, पर रैप शोज में क्या चल रहा है, वो लोग खुद लिख रहे हैं, हफ्ते भर याद कर

0: सवाल से देंगे, मगर साथ में आपको रिकमेंडेशन भी देंगे. तो वक्त आ गया रिकमेंडेशन देने का, कौन सी मूवीज आपको देखनी चाहिए. मैं एक मूवी सजेस्ट करूंगा विच इज मोर लाइक अ थ्रिलर. उसमें हॉरर एलिमेंट जरा सही है, ज्यादा बड़ा हॉरर एलिमेंट नहीं है, मगर आई एम प्रीटी श्योर ये मूवी आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, इसके बारे में शायद कभी पढ़ा भी नहीं होगा, और शायद कभी इस मूवी से रिलेटेड आपके पास कभी रील भी नहीं आई होगी. ये उतनी अंडर रेटेड मूवी है. ठीक है, अंग्रेजी है, बता देता हूँ. मूवी का नाम है द पावर. ठीक है, दो मूवीज आएंगी आपको शायद सामने, विद्युत जामवाल वाली भी दिखे. वाली मूवी की बात नहीं कर रहा मैं अंग्रेजी मूवी की बात कर रहा हूँ. द पावर मूवी का नाम है. कभी मौका मिले तो देखना. मैं मूवी की थीम बताता हूँ, मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे वजह है. तो मूवी क्या है, उस 1970 का उसमें लंदन दिखाया है, और उसमें दिखाया गया कि पावर कट्स लगते हैं, और पावर कट्स हर जगह लगते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल क्यों ना हो. और हॉस्पिटल्स में जब पावर कट लगते हैं तो उसमें पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है दूसरे वार्ड में लाइट बचाने के लिए. तो सबको इकट्ठा करके एक जगह जमा कर देते हैं. ये जो स्टोरी लाइन है, मैंने आपको सिर्फ एक उसका प्लॉट बताया है. ये कहानी एक नर्स की है जो इस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पावर कट लगने वाला है, और पहले ही दिन उसकी ड्यूटी लगती है फॉर द नाइट शिफ्ट, इन द नाइट शिफ्ट. और फिर जो कहानी भाई साहब जाएगी, आपको लिटरली फील होगा, क्योंकि जो मूवी उन्होंने शूट भी करी है वो नर्स के पीओवी से, उसके पर्सपेक्टिव से पूरी की पूरी कहानी है, और बहुत कमाल की है. मगर ये काफ़ी अंडररेटेड है, तो हो सकता है कि हर किसी के टेस्ट की ना हो, बट किसी को अगर ऐसी मूवी देखनी है जो किसी ने सुनी भी ना हो और बहुत बढ़िया भी हो, दिस वन इज़ फॉर देम. तो ये जो मूवी है इसका नाम है द पावर. ठीक है, वो पावर बिजली वाला पावर, वो इसका नाम है. ज़रूर देखिएगा. आई एम प्रीटी श्योर अगर आपको मिल गई तो आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है. आई नो बहुत सारे जुगाड़ लोग हैं, जुगाड़ करने वाले, जिन्हें ये मूवी कहीं ना कहीं से मिली जाएगी और वो देख लेंगे. टाइम मिले तो भाई ज़रूर देखना, इट इज़ ऑन माई लिस्ट. आई एम प्रीटी श्योर आपको मज़ा ज़रूर आएगा ये मूवी देख के. ओके, सेकेंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सेकेंड मूवी मैं सजेस्ट करूँगा. इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ. मैं नाम सही पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा, लेट मी कन्फर्म. आई थिंक मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, ये शायद आपको वैसे भी मिल जाएगी. हाँ, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ है. ठीक है, ये बच्चों को साइड में करके फिर देखना. मूवी इस सीरीज़ का नाम है बिहाइंड हर आइज, बिहाइंड हर आइज बेसिकली. ठीक है, बिहाइंड हर आइज, एक ही सीज़न है इसका, और ज़्यादा बड़े एपिसोड्स नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, छोटे छोटे ठीक ठीक एपिसोड्स हैं. ये आप देखिएगा, आपको लगेगा कि शायद ये हो रहा है, फिर आप बोलेंगे अच्छा शायद ये हो रहा है, अरे नहीं नहीं ये हो रहा है, और फिर एंड में आते आते यू विल बी इन कंप्लीट शॉक. ये जो सीरीज है ये जरूर देखना इफ यू हैवंट सीन इट. ये तो मैं जानता हूं कि बहुत लोगों ने देखी होगी, बट सीरियसली अगर नहीं देखी है बिहाइंड हर आइज तो जरूर जरूर देखिए. हाईली हाईली रिकमेंडेड ये पूरी सीरीज है. एंड जैसे मैंने कहा, मूवी द पावर ये काफ़ी अंडर रेटेड है. ये शायद कहीं पे आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बट नाम नहीं सुना है डजंट मीन कि मूवी अच्छी नहीं है. मैं पर्सनली रेकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन ऑब्वियसली वॉच इट. एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, हाय कबीर, विनेश शेयर जस्ट ट्यून इन, आई एम सॉरी इट्स योर बर्थडे, आई हर्ड टुडे इज योर बर्थडे, जस्ट क्यूरियस. यस यस यस भाई, आज बर्थडे, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मेरे भाई, बहुत सारा प्यार. एक मैसेज है जन्मदिन कब्बू भाई, अरे थैंक यू भाई, सलमान भाई को बहुत सारा प्यार. क्या है भाई आज का क्या सीन है भाई, कोई सीन नहीं होता भाई, वो स्कूलों में होता था भाई सीन बर्थडे का, तो हम तो कॉलेज में छोड़ दिया था, कोई सीन भी नहीं है भाई, बस काम हम निपटा के फिर घर जाएंगे, सो जाएंगे भाई, दिन ख़त्म, कहानी ढूंढ के खलास. एंड एक मैसेज आया भाई, कौन सी मूवी पहली वाली थी, पहली वाली मूवी है द पावर, और सीरीज़ है बिहाइंड हर आइज. तो बिहाइंड हर आइज तो आपको OTT पे मिल जाएगी, देखिएगा फॉर द शॉक वैल्यू, क्योंकि जब आप देखेंगे तो मैं सच्ची बता रहा हूँ आप उसके साथ साथ सोचते रहेंगे कि क्या हो क्या रहा है, एंड एंड में शॉक लगेगा. एक जरा मैं कॉल उठा लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई, क्या हाल है
1: भाई का, बर्थडे
0: बर्थडे भाई, आज तो बर्थडे है, बर्थडे
1: आज तो बर्थडे बर्थडे भाई के, भाई आज का क्या भाई, मैं एक बात बोलता हूँ बंटा, आज क्या मांगता तुम्हारे को बोलो भाई, क्या मंगा आज
0: भाई, कुछ नहीं भाई, भाई कुछ नहीं भाई, अपन बहुत संतुष्ट आदमी भाई,
1: दिल की तमन्ना है भाई आज तुम्हारी, मेरे को मालूम है दिल की.
0: अरे नहीं नहीं भाई, कोई तमन्ना ही नहीं है मेरे दिल की
1: भाई, देखो

0: देखो कबीर भाई लफड़ा हो जाएगा, बाद में बोलना नहीं, जंग वंग हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कबीर भाई, बता दो आज, बता दो दिल की ख्वाहिश।
1: नहीं नहीं सच में, अरे सच में कुछ नहीं है भाई, सच में कुछ नहीं है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि इतनी सारी विशेष मैसेजेस में आ गई, वो बहुत है भाई। तो अभी कोई
0: जनता जनार्दन जानना चाहती है कि तुम लास्ट टाइम अपना बर्थडे कब मनाए थे।
1: लास्ट टाइम बर्थडे का मना था कॉलेज में मनाया होगा भाई, उसके बाद तो ऐसा कुछ खास मैंने ढिंडोरा पीट के नहीं मनाया भाई।
0: अरे बना दो भाई आज, आज एफएम पे तुम्हारा बर्थडे बना दो भाई।
1: एफएम पे तो तेरे सालों से बनता रहा है भाई, दो सालों से मेरे शो के दिन छुट्टी रही है, समझ रहे हो। ये दो साल बाद है कि छुट्टी नहीं है, तो मुझे कम से कम पूछने का मौका मिला।
0: मतलब बॉस को ये बात आप सुना रहे हो कि एफएम पे ये साल छुट्टी नहीं है।
1: वो उसमें क्या कर लेंगे भाई, संडे तो अभी आया, पिछली बार फ्राइडे था, उससे पहले वो सैटरडे था, फिर उससे पहले फ्राइडे था, तो ही नहीं पाया।
0: कबीर भाई लफड़ा झगड़ा हो जाएगा, देख लो बाद में बोलना नहीं भाई।
1: मैं रील भेजता हूँ ना भाई, दिल्ली वाली रील आपको मिली होगी ना, भेजी थी ना मैंने आप।
0: ये अच्छा था कुछ तुम्हारा,
1: तो वो देख लिया करो, समझ में आ जाएगा उससे।
0: और क्या बोलते कबीर भाई, सब मजे में?
1: बस भाई आप सुना भाई, क्या चल रहा है?
0: क्या छोटी मोटी स्टोरी सुना के बच्चे लोग का दिल बहला रहे भाई।
1: भाई आज तो छोटी मोटी कहानी सुना ले भाई, क्योंकि कल जो है ना बहुत बड़ी कहानी सुनाएंगे भाई।
0: मतलब बहुत बड़ी भाई, बहुत बड़ी
1: भाई, कल बहुत बड़ी गाने सुनाऊंगा मैं लिटरली। सबको लव स्टोरी सुनने का बहुत शौक है ना, कल देखो मैं लव स्टोरी लिस्ट सुनाता हूँ।
0: मतलब सही है, सही जा रहे हो भाई। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो बाकी।
1: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार, जज़ाकअल्लाह। ओके थैंक यू। आसिफ भाई के बाद विनीश भाई लिखते हैं कि मोर मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नियर ट्रीट ओके, और लिखा है एनीवेज वेलकम इन, वेलकम यू इन द मॉर्निंग। थैंक यू सो मच भाई, मॉर्निंग वाले भी अब लोग जाग गए, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी, थर्मस कैरी करने का टाइम वापस आ चुका है मेरा, तो आई एम ऑल सेट फॉर इट। बाकी अगर आपकी कोई मूवी रिकमेंडेशन हो जैसे मैंने अभी आपको बताई, तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हो सकता है कुछ आप भी देख रहे हो तो बता दिया करें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। 666-221-07 नंबर। ये गाना कुछ देर में आएगा, इससे पहले कुछ और चलाता हूँ, रुको। 636 बाय द क्लॉक एंड मैं जी दोहा वाला कबीर। एक और मैसेज है, क्या है आज की स्टोरी? देखो भाई आज की स्टोरी देखो, अच्छा अभी देखता हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि आप व्हाट्सएप पर चैनल बनाओ ना, तो ग्रुप बनाओ उसे, वही मैं सोच रहा हूँ, बट मैं वो पता क्या वीडियोस भेजने के लिए बनाना चाहता हूँ, नॉट फॉर दिस, समझ रहे हो, तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगा, डोंट वरी, दैट विल कम अप रियली सून। जी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? अच्छा मिल गया, एक सेकेंड। 666-221-07 इज द नंबर। और हाँ जी, तो बर्थडे है तो ये गाना तो चलेगा भाई, शोर तो मचेगा, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए क्योंकि अब शोर मचेगा। हाँ जी, यू योहानी सिंगर, आज अपना बर्थडे है तो शोर तो मचेगा।

0: मचेगा मचेगा।
1: ख्याल है भाई, बढ़िया। मैं कुछ मैसेजेस पढ़ दूं, नाम ले दूं भाई। मुबीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मकबूल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्माइल भाई ने बहुत प्यारी विश की, इस्माइल भाई बहुत सारा प्यार आपको। एंड एक मैसेज है, हैप्पी बर्थडे भाई, गिफ्ट कब मिलेगा मुझे? काशिफ कश्मीरी भाई, सो क्यूट ऑफ यू। और एक मैसेज आया है मुझे, ये मैसेज क्या है मुझे, आए ये एक सेकंड, शाहिद भाई क्या है, शाहिद सैम, शाहिद अनवर और उजाली। अच्छा, ये तीनों एक साथ, तीनों एक साथ घूम रहे भाई, इज दैट करेक्ट? अच्छा, थैंक यू सो मच भाई आप सबका, क्या आप अपने ट्यून इन किया। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने विशेस दिए, भर भर के मैसेज किए आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत प्यार, कदम से यार मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। रेली अब जरा ट्रैफिक दे दूँ मैं आपको, तो अगर आप अहमद बिन अली स्ट्रीट के पास है, इंटरसेक्शन के पास ट्रैफिक है, बाकी तो मामला एकदम यहाँ पे सेट नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कॉलेज की तरफ अगर आप जा रहे हैं, स्पेशली मजलिसल तवान स्ट्रीट से होते हुए मरखिया स्ट्रीट से, तो आपको बीच में ट्रैफिक मिलेगा अच्छा खासा है, मतलब इट्स नॉट दैट क्या कहते हैं, ईजी वाला ट्रैफिक नहीं है भाई, ईजी वाला नहीं है ये। इसके अलावा अगर आप जो हैं ये अलरयान रोड के आसपास हैं, यहाँ से जाते हुए आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स इब्न महमूद स्ट्रीट, और जो मेन ट्रैफिक है सलवा रोड पे, वो आपका इंतजार कर रहा है अगर आप वहाँ से जाने की सोच रहे हैं। एकदम बढ़िया वाला जामला, बढ़िया वाला, हौली हौली जाओ। ये यहाँ से लेकर पूरा जो वादी मुशायरफ स्ट्रीट तक है, पूरा ट्रैफिक है, अलखैल स्ट्रीट के पास ट्रैफिक मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आप ये अपना कौन सा भाई, दौलत अल खैल हेल्थ सेंटर जो है उसके पास निकलेंगे, तो इब्न सीना की तरफ होते हुए भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। सीरिंग रोड थोड़ा सा बिजी है, ज़्यादा बिजी नहीं है, इंटरसेक्शन के पास सिर्फ सिग्नल के पास पास इसका ट्रैफिक है, तो अभी तो ये मामला ठंडा है, लेकिन अभी कुछ देर में गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ हो जाता है। टाइम नहीं लगता भाई, टाइम नहीं लगता, यहाँ से कई मरतबा मेरा आना जाना होता है, डेली का ही मामला, तो इसलिए क्या क्या क्या क्या एक सेकेंड मैसेज है मेरे पास। सर मेरा नाम लिया मेरा नहीं, सर आपने नाम लिया मेरा नहीं, मुबीन भाई सबसे पहले आपका नाम लिया मैंने, मोमिन भाई के स्पीकर चेक करके आओ। मोमिन भाई क्या बात हो गई भाई, हेडफोन में दिक्कत है गाड़ी में। दोहा एक्सप्रेसवे की तरफ भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, लेकिन बीच में है वो, दैट्स अ मूविंग ट्रैफिक, उन लोगों की वजह से ये जो 120 के रोड पे 70 पे भगा रहे होते हैं, वही रीज़न है इस ट्रैफिक का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैसेज है फलक भाई का, फलक भाई नहीं भूला भाई, बहुत सारे मैसेजेस मैं एक साथ सारे पढ़ नहीं पा रहा था, मगर बहुत प्यार फलक भाई, थैंक यू सो मच फॉर द विशेज मेरी जान, जजाकल्लाह बहुत प्यार। और एक भाई ने हेलो लिखा है और कहानी भेजिएगा लिखा है, ना दूसरी चीज़ों को मतलब नहीं है। इरशाद भाई थैंक यू सो मच, आपका हेलो कबूल करता हूँ मैं। बाकी देखो प्लीज़, 100 का अगर दिखा रहा है रोड या 80 का दिखा रहा है, स्पीड के आसपास तो रहो कम से कम, प्लीज़ थोड़ा तो मतलब मूव ना बाबा, मूव थोड़ा

तुझे दे दी और कहानी में दे दूंगा बस कुछ ही देर में। फिलहाल तो 6:50 हो लिए हैं और कल है इस सफ क्या कहते हैं उसे, मैं हिंदी का वर्ड भूल रहा हूँ। खैर इस फेज का आखिरी इवनिंग शो है, फिर मॉर्निंग शुरू हो जाएगा। सो जस्ट अ रिमाइंडर, ओके। तो कल बहुत बढ़िया कहानी मुझे लानी पड़ेगी, मेरे पास बहुत प्रेशर है, मुझे पता नहीं कौन सी कहानी लेके आऊँगा, बट इंशाल्लाह कल लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे आपको, ठीक है। बट फॉर नाउ सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। एंड मुझे भी ढूंढ सकते हैं आप दुहा वाला कबीर के नाम से। अभी फ़ौरन जाके मैं देखता हूँ कौन से फोटो अपलोड करूँ, क्योंकि आज मुझे अपना लुक रिवील करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं इंशाल्लाह शाम 5 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

उन्होंने कहा कि पानी और सीवेज के 80% से ज़्यादा नेटवर्क तबाह किए जा चुके हैं। फ़िलिस्तीनी खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि पानी की यौमिया पैदावार तकरीबन 3 लाख क्यूबिक मीटर से कम होकर 1,23,000 क्यूबिक मीटर रह गई है, जबकि फी फर्द रोज़ाना पानी की दस्तियाबी सिर्फ 21 से 22 लीटर तक महदूद हो गई है। उन्होंने जरासीम कुश मवाद की कमी और पानी के मेयार की जांच के लिए महदूद सहूलियात पर भी तशवीश का इजहार किया है। सईद ने मज़ीद कहा कि पानी और सीवेज के निज़ाम की मुसलसल खराबी गज़ा में इंसानी और माहौलियाती बहरान को मज़ीद बढ़ावा दे रही है। काबिज़ इसराइली फ़ौज के हमलों के नतीजे में गज़ा में 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए ने बताया कि वस्ती गज़ा के शहर दैर अल-बलह में इसराइली ड्रोन हमले के नतीजे में 3 साल बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ से गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों में इसराइली फ़ौज की बमबारी और फायरिंग के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 7 तक पहुँच गई है। वाज़ह रहे कि इन हमलों में रिहायशी इमारतों, शहरी गाड़ियों और बेघर अफराद के कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके नतीजे में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी ज़राए ने मज़ीद बताया कि जंग बंदी मुआहदे के बावजूद गज़ा में इसराइली हमले जारी हैं। गज़ा के जनूबी शहर खान यूनुस के इलाके में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से एक उम्र रसीदा फ़लस्तीनी खातून ज़ख्मी हो गई हैं। फ़लस्तीनी खबर रसा इदारे ने बताया कि खातून को इसराइली फ़ौज की गोली लगी, ताहम उनकी हालत और ज़ख्म की नौईयत के बारे में मज़ीद मालूमात सामने नहीं आई हैं। फराहम करदा अदाद व शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में जारी इसराइली हमलों के नतीजे में 73,449 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1,74,442 ज़ख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 90% शहरी बुनियादी ढांचे की तबाही की इत्तला'आत मौसूल हुई हैं, जबकि अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक तामीर नौ की लागत तकरीबन $70 अरब हो सकती है। अलजज़ायर के सदर अब्दुलमजीद तब्बून ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कई रोज़ से जारी जंगलात की आग के पीछे मुमकिन तौर पर शरपसंद अनासर के मुलव्विस होने का ख़दशा ज़ाहिर किया है। सदर तब्बून ने कहा कि आग इंतहाई तेज़ी से फैली है, इसलिए तखरीबकारी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मुतासर अफराद की इयादत के दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले में ज़रूरी तहकीक़ात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेज़ हवाओं ने आग बुझाने की कोशिशों को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। अलजज़ायर में मौसम गर्मा के दौरान शदीद गर्मी, कम नमी और तेज़ हवाओं के बाइस जंगलात में आग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। अलजज़ायर के जनूबी इलाके सैंडविच में 5.1 शिद्दत का जलजला आया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 135.7 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जनूबी बहरे उकियानूस में वाक़ यह इलाका बरतानवी समंदर पार खित्ते का हिस्सा है और यहाँ जलजलों और आतिशफशानी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहता है। अगस्त 2021 में भी इस इलाके में 8 शिद्दत से ज़्यादा का शदीद जलजला आया था, ताहम दूर दराज और गैर आबाद होने के बाइस उस वक्त किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली थी। जम्हूरिया तातारिस्तान के सदर रुस्तम मेनेखानूफ ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की खबर रसाई एजेंसियों की यूनियन यूना के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रब्बी अलियामी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में तातारिस्तान और यूना के दरमियान मीडिया के शोबे में मुश्तरक ताउन के ताल्लुकात, इन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की गई। दोनों अतराफ ने मुश्तरक प्रोग्रामों और मंसूबों के ज़रिए राबता कारी मजबूत बनाने और मुश्तरक मफादात के हसूल पर जोर

छोड़ दिया है। इस मुलाकात में मोहम्मद बिन अब्द रब्बी अलयामी ने सदर रुस्तम मिनेखानूफ को यूना की तरफ से मीडिया डिप्लोमेसी अवार्ड भी पेश किया है। ये एज़ाज़ मीडिया के शोबे की हमायत, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबते और इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग देने और तातारिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम के ममालिक के मीडिया इदारों के दरमियान ताउन मजबूत बनाने में उनकी कोशिशों के अतराफ़ में दिया गया है। इस मुलाकात के दौरान आवाम और मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान क़ुर्बत बढ़ाने और पायदार शराकत दारी के लिए मुश्तरक मीडिया इकदाम की अहमियत पर भी बातचीत की गई है। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टेब ने कहा है कि रूस के लिए नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला करना एक बड़ा ख़तरा मोल लेने के मुतरादिफ होगा। स्टेब ने कहा कि नेटो दुनिया का मजबूत तरीन फौजी इत्तेहाद है, ताहम इसे हर मुमकिन हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस यूक्रेन में भारी जानी नुकसान उठा रहा है, इसलिए उसके लिए बैक वक्त दो महाजों पर जंग लड़ना मुश्किल होगा। सदर ने यूरोप से पुरजोर अपील की है कि वो यूक्रेन की हमायत जारी रखे, क्योंकि यूक्रेन यूरोप की सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना के शहर कोलंबिया में फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस अफसर हलाक और दूसरा ज़ख्मी हो गया, जबकि मुश्तबा शख्स भी इस हादसे में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाकया एक झगड़े की इत्तला पर कार्रवाई के दौरान पेश आया। वाकया की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने बताया कि आवाम को मज़ीद किसी ख़तरे का सामना नहीं है। FBI ने बताया कि 2025 में अमेरिका में पुलिस अहलकारों पर 90,178 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। कैफ में यूक्रेन के वज़ीर दिफा से लोटोविया के वज़ीर दिफा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में यूक्रेन की दिफाई अफवाद की फौरी ज़रूरियात और दिफाई ताउन बढ़ाने से मुतालिक बातचीत की गई है। यूक्रेन ने ज़मीनी रोबोटिक निज़ाम, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, दरमियाने फासले तक मार करने की सलाहियत और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को अपनी तरजीही ज़रूरियात करार दिया है। उधर लोटोविया ने यूक्रेन को सिक्योरिटी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। नेपाल में शदीद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 733 हो गई है, जबकि 2,500 अफराद लापता हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से लापता अफराद की तलाश और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल चौथे रोज़ भी जारी है। शदीद मुतासरा इलाके नोवाकोट में ख़राब मौसम के बाइस आर्दी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है। इमदादी टीमों को मुश्किल मौसमी और ज़मीनी हालात का सामना है, जबकि दूर दराज मुतासरा इलाकों तक पहुँचने की कोशिशें भी जारी हैं। इंतज़ामिया को ख़दशा है कि लापता अफराद की तलाश और लाशें निकालने का अमल मुकम्मल होने के बाद हलाकतों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताज़ा फ़ज़ाई हमलों के दौरान सैकड़ों ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने बताया कि रूस की जानिब से दागे गए 130 ड्रोन्स में से 125 को तबाह या नाकारा बना दिया गया, जबकि दो बैलिस्टिक मिसाइल भी रोके गए। यूक्रेन की इंतज़ामिया ने बताया कि हमलों के नतीजे में 13 मकामात पर मादी नुकसान या जानी नुकसान की इत्तला मौसूल हुई हैं, जबकि 4 मकामात से ड्रोन्स का मलबा मिला है। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा ने दावा किया है कि उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गुज़िश्ता रात 8 बजे से आज सुबह 8 बजे तक 494 यूक्रेनी ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया है। यूक्रेन की इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी हमलों में यूक्रेन के इलाके खैरसून में 3 अफराद हलाक और कम अज़ कम 17 ज़ख्मी हो गए हैं। सामाइन, नशरिया के अख्तिताम पर एक मरतबा फिर पेश खिदमत है अहम ख़बरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर ने सोमालिया के सदर की जानिब से एक दस्ती पैगाम
वसूल किया है।

0: आ जाओ जी भी सारे आ जाओ, आज टेक्नोलॉजी से बातचीत करेंगे। फिर से मौका आ गया हमारे पास और ये मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज टेक्नोलॉजी क्या बात कर रही है आप सर मुझसे, क्योंकि हमारे तो बस की है नहीं इनसे बात करना, टेक्नोलॉजी हमसे आगे ही चल रही है। मैं जब भी बात करूंगा हमेशा टेक्नोलॉजी विल बी अ स्टेप अहेड, चाहे वो गैजेट्स हो, टूल्स हो, एप्स हो, हर कुछ ऐसा मिलेगा आपको, हर कुछ इज अ वेरी नाइस वर्ड टू से, सभी कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो अपडेटेड है मार्केट में। आप इसके साथ कदम से कदम मिला ही नहीं सकते, मगर एटलीस्ट रेस नहीं तो मैराथन तो चली सकता है। तो बहुत कुछ है आज भी, आज टेक इनोवेशन में वापस एप्स, गैजेट्स एंड देन ऑफ कोर्स खबरें जो बहुत मसालेदार हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे एप्स दिस वीक से,
1: ट्रेंडिंग एप्स।
0: तो एप्स इस वीक शुरू करने से पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद है, प्लीज आ जाइएगा। ओके, तो पहली ऐप जो है ये एक कैमरा ऐप है, उन लोगों के लिए जो ज्यादा प्रोफेशनल कैमरा के साथ मुठभेड़ नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि बड़े सिंपल से फिल्टर्स मिल जाएं लेकिन अच्छे वाले में। तो देखो ये ओल्ड स्कूल चीज है, अक्सर क्या होता है जब आप फोटोज खींचते हैं तो आजकल लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं या AI से कह देते हैं AI सुनना भाई मेक इट सिनेमैटिक भाई, पर कुछ ज्यादा AI बिना यूज किए या सिंपल फिल्टर्स आपको चाहिए जो काफी अच्छे हैं, न्यू हैं, न्यू स्कूल हैं। तो आपको मैं एक ऐप बता रहा हूं लेकिन ये एंड्रॉइड वालों के लिए, iOS तो जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है फोटोन कैमरा, ठीक है, फोटोन कैमरा PHOTON स्पेस देखिए कैमरा CAMERA। ये ऐप है, डाउनलोड करके देखिए आप, आपको ज्यादा इसमें भेजा लगाना ही नहीं है। आप जब कोई फोटो खींचेंगे तो उसके बाद आपको फिल्टर्स की इतनी भरमार मिलेगी जो अक्सर फिल्टर्स बाकी एप्स पे पेड होते हैं वो यहां पर आपको मुफ्त में मिल जाएंगे, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल डील। तो आप डाउनलोड करके मुझे जरूर बताएं, मगर ये आज एंड्रॉइड वालों का दिन है तो मैं आज उनको ही बता रहा हूं। दिस इज अगेन एन एंड्रॉइड ऐप। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगली जो ऐप है ये भी एंड्रॉइड के लिए, हालांकि बहुत जल्दी iOS पे आ जाएगी आई एम प्रिटी श्योर, लेकिन इसका भी बीटा वर्जन आ चुका है एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, जल्दी होगा, सोच तो रहा था हो जाएगा लेकिन हो गया है। गूगल फ्लो का नाम सुना है आपने? गूगल फ्लो एक बहुत ही धुरंधर किस्म की ऐप है, AI है, जो कि अभी तक सिर्फ कंप्यूटर्स पर, डेस्कटॉप लैपटॉप्स पर चल रहा था, फोन्स पर नहीं था। बट गूगल ने यह मौका दिया है अभी एंड्रॉइड को, सो नॉट ऑन iOS मगर एंड्रॉइड पे आ चुका है गूगल फ्लो बीटा वर्जन। तो गूगल फ्लो का जो ये वाला वर्जन है आप यूज करके देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला सीन है इसके साथ। आपने कितने ही AI अभी तक यूज कर लिए होंगे, आपने वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए वीडियो से फोटो, फोटो से वीडियो, वीडियो से फोटो वो भी होता है वैसे, पर फोटो से वीडियो या वीडियो में कुछ ऑल्टरेशन या फोटोज में कुछ ऑल्टरेशन। तो ये जो ऐप है भाई

0: ये कम से कम 5 ऐसी तगड़ी AI apps है जिनको सीधा सीधा टक्कर देती है, और ऊपर से गूगल का नाम जुड़ा हुआ है तो उनकी इसमें नाक है बिल्कुल, वो गिरने नहीं देंगे। तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ AI जनरेशन गूगल फ्लो से आपको मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं दिन में 150 फोटोज कर लूं वो नहीं होगा, ऑफकोर्स वो पेड वर्जन में आएगा, लेकिन अभी बीटा वर्जन है। आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है ना, फ्लैक्स करते हैं लोग अपनी स्किल को शो ऑफ करने के लिए, तो गूगल ने बहुत बढ़िया शो ऑफ किया है। सो इफ यू हैव एन एंड्रॉयड फोन, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है, डाउनलोड कीजिएगा गूगल फ्लो बीटा वर्जन, आपको मिल जाएगा। उसमें आप कुछ भी, आपको वीडियो जनरेट करना है किसी फोटो से, कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्रॉम्प्ट दीजिएगा, और प्रॉम्प्ट देना ना समझ में आए तो चैट जीपीटी से पूछ लेना, ग्रॉक से पूछ लेना, क्लॉड से पूछ लेना, तीनों के तीनों को बता देंगे कि भाई ये चाहिए क्या, लो मैं करके देता हूं, तो वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर देना, मेकिंग इट इजियर। ओके, गूगल फ्लो, आगे बढ़ते। अब अगली जो ये ऐप है, ये रिसर्च बेसिस, रिसर्च के लिए काम आएगी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की ऐप्स यूज करते हैं और बहुत सारी ऐप्स बहुत ज्यादा पैसे मांगती हैं भाई। देखो, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ फैन ऑफ क्लॉड, मैं मानता हूँ क्लॉड बहुत बढ़िया है, मगर भाई क्लॉड महंगा भी उतना है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में जो कि लोगों को ऑलरेडी पता है, मगर मैं भी अपनी तरफ से एक ऑल्टरनेट देना चाहता हूँ। इसका नाम है वाइब बाय मिस्ट्रेल। वाइब AI का नाम है, VIBE, और बनाने वाली कंपनी है मिस्ट्रेल या मिस्ट्रल जो भी है, MISTRAL, वाइब मेन AI का नाम है। इससे आप रिसर्च करवा सकते हैं, इससे आप एक्सेल शीटें बनवा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं, फ्लो चार्ट बनवा सकते हैं, पूरे के पूरे किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च पेपर तैयार करवा सकते हैं, इन विच एवर फॉर्मेट फॉन्ट यू वॉन्ट, सब कुछ मिलेगा आपको भाई, हर किस्म की फाइल बना के दे देगा आपको। और इतना बढ़िया AI है, आई नो ये एक पॉइंट पे आके जाके आपसे पूछता है भाई लाओ पैसे निकालो, फ्री में तेज मिलेगा, लेकिन ये अगले दिन जो है रिफ्रेश हो जाता है। ये बेस्ट चीज है भाई, मैं आपको ये ऑल्टरनेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू ट्राई क्लॉड, मैं खुद उनमें से आता हूँ भाई, लेकिन मैं इतना पे करने को राजी नहीं हूँ, मेरे को नहीं, इतनी गरज नहीं है, तो मैं जुगाड़बाजी से कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ। तो ये एक ऑल्टरनेट है, ऑफकोर्स आपको जो प्रॉम्प्ट है वो सीखने पड़ेंगे, बट अगेन मैंने प्रॉम्प्ट का तरीका बता दिया है आपको, आप चैट जीपीटी, ग्रॉक और बहुत सारे अलग अलग ऐप्स हैं AI की जो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ मुझे क्या प्रॉम्प्ट देना चाहिए एंड मुझे इस पे प्रॉम्प्ट देना है, सो दे विल लेट यू नो कि ऐसे ऐसे करना है। वन ऑफ द बेस्ट AI आई हैव एवर कम अक्रॉस, सो वाइब है, बहुत बढ़िया ऐप और कतई वाइब है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ ऐप्स, अब जरा आगे बढ़ेंगे गैजेट्स दिस वीक की तरफ।
1: cool gadgets.
0: तो भाई गैजेट नंबर 1, ये उन लोगों के लिए जो एक टैबलेट ढूंढ रहे हैं, खाने वाली नहीं जी, ऑब्वियसली बात है, मेरा जो की खराब कर दिया, मैंने खुद ही खराब कर दिया। तो एक टैबलेट स्क्रीन चाहिए, बच्चों की जिद होती है, टैब दिला दो, टैब दिला दो जी, टैब दिला दो, आहूं। तो ये टैब जो है बहुत काम का है और बजट में है और कतर में अवेलेबल है। ये है वन प्लस पैड लाइट, वन प्लस कंपनी का नाम सबको पता है, पैड लाइट, PAD LITE। इससे बढ़िया बजट में आपको टैबलेट मिलने का नहीं भाई, बाकियों में कुछ ना कुछ खराबी खामी मिल जाएगी आपको, लेकिन इसमें ऐप ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। ये अपने बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, बढ़िया 11 इंच की स्क्रीन है, साउंड बढ़िया है, और सबसे अच्छी बात अब इस पे आप पढ़ाई करवाना चाहें, बच्चों को देना चाहें, ऑफकोर्स जो बच्चे इस लायक हैं, टीनेजर्स हैं जिनको दे देना चाहिए तो उनको आप दे सकते हैं। एंड ये पढ़ाई करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, मूवीज देखने के लिए बहुत बढ़िया बजट में है ये टैबलेट। सो वन प्लस का जो पैड लाइट है वो यहाँ पे आई थिंक 1000 से बहुत नीचे में आ जाता है, इस पे ऑफर्स भी बहुत लगते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार इंडिया में, उससे मंगा लो भाई, और भी सस्ता मिल जाएगा आपको, कतई ऑफर चालू है भाई इस पे, बहुत बजट में और बहुत कमाल का। इफ यू वांट टू गिफ्ट समवन, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट टैब्स, टैबलेट्स इन बजट। ओके, गो फॉर इट, आगे बढ़ते हैं।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी

0: अखलाकी हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
5: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।

0: और उन्होंने ट्रेलर विलर छोड़ो, सीधा गेम प्ले दे लो भाई, ट्रेलर को करो साइड में, वो तो मैं मजा नहीं आ रही, ये लो गेम प्ले देखो तुम, और पूरा गेम प्ले खतरनाक, क्या क्या किया है भाई, आप देख लो भाई गेमर्स, 15 मिनट का है, जाके देख लेना ब्लैक मिथ जोंग क्यू। बाकी मेरे 15 मिनट पूरे होते तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। 666-22-107 नंबर है और FM 107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मिल जाएंगे, प्लीज गेट इन टच विद अस। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलाम।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आजकल हम अक्सर एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। न्यूज में, सोशल मीडिया पर, स्कूल्स में, हर जगह क्लाइमेट चेंज का जिक्र होता ही होता है। लेकिन भाई, सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? अच्छा, सिंपल अल्फाज में समझें तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के मौसम के पैटर्न्स जो होते हैं उनमें लंबी मुद्दत तक आने वाली तब्दीली। टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर, बारिश, हवा और सीजन्स के नॉर्मल पैटर्न में चेंजेस आना। तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज सिंपल एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज को आसान अल्फाज में समझाना। साथियों, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हमारी जमीन का क्लाइमेट हमेशा से थोड़ा चेंज होता रहा है, लेकिन आज जो चेंजेस देखे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह है, क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा होना। अच्छा, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि आप कह लें, क्या कह लें, हाँ, ऑयल, गैस और कोल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लें कि ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, या आप कह लें फॉरेस्ट को काटते हैं, कम करते हैं, या ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है भाई? उससे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अच्छा, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सॉल्यूशंस देती हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। पहली चीज तो ये कि एनर्जी स्मार्टली यूज करें। जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और अप्लायंसेस बंद करें। एनर्जी बचाना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। वेस्ट कम करें, चीजों को रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें या अननेसेसरी शॉपिंग से बचने की कोशिश करें। कम वेस्ट का मतलब है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल। प्लांट और ग्रीन स्पेसेस को सपोर्ट करें। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। घर में पौधे लगाना या आप कह लें कि ग्रीनरी को सपोर्ट करना एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। चौथी चीज ये कि स्मार्ट ट्रेवल चॉइसेस करें, जहां मुमकिन हो वॉकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयर ट्रांसपोर्ट जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर छोटा एफर्ट एनवायरमेंट के लिए बेहतर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेयरनेस फैलाएं। क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखना और दूसरों को बताना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब लोग समझते हैं तभी लोग बेहतर डिसीजन भी लेते हैं। इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, सिंपल सी, तो क्लाइमेट चेंज को एक सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो, अगर एक कमरा पूरा बंद हो और उसमें हीट फंस जाए, ठीक है, पूरी तरह से कमरा बंद है, उसके अंदर हीट फंस जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म महसूस होना शुरू हो जाता है ना। हमारी जमीन के एटमोसफेयर में भी कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती है ऐसी। जब इन गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है तो टेम्परेचर और वेदर पैटर्न पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और टेम्परेचर चेंजेस देखे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। भाई, तो भाई लिसनर्स, हमारा आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आज अपने दिन की एक ऐसी एक्टिविटी सोचिए जहां आप एनवायरमेंट के लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी सेव करना हो, वेस्ट कम करना हो या नेचर के करीब रहना हो। और हमें जरूर बताएं आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सबसे पहला और छोटा स्टेप क्या होना चाहिए। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, जमीन हमारा घर है और हर छोटी जिम्मेदारी इस घर को बेहतर बना सकती है। तो भाई, छोटी सी आदत डालें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे कतर के एक वन ऑफ द लीडिंग बॉक्सर्स के बारे में जिनका नाम है हुज़म नवा। या दोस्तों, हुज़म नवा कतर के तारीख के सबसे नुमाया बॉक्सर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और बेहतरीन टेक्निक की बदौलत मुल्क का नाम एशिया भर में रोशन किया। दोहा में मुनाकिद 2006 एशियन गेम्स में उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा था, जहां उन्होंने लाइट हैवीवेट कैटेगरी में शानदार मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये कामयाबी कतर के बॉक्सिंग की तारीख में एक अहम मोड़ था और नए बॉक्सर्स के लिए एक मिसाल बनी। हुज़म नवा ने मुख्तलिफ बैन अक्वामी टूर्नामेंट्स में कतर की नुमाइंदगी की और हमेशा पुरजोश अंदाज में रिंग में उतरे। दोस्तों, उनकी बॉक्सिंग का अंदाज, ताकत, रफ्तार और बेहतरीन डिफेंस का खूबसूरत मिक्सचर था। हर मुकाबले में वो मुख्तलिफ बॉक्सर को सख्त चैलेंज देते थे और अपनी डिसिप्लिन और फिटनेस की वजह से पहचाने जाते थे। उनकी कामयाबी ने कतर में बॉक्सिंग के खेल को मजीद मकबूल बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। आज भी हुज़म नवा को कतर के बेहतरीन बॉक्सर में शुमार किया जाता है। उनकी मेहनत और अज़म नए खिलाड़ियों को ये पैगाम देता है कि लगन, सब्र और मुसलसल मेहनत से बैन अक्वामी सतह पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
1: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One step to 2030. आज हम क्या वीडियो गेम्स मुस्तकबिल का स्पोर्ट्स बन चुके हैं या बन रहे हैं या पूरी तरह से बन जाएंगे? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और खास तौर पर यंग जनरेशन में तो बहुत ही पॉपुलर। ई गेमिंग या फिर ई स्पोर्ट्स। एक वक्त था जब वीडियो गेम्स को सिर्फ बच्चों का एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता था। पेरेंट्स अक्सर कहते थे कि गेम्स खेलकर वक्त जाया मत करो। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, जहाँ प्रोफेशनल प्लेयर्स, टीम्स, टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप सब कुछ मौजूद है। सवाल ये है कि क्या ई गेमिंग वाकई एक स्पोर्ट है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है? वेल, ई गेमिंग या ई स्पोर्ट से मुराद कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स है। यहाँ प्लेयर्स इंडिविजुअल या टीम की शक्ल में गेम्स खेलते हैं और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरह। यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, स्ट्रैटेजीज है, टीम वर्क की जरूरत होती है। आज देखा जाए तो दुनिया भर में गेम्स जैसे फुटबॉल सिमुलेशंस, रेसिंग गेम्स, बैटल गेम्स, स्ट्रैटेजी गेम्स कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेले जाते हैं। कुछ टूर्नामेंट्स को लाखों और कभी कभी मिलियन लोग ऑनलाइन देखते हैं। क्या गेमिंग सिर्फ और सिर्फ तफरी का जरिया है? बहुत से लोग समझते हैं कि गेमिंग सिर्फ टाइम पास है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत सी स्किल्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे फास्ट डिसीजन मेकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टीम कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। प्रोफेशनल गेमर्स अक्सर रोज कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल एथलीट्स की तरह। उन्हें भी प्रेशर हैंडल करना पड़ता है और टूर्नामेंट के लिए मेंटली तैयार होना पड़ता है। अब ई गेमिंग इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर प्लेयर किसी दूसरे मुल्क के प्लेयर के साथ कम्पीट कर सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने गेमिंग को और भी एक्सेसिबल बना दिया है। अब लोग सिर्फ गेम्स नहीं खेलते बल्कि दूसरों को गेम्स खेलते हुए भी देखते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम फुटबॉल या क्रिकेट मैचेस देखते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ई गेमिंग सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत सी जॉब्स भी मौजूद हैं, जैसे गेम डेवलपर्स, कमेंटेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स, टीम मैनेजर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स। यानी अगर वे प्रोफेशनल गेमर ना बन पाए फिर भी गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बना सकता है। वैसे गेमिंग के फायदे भी हैं, आई मीन टू से ई गेमिंग के फायदे भी हैं। जी हाँ, गेमिंग अगर बैलेंस के साथ की जाए तो कई पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। प्लेयर्स टीम वर्क सीखते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, रिएक्शन स्पीड बेहतर होता है और कई गेम्स क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भी प्रमोट करते हैं। कुछ एजुकेशनल गेम्स लर्निंग को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वहीं इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। हर चीज की तरह गेमिंग के कुछ चैलेंजेस सामने आते ही हैं और एक बड़ा चैलेंज है एडिक्शन। हर कोई शख्स बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पर गुजार रहा है, उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो रही हैं। कुछ बच्चों के, कुछ गेमर्स के तो स्लीप रूटीन बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये एडिक्शन बहुत बड़ा कंसर्न है। शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गेमिंग और रियल लाइफ के दरमियान बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे ई गेमिंग का फ्यूचर क्या होगा? मुस्तकबिल में ई गेमिंग और भी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेयर्स की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस एनालाइज करने में मदद करते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी गेमिंग स्कॉलरशिप्स ऑफर करने लगे, यू नेवर नो। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ई गेमिंग फ्यूचर का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बनेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ई गेमिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे? ना, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, मुमकिन है कि पॉपुलैरिटी ई स्पोर्ट्स की ज्यादा बढ़ जाए। एक तरफ फुटबॉल और क्रिकेट हो और दूसरी तरफ डिजिटल स्टेडियम्स में सेम गेम जो है टूर्नामेंट्स चल रहे हो सकता क्या ऐसा ही होने वाला है।
1: कुछ सवाल हैं जो हमें और आपको ढूंढने हैं. क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गेमर बने? क्या आपको ऐसा लगता है कि ई गेमिंग एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन बन सकता है? अपने आप में बड़े दिलचस्प सवाल हैं. पता नहीं, शायद हम

0: पेरेंट अगर इस सवाल का जवाब दें तो कुछ भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा. लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो है टेक्नोलॉजी. जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने गेमिंग को एंटरटेनमेंट से निकाल कर प्रोफेशनल और ग्लोबल कॉम्पिटिशन बना दिया है. अहम बात ये नहीं कि आप गेम खेलते हैं या नहीं, आपका बच्चा गेम खेलना चाहता है कि नहीं, अहम बात ये है कि हर चीज़ की तरह गेमिंग में भी बैलेंस हो, डिसिप्लिन हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस फील्ड में फ्यूचर बनाना बुरा नहीं. चलिए यहीं पर इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाज़त दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: One step to 2020. FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
6: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत किसी एक शहर, एक कौम या एक खित्ते के लिए नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए लेकर आए थे। इसीलिए जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरा मजबूत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का दायरा अरब से बाहर भी वसी फरमाया। उस दौर में न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न मोबाइल फोन और न चंद सेकंड में दुनिया के दूसरे किनारे तक पैगाम पहुंचाने का कोई जरिया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के मौसर जराए इस्तेमाल किए, खतूत लिखवाए, काबिल एतमाद नुमाइंदे मुंतखब किए और दुनिया के बड़े हुक्मरानों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। आज की हदीस उसी नबवी दावत के खूबसूरत पहलू से हमें रोशनास कराती है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा, कैसर, नजाशी और मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे और उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी। अब यहाँ जिस नजाशी का जिक्र है, ये वो नजाशी नहीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई थी। सामिन किराम, अब जरा इस मंजर को जहन में लाइए कि एक तरफ फारस की अजीम सल्तनत है और उसका हुक्मरान किसरा, दूसरी तरफ रूमी सल्तनत है और उसका बादशाह कैसर। हबशा में नजाशी की हुकूमत है, ये अपने जमाने की बड़ी सियासी ताकतें थी اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حکمرانوں کو خطوط بھیج رہے ہیں کس لیے؟ نہ کسی ذاتی مفاد کے لیے، نہ دولت حاصل کرنے کے لیے، نہ اپنی ذات کی بڑائی منوانے کے لیے، مقصد صرف یہی تھا یدعوہم الی اللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے، یہی نبوی مشن تھا، انسان کا تعلق اپنے خالق سے جوڑ دینا۔ آج کی حدیث کا ایک نہایت عملی سبق یہ ہے کہ دعوت صرف تقریر سے نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کو بھی دعوت کا ذریعہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی صحیح بات پہنچانے کے لیے مختلف جائز ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک احتیاط بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہر چیز فوراً شیئر نہ کریں، خصوصاً دین کی بات ہو تو صحت اور تحقیق بے حد ضروری ہے، کیونکہ غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پھیلانا دعوت نہیں، بہت بڑا جرات مندانہ اقدام ہے۔ ویسے آج کی حدیث کے چند فوائد ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، اسی طرح دعوت صرف زبان سے نہیں، تحریر، میڈیا اور کردار سے بھی دی جا سکتی ہے۔ مزید دعوت میں حکمت، احترام اور خیرخواہی ضروری ہے۔ دینی مواد پھیلانے سے پہلے اس کی صحت کی تحقیق کیجئے، اور سب سے بڑھ کر دعوت کا مقصد بحث جیتنا نہیں بلکہ انسان کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں حکمت، اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ خیر پہنچانے والا بنائے، اور ہمارے قول، تحریر اور کردار کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलामुअलैकुम लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि सफर के दौरान खुद को बीमारियों से कैसे महफूज रखा जाए। खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ आप साबुन से जरूर धो लीजिए, और अगर पानी दस्तियाब ना हो तो फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। सफर में अक्सर नींद का मामूल मुतासिर हो जाता है, जिससे थकन और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इसलिए मुनासिब आराम कीजिए। और अगर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नए वक्त के मुताबिक अपने सोने और जागने का मामूल बनाइए। बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक से परहेज कीजिए। अगर आप गर्म इलाके में सफर कर रहे हैं तो हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए, टोपी और सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। धूप में ज्यादा देर रहने से गुरेज कीजिए, खास तौर पर दोपहर के औकात में। और अगर खुदा नखास्ता सफर के दौरान तेज बुखार हो, मुसलसल क्या हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीने में दर्द हो या आपको चक्कर आए, तो खुद इलाज करने की बजाय आप फौरन करीबी तिबी जो मरकज है वहाँ पर रुजू कीजिए। लिस्टनर्स, सेहतमंद सफर सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में अपनी सेहत का ख्याल रखने का भी नाम है। मुनासिब ग़िज़ा, पानी, आराम, सफाई और एहतियात आपके सफर को महफूज और यादगार बना सकते हैं।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप सभी का इस्तकबाल है। ये एक खास प्रोग्राम है जहां पर मैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जिक्र करता हूं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है। जी हां दोस्तों, कोहली आज के दौर का वो नाम है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कंसिस्टेंसी, क्लास और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सेलेंस को

नए मयार तक पहुंचा दिया है। अच्छा, जब भी मॉडर्न क्रिकेट की बात होती है कोहली का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, स्पेशली खासतौर पर उनका ओडीआई क्रिकेट में यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सेंचुरीज, जो कि उनकी लेगेसी का सबसे अहम हिस्सा है। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा जब 2011 के इंडियन क्रिकेट स्क्वाड में, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती है और उस स्क्वाड में दिल्ली का एक नौजवान बैट्समैन को शामिल किया गया था, बहुत ही यंग था और उस लड़के का नाम उस दिन विराट कोहली था, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी जो आज दुनिया के हर कोने कोने में जहां भी क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट ऑफ द क्रिकेट किसी और स्पोर्ट्स में भी, वहां के स्पोर्ट्स पर्सन भी कहते हैं कि विराट कोहली इज वन ऑफ द लीडिंग यू नो लेजेंड्स हैं इंडियन क्रिकेट और स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करूं तो सब कोई कोहली को रेस्पेक्ट ही करते हैं। 2011 की बात इसलिए कहा कि 2011 के स्क्वाड में सचिन तेंदुलकर, तब तक सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली कि एक साल के बाद ही रिटायर्स फ्रॉम क्रिकेट, और विराट कोहली सचिन का बहुत बड़ा फैन था। तो आप तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त कोहली जहां पे शुरुआत यू नो अपना क्रिकेट की जो जर्नी है वो शुरुआत करता है और सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट एंड ऑफ हिज करियर है, और बचपन से ही कोहली ने सचिन को बहुत फॉलो किया है, फॉलो से मुराद है कि आइडल बना लिया था। अब बात करता हूँ विराट कोहली के ओडीआई क्रिकेट में ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में 50 से ज्यादा सेंचुरीज बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो पहले सिर्फ लेजेंड सचिन तेंदुलकर के नाम था। तो इमेजिन करिए कि उनका ही आइडल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर कोहली अब इस रिकॉर्ड का मालिक है। सचिन ने अपने करियर में 49 ओडीआई सेंचुरी स्कोर की थी जो एक अरसे तक अनब्रेकेबल समझा जाता था, लेकिन कोहली ने इस माउंटेन को, इस पहाड़ को सिर्फ क्लाइम नहीं किया बल्कि उसे क्रॉस करके नए स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए। उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा फीचर जो है यही है कि वो प्रेशर सिचुएशंस में भी रन बनाने की सलाहियत रखते हैं जो उन्हें बाकी प्लेयर से मुख्तलिफ बनाता है। प्रेशर सिचुएशंस में कोहली इज नंबर वन, अगर रन चेज हो तो कोहली इज द मास्टर। और कहते हैं ना कि रन चेज किंग जो है, अगर कोई है इस क्रिकेट की दुनिया में आज के दौर में, वो है विराट कोहली। ही इज इमैक्युलेट, ही इज जस्ट टू मच। रन चेज में कोहली का मुकाबला नहीं। विराट कोहली का ओडीआई करियर 2008 में शुरू हुआ जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। शुरू में वो एक प्रॉमिसिंग यंग बैट्समैन थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट रन मशीन बन गए। उनकी फिटनेस, डिसिप्लिन और चेज मास्टर टेक्निक ने उन्हें किंग कोहली का टाइटल दिलाया। ये बात कर रहा था मैं, रन चेज में कोहली इज द मास्टर। और इससे पहले एमएस धोनी को कहते थे कि एमएस धोनी रन चेज अगर है, इंडिया का रन चेज कर रही है तो कोहली है, और अगर धोनी है तो मुमकिन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमेशा के लिए कि सचिन तेंदुलकर उनका जो आइडल, सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट अ ग्रेट रन चेजर, विक्ट्री चेजर, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज ओवर हियर, विक्ट्री चेजर। तो ओडीआई क्रिकेट में उनकी सेंचुरी सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि हर सेंचुरी एक स्टोरी, एक कहानी है। कभी इंडिया को मुश्किल सिचुएशन से निकालना, कभी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ डोमिनेशन दिखाना, इसके पीछे ना सिर्फ कहानी है बल्कि इसके पीछे कोहलीज स्ट्रगल फॉर एक्सेलेंस, उस बात को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हाउ ही मैनेज 50+ crores, हाउ ही मैनेज 50+ centuries इन ओडीआई फॉर्मेट में। कोहली का रिकॉर्ड सिर्फ क्वांटिटी का नहीं क्वालिटी का भी है। दोस्तों कोहली ने अपनी ज्यादातर सेंचुरी सक्सेसफुल रन चेजेस में बनाई हैं। ये याद रखिएगा, इसी बात पर मैं तवज्जो मरकूज कर रहा हूँ कि रन चेज में सेंचुरी स्कोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप प्रेशर में होते हैं, आप दबाव में होते हैं, बॉलर्स, टॉप बॉलर्स को हमको खेलना होता है और उन्हीं बॉलर्स को फेस करते हुए आपको सेंचुरी बनानी है और सेंचुरी के साथ साथ टीम को जितवानी भी है, ये थोड़ा सा हजम नहीं होता। लेकिन कोहली ने प्रूव किया कि दैट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू हैव दैट नैक ऑफ विनिंग एंड द विनिंग मेंटालिटी आपके दिमाग में है, दैट आपको टीम को जितानी है, साथ साथ आपकी सेंचुरीज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो
सोने पे सुहागा वाली बात है, यू नो आइसिंग ऑन द केक वाली बात है, तो कोहली ने ऐसा ही किया है. हर मैच में जिताने के बाद, सेंचुरीज भी कंप्लीट यानी मुकम्मल करने के बाद, यू नो कोहली प्रूव्ड दैट ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन. उनको पता होता है कि ही हैज टू डिलीवर एंड ही हैज टू कंप्लीट द

टास्क, कोहली इज दिस डेफिनेशन ऑफ, मेरे लिए अगर कोहली को डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसे ही कहूंगा, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और मैच अवेयरनेस को शो करता है और वो अक्सर सिंगल्स और डबल्स के जरिए इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और जब जरूरत हो तो बाउंड्री से गेम को फिनिश कर देते हैं। दिस इज विराट कोहली। आज भी विराट कोहली इज सो रेलिवेंट इन इंडियन क्रिकेट। हालांकि टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, आज भी ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली इज अ लेजेंड। और देखिए अभी हाल ही में इंडिया में जो आईपीएल क्रिकेट हुआ था उसमें कोहली का एक अहम किरदार था टू मेक हिज टीम चैंपियन द बेंगलुरु एफ सी। बेंगलुरु को चैंपियन यानी बैंगलोर को चैंपियन बनाने में कोहली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और हर मैच में मुसलसल उसने स्कोर की एंड इससे साबित होता है कि कंसिस्टेंसी इस एज में भी आकर कोहली इज सो परफेक्ट, इज सो कंसिस्टेंट। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करना दोस्तों सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगा कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में ही उनको एक ग्लोरीफाई किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन विराट के जगह पे कोई और भी होता वो भी कर ही लेता, हाँ यू नो इस शर्त पर कि वो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन हो और बहुत ही फोकस्ड बैट्समैन हो। लेकिन यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन, मैंने यूं क्यों कहा कि ये स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन नहीं था, इसलिए कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था मेरे हिसाब से। आई फील दैट इट वॉज अ सिम्बॉलिक मोमेंट। सचिन को कहा जाता था कि एक इंडियन क्रिकेट के लिए एक तोहफा था। सचिन के 1989 में when he started his career against Pakistan in Pakistan, तो सबने कहा कि ये लड़का जो है आगे जाकर धूम मचाएगा और किया भी। तो सचिन को इंडियन क्रिकेट का एक गिफ्ट माना जाता था उस टाइम में 1989 में। और कोहली का उनका रिकॉर्ड तोड़ना इस बात का सबूत है कि मॉडर्न क्रिकेट में नए हीरोज का राइज जो है वो पॉसिबल है, आप समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन इस कंपैरिजन के बावजूद दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी एरर्स के बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सचिन ने फाउंडेशन रखी है और विराट कोहली ने उसे नए लेवल तक ले गया। माजी में एक प्रोग्राम मैंने किया था, होस्ट किया था उस पॉडकास्ट में, वहां पर मैंने कंपेयर तो नहीं बल्कि इन दोनों क्रिकेटर्स के सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बारे में मैंने जिक्र किया था। और दोनों ही उस मकाम पर हैं, सचिन जब थे उस मकाम पर उस लेवल पर, तो उन्होंने रन पर रन, रन भर भर के रन बनाया। और यहाँ पर विराट कोहली ने भी आज भी इज अनस्टॉपेबल। कहने से मुराद ये है कि मैंने अब कहा कि 2011 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जब विराट कोहली को इंक्लूड किया गया था, 2011 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जब विराट कोहली को रखा गया तो विराट कोहली ऐसे मतलब सरप्राइजिंगली देखते थे सचिन को बैट करते हुए, क्योंकि वो उनका आइडल था। और एक दिन उन्हें क्या पता था कि इन्हीं आइडल को फॉलो करते करते वो आज एक मारूफ बल्लेबाज बन जाएंगे, वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स बन जाएंगे और साथ ही साथ सचिन का ही रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो ये मुमकिन हुआ है। तो दोस्तों विराट कोहली की ओडीआई सेंचुरीज में एक और इंटरेस्टिंग चीज उनका स्ट्राइक रेट और कन्वर्शन रेट है। वो अक्सर हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए मशहूर हैं। जब वो 50 रन तक पहुंच जाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी डबल हो जाती है और इसी वजह से उन्हें चेज मास्टर और रन मशीन कहा जाता है। उनकी सेंचुरी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बेंचमार्क बन चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर टॉप टीम के खिलाफ कोहली ने सेंचुरी स्कोर की है। This is a fact, and this is statistics that proves his, you know, elegance, that proves his uniqueness. और ये उनकी adaptability और technique का proof है। हर condition में perform करना, हर pitch पर run बनाना और हर bowling attack को handle करना उनकी greatness को define करता है। यहाँ दोस्तों विराट कोहली नाम ही काफी है। Fitness भी एक फैक्टर है। पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में मैंने एक जिक्र किया था कि टैलेंट होना जरूरी नहीं है, मैंने फेडरर के बारे में बात किया कि टैलेंट होना जरूरी नहीं है कि आप ग्रेटनेस के लेवल तक पहुंच सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। टैलेंट के साथ साथ यू नीड दैट फिटनेस, यू नीड दैट मेंटालिटी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड अ फोकस्ड ध्यान। ध्यान ये होना चाहिए कि आपको क्रीज पर जाकर, टेनिस कोर्ट पर जाकर, फुटबॉल फील्ड पर जाकर आपको गोल करना है। परफॉर्मेंस के लेवल को हर मैच में, हर लेवल पर यू हैव टू इंक्रीज दैट लेवल। और यही बात हर बड़े यू नो सुपरस्टार खिलाड़ी के साथ रहा है, हर टॉप परफॉर्मर्स के साथ रहा है। मैं तो अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के बाहर भी अगर आप देखें जितने भी परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो आर्ट में हो, फिल्म में हो, कहीं पर भी हो, देखिएगा कि लेवल को जब तक आप

इम्प्रूव नहीं करते हैं, आप स्टक हो जाते हैं उस जगह पर. यू हैव टू इम्प्रूव योर लेवल. चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप यू नो यू आर अ कंपोजर, आपके लेवल को इम्प्रूव करना है. आपको एनालाइज, री एनालाइज, यू नो री इन्वेंट करने की बात है. तो विराट कोहली इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल. जस्ट लाइक टेनिस की बात की थी मैंने, अबाउट रॉजर फेडरर, अबाउट रफाल नदाल, इन लोगों के बारे में मैंने जब जिक्र किया था कि रीडिफाइन करने की जो वो सलाहियत है वो हर एक में नहीं है. हर कोई कहता है कि सक्सेस तो मिल ही गया है, आप चुप बैठ जाते हैं और हम कमाई कर लेते हैं. लेकिन विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, ये हर लेवल को इम्प्रूव किया है. यू नो दे हैव इम्प्रूव देयर ओन वर्शंस एंड दैट इज व्हाट इज द सक्सेस की जो रीजन रहा है. दैट इज द रीजन आज वो महान मारूफ बल्लेबाजों में यू नो शुमार होते हैं. और यहाँ पे फिटनेस की बात जो मैंने की, फिटनेस भी कोहली की सक्सेस का बहुत बड़ा एक फैक्टर है. कोहली ने इंडियन क्रिकेट में फिटनेस रेवोल्यूशन स्टार्ट किया. उनका डाइट, ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल डिसिप्लिन उन्हें लॉन्ग करियर सस्टेन करने में मदद देता है. और इसी फिटनेस की वजह से वो प्रेशर सिचुएशंस में भी सेम इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, थकते नहीं है. आपने देखा होगा कोहली को बैट करते हुए, थकते नहीं है. इसके राज ये है कि यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ फिटनेस. इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है दोस्तों. ऐसा नहीं है कि कोहली साहब आज उस मसनद में बैठे हुए हैं जहां पर आई मीन ऑब्वियसली ही हैज अर्नड अ लॉट. अगर पैसों की बात करें, फॉर्च्यून की बात करें, रिचनेस की बात करें, वेल्थ की बात करें, इसके पीछे बहुत मेहनत रहा है. ही हैज़ वर्क हार्ड और ये हार्ड वर्क ही तो काम देता है. आई मीन शॉर्टकट मेथड तो नहीं है. दोस्तों विराट कोहली का ओडीआई सेंचुरी रिकॉर्ड आज के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन है. वो मुतासिर होते हैं कोहली को देखकर कि मैं भी कोहली बनूंगा, मैं भी यू नो इनके जैसा बैटिंग करूंगा. लेकिन दोस्तों यहां पर ये कि कॉपी बुक करने से बेहतर ये है कि आप उनके स्टाइल को फॉलो करें और इम्प्रोवाइज करें. कतर में भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझते हैं कि अपने यू नो बच्चों को क्रिकेट सिखाएं. यहाँ पे बहुत पॉपुलर है क्रिकेट कतर में. इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे तमाम फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को क्रिकेट ही सिखाते हैं बिकॉज क्रिकेट इज़ अ पैशनेट गेम फॉर द देसी लोग. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो कोहली को फॉलो करता है, लेट देम नॉट कॉपी कोहली. शॉट बाय शॉट कॉपी ना करें, उसकी इंटेंसिटी को कॉपी करें, उसके फिटनेस लेवल को कॉपी करें, उसके जो मैकेनिज्म है, जो सक्सेस के जो रेशियो है उसको कॉपी करें, ना कि उनके शॉट को कॉपी करें और उनके स्टाइल को कॉपी करें कि कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो बल्लेबाजी करते हैं, उनके जो यू नो जो स्ट्राइक लेते हैं, जिस तरह से वो आते हैं, वो सब छोड़ दीजिए. जैसे मैंने कहा, इंटेंसिटी को कॉपी करिए. उनके एग्जाम्पल जो है उन आपके सामने है वो बोलिए. आप लोग आपके बच्चों को बोलिए कि ये कॉपी करो, इनके डेडिकेशन को कॉपी करें. देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस. आई मीन आपके जितने भी आई मीन जो अपने बच्चों को डालते हैं क्रिकेट कोचिंग कैंप्स में, सक्सेस तभी आपके पास मुमकिन है इफ़ यू फॉलो दिस लीडर्स, दिस आइडल्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट. और कोहली उनमें से एक है. और ये जो ओडीआई सेंचुरी रिकॉर्ड के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये दिखाता है कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, हंगर और मेंटल स्ट्रेंथ. और यही मैं समझता हूँ कि आप लोग, आपके जो बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चों को जो क्रिकेट सिखाते हैं आप लोग, उनको यही तालीम देनी चाहिए, तरबियत यही होनी चाहिए. हर सेंचुरी के पीछे कोहली का जो फोकस, प्रिपरेशन और विनिंग मेंटालिटी हमें जो देखने को मिला था, इसी चीज़ को कॉपी करने के बोलिए. आप देखिएगा सक्सेस ऑटोमेटिकली चलते चलते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए. दोस्तों आज विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक बेंचमार्क हैं. उनका ओडीआई सेंचुरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो हमेशा याद रखा जाएगा. जब भी फ्यूचर में बैटिंग ग्रेटनेस की बात होगी, कोहली का नाम सचिन तेंदुलकर के साथ सबसे पहले लिया जाएगा. यहाँ उनका रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ने के लिए ही बल्कि समझने के लिए कि कैसे एक खिलाड़ी अपनी कंसिस्टेंसी, पैशन और डिसिप्लिन से दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में से एक अपना नाम लिखवा सकता है. तो ये आज की जो बात थी अबाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विराट कोहली इन ओडीआई, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाला यू नो वाहिद बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में आज मैंने जिक्र किया. तो विराट कोहली लिव्स प्लेज बाय एग्जांपल. आप भी यानी आप अपने बच्चों से भी ये तालीम दे सकते हैं, ये तरबियत दे सकते हैं कि फॉलो विराट कोहली, नॉट हिज स्टाइल बट हिज डेडिकेशन, हिज
focus, his mentality

एंड हिज फिटनेस सक्सेस विल कम। अभी हम बात करेंगे दुनिया के जितने भी तमाम स्पोर्ट्स हैं, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना दोस्तों, जैसे कि एथलेटिक्स है, जैसे कि बाकी जितने भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं उनमें भी क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये दोस्तों एथलेटिक्स के बारे में बात हो रही है, तो और एथलेटिक्स दुनिया का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कैटेगरी है, जहां स्पीड, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का इम्तिहान होता है। इसमें 100 मीटर स्प्रिंट से लेकर मैराथन तक हर इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। यू नो एथलेटिक्स हर चीज में एथलेटिक्स है, दौड़ भाग कूदना गिरना, चाहे वह फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, किसी भी स्पोर्ट के लिए एथलेटिक्स कहते हैं कि एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। इसमें 100 मीटर स्प्रिंट से लेकर मैराथन तक हर इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसेन बोल्ट का नाम आप लोगों ने सुना है। उसेन बोल्ट का 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट रिकॉर्ड एथलेटिक्स हिस्ट्री का सबसे मशहूर रिकॉर्ड माना जाता है। उसेन बोल्ट ने 100 मीटर सिर्फ 9.58 सेकेंड्स में कंप्लीट किया, जो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। ही इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। एथलेटिक्स में इस स्प्रिंट के अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और जैवलिन थ्रो जैसे इवेंट्स भी हैं, जहां एथलीट्स अपनी फिजिकल लिमिट्स क्रॉस करते हैं। मैराथन में इल्यूड किपचोगे ने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और एथलेटिक्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइम के साथ बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग, साइंस और न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो चुके हैं। हर नया रिकॉर्ड एक नए ह्यूमन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्पोर्ट दुनिया भर में सबसे कॉम्पिटिटिव माना जाता है। दैट्स एथलेटिक्स इज ऑल अबाउट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, ओलंपिक में एथलेटिक्स लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। Now let's move on to the swimming. जी हाँ दोस्तों, swimming बड़ा ही, you know, I would say fun sport के अगर लिहाज से देखूँ तो बड़ा ही fun sport है, क्योंकि water sports और बच्चे बड़े पसंद भी करते हैं इस swimming को। स्विमिंग में भी काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हम लोगों ने नोट किया है, देखा है। दोस्तों स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पानी के अंदर स्पीड, टेक्निक और स्टैमिना का टेस्ट होता है। माइकल फेल्प्स को स्विमिंग का ग्रेटेस्ट एथलीट माना जाता है, जिन्होंने ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते। यहाँ दोस्तों उन्होंने 23 गोल्ड मेडल्स जीत कर एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना दिया है। स्विमिंग में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर और 200 मीटर फ्रीस्टाइल रिकॉर्ड अक्सर नए स्विमर्स के दरमियान ब्रेक होते रहते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स लंबे अरसे तक कायम रहते हैं। मसलन सेलेब ड्रेसल और केटी लेडिस की जैसे स्विमर्स ने मॉडर्न एरा में नए वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं। स्विमिंग में मिलीसेकंड्स का फर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ट्रेनिंग, अंडरवाटर टेक्निक और ब्रीदिंग कंट्रोल स्विमर्स को चैंपियन बनाते हैं। लोग ये कहते हैं कि स्विमिंग पूल में कूद जाओ और स्विमर बन जाओ, इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ डकलिंग टू द वाटर, कहने से मतलब ये है कि इट्स नॉट ईजी, और ह्यूमन स्पीसीज को जो है ये एक सर्वाइवल मोड रहा है हमेशा से, सिंस द टाइम ह्यूमन हैव लर्न। इंसान जब यू नो सब कुछ सीखा, उसके साथ साथ पानी में तैरना भी, और तैराकी लोग जो भी हैं, जो प्रोफेशनल तैराकी हैं, वो लोग भी यू नो हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के जरिए हैव प्रूव दैट स्विमिंग कैन बी अ साइंटिफिक स्पोर्ट, एंड स्विमिंग इनफैक्ट इज अ साइंटिफिक स्पोर्ट। और जैसे मैंने कहा कि पानी पे यू नो कूदना, पानी पे जाकर, पानी पे स्विमिंग पूल पर आप कूद जाते हैं, आपको लगता है कि आई नो स्विमिंग, दो चार हाथ आपने घुमा दिए, आप लोगों को लगता है कि स्विमिंग इज ईजी। स्विमिंग इज नॉट ईजी, और बेसिक चीज़ जो पहली सिखाई जाती है वो है हाउ टू ब्रीद इन साइड द वाटर और हाउ टू रिलीज दैट यू नो ब्रीद आउट, जो टेक्निक है, कैसे आप अपने इसको टेक्निक को बरकरार रखेंगे, तो स्विमिंग कोचेस बताते हैं। तो स्विमिंग बहुत ही साइंटिफिक है, स्पोर्ट फॉर द मेंटल, यू नो मेंटली अगर देखें, अगर फिजिकली देखें, स्विमिंग रियली मोटिवेट्स योर माइंड एंड बॉडी। नाउ मूविंग ऑन टू पोलो। यहाँ दोस्तों पोलो एक रॉयल और एलिट स्पोर्ट माना जाता है, जो घोड़ों पर खेला जाता है। यू नो व्हेन यू रन एंड यू हिट अ स्ट्राइक अ बॉल, इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया और पर्शिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज ये अर्जेंटीना, बर्तानिया और मिडल ईस्ट में बहुत पॉपुलर है। इंडिया में भी पोलो इज वेरी फेमस। इंडिया में राजा बादशाह जितने भी थे, पहले महाराज, ये सब जितने भी उनके डायनेस्टीज थे, वो पोलो के शौकीन थे। पोलो खेलना एक शान वाली बात, एक फख्र वाली बात होती थी। पोलो अगर नहीं खेला तो आप कुछ भी नहीं किया, आप बादशाह ही नहीं है, आप राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, ऐसा इंडिया देसी जो पहले के स्ट्रक्चर थे वहाँ पर समझा जाता था।

पोलो आज भी इज अलाइव एंड किकिंग एक्चुअली. और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि पोलो की ओरिजिन इंडिया में, अगर देखा जाए इंडिया में अगर ओरिजिन देखे तो मणिपुर में हुआ था. कई ऐसे हिस्ट्री हैं, कैसे ऐसे स्टोरी हैं. और पोलो में वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़्यादातर टीम अचीवमेंट्स और फास्टेस्ट मैचेस या हाईएस्ट हैंडीकैप प्लेयर से रिलेटेड होते हैं. अर्जेंटीना को वर्ल्ड पोलो का पावर हाउस माना जाता है, जहां अडोल्फो कैम्बियासो जैसे लेजेंड्स ने हिस्ट्री बनाई. पोलो का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि कुछ खिलाड़ी ने 10 गोल्स हैंडीकैप लेवल अचीव किया, जो एक्सट्रीमली रेयर है. इस स्पोर्ट में घोड़ों की ट्रेनिंग भी प्लेयर्स जितनी इंपॉर्टेंट होती है. फास्टेस्ट गोल्स और लॉन्गेस्ट मैचेस भी पोलो रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं. पोलो बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती है, लेकिन इसकी लीगेसी बहुत स्ट्रांग है. जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि पहले से बहुत बहुत पहले से पहले लोग शौकीन थे इस चीज को करने. यह स्पोर्ट स्किल, कोऑर्डिनेशन और हॉर्स राइडिंग मास्टरी का कॉम्बिनेशन है जो इसे यूनिक बनाता है. अभी हम बात करेंगे वॉलीबॉल के बारे में. वॉलीबॉल जी हाँ काफी फास्ट है, एक फास्ट पेस्ड टीम स्पोर्ट है जो इंडोर और बीच दोनों फॉर्मेट्स में खेला जाता है. इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है स्पाइक्स, सर्व्स, ब्लॉक्स और लॉन्गेस्ट मैचेस से रिलेटेड होते हैं. कतर की बीच वॉलीबॉल टीम भी काफी मजबूत है. आपने सुना होगा शरीफ यूनुस के बारे में, तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स रह चुके हैं एंड वर्ल्ड नंबर वन भी. ब्राजील और यूएसए वॉलीबॉल की सबसे स्ट्रांग टीमें मानी जाती हैं. विल्फ्रेडो लियोन ने फास्टेस्ट स्पाइक सर्व का रिकॉर्ड बनाया, जो 130 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा स्पीड पर हिट होता है. वॉलीबॉल में लॉन्गेस्ट रैली और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव विंस भी रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं. बीच वॉलीबॉल में केरी वॉल्श, जेनिंग्स और मिस्टी मे ट्रेनर ने ओलंपिक डोमिनेशन के जरिए हिस्ट्री लिखी. और इंडोर वॉलीबॉल में हाइट, जंपिंग एबिलिटी और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग से गेम का रिजल्ट चेंज हो सकता है. दोस्तों मॉडर्न वॉलीबॉल में स्पोर्ट्स साइंस और एनालिटिक्स ने परफॉर्मेंस को नए लेवल पर पहुंचा दिया है और ये स्पोर्ट दुनिया भर में बहुत पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव है. अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग पर, देखते हैं क्या होता है. बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है जहां स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी और एंड्योरेंस का अल्टीमेट टेस्ट होता है. इस स्पोर्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, नॉकआउट विंस, अनडिफिटेड स्ट्रीक्स और फास्टेस्ट नॉकआउट्स से रिलेटेड होते हैं. हम मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता. मोहम्मद अली को बॉक्सिंग का लेजेंड माना जाता है, लेकिन मॉडर्न एरा में फ्लॉयड मेवेदर जूनियर का 50-0 अनडिफिटेड रिकॉर्ड सबसे आइकॉनिक है. मेवेदर ने अपनी डिफेंसिव टेक्निक से दुनिया को हैरान किया. हाँ माइक टायसन ने सबसे तेज नॉकआउट्स का रिकॉर्ड बनाया, जहां उन्होंने बहुत से फाइट्स पहले राउंड में जीती. दोस्तों बॉक्सिंग में वेट कैटेगरीज होती हैं, जहां हर डिवीजन के अपने चैंपियंस होते हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ पावर का नहीं बल्कि टाइमिंग और टेक्निक का भी प्रूफ होते हैं. बॉक्सर्स अपनी लाइफ डिसिप्लिन और ट्रेनिंग पर डेडिकेट करते हैं. हर पंच एक स्ट्रेटेजी होता है और हर फाइट एक साइकोलॉजिकल बैटल होती है. याद रखिएगा बॉक्सिंग हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हमेशा लेजेंड्स के नाम से ही जुड़े रहते हैं. मोहम्मद अली, माइक टायसन, मेवेदर, फलाना फलाना फलाना. नाउ मूविंग ऑन टू स्क्वॉश और ये इंडोर स्पोर्ट है. काफ़ी काफ़ी फिटनेस की बात करूँ तो स्क्वॉश आजकल हर कोई आजमाना चाहता, स्क्वॉश खेलना पसंद करते हैं. स्क्वॉश एक फास्ट इंडोर रैकेट स्पोर्ट है जो बहुत इंटेंस और फिजिकली डिमांडिंग होता है. इसमें प्लेयर्स छोटी सी इनक्लोज्ड कोर्ट में बॉल को वॉल से हिट करते हैं. जहांगीर खान के बारे में तो सुना ही होगा, पाकिस्तान के मारूफ स्क्वॉश खिलाड़ी. जहांगीर खान को स्क्वॉश हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड माना जाता है, जिन्होंने 555 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ. जहांगीर खान भी पाकिस्तान के एक और ग्रेट स्क्वॉश चैंपियन है, जिन्होंने मल्टीपल वर्ल्ड टाइटल जीते. दोस्तों स्क्वॉश में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लॉन्गेस्ट रैलीज, फास्टेस्ट शॉट्स और मोस्ट टाइटल्स से रिलेटेड होते हैं. अच्छा, मॉडर्न एरा में इजिप्ट स्क्वॉश का पावर हाउस बन चुका है, जहां अली फराग और मोहम्मद अल शोरबागी जैसे चैंपियंस डोमिनेट कर रहे हैं. स्क्वॉश में फिटनेस, रिफ्लेक्सेस और स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये स्पोर्ट दुनिया के मोस्ट फिजिकली डिमांडिंग गेम्स में से एक है. रिकॉर्ड्स यहाँ कंसिस्टेंसी और मेंटल टफनेस का प्रूफ

0: होते हैं। तो दोस्तों आज हमने जिस रिकॉर्ड्स के बारे में हमने बात की, तो मेन रिकॉर्ड वाज ऑन विराट कोहली एंड विराट कोहली का जो ये ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड है वो आज भी अनब्रोकन है। और अनब्रोकन इसलिए है क्योंकि विराट कोहली आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बेहतर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं और आज रिटायर नहीं किया उन्होंने अभी। अच्छा, इसके साथ साथ एक ये भी बता दूं कि कोहली के नाम और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं इस प्रोग्राम में आज मैंने नहीं बताया, लेकिन वो कभी और बताऊंगा। फास्टेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू रीच 28,000 इंटरनेशनल रन्स और इन जस्ट 624 इनिंग्स में, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया। देखिए वही आई नो आइडल का रिकॉर्ड ब्रेक करने में मजा आता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने ओडीआई मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज के बारे में बताया, वो भी सचिन का रिकॉर्ड था और कोहली ने तोड़ा है। इसके साथ एक और रिकॉर्ड जो है वो है 27,000 इंटरनेशनल रन्स और ये 594 इनिंग्स में विराट कोहली ने बनाया था। और तेंदुलकर हर रिकॉर्ड तेंदुलकर पे आगे क्यों तो मुझे नहीं समझ आता। एनीवे तेंदुलकर वाज वंस जैसे कि डोमिनेटिंग बैट्समैन रहे हैं और तेंदुलकर रिकॉर्ड जो था 623 इनिंग्स में इट वाज यू नो डन एंड कोहली ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। कई रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इस प्रोग्राम में, तो बताना बड़ा ही मुश्किल है। और तो मतलब मैं छोटा छोटा मतलब शॉर्ट में यही बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स बन जाते हैं ना टूटने के लिए और रह जाते हैं सदियों तक। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का एक रिकॉर्ड 99.96 का बैटिंग एवरेज वाली जो बात आप लोगों से मैंने किया था, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। और वैसे ही माइकल फेल्प्स का जो रिकॉर्ड है 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स मजमूई तौर पर 23 गोल्ड मेडल्स, वो भी आज अनब्रोकन है। वैसे ही विराट कोहली का ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, इसके ऊपर एक लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस है कि ये फलाना क्रिकेटर है, ये वो फलाना क्रिकेटर है, ये वो तोड़ सकते हैं, लेकिन आज भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे बिकॉज कंसिस्टेंसी, वही बात है ना, कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं। तो एनीवे आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों

0: दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन्स के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन्स के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
4: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज की गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू की तरफ आते हैं जिस पर हमारे ज़माने में बार बार ये सवाल उठाया जाता है, और कभी सवाल की सूरत में, कभी एतराज़ के अंदाज में, और कभी जज्बाती बहस के तौर पर इसे पेश किया जाता है। मौजू है, इस्लाम में तअद्दुद अज़वाज यानी एक मर्द को एक से ज़्यादा निकाह की इजाज़त क्यों दी गई। बाज़ लोग उसे यूं पेश करते हैं जैसे इस्लाम ने मर्द को औरत पर कोई गैर मामूली बर्तरी दे दी हो। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले यह तय करना ज़रूरी है कि सवाल करने वाला इस्लाम को मानने वाला मुसलमान है या इस्लाम से बाहर खड़ा होकर उसके निज़ाम को समझना चाहता है। मुसलमान के लिए पहली बुनियाद ये है कि यह इजाज़त किसी माशरती रस्म, किसी मर्द की ख्वाहिश या किसी मखसूस दौर की इजाद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की शरीयत में दी गई इजाज़त है। और मोमिन का बुनियादी यकीन ये है कि अल्लाह का हुक्म इल्म, हिकमत और अदल से खाली नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक बात बहुत तो वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये तअद्दुद सिर्फ एक इजाज़त ही नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी भी है। अब एक से ज़्यादा निकाह करने वाला शख्स सिर्फ एक और रिश्ता अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता बल्कि एक और घर की कफालत, एक और ख़ानदान के हुकूक और अदल की एक नई आजमाइश अपने कंधों पर लेता है। उसका वक्त तकसीम होगा, माल तकसीम होगा, तवज्जो और तवानाई तकसीम होगी, रिहाइश और नानो नफका की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। गोया यहाँ काफ़ी जवाबदेही है, इसलिए तअद्दुद को सिर्फ मर्द के फ़ायदे की ऐनक से देखना, ये तस्वीर का एक रुख देखना है। जिस मर्द ने दो तीन या चार घरों की जिम्मेदारी कबूल की उसे इन सब के हुकूक के बारे में अल्लाह के हुजूर जवाब भी देना है। कुरान करीम ने फरमाया है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع कि औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो उनसे दो दो तीन तीन और चार चार निकाह करो। पहली बात तो यह है कि इस आयत में शर्त का भी जिक्र है, यानी इस्लाम ने तअद्दुद की इजाज़त देकर जुल्म की इजाज़त नहीं दी। यही वो नुक्ता है जहाँ बहुत सी बहसें खलते मबहस का शिकार हो जाती हैं। शरीयत का हुक्म एक चीज़ है और किसी शख्स का उस हुक्म पर गलत तरीके से अमल करना दूसरी चीज़। अगर कोई शख्स दूसरी शादी करे और पहली बीवी के हुकूक पामाल कर दे, या एक घर को नवाजे और दूसरे को महरूम कर दे, या नानो नफका और वक्त में नाइंसाफ़ी करे, तो ये इस्लाम के तअद्दुद का जुल्म नहीं बल्कि उस शख्स का जुल्म है। इस्लाम ने तअद्दुद को मुबाह किया है, जुल्म को नहीं। लिहाजा किसी मुसलमान मर्द को अगर तअद्दुद इख्तियार करना हो तो उसे सबसे पहले अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या मैं हुकूक अदा कर सकता हूँ, क्या मैं अदल का बोझ उठा सकता हूँ, क्या मैं माली नफसियाती और ख़ानदानी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। क्योंकि एक इंसान की बदअमली कभी कभी सिर्फ उसी तक महदूद नहीं रहती, लोग उसके किरदार को देखकर शरीयत पर उंगली उठाने लगते हैं। लिहाजा तअद्दुद करने वाले मर्द की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि उसका तर्ज अमल ऐसा ना हो कि उसके जुल्म का इल्ज़ाम अल्लाह के हुक्म पर आने लगे। और औरत के दिल में गैरत का पैदा होना भी कोई अजीब या गैरफितरी बात नहीं, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन की ज़िंदगी में भी गैरत के फितरी जज्बात के वाक़ियात मिलते हैं।

आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। हम बात करेंगे कतर के एक वन ऑफ द लीडिंग बॉक्सर्स के बारे में जिनका नाम है हुज़म नवा। या दोस्तों, हुज़म नवा कतर के तारीख के सबसे नुमाया बॉक्सर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और बेहतरीन टेक्निक की बदौलत मुल्क का नाम एशिया भर में रोशन किया। दोहा में मुनाकिद 2006 एशियन गेम्स में उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा था, जहां उन्होंने लाइट हैवीवेट कैटेगरी में शानदार मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये कामयाबी कतर के बॉक्सिंग की तारीख में एक अहम मोड़ था और नए बॉक्सर्स के लिए एक मिसाल बनी। हुज़म नवा ने मुख्तलिफ बैन अक्वामी टूर्नामेंट्स में कतर की नुमाइंदगी की और हमेशा पुरजोश अंदाज में रिंग में उतरे। दोस्तों, उनकी बॉक्सिंग का अंदाज, ताकत, रफ्तार और बेहतरीन डिफेंस का खूबसूरत मिक्सचर था। हर मुकाबले में वो मुख्तलिफ बॉक्सर को सख्त चैलेंज देते थे और अपनी डिसिप्लिन और फिटनेस की वजह से पहचाने जाते थे। उनकी कामयाबी ने कतर में बॉक्सिंग के खेल को मजीद मकबूल बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। आज भी हुज़म नवा को कतर के बेहतरीन बॉक्सर में शुमार किया जाता है। उनकी मेहनत और अज़म नए खिलाड़ियों को ये पैगाम देता है कि लगन, सब्र और मुसलसल मेहनत से बैन अक्वामी सतह पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन

0: करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
1: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
1: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आज हम बात करेंगे कि सफर के दौरान खुद को बीमारियों से कैसे महफूज रखा जाए। खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ आप साबुन से जरूर धो लीजिए, और अगर पानी दस्तियाब ना हो तो फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। सफर में अक्सर नींद का मामूल मुतासिर हो जाता है, जिससे थकन और चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, इसलिए मुनासिब आराम कीजिए। और अगर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नए वक्त के मुताबिक अपने सोने और जागने का मामूल बनाइए। बहुत ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक से परहेज कीजिए। अगर आप गर्म इलाके में सफर कर रहे हैं तो हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनिए, टोपी और सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। धूप में ज्यादा देर रहने से गुरेज कीजिए, खास तौर पर दोपहर के औकात में। और अगर खुदा नखास्ता सफर के दौरान तेज बुखार हो, मुसलसल कह हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीने में दर्द हो या आपको चक्कर आए, तो खुद इलाज करने की बजाय आप फौरन करीबी तिबी जो मरकज है वहाँ पर रुजू कीजिए। लिस्टनर्स, सेहतमंद सफर सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, आजकल हम अक्सर एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। न्यूज में, सोशल मीडिया पर, स्कूल्स में, हर जगह क्लाइमेट चेंज का जिक्र होता ही होता है। लेकिन भाई, सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज असल में है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? अच्छा, सिंपल अल्फाज में समझे तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया के मौसम के पैटर्न्स जो होते हैं उनमें लंबी मुद्दत तक आने वाली तब्दीली। टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर, बारिश, हवा और सीजन्स के नॉर्मल पैटर्न में चेंजेस आना। तो भाई, आज के इको स्विच में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज सिंपल एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी क्लाइमेट चेंज को आसान अल्फाज में समझाना। साथियों, प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। हमारी जमीन का क्लाइमेट हमेशा से थोड़ा चेंज होता रहा है, लेकिन आज जो चेंजेस देखे जा रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह है, क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा होना। अच्छा, जब हम फॉसल फ्यूल्स जैसे कि आप कह लें, क्या कह लें, हाँ, ऑयल, गैस और कोल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लें कि ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है, या आप कह लें फॉरेस्ट को काटते हैं, कम करते हैं, या ज्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है भाई? उससे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? ये गैसेस हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अच्छा, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। देखिए, मैं आपको कुछ सिंपल सॉल्यूशंस देती हूँ जो हम फॉलो कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। पहली चीज तो ये कि एनर्जी स्मार्टली यूज करें। जब जरूरत ना हो तो लाइट्स और अप्लायंसेस बंद करें। एनर्जी बचाना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में मदद कर सकता है। वेस्ट कम करें, चीजों को रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें या अननेसेसरी शॉपिंग से बचने की कोशिश करें। कम वेस्ट का

0: इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना सिंपल सी, तो क्लाइमेट चेंज को एक सिंपल एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो अगर एक कमरा पूरा बंद हो और उसमें हीट फंस जाए, ठीक है, पूरी तरह से कमरा बंद है उसके अंदर हीट फंस जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म महसूस होना शुरू हो जाता है ना। हमारी जमीन के एटमोसफेयर में भी कुछ गैसेस ट्रैप हो जाती हैं ऐसी। जब इन गैसेस की मिकदार बढ़ जाती है तो टेम्परेचर और वेदर पैटर्न पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स और टेम्परेचर चेंजेस देखे जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है भाई। तो भाई लिसनर्स, हमारा आज का ईगो स्विच चैलेंज ये है कि आज अपने दिन की एक ऐसी एक्टिविटी सोचिए जहां आप एनवायरनमेंट के लिए बेहतर चॉइसेस कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी सेव करना हो, वेस्ट कम करना हो या नेचर के करीब रहना हो। और हमें जरूर बताएं आपके ख्याल में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सबसे पहला और छोटा स्टेप क्या होना चाहिए। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं ईगो स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, जमीन हमारा घर है और हर छोटी जिम्मेदारी इस घर को बेहतर बना सकती है। तो भाई छोटी सी आदत डालें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं 60 Seconds of Baraka, FM 107 पर। मैं हूँ आपकी RJ माविश खान। आज हम बात करेंगे सोने से पहले शुक्र अदा करने के बारे में। दिन के आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना एक बहुत खूबसूरत आदत है। चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो, हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं। शुक्र करने से दिल हल्का होता है और इंसान पॉजिटिव फील करता है। यह आदत हमें नेगेटिव सोच से दूर रखती है और जिंदगी के अच्छे पहलुओं को हाईलाइट करती है। सोने से पहले शुक्र करने से नींद भी पुरसकून होती है, अगला दिन भी बेहतर फील होता है। ये सिर्फ एक मिनट का अमल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले दिन की तीन अच्छी बातों को याद करें और दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.
2: One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One step to 2030.
1: आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं ई गेमिंग पर. क्या वीडियो गेम्स मुस्तकबिल का स्पोर्ट्स बन चुके हैं या बन रहे हैं या पूरी तरह से बन जाएंगे? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और खास तौर पर यंग जनरेशन में तो बहुत ही पॉपुलर. ई गेमिंग या फिर ई स्पोर्ट्स. एक वक्त था जब वीडियो गेम्स को सिर्फ बच्चों का एंटरटेनमेंट का जरिया समझा जाता था. पेरेंट्स अक्सर कहते थे कि गेम्स खेलकर वक्त जाया मत करो. लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है. आज गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ प्रोफेशनल प्लेयर्स, टीम्स, टूर्नामेंट, स्पॉन्सरशिप सब कुछ मौजूद है. सवाल ये है कि क्या ई गेमिंग वाकई एक स्पोर्ट है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है? वेल, ई गेमिंग या ई स्पोर्ट से मुराद कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स है. यहाँ प्लेयर्स इंडिविजुअल या टीम की शक्ल में गेम्स खेलते हैं और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरह. यहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, स्ट्रैटेजीज हैं, टीम वर्क की जरूरत होती है. आज देखा जाए तो दुनिया भर में गेम्स जैसे फुटबॉल सिमुलेशंस, रेसिंग गेम्स, बैटल गेम्स, स्ट्रैटेजी गेम्स कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेले जाते हैं. कुछ टूर्नामेंट्स को लाखों और कभी कभी मिलियन लोग ऑनलाइन देखते हैं. क्या गेमिंग सिर्फ और सिर्फ तफरी का जरिया है? बहुत से लोग समझते हैं कि गेमिंग सिर्फ टाइम पास है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कॉम्पिटिटिव गेमिंग में बहुत सी स्किल्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे फास्ट डिसीजन मेकिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टीम कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. प्रोफेशनल गेमर्स अक्सर रोज कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल एथलीट्स की तरह. उन्हें भी प्रेशर हैंडल करना पड़ता है और टूर्नामेंट के लिए मेंटली तैयार होना पड़ता है. अब ई गेमिंग इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी. जी हाँ, इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर प्लेयर किसी दूसरे मुल्क के प्लेयर के साथ कम्पीट कर सकता है. लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने गेमिंग को और भी एक्सेसिबल बना दिया है. अब लोग सिर्फ गेम्स नहीं खेलते बल्कि दूसरों को गेम्स खेलते हुए भी देखते हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम फुटबॉल या क्रिकेट मैचेस देखते हैं. वैसे मैं आपको बताऊं कि ई गेमिंग सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत सी जॉब्स भी मौजूद हैं, जैसे गेम डेवलपर्स, कमेंटेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स, टीम मैनेजर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स. यानी अगर कोई प्रोफेशनल गेमर ना बन पाए फिर भी गेमिंग इंडस्ट्री में करियर बना सकता है. वैसे गेमिंग के फायदे भी हैं, ई गेमिंग के फायदे भी हैं. जी हाँ, गेमिंग अगर बैलेंस के साथ की जाए तो कई पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं. प्लेयर्स टीम वर्क सीखते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, रिएक्शन स्पीड बेहतर होता है और कई गेम्स क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भी प्रमोट करते हैं. कुछ एजुकेशनल गेम्स लर्निंग को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं. वहीं इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं.

0: हर चीज की तरह गेमिंग के कुछ चैलेंजेस सामने आते ही हैं और एक बड़ा चैलेंज है एडिक्शन। हर कोई शख्स बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पर गुजार रहा है, उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो रही हैं। कुछ बच्चों के, कुछ गेमर्स के तो स्लीप रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये एडिक्शन बहुत बड़ा कंसर्न है। शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गेमिंग और रियल लाइफ के दरमियान बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे ई गेमिंग का फ्यूचर क्या होगा? मुस्तकबिल में ई गेमिंग और भी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेयर्स की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस एनालाइज करने में मदद करते हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी गेमिंग स्कॉलरशिप्स ऑफर करने लगे। यू नेवर नो। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि ई गेमिंग फ्यूचर का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट बनेगा। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ई गेमिंग ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे? ना ना, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ मुमकिन है कि पॉपुलैरिटी ई स्पोर्ट्स की ज्यादा बढ़ जाए। एक तरफ फुटबॉल और क्रिकेट हो और दूसरी तरफ डिजिटल स्टेडियम्स में सेम गेम जो है टूर्नामेंट्स चल रहे हों, हो सकता क्या ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हमें और आपको ढूंढने हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गेमर बने? क्या आपको ऐसा लगता है कि ई गेमिंग एक सस्टेनेबल करियर ऑप्शन बन सकता है? अपने आप में बड़े दिलचस्प सवाल हैं। पता नहीं, शायद हम एज अ पेरेंट अगर इस सवाल का जवाब दें तो कुछ भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने गेमिंग को एंटरटेनमेंट से निकाल कर प्रोफेशनल और ग्लोबल कॉम्पिटिशन बना दिया है। अहम बात ये नहीं कि आप गेम खेलते हैं या नहीं, आपका बच्चा गेम खेलना चाहता है कि नहीं, अहम बात ये है कि हर चीज़ की तरह गेमिंग में भी बैलेंस हो, डिसिप्लिन हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस फील्ड में फ्यूचर बनाना बुरा नहीं। चलिए यहीं पर इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस। हाय डियर, आई मिस यू। मुझे बहुत याद आती है आपकी। आई होप यू आर ओके, यू आर फाइन। बस थोड़ा सा पैसा चाहिए, इमरजेंसी है। ऐसी ही मीठी मीठी बातों में हम में से कई फंस जाते हैं। सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। फेक प्रोफाइल्स, फेक लव स्टोरीज, पहले इमोशंस, फिर एक्सक्यूजेस और फिर पैसे, यही है इनका कॉमन तरीका। कई दफा तो कई फ्रॉडस्टर लड़की बन के आपसे चैट करते हैं एंड वाइस वर्सा। काफी लंबे दिनों तक आपको अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं, फिर कोई कॉमन बहाना देते हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस प्रॉब्लम, गिफ्ट कस्टम इशू, और आपसे बोलते हैं कि थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं काम कर लेती। आउट ऑफ लव आप पैसे दे देते हैं और जैसे ही आप पैसे देते हैं वैसे ही इस लव स्टोरी का एंड हो जाता है। तो अपने आप को ऐसे ऑनलाइन लव से बचा के रखिए, क्योंकि ऑनलाइन लव प्लस मनी रिक्वेस्ट इज इक्वल टू स्कैम। ऐसे लोगों को कभी पैसे ट्रांसफर मत करो। कई लोग धोखा खा के समझ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप धोखा खाने से पहले समझ जाएं। ट्रू लव दिल मांगता है, UPI या पैसे ट्रांसफर नहीं।
3: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महर शान। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहे होंगे। द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट की एक और किस्त के साथ मैं हाजिर हूँ और आज जिन नबी का हम जिक्र करने वाले हैं वो है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी के जरिए इंसानियत को हिदायत और सीधे रास्ते की तरफ बुलाने का मंसूबा बनाया। ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया तक पहुँचा। हर नबी का मकसद ये था कि लोग अल्लाह की इबादत करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें और जुल्म व फिस्क से बचें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ भेजा जो यमन और उमान के दरमियान आबाद थी। ये कौम ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत थी बल्कि फन तामीर और ताकत में भी सब पर सबकत रखती थी। बुलंदो बाला इमारात, शानदार महलात और मजबूत किले उनकी पहचान थे। उनकी दौलत और ताकत ने उन्हें गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर दिया था और वो जुल्म सतम में हद से बढ़ गए थे। कौमी आद का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। वो अरब थे और अलहकाफ की वादी में आबाद थे जो समंदर के किनारे फैली हुई थी। उनकी वादी को मुकीस कहा जाता था। ये कौम अपनी जिस्मानी ताकत और फन तामीर के सबब हर कौम में मुमताज थी। उनकी जिंदगी में दौलत और वसाइल की परवानी थी मगर वो अल्लाह की इबादत और उसके कवानीन की पाबंदी में खफलत बरतते थे। अगरचे वो अल्लाह की मौजूदगी से वाकिफ थे लेकिन वो ना सिर्फ अल्लाह के सिवा दीगर माबूदों की इबादत करते थे बल्कि अपने गुनाहों में भी हद से गुजर गए थे। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और उनकी गुनाहों से रोकें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और दानिशमंद इंसान थे। उन्होंने अपने लोगों को अक्ल व हिकमत के साथ हक की तरफ बुलाया। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पांचवी नस्ल के बाद पैदा हुए। उनका ताल्लुक आद बिन औस बिन साम बिन नूह के कबीले से था। उनकी कौम अलाराबी थी और यमन के अलकाफ इलाके में आबाद थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी थी कि वो ना सिर्फ नसीहत करते बल्कि अपनी कौम को बल्कि अपनी बात को दलील और हिकमत से मजबूत करते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और कहा, मेरे लोगों, ये पत्थर जिन्हें तुम खुद तराश कर इबादत करते हो किस काम के हैं? यह अकल का मजाक है। इबादत के लायक सिर्फ एक माबूद है और वो अल्लाह है। उसकी इबादत जरूरी है। उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रिज़्क दिया और तुम्हें मौत देने वाला भी वही है। उसे तुम्हें शानदार जिस्मानी सलाहियतें और नियमतें बख्शी हैं, लिहाजा उस पर ईमान लाओ और उसकी इनायात से इनकार ना करो वरना वही अंजाम तुम पर भी आएगा जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने दलाई में अल्लाह की तख्लीक, रिज्क, मौत और कुदरत की निशानदेही की। انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ صرف اللہ ہی ان کا حقیقی مددگار ہے اور کوئی بھی معبود یا طاقت انہیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام بن جائیں؟ آپ کو کیا اجر چاہیے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہیں حق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور عاد کی قوم کے بھائی ہود کی طرف بھیجے گئے، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں، تم بس جھوٹ گھڑتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس پیغام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और एक दिन हर इंसान को उसके अमाल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा, अदल का तकाजा है कि एक रोज हिसाब हो, क्योंकि जिंदगी में हमेशा नेकी की फतह नहीं होती, कभी कभी बुराई गालिब आ जाती है। अगर कयामत ना हो तो जुल्म का तसलसल रह जाएगा, लेकिन अल्लाह ने जुल्म को अपने या अपने बंदों पे हावी नहीं होने दिया। लेकिन कौम आद ने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब कहानियां सिर्फ तुमने खड़ी हैं, हम मरते हैं और दोबारा जिंदा नहीं होंगे, हमारी जिंदगी बस इस दुनिया तक महदूद है। हज़रत हूद अलैहि सलाम ने उनको याद दिलाया कि अल्लाह ही उनका हकीकी मददगार और निजात दहिंदा है और कोई भी माबूद या ताकत उन्हें नुकसान या फायदा नहीं पहुंचा सकती। हज़रत हूद अलैहि सलाम की नसीहतों के बावजूद कौमी आद ईमान ना लाई, अल्लाह ताला ने उन पे अजाब नासिल किया। पहली खुश साली आई जिससे जमीन खुश्क हो गई, फसलें मुरझा गईं और पानी की किल्लत पैदा हो गई। कौम आद ने हजरत हूद अलैहि सलाम से पूछा, ये खुश साली क्यों आई है? हजरत हूद अलैहि सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का गजब है, अगर तुम ईमान लाओगे तो बारिश होगी और तुम्हारी ताकत में इजाफा होगा। लेकिन कौम ने तमस्कुर और इनकार जारी रखा। अल्लाह ताला ने उनकी सरकशी के बदले आसमान से शदीद बादू तूफान भेजा। ये तूफान 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहा, जिसने हर बुराई करने वाले को मिटा दिया। कुरान में इस वाकये को कुछ यूं बयान किया गया है, और आद को एक सख्त और ताकतवर हवा ने घेर लिया। 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल, जिसमें तुम देख सकते थे मर्द और औरत सब झड़ते हुए जैसे खजूर के खाली डंठल में। इस तूफान ने हर जगह तबाही फैला दी, सिर्फ हजरत हूद अलैहि सलाम और उनके पैरोकार महफूज रहे। उन्होंने अपनी कौम की तबाही के बाद इधर मौत की तरफ हिजरत की और वहाँ अल्लाह की इबादत के साथ अमन व सुकून से जिंदगी गुजारी। इस वाकये से हमें जो सबक मिलता है वो ये कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और दीगर माबूदों की इबादत ना सिर्फ गलत है बल्कि अक्ल व शऊर के खिलाफ भी है। हजरत हूद अलैहि सलाम ने अपनी कौम की सरकशी और तमस्वर के बावजूद सबर किया और अपना पैगाम पहुँचाया। क़यामत का अकीदा इंसानियत के लिए ज़रूरी है ताकि बुराई के अमाल का हिसाब लिया जाए। अल्लाह ताला की ताकत अजीम है और वो जुल्म करने वालों को इबरत के लिए सज़ा देता है। लिसनर्स, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुनते रहें एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आग की कहानी ना सिर्फ एक तारीखी वाकया है बल्कि आज भी इंसानियत के लिए एक अहम सबक रखती है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ। रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107। दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। दर हकीकत अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि यूं कहो कि हम मुती हो गए। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी इख्तियार कर लो तो वो तुम्हारे आमाल के अजर में कोई कमी न करेगा। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। हकीकत में तो मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने कोई शक न किया और अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे लोग हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुद्दईयान ईमान से कहो, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन की इत्तला दे रहे हो, हालांकि अल्लाह जमीन और आसमानों की हर चीज को जानता है और हर चीज का इल्म रखता है। ये लोग तुम पर एहसान जताते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इनसे कहो अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर अपना एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी, अगर तुम वाकई अपने दावाए ईमान में सच्चे हो। अल्लाह जमीन और आसमानों की हर पोशीदा चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम करते हो वो सब उसकी निगाह में है।

पड़ा हुआ था और आज तेरी निगाह खूब तेज है। उसके साथी ने अर्ज किया, ये जो मेरी सपर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, फेंक दो जहन्नम में हर कट्टे काफिर को जो हक से ऐनात रखता था, खैर को रोकने वाला और हद से तजावुज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था। डाल दो उसे सख्त अजाब में। उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावंदा मैंने इसको सरकश नहीं बनाया बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हुजूर झगड़ा न करो, मैं तुमको पहले ही अंजामे बद से खबरदार कर चुका था। मेरे यहां बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। वो दिन जबकि हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और कुछ है, और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था और जो दिले गर्वीदा लिए हुए आया है। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन हयात अबदी का दिन होगा, वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास उससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है।